पर पड़ा तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदले करके कहे, तो आप मानेंगे, भूलेंगे अपना नाम। जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, मानो जैसे कभी कभी दो लोगों का नाम एक जैसे होता है, तो किसी और को बुलाया उस नाम से, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही क्या करेगा, एकदम देखेगा, आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो देह भान इतना पक्का हो गया है, ऐसे देही अभिमानी स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। देही अभिमानी स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी भी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना, हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया, बेभान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने, तो चेक करो ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं, ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं। ज्ञान स्वरूप किसको कहा जाता है, उसको बाबा स्पष्ट करते, ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है, नॉलेज को कहते नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट, है ना। नॉलेज को क्या कहते हैं, नॉलेज को कहते नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। दूसरा, योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना, कर्मेंद्रिय जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्यधारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन, योग युक्त जीवन अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी और सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है, संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना यह पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, ये नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा, क्या देखा,
कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इसका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को और वह मनुष्यात्मा है, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाले और वह मनुष्यात्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कारवश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है, तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता, ये शुभ भावना नहीं, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता, ये शुभ भावना नहीं है, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना, तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है। इसको कहा जाता है अनुभव की अथॉरिटी वाला, इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो भी बाप दादा यही चाहता है, अनुभवी मूरत बनो, अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। चार ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं जो अपने को संपन्न करेंगे, कमी को खत्म करेंगे, इतना अपने ऊपर अटेंशन देंगे, वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। किसी की भी कमी का संस्कार हो, लेकिन अपनी शुभ भावना कभी कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, यज्ञ के अंदर क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना, शुभ कामना के तीन शब्द सभी को शिक्षा देके गए। याद है ना, तीन शब्द याद है ना, स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त बने। इन तीन स्थिति के आधार से ही अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई कि जैसे बाबा को कर्म भोग चुकतू हो रहा है। इसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है, क्या हो गया, अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं,
वैसे हम कहते हैं मेरा बाबा।

तो बाप क्या कहते हैं, मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार के भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्यों को सफल कम करे, यह राइट नहीं। कार्य को सफल कम करे यह राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्मा परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो। कैसा भी है, परमात्मा परिवार है, जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूं, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। यह परमात्म परिवार एक का एक समय ही होता है, एक परमात्मा का एक ही समय पर होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसका हो ही नहीं सकता, तो चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को, अच्छा चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश को गीत गाते, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर एक बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर यह भी खुशी होती है, वाह मधुबन वाह। सबका असलम मधुबन ही है, इसीलिए मधुबन में भागकर आते हैं। अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है, चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाबा की आश क्या है? चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहां भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये साधन, ये साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते भी साथ है, तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो, और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। लाइट माइट रूप बनने के लिए मनन करने की और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो, कि जो भी शब्द बोलेंगे
कर्म करेंगे वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज है और स्पष्ट हो जाएगा। बाबा कहते अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। आज का स्लोगन है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। आज का व्यक्ति इशारा है सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। इसके अंतर्गत बाप दादा कहते आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती है, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, सुप्रभात। दोस्तों, कहा जाता है कि किस्मत का लेखा कोई मिटा नहीं सकता, किस्मत का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, सच बात है, कभी कभी कहते हैं कि होनी को हम टाल नहीं सकते, और उस पर ही मुझे एक बहुत सुंदर कथा याद आती है जो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन यमराज एक लड़के के पास आए और बोले, लड़के आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तो लड़के ने कहा, यमराज मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। यमराज ने कहा, ठीक है, लेकिन सूची में तुम्हारा नाम पहला है। फिर लड़के ने कुछ सोचकर कहा, ओके, फिर क्यों ना हम जाने के पहले साथ में बैठकर चाय पी ले। यमराज मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और हाँ भरते हुए वो लड़के के साथ चाय पीने गए। लड़के ने चाय में नींद की गोली मिलाकर यमराज को दे दी। जैसे ही यमराज ने चाय खत्म की तो वो गहरी नींद में सो गए। फिर लड़के ने क्या किया कि सूची में उसका नाम जो शुरुआत में था वो हटाकर अंत में लिख दिया। बड़ा खुश हुआ वो। अब जब यमराज को होश आया तो वो लड़के से बोले, लड़के, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसलिए मैं अब सूची अंत से शुरू करूंगा। कहने का भाव ये है कि आखिर लड़के का नंबर तो लग ही गया। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि हम अपने मर्जी से करेंगे तो फिर उसको हम नहीं टाल सकेंगे, लेकिन भगवान की मर्जी अगर हम पर होगी तो हर बात, मुश्किल बात भी संभव है। आज इसी बात में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आए हैं ज्ञानेश्वर जी। हम पहले उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम।
1: थैंक यू भक्ति जी, और गुड मॉर्निंग टू यू, और गुड मॉर्निंग टू ऑल अवर रेडियो मधुबन लिसनर्स। हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। भक्ति जी, आपने जो कथा सुनाई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे रोचक लगी, और उसमें आपने जो जिस्ट निकाला, मॉरल निकाला, या कथा का सार निकाला, वो ये है कि भगवान की मर्जी, वो अगर है, अपनी मर्जी से नहीं होता, भगवान की मर्जी से होता है।
0: जो भगवान चाहता है वो
1: जो भगवान चाहता है वही होता है। मुझे ऐसा भी लगता है, इसमें और भी एक संदेश शायद मिल सकता है हमें, कि वो यमराज जो है वो देवता स्वरूप है, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में। यमराज कोई ऐसी साधारण व्यक्ति नहीं है, देवता स्वरूप है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ आप छल कपट करके स्वार्थ भावना से कुछ करते हो तो उसका फल स्वरूप आपको नुकसान ही होता है
0: जी। इसलिए मृत्यु की देवता यमराज को ही कहा जाता है। और कहने का भाव ये भी है कि जैसे आपने कहा छल कपट, तो ज्ञानेश्वर जी हम बात कर रहे थे त्रिशंकु की। जब हम किसी भी बात के लिए बहुत ही जिद करते हैं तो उस समय उसके कुछ न कुछ इस प्रकार के नतीजे हमें भुगतने पड़ते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए त्रिशंकु की जो बात आती है कि सत्ता और धन दोनों उसके पास थे, हजारों सालों से आज मनुष्य जो है ये दो बातों के लिए तरसता है, लेकिन कहा जाता है सत्ता और धन मनुष्य के दिमाग को विकृत करते आए हैं। उसमें अहम भाव भर जाता है। और ऐसा ही एक चरित्र जो आप सुना रहे हैं त्रिशंकु, ज्ञानेश्वर जी मैंने सुना कि उसका असली नाम त्रिशंकु नहीं लेकिन सत्यव्रत था। कितना सुंदर नाम है सत्यव्रत, जिसका व्रत है सत्यता का, या कह सकते हो सत्य ही जीवन में होना चाहिए, ये व्रत जिसने लिया है। तो कहाँ सत्यव्रत जिस पर प्रभु की असीम कृपा, चारों ओर उसका यश फैला हुआ, लेकिन अचानक जब उसके दिमाग में एक कीड़ा बुलबुलाया और उस कीड़े ने उसको एक ऐसी ख्वाहिश पैदा कर दी कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है, तो फिर आपने जो कथा सुनाई कि जिस प्रकार से ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जो है उनके दोनों के संपर्क में वो आया, आगे क्या होता है और त्रिशंकु को आखिर उसकी जो इच्छा है वो पूरी करने में कौन मदद करता है?
1: देखिए, आपने जो उसका संदर्भ दिया काफ़ी महत्वपूर्ण है यह संदर्भ, और हमारे श्रोतागण के जानकारी के लिए, उन्हें सुना भी होगा क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोतागण जो है वो उसका काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं, काफ़ी ज्ञान रखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सत्यव्रत आपने जो नाम बताया
0: जी,
1: देखिए इंसान जो है वो था राजा, सूर्य कुल का राजा था, बहुत बड़ा कुल था, बड़ा खानदान था, राजा भी अच्छा था, राज्य भाग्य उसे मिला था और प्रजा भी सुखी थी, बहुत अच्छा राज्य करता था, सब कुछ ठीक था। उसके जो राज ऋषि जो थे वो वशिष्ठ थे, और उनके द्वारा अभी जैसे आप बताया कि एक कीड़ा बुलबुल आया, वो कीड़ा बुलबुल आया कि मैं सदैव स्वर्ग में जाऊं। ये जब घटना में देखता हूँ या घटने के बारे में चिंतन करता हूँ, और आज के युग की भेंट में, आज का दौर जो है हमारा, उसकी भेंट में अगर हम उसका विचार करते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी ही कथा है, इस संसार की ही कथा है, इस कलयुग की ही कथा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा है। देखिए, ये राजा है, सत्यव्रत है, नाम ही सत्य है, और व्रत लेता है सत्यता का, प्रजा सुखी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मन में विचार आ गया, गलत संकल्प आ गया, और देखिए कैसे पतन शुरुआत हो गई। एक गलत संकल्प आया, अगर उसी समय रोक लेता था तो शायद इतिहास बदल जाता था, लेकिन वो संभव नहीं था। और ये इतिहास है, कवि कल्पना है या काव्य है, इसके बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये कवि कल्पना है, या मुझे अगर इससे कुछ संदेश लेना है ये कथा से, भले हो सत्य हो कवि कल्पना हो, लेकिन मेरे लिए अगर उसमें से कुछ संदेश लेना है तो ये लेना है कि मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसे होता है, हर एक इंसान की जिंदगी में, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं एक गलत संकल्प आता है, मोहवश कर देता है, और ये मोह में फंस जाते हैं, और फिर हमारी
0: पतन की अवस्था
1: शुरू हो जाती है, और उससे हमें संभालना है।
0: बहुत सुंदर। संकल्प जो है वो कर्म में जब उतर जाता है तब गलत संकल्प का कर्म भी गलत होता है, इतना ही नहीं उसके अनेक प्रकार के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है, और उसमें कई व्यक्तियां भी शामिल हो जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी है त्रिशंकु की। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी का दरअसल आज के जीवन में किस प्रकार से बहुत मेल जोल है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब समय है ब्रेक का। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद सबका स्वागत है अमृतधारा प्रोग्राम में, और हम बात कर रहे हैं त्रिशंकु के। असली नाम सत्यव्रत था, और अपनी अजीब सी जिद के कारण उसको त्रिशंकु नाम दिया गया। गणेश्वर जी, मुझे लगता है त्रिशंकु का जो अर्थ अगर सही कहा जाए तो वो है निराधार लटकते रहना। आज विज्ञान का युग चल रहा है, हम बात कर रहे हैं कि ये जो कहानियां हैं वो कहानियां आज के ज़माने में कैसे हम उसको ठीक तरह से समझे और उसका जो सार है वो जीवन में अच्छी तरह से समझकर उसकी जो भूले हैं वो न करें। तो कई बार मुझे लगता है कि आज ज़माने में कई ऐसे परिवार होते हैं जिन परिवारों में पिता और माता, पेरेंट्स जो है वो होते हैं पहले ज़माने को फॉलो करने वाले, या थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हम कह सकते हैं, और उनके बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल मॉडर्न होते हैं। और फिर बच्चों की परवरिश में कुछ ना कुछ ऐसी उनकी अपनी मतें होती है, और बच्चे आगे जाकर त्रिशंकु की अवस्था में रहते हैं। आपको क्या लगता है?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, ये त्रिशंकु की अवस्था जो है, आपने जो उसका परिणाम बताया या परिभाषा बताई वो भी सही है, कि वो बच्चे जो है आपने बताया कि वो कौन सी दिशा में जाऊं ये निर्णय करने में असमर्थ है या संभ्रमित अवस्था हो जाती है। आजकल के ज़माने की अगर हम बात करें तो हम अक्सर पढ़ते हैं, कभी कभी अखबारों में पढ़ते

0: इसके लिए मुझे लगता है कि यह जब हंग पार्लियामेंट की स्थिति आती है या त्रिशंकु की स्थिति आ जाती है तब वो स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती।
1: जी, क्योंकि ऐसे होता है कि मुझे आगे जाना है तो मैं आगे भी नहीं जा सकती, हाँ मुझे अगर पीछे लौटना है तो मैं पीछे भी नहीं लौट सकती, तो जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। और ऐसे समय कई बार बोलने में आता है कि मेरी अवस्था तो बिल्कुल त्रिशंकु जैसी हो गई।
0: और ये त्रिशंकु अवस्था जो है वो प्रगति के लिए बाध्य है। अगर तरक्की करनी है, समाज की तरक्की करनी है, हमें कुछ इप्सित साध्य करना है, अगर हमें कुछ लक्ष्य हासिल करना है, तो ये त्रिशंकु अवस्था जो है वो हमारे लिए बाधा या रुकावट पैदा कर देती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि उस समय ऐसे होता है कि हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता और हम बेचैनी का अनुभव करते हैं, मैं समझती हूँ ज्ञानेश्वर जी। और ऐसे समय आदमी जो है वो घबराता है, ऐसे समय कई बार उसे मंजिल की भी फिक्र रहती है और फिर वो कहता है कि मैं क्या करूँ। इसलिए कहा जाता है कि हर घड़ी शुभ घड़ी है ऐसे समझकर अगर आप निर्णय लेंगे तो फिर आपकी अवस्था जो है वो त्रिशंकु नहीं होगी, अन्यथा कुछ बातों में उलझने के कारण ये अवस्था हो सकती है। तो बात हो रही थी राजा सत्यव्रत की, जिसको त्रिशंकु का श्राप मिला।
0: बिल्कुल सही कहा। और त्रिशंकु के बारे में जब हम चर्चा करते हैं कि जब हमारी अवस्था ये त्रिशंकु अवस्था, हमने विधानसभा लोकसभा इसके बारे में कहा, अभी देखिए अगर लोकसभा हंग पार्लियामेंट होती है या त्रिशंकु हो जाती है तो क्या होगा, वहाँ कुछ अच्छे निर्णय नहीं ले सकते। अगर लोक कल्याण की भावना मन में है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक पक्ष जो है वो राज्य ठीक तरह से नहीं कर सकता। और इसलिए त्रिशंकु अवस्था जो है वो हमेशा कहा जाता है अपने प्रगति के लिए बाधक हो जाती है। और ये बाधकता जो है वो अगर हमें निकालनी है तो हमें एक सही दिशा में जाना पड़ेगा। और ये सही दिशा जो है, ये सही दिशा अगर हम ठीक तरह से तय नहीं कर पाते तो भी ये त्रिशंकु अवस्था है। क्योंकि जैसे हम सत्यव्रत की बात करते हैं, वो सत्यव्रत राजा था, जब वो अच्छी तरह से राज करता था वो पॉजिटिव डायरेक्शन से उसका राज्य चलता था, बहुत कुछ ठीक चलता था। क्या हो गया, एक मन में संकल्प आया कि मैं देह सहित स्वर्ग में जाऊं। अभी देखिए देह सहित स्वर्ग में जाऊं ये अशक्य प्राय चीज है, असंभव है। और ये असंभव चीज जो है, ये असंभव प्राप्त करने के लिए अगर हम कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे तो क्या होगा, उसको वशिष्ठ जी ने समझाया राजा को। अच्छा राजा था, सूज्ञ था, विचारी था, सत्यव्रत था, उसको समझाया भी बहुत अच्छी तरह से वशिष्ठ जी ने कि ये आप कर नहीं सकते, ये नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और फिर भी वो मनमानी करने की जिद पे अड़ा था
1: जी।
0: ये क्यों आ गया, क्योंकि मन में उसके इच्छा है, ये विकार हम कहते हैं ना, ये एक विकार है। और ये मन में इच्छा पैदा हो गई कि ऐसे कुछ मैं करूं, और जब किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तब क्या हो गया, वो जो न्याय व्यवस्था है उसको भी मानने के लिए उसने इनकार कर दिया। और फिर उसने सोचा इसमें से कुछ मैं रास्ता निकालो, और फिर गया विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र जो विश्व का मित्र है, जगन मित्र है, उसे बहुत कुछ समझाया, उसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो कहते हैं ना, क्योंकि क्या हो गया था, वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दिया था और वो श्राप जो है, श्राप की वजह से वो काला बन गया, चंडाल बन गया, ऐसे कहते हैं। मींस उसकी जो क्वालिटी जो थी वो नहीं रही, उसका रूप जो था वो पहले जैसे रूप नहीं रहा, और दया बुद्धि पैदा हो ऐसा उनका रूप हो गया।
1: मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी, ये जो श्राप के कारण सत्यव्रत काला बन गया, त्रिशंकु नाम पड़ा, तो ये काला रंग भी एक बात को सूचित करता है। वो ये कि जब हमारे मन में कुछ

0: कालापन आ जाता है, या काला रंग हमेशा प्रतिनिधित्व करता है बुराई का, हमारे मन में जब बुराई आ जाती है उस बुराई को दर्शाने के लिए कथा में इस प्रकार का वर्णन होगा कि उसका रूप जो है वो काला हो गया। और सिंह की जो बात आप कर रहे हैं, कोई कथा में ऐसा भी है कि उसके बाल जो है वो छोटे बन गए, और किसी किसी कथा में ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसके ऊपर सिंह आ गए। तो कहने का भाव ये है कि बिल्कुल ही विद्रूप, जिसको कहते हैं कुरूप, अति कुरूप रूप। तो हम अगर हमारे मन को टटोले कि जब हमारे मन में बुराई पैदा होती है, जब विकारों की पैदाइश होती है, तो विकारों की पैदाइश हम देखें कैसे, तो अगर उसका चित्र निकालना है तो ये चित्र दिया हुआ है कि ऐसा रूप बन जाता है, क्योंकि ऐसा रूप देखने के बाद किसी को भी डर लगेगा। तो हमारे पूर्वजों का ये कहने का भाव होगा या ये दर्शाने का भाव होगा कि जब आप किसी गलत चीज को पकड़ के बैठते हो, किसी अवगुण को मन में ज्यादा से ज्यादा पैदा करते हुए उसको सिद्ध करने का यत्न करते हो, प्रयास करते हो, तब इस प्रकार का भयानक रूप बन जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। ये काला रंग जो आपने बताया बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि शायद हमारे श्रोतागण के मन में या किसी के भी मन में ये शंका आशंका उत्पन्न हो सकती है कि कहीं ये वर्ण द्वेष तो नहीं है, कहीं ये वर्ण भेद तो नहीं है गोरा और काला। लेकिन इसमें मुझे ये लगता है गोरा ये जो है शुभ और काला जो है वो अशुभ माना जाता है, और इसलिए रात को हम अशुभ मानते हैं और दिन को हम शुभ मानते हैं। तो ये काला रंग जो है इसका ही मेरे ख्याल से वर्णन होगा, या उसका ही वो अशुभ समझ के ही ये काला रंग का उन्होंने उदाहरण दिया होगा
0: जी,
1: ऐसा मुझे लगता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, आपको भी अगर इस कथा को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उस पर थोड़ा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको भी समझेगा ये कथा का भाव कोई डराना नहीं है, ये कथा का भाव है हमारे अंदर की जो बुराइयां है उस बुराई को संपूर्णतः निकालना। उस बुराई को हम अगर देखना चाहते हैं तो कितना उसका भयानक रूप दिखता है ये हमारे अंदर महसूसता की शक्ति जगाना। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है अमृतधारा प्रोग्राम में, और हम बात कर रहे हैं वरदान या श्राप, जो आज तक हमने कई जगह कथाओं में सुन रखा है। फिर आम आदमी के मन में विचार पैदा होता है कि ये श्राप, ये वरदान, क्या झंझट है इसका, और कैसे हम अगर अच्छाई करते हैं तो फिर वरदान मिलता है, बुराई करते हैं तो श्राप मिलता है, ये क्या नियम है, ये सृष्टि के विरुद्ध है या सही है। दोस्तों, इस बात की चर्चा हम इस कहानी के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं, और उस प्रकृति के नियमों का, सृष्टि के नियमों का अनुकूल जो है वो वरदान होता है, और प्रतिकूल जो है वो श्राप होता है। और अक्सर करके हमने पुराणों में, कथाओं में सुना हुआ है कि ऋषि मुनि जो है वो बहुत तप करते थे, और उस तप से उनको भगवान प्रसन्न होते थे, ज़्यादातर शिव जी के बारे में ही वर्णन होता है, और उन्हें वरदान देते थे, या फिर अगर उनसे कुछ भूल हो गई तो श्राप मिलता था। ज्ञानेश्वर जी, कई बार मन में विचार पैदा होता है कि वरदान, ये श्राप, ये क्या सचमुच होते हैं, और इन वरदान और श्राप का संकल्प की शक्ति से संबंध क्या है। आपने बात कही कि संकल्प एक शक्ति है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि हमारे कुछ दोस्तों के मन में अगर वरदान या श्राप के प्रति कुछ संदेह हो तो वो संदेह भी मिट सकता है।
2: देखिए, ये संकल्प शक्ति आपने बात कही, और फिर जो कथा का हम वर्णन कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी जगह हमारा संदर्भ है या संकेत मिलते हैं कि वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दिया, फिर विश्वामित्र जी ने उसे श्राप दिया या वरदान दिया, ऐसे कुछ, कोई वरदान देता है, कोई श्राप देता है। अगर हम ऐसी कथा के ऊपर गौर करें तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वो तप करते हैं, जंगलों में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, तप करते हैं, और प्रसन्न किसको करते हैं?
1: शिव जी को
2: प्रसन्न करते हैं, या कई कहते हैं विष्णु जी को प्रसन्न किया, लेकिन ज्यादातर अगर हमने जो पढ़ा है वो है शिव जी को प्रसन्न कर देते हैं। शिव जी परमात्मा शक्ति है, और परमात्मा शक्ति अथाह है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये वरदान प्राप्त करना, इसका मतलब है कि मुझे ये शक्ति हासिल करना। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो मेरी मोबाइल की बैटरी है, मेरी मोबाइल की बैटरी अगर मैं चार्ज कर रहा हूं और मेरी बैटरी फुल हो जाती है, तब क्या हो गया? वरदान प्राप्त हो गया, मीन्स कुछ मिल गया, तो इसे वरदान कहते हैं। अभी मुझे अगर श्राप किसी को देना है तो वो भी शक्ति है। वरदान जो है वो पॉजिटिव शक्ति है, श्राप जो है वो निगेटिव शक्ति है। और अगर मुझे किसी को श्राप देना है तो जो मेरे पास शक्ति का संचय है उसे ही मुझे यूज करना है, उसका ही मुझे इस्तेमाल करना है, और जब मैं इस्तेमाल करूं तब वो खर्च हो गया और मेरे पास कुछ नहीं बचा। और बहुत बार ऐसे हमने देखा है कि जब भी कोई ऋषि मुनि बहुत सारी तप करते हैं, बहुत सारी तपस्या करते हैं, और बड़े परिश्रम से वो वरदान प्राप्त कर देते हैं, और उसका उपयोग जो है वो लोक कल्याण के लिए ना करते हुए स्व कल्याण के लिए या खुद की
1: स्वार्थ के लिए,
2: स्वार्थ के, स्वार्थ भावना से करते हैं, खुद के कल्याण से, ईर्ष्या भाव से या अच्छे भाव से नहीं करते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: फिर उससे शक्ति खर्च हो जाती है और फिर वो शक्तिहीन बन जाते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि कई बार जब मैं भी बचपन में दादी माँ से कथा सुनती थी या पढ़ती थी, तब मन में संदेह होता था कि अगर हमें वरदान चाहिए तो हमें तप करना चाहिए, और अगर हमारे तप करने में कहो या कुछ हमारे कर्म में ऐसी गड़बड़ी हो गई तो फिर हो सकता है कि हमें श्राप मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ जो आपने कहा वो बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से समझा, हमारे श्रोतागण ने भी उसको सही तरीके से समझा होगा कि वरदान मिलने के लिए तप करना ये बात नहीं होती, लेकिन जब हमारे कर्म जो है वो अच्छे होते हैं, लोगों के प्रति हमारा भाव जब शुभ रहता है, विश्व कल्याण की हमारी मन में ख्वाहिश रहती है, भावना रहती है, तो उस भावना का जो फल है वो फल जिसको कहा जाता है वरदान। और क्योंकि हम देते रहते हैं, हम दानी बनते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ अपने मन से भी क्यों न सही, लेकिन शुभ संकल्पों की एक अपने मन को आदत डालते हैं तो वो हो जाता है वरदान। और अगर हम अपने लिए सिर्फ नहीं, लेकिन उसमें भी अगर बहुत ज्यादा ईर्ष्या समाई हुई हो या ऐसी बात हो जिसमें हमारा अहंकार जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, हद से बाहर हो जाता है, तब फिर हमारे ही कर्म गलत हो जाते हैं और उसको ही हम कहेंगे कि श्राप।
2: बिल्कुल सही कहा। और ये श्राप जब हम देते हैं तब नुकसान किसको होता है? दूसरे को। जिसको श्राप देते हैं उसका तो नुकसान हो ही जाता है, लेकिन जो श्राप देता है उसका भी नुकसान होता है
1: जी,
2: क्योंकि उसकी शक्ति खर्च हो जाती है और फिर उसे तपस्या करनी पड़ती है शक्ति जमा करने के लिए। इसकी भेंट में मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पैसा है, धन है, और धन है अगर वो गलत कार्य के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है तो वो श्राप है, और वही धन अगर सही कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए अगर यूज कर रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो वो संत सज्जन कहा जाता है। ऐसे कई संस्था ये है जो लोक कल्याण के लिए धन खर्चा करते हैं, फिर क्या होता है, लोगों से उन्हें दुआ मिल जाती है, और वो जो दुआ लोगों से मिलती है उससे उनकी तरक्की हो जाती है। और कई ऐसी संस्थाएं हो या कई ऐसे लोग हम देखते हैं कि उनके पास धन बहुत है लेकिन वो गलत कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते, गलत कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए लोगों से दुआ मिलने के बजाय लोगों से बद दुआ मिल जाती, जिसे हम श्राप भी कह सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही।
2: और ये बद्दुआ जो है वो नुकसान कर देती है, क्योंकि ये संकल्प में शक्ति जो है वो अच्छा भी कर सकते हैं या बुरा भी कर सकते हैं, और इसलिए संकल्प करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं,
1: जी
2: किसके बारे में सोच रहे हैं। और ये जब हम सोचेंगे समझेंगे तो यही संकल्प हमारे लिए अपने निजी जिंदगी में काम में आ जाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वरदान मतलब हमारे ही दूसरों के देने की जो वृत्ति है, जो भावना है, उसका हमें रिटर्न मिला। और श्राप अर्थात मुझे लगता है कि बद्दुआ, कभी कभी हम कह देते हैं कि ऐसा कम से कम आप दुआओं को नहीं ले सकते तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन बद्दुआ तो मत लो। तो ये बद्दुआ लेना यही श्राप के बराबर है, क्योंकि आखिर संकल्प एक शक्ति है, ऐसे अगर हमने माना तो कईयों की संकल्पों की शक्ति मिलकर ही पूरा का पूरा ये विश्व का निर्माण है, ऐसे मुझे लगता है।
2: ये संकल्प भी एक एनर्जी है, संकल्प भी शक्ति जो बोलते हैं, शक्ति जो एनर्जी है, और ये पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी, और उसका इस्तेमाल हमें बड़े सावधानी से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि इसका इस्तेमाल हमें सावधानी से करना चाहिए। और फिर से बात आती है कर्मों पर, क्योंकि हर बात का जो इम्प्रेशन है वो कर्मों के द्वारा ही हमारी भविष्य पर होता है, या हमारा नसीब जिसको हम कहते हैं वो होता है। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी बात नहीं है दोस्तों, आप सोच के कारण इतने बोझिल होने की भी ज़रूरत नहीं। बस यही मन में बहुत अच्छी तरह से ठान देना है कि मेरे कर्म ऐसे हो जो सर्व को सुखदायी हो, और ये तो हर एक समझ सकता है कि कौन से कर्म सुखदायी होते हैं। तो इस बात की चर्चा करने के लिए हम फिर से मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद सबका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं श्राप और वरदान के ऊपर। ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि महाभारत हो या फिर रामायण, ज्यादातर ग्रंथों में ऋषि महर्षियों के क्रोध को श्राप का रूप दिया गया है। तो क्रोध एक अग्नि है और दरअसल जो भी श्राप है, कई जगह हम देखते हैं कि उस श्राप का वर्णन जो होता है कि देवताएं जो है या अच्छे जो इंसान है वो श्राप के कारण कोई या तो फिर जानवर बनते हैं या पशु बनते हैं इस प्रकार से, या कुरूप बनते हैं। तो मुझे लगता है कि श्राप का अर्थ ये है कि आपकी जो स्टेज है, जो मानसिक अवस्था जो है, वो बिल्कुल ही बदतर बन जाती है। ये भी भावार्थ उसका हो सकता है।
1: देखिए, उसमें मुझे ये लगता है कि नुकसान कैसे होता है, श्राप से नुकसान कैसे होता है। श्राप देखो, अगर कोई व्यक्ति है वो बड़ी खुश है और बड़ी खुश है तो दूसरे को भी मुस्कुराती है तो दूसरों को भी खुश कर देती है। अगर उसकी अवस्था अच्छी है, वो मुस्कुराती है, खुशी है उसके चेहरे पे, तो वो देखने के बाद दूसरी व्यक्ति जो उसे देख रही है वो भी खुश हो जाती है। तो एक तरह से वो वरदान है, जो मुस्कुराती हुई व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को वरदान दे रही,
0: या मुस्कुराने के बाद जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है, वातावरण जो है वो बहुत अच्छा बनता है, तो वो अपने आप ही अच्छाई को अच्छाई खींचती है, उस प्रकार से उनके जीवन में वरदान मिलता है।
1: जैसे आपने कहा अभी, जैसे ये वो खुशी थी, अभी क्या हो गया, अचानक वो व्यक्ति के मन में कुछ क्रोध उत्पन्न हो गया, ऐसे गलत संकल्प आ गए और वो डिस्टर्ब हो गई और क्रोधित हो गई। क्या हो गया, वातावरण बदल गया। वो वातावरण बदल गया, उसके चेहरे में बदलाव आ गया और उसके इर्द गिर्द जो व्यक्ति थे उनके मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आ गया, उनकी स्थिति भी डाउन हो गई। तो जो हम सोचते हैं, विशेष करके अगर हम एक्सट्रीम सोचते हैं, बहुत ही खुशी है तो भी खुशी का माहौल हो जाता है, बहुत ही दुखी है तो दुख का माहौल हो जाता है, बहुत ही संतप्त है तो क्रोध का माहौल हो जाता है। ऐसे बहुत बार हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, हमारे श्रोतागण ने भी देखा होगा कि कई कई पब्लिक प्लेसेस में, लोकल ट्रेन में समझो, ट्रेन में है, बस में है, दो आपस में व्यक्तियां लड़ते रहते हैं। पहले बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे को कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, गाली गलौच हो जाती है और फिर हाथापाई हो जाती है। उसके बाद ये पूरा वातावरण जो है वो बिगड़ जाता है और वहाँ की पब्लिक देखने वाली है वो भी परेशान हो जाती है, वो दोनों तो है ही परेशान। बाय चांस कोई व्यक्ति आ जाता है और फिर उसने अगर उसमें समझौता कर दिया, फिर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो दोनों हंसने लगते हैं, आपस में गले मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं, चलो हो गया, भूल जाओ, अभी से हम दोस्त हैं। क्या हो गया,
0: वातावरण हल्का हो गया,
1: वातावरण हल्का हो गया,
0: सब लोगों ने भी थोड़ा सा तसल्ली मिली सबको।
1: बिल्कुल, वो जो पब्लिक देखने वाली है वो भी, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, देखो अभी ये झगड़ा खत्म, ये दोनों दोस्त बन गए। वही खाली संकल्प चेंज हो गए, उनके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा भाव था, संताप था, क्रोध था, उसके बदले प्यार का निर्माण हो गया और ये प्यार का निर्माण होने के बाद पूरा वातावरण बदल गया।
0: और दरअसल ज्ञानेश्वर जी, हमेशा देखा गया है जो व्यक्ति जोर से बोलने लगते हैं, जब संताप आता है, क्रोध आता है, तो वो जोर से बोलने लगते हैं, और जब एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह होता है तो शब्द जो है वो इतने जोर से बोलने की जरूरत नहीं। अर्थात जब क्रोध आता है तो दो दिल जो है वो बिछड़ जाते हैं,
1: दूर चले जाते हैं, और दूर चले जाने के बाद उन्हें लगता है कि शायद मैं जो कह रहा हूं वो उनको पता नहीं सुनाई देगा या नहीं देगा, इसलिए वो जोर से बोलते हैं। और जब प्यार हो जाता है तब उन्हें मालूम है ये तो मेरे बिल्कुल पास है और वो मुस्कुराहट होती है, बिल्कुल धीमे शब्द होते हैं और वो आनंददायक होते हैं, सुखदायी होते। तो हमारे बोल ऐसे चाहिए, सुखदायी हो, दूसरों के लिए सुखद पैदा करने वाले हो। और ये अगर हम बोल ऐसे बोलते हैं, मीठे शब्द बोल देते हैं, तो फिर मीठा वातावरण पैदा होता है, निर्माण होता है। वो मीठे शब्द बोलने के लिए हमें क्या होना चाहिए, मन में संकल्प अच्छे आने चाहिए। और बाय चांस कभी गलत संकल्प आ गया, क्रोध का संकल्प आ गया, तो उसे तुरंत हमें दूसरा संकल्प का निर्माण करना चाहिए। अगर हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो उछाल के ऊपर आ जाता है। और इसका उदाहरण जैसे हमने चर्चा कर रहे थे हम त्रिशंकु की, और उसमें ऐसे दिखाया गया कि उनको बहुत मोह पैदा हो गया था, विकार पैदा हो गया था, और फिर वो वशिष्ठ मुनि ने उसे श्राप दे दिया और वो चंडाल बन गए और काला वर्ण, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, किसी का चेहरा वो कैसा है, काला है, गोरा है, नाटा है, कैसा है, वो मायना नहीं रखता। कोई भी चेहरा हो, अगर वो मुस्कुराता है तो देखो कितना प्रसन्न हो जाता है।
0: बिल्कुल सही, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं और हम देखते हैं तो कभी भी किसी का भी दृष्टिकोण या किसी की भी नज़र उस छोटे से बच्चे के चेहरे के कलर पर नहीं जाती, रंग पर नहीं जाती, परंतु उसकी जो हंसी है वो हंसी देखकर ही हम उसको बहुत मीठा बोलते हैं।
1: अभी देखिए, दो बच्चे हैं, एक झोपड़ी में रहने वाला है, गरीब है, वो बच्चा छोटा बच्चा 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, और एक महलों में रहने वाला बच्चा, इन दोनों को अगर आप पास पास रखे तो दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है।
0: और अचरज की बात तो यह है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह खेलते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें इन बातों का पता नहीं है।
1: बिल्कुल, देखिए वो जो गरीब बच्चा है, झोपड़ी में रहने वाला है, उसे कोई दुख नहीं है कि वो झोपड़ी में रहता है, वो दुख से परे है, वो खुशी में है। और जो महलों में रहने वाला है, उसे कोई अहंकार नहीं है कि वो महलों में रह रहा है। तो ये विकार उनसे बिल्कुल मुक्त, ऐसे बचपन होता है, ऐसी निस्वार्थ भावना होती है, ऐसी निरागसता होती है, ऐसा इनोसेंस होता है, और वो कहीं ना कहीं दिल को छू लेता है। तो ये इनोसेंस जो है वो कब आएगा हमारे मन में, जब हमारे मन में अच्छे संकल्प आएंगे, दूसरे के प्रति प्यार आएगा। और इसलिए शायद भगवान को भी हम कहते हैं तू प्यार का सागर है। हम आपस में दूजा भाव करेंगे लेकिन भगवान नहीं करता। और इसलिए वशिष्ठ तपस्या करते हैं तो भी वो प्रसन्न होता है, विश्वामित्र प्रसाद तपस्या करते हैं तो भी वो प्रसन्न होता है, वाल्या कोड़ी जो है वो भी तपस्या करता है तो भी वो प्रसन्न सिर्फ नहीं होता, उनको वाल्मीकि ऋषि का दर्जा मिल जाता है, मान मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। तो ये भगवान जो है वो सागर जैसा है, वो शक्ति का स्रोत है, सोर्स ऑफ द एनर्जी, और उससे जितना हम चाहे उतना ले सकते हैं। और वरदान देना और उसके पास से जो शक्ति लेंगे वो कैसे यूज करना है वो हमारे ऊपर है, चाहे वो वरदान हो या श्राप हो।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, वरदान के बारे में, श्राप के बारे में। और मैं समझती हूँ हमारे श्रोताओं को बड़ी अच्छी लगी होगी, सहज लगी होगी, क्योंकि कई बार इन दो शब्दों से लेकर लोगों के मन में कुछ संदेह, कुछ डर और कुछ संभ्रम निर्माण होता है। तो दोस्तों, हम जब हमारे अंदर अच्छे संकल्पों का निर्माण करते हैं तो वो अच्छे संकल्प ही हमारी जीवन की अच्छाई के बीज जो है वो बोते हैं, और उसी के फलस्वरूप हमें हमारी जिंदगी का, जैसे कि हर बात का वरदान प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर हमारे संकल्पों में कुछ कालापन है, बुराइयां है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से भरे हुए संकल्प है, तो वो संकल्प जो खराब बीज है तो उसका वृक्ष भी हमें श्राप के रूप में हमारी जिंदगी में भुगतना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है, इनसे डरिएगा नहीं, लेकिन हमारे कर्मों को सुधारने के लिए बहुत अच्छे संकल्पों का निर्माण करना, वो आदत डालना, यही सबसे बड़ी कला है। और इस कला को आप अमृत धारा के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कला को दूसरों को भी सिखाना है और खुद भी अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। अब समय है वाणी को विराम देने का। अमृत धारा के द्वारा आपसे मुलाकात होती ही रहेगी। अब दीजिए इजाजत। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक घटना मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर और सत्य घटना, प्रेरक है हमारे आज के विषय से जुड़ी हुई। 4 जुलाई 1952, एक यंग लड़की कैटलिना चैनल को पार करने के लिए सागर में उतरी। उसने पूरे उत्साह के साथ तैरना प्रारंभ किया और 21 मील की जो दूरी थी, लगभग 20.5 मील की दूरी उसने तय कर लिया 15 घंटे में। लेकिन वो थक के बहुत चूर हो चुकी थी, ठंड भी बहुत थी, अब उसका हौसला जवाब देने लगा था। सामने बहुत धुंध था और उसे अपना लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था कि और कितनी दूर तक मुझे तैर के जाना है। उसका हौसला जवाब दे गया और उसने विड्रॉ कर लिया, वो वापस शिप पे आ गई। बाद में जब उसे पता चला कि केवल 0.5 मील की दूरी और शेष रह गई थी, तो उसे बहुत अखरा और उसने ये कहा कि काश मुझे लक्ष्य दिखाई दिया होता तो मैं 0.5 मील की दूरी और तैर के पार कर लेती। ये बात और है कि 2 महीने के बाद फिर से उस लड़की ने प्रयास किया और सफलता अर्जित की। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि यदि सामने लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है और हम असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव कर जाते हैं। लक्ष्य के विषय पर ही हम चर्चा करते आ रहे हैं और अब तक हमने देखा कि क्यों युवा लक्ष्य नहीं बनाता है, क्या क्या कारण उसके होते हैं और साथ ही यदि वो लक्ष्य बनाए तो किन किन बातों पर ध्यान दें। आज हम पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण चर्चा है और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: प्रता जी, कल भी हम लोगों ने लक्ष्य के विषय पे बहुत सुंदर चर्चा की जो युवाओं से संबंधित थी। एक बात जो बार बार जेहन में आती है कि युवा वर्ग के तौर पे उनके प्रतिनिधित्व करते हुए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग एक अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छी सैलरी वाली नौकरी हो, केवल इसी को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। लेकिन क्या यही एक युवा का लक्ष्य होना चाहिए या इसके अलावा और कुछ होना चाहिए?
1: ना, देखिए, जीवन में ये सब चीजें तो आवश्यक भी हैं और हर मनुष्य ने प्राप्त करना चाहता है
0: जी,
1: मान सम्मान भी चाहता है। उसके पास धन होगा तो वो अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाएगा, लेकिन यही सब प्राप्त कर लेना केवल हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए
0: जी।
1: मैं सिंपल भाषा में कहूं कि हमारे लक्ष्य में एक शब्द हम जोड़ दें, मूल्यनिष्ठ लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो हमें संपूर्ण मानव बनाए, जो हमें समाज में उस तरह भी प्रतिष्ठा दिलाए जैसे महात्मा गांधी को है, जिनके पास पैसा नहीं था और उनके पास वो प्रतिष्ठा है जो बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं भारत में उनको तो कोई जानता भी नहीं। एक्चुअली कभी कभी अखबार में नाम निकल जाता है, 10 richest लोगों के नाम लोग पढ़ के भूल जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को बच्चा बच्चा जानता है। तो एक संपूर्ण मानव बनने का लक्ष्य, हम ये नहीं कह रहे कि धन कमाना, बहुत अच्छा बंगला बनाना, बहुत अच्छी नौकरी पा लेना, इसको हम इग्नोर कर दें, ये भी जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं और समाज की डिमांड भी।
0: माना हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे लक्ष्य हैं उनका उनमें से एक लक्ष्य ये हो
1: ये
0: कि हमारे पास धन हो, संसाधन हो, या हमारे पास अच्छी गाड़ी बंगला या ये सारी चीजें।
1: अलावा भी मान लो किसी ने बहुत धन कमा ही लिया
0: जी,
1: गलत तरीकों से कमा लिया और गड़बड़ हो गई, उनका नाम करप्शन केसेज में आ गया या इनकम टैक्स वालों ने उनके घर पे छापा मार दिया, या वो किसी ऐसे कर्म के कारण जेल में चले गए, सलाखों के पीछे आ गए, तो इससे उनका धन, उनका पद पोजीशन, या उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया है, बहुत अच्छा मकान भी बना दिया है
0: जी,
1: ये सब फिर बेकार हो जाते
0: हैं।
1: इसलिए एक मूल्यनिष्ठ,
0: एक ये कि लक्ष्य तो हर एक बना ही लेता है और ज्यादातर जैसे हमारी चर्चा होती आ रही है कि धन ही विशेष करके एक लक्ष्य के रूप में आता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन हो, और ज्यादातर लोग आज यदि देखा जाए तो शॉर्टकट्स अपनाते हैं कि हमारे पास जल्दी से जल्दी ये सारे धन साधन आ जाए। लेकिन ये जहां मूल्यों की बात शामिल हुई है, ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि मूल्य ना हो तो वो लक्ष्य कहीं ना कहीं हमें सलाखों के पीछे पहुंचा देता है।
1: लक्ष्य तो एक आतंकवादी बनाता है और उसके पीछे भी उसकी ज्यादा मानसिकता धन की होती है। बहुत करके जो केसेस सामने आए
0: जी,
1: कि वो लड़के गरीब थे, अब उनको अपने परिवार को पालने के लिए नौकरी भी नहीं थी, अब उनको कह दिया गया 25 लाख दे देते हैं
0: जी।
1: 25 लाख उसने ले लिए, उनका परिवार सुखी हो गया और वो चल दिया लोगों को मारने
0: जी।
1: किसको मारना उसको कुछ पता नहीं, उसको मारना है, ये भी एक लक्ष्य है। और उनका परिणाम हम सब जानते हैं, या तो वो खुद मृत्यु को प्राप्त होते हैं या वो जेल में सटते हैं। तो लक्ष्य तो ये भी हैं, और भी कईयों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, पर आजकल बीज हो गया है धन कमाना। तो लक्ष्य एक सुंदर लक्ष्य हो, ऐसा लक्ष्य ना हो जो हमें आत्मसंतोष न दे। देखिए हमारा सुंदर लक्ष्य कहीं ना कहीं हमें आत्मसंतोष देगा, और ऐसा लक्ष्य जो विकृत टाइप का है उससे आत्मग्लानी होगी, तब तो मनुष्य धन के लोभ में कुछ भी कर लेता
0: मतलब
1: है।
0: मतलब जब हम लक्ष्य बनाए तो बेहतर जिस चीज का जरूर ध्यान रखें, आपके कहने का भाव जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा लक्ष्य जो हमें आत्मसंतोष दे, हमें शांति दे, जो हमारा भी विकास करे और साथ ही समाज के लिए भी हानिकारक ना हो, हितकर हो, हमारे परिवार के लिए भी हितकर।
1: यही बात है कि देखिए चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो बड़ा डाकू हो, चाहे वो बंदूक लेकर फटाफट फायरिंग करके किसी को भी मार रहा हो, मनुष्य तो वो भी है। और मनुष्य में वो सब कमजोरियां और वो सब खूबियां हैं जो आत्मा में अंतर्निहित हैं। तो अगर एक मनुष्य आत्मा के संस्कारों के मूल नेचर के विरुद्ध जाता है तो उसे आत्मग्लानी तो होगी, उसको अशांति से तो गुजरना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, दिल्ली की जेल में पड़ा हुआ एक प्रसिद्ध आतंकवादी, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसने बहुत एक घृणित कृत्य किया था भारत में, जिसको फांसी की सजा थी और सरकार अभी तक नहीं दे रही है, 8-10 साल हो गए हैं, वो कहता है मुझे फांसी दे दो, क्योंकि वहां जेल में पड़ा पड़ा। अब निश्चित रूप से वो आत्मग्लानी से जिंदा ही जलता रहता होगा, उसका चित्त बेचैन रहता होगा, तो वो मरने को ही अपनी सच्ची शांति मानता होगा। तो देखिए हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस बात का ध्यान रखें, जैसा आपने कहा कि वो जनहितकारी हो,
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी देर के लिए अगर वो हानिकारक है तो उसका नुकसान हमें अवश्य होगा और हमारा पूरा भविष्य अंधकार में हो सकता है।
0: इस बात को भी हम देख लें कि वो कहां तक मुझे संतुष्टि, शांति, प्रसन्नता देने वाली है और साथ ही कहां तक मेरे परिवार को, समाज को भी, जैसे हम कहते हैं कि परिवार का नाम रोशन हो, तो परिवार का नाम रोशन करने वाला हो, ना कि परिवार का मुंह छिपाने वाली बात।
1: हाँ, देखिए यही होता है युवकों के साथ क्या हो रहा है
0: जी,
1: कि अगर उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है
0: जी,
1: वो गलत गलत बातें करते हैं आजकल टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, अच्छे समाचार तो कम से कम आते हैं, गलत समाचार ही ज्यादा आते हैं। और हमारे टीवी वालों को, चैनल्स वालों को या प्रिंट मीडिया वालों को ये बिल्कुल पता नहीं कि तुम्हारी हर बात से आज का युवक बहुत कुछ सीख रहा है। तो जहाँ निगेटिव एनर्जी चारों ओर फैली हुई है वहां वो गलत चीजें सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गैंग रेप का केस देखा और उनके मन में ये भावना आएगी कि हमें इससे मुक्त रहना चाहिए। कुछ अच्छे युवक भी होंगे जिनके मन में भावना आएगी, लेकिन बहुत लोग उस घृणित कर्म को बार बार करते रहते हैं, इसलिए अखबारों में ऐसे समाचारों की कोई कमी नहीं होती। तो मैं कह रहा था कि जो एक फ्रेंड सर्किल होता है किसी भी युवक का, उसमें एक युवक को ध्यान रखना चाहिए, अगर वो बेकार की बातें करते हैं
0: जी,
1: अगर वो गंदी बातें करते हैं, अगर वो भविष्य में कुछ गलत लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जैसे बहुत जगह होता है दिल्ली आदि में, बड़े शहरों में, चलो भाई एक ग्रुप बन गया और नहीं तो माताओं बहनों की सोने की चेन तोड़ के लानी है। अब वो सोचते

0: हैं, सस्ता कमाई का साधन है,
1: जी
0: 5-10 का ग्रुप बन गया, कहीं ना कहीं आजकल मोबाइल है उससे संपर्क रख लिया। तो
1: जी
0: ऐसे जो लक्ष्य हैं वो मनुष्य की वास्तविक जो योग्यताएं हैं अंदर में
1: जी
0: उनको नष्ट कर डालते हैं। ये बहुत
1: बिल्कुल
0: बड़ा नुकसान फिर होगा
1: जी
0: कि अगर लक्ष्य मूल्य निष्ठ नहीं है तो अंदर छुपी हुई सारी योग्यताएं भी अंदर ही डेड
1: दब
0: हो
1: जाएंगी।
0: जाएंगी।
1: तो परिश्रम के माध्यम से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें, सुंदर लक्ष्य रख करके, ना कि इस प्रकार से लूट खसोट के
0: ना
1: या कुछ बहुत ही शॉर्टकट्स अपना के या किसी की लेग पुलिंग करके। कई बार
0: ना
1: माता जी ये भी होता है ना कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसके कारण मैं कईयों के पैर खींच के लोगों को नीचे नीचे गिरा देता हूँ और ये समझता हूँ कि मैं आगे बढ़ गया। तो ये भी कई बार देखने में आता है संगठनों में या कई कंपनीज में कि कोई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ये भी तरीके अपनाता है, किसी की ईर्ष्या, किसी की ग्लानि, किसी की लेग पुलिंग, ये भी कहाँ तक सही
0: हाँ,
1: है।
0: देखिए ये बात आई है तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा
1: जी
0: कि चाहे वो कंपनी हो, फैक्ट्री हो या सरकारी दफ्तर हो, इसमें इस तरह अगर किसी भी गलत तरीके से अयोग्य व्यक्ति ऊपर पहुंच जाते हैं
1: जी
0: तो इससे उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑफिस को बहुत नुकसान होगा। और ये समझदार लोग जानते ही हैं, उनके डायरेक्टर या उनके चेयरमैन
1: जी
0: या मैनेजिंग डायरेक्टर इस बात को समझते हैं और उन्हें समझना चाहिए कि ऐसे ही प्रमोशन दे देना,
1: जी
0: किसी भी आधार पर दे देना, योग्यताओं के बिना दे देना, सिफारशियों को दे देना, लेग पुलिंग वालों को दे देना,
1: जी
0: ये अपनी उस कंपनी को या फैक्ट्री को नष्ट करने का एक वो अपने आप तरीका खोज लेते हैं।
1: जी
0: इसलिए इससे उन्हें भी आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। लेग पुलिंग करके किसी भी पॉलिटिकल अप्रोच से एक अयोग्य व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाता है,
1: जी
0: जहां योग्यताओं की कमी के कारण वो असफल हो रहा है, जहां लोग उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसे भी भला आत्मसंतोष कैसे मिलेगा। मैंने बहुत देखे हैं बड़े बड़े ऑफिसर, एक
1: जी
0: जगह में गया, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उड़ीसा में, उसके प्रेसिडेंट,
1: जी
0: इतनी ज्यादा उन्हें टेंशन थी, इतनी ज्यादा टेंशन थी, और टेंशन भी किससे थी, अपनी पत्नी से। उस फैक्ट्री का, जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है गवर्नमेंट की, उसका कार्य उसके लिए एंजॉयमेंट था,
1: जी
0: लेकिन घर में पत्नी उसके लिए बिगेस्ट टेंशन थी। बेचारा आंसू आ गए उसको सबके सामने, हम टेंशन पे चर्चा कर रहे थे वहां।
1: जी
0: तो ऐसे ये उनकी बात नहीं, वो तो योग्य व्यक्ति था, लेकिन अगर अयोग्य व्यक्ति कहीं ऐसे पद पर पहुंच जाता है
1: जी
0: तो वो खुद भी टेंस होगा, दूसरों को भी टेंशन क्रिएट करेगा और
1: बिल्कुल
0: इससे उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा
1: हित
0: नुकसान होने
1: नहीं
0: वाला
1: होगा
0: है।
1: उसका। तो मतलब पहुंचे तो अपनी योग्यता के
0: योग्यताओं के
1: दम पे
0: आधार
1: पहुंचे
0: पहुंचे
1: और साथ ही अच्छी परिश्रम करके। माता जी ये बात तो रही कि हम मूल्यनिष्ठ लक्ष्य बनाएं ताकि हमारा जीवन सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, आदर्श हो, लोगों के लिए प्रेरक हो और हमारे जाने के बाद भी लोग हमें बहुत सम्मान से याद करें। एक बात आती है प्रता जी कि लक्ष्य तो हमने चलिए बना लिया, लेकिन लक्ष्य बनाने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है कि प्रैक्टिकली हम क्या क्या करें जो हमारा लक्ष्य सिद्ध होता चले, ये एक
0: हाँ,
1: बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है लक्ष्य का।
0: बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर बात है और इसमें हम अपने श्रोताओं के सामने 4-5 बहुत सुंदर बातें रखना चाहते हैं।
1: जी
0: मैं एक छोटी सी बात लोगों को सिखाया करता हूँ, युवकों को सिखाता हूँ, कि जो भी आपका लक्ष्य है अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक चित्र बनाए, जिसको मानसिक चित्र कहते हैं, जिसको
1: जी
0: विजन कहते हैं,
1: जी
0: और वो लक्ष्य मुझे मिलेगा ही। और बल्कि इससे भी अच्छी बात यह होगी कि हम ऐसा एंजॉय करें कि वो लक्ष्य मुझे मिल गया है, सबकॉन्शियस माइंड को इसे एक्सेप्ट करा दें, तो ये
1: जी
0: बहुत सुंदर एक चीज होगी। मैं
1: बिल्कुल
0: एक उदाहरण दूं आपको, एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहा था, बहुत अच्छी पोस्ट उसके लिए वैकेंसी थी,
1: जी
0: चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी अच्छी कंपनी का। उसने मेरे से पूछा, तो मैंने उसे ये चीज पहले सिखाई थी, डिटेल चर्चा तो हम इनकी आगे करेंगे,
1: जी
0: कि तुम विजन बनाओ। और मैं उसको स्पिरिचुअल ऐसी प्रैक्टिसेस सिखाई, संकल्प करना कि जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आता है वही पूछे जाएंगे। तो वो कहा, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा, आप जरा ये विधि अपना के तो देखो।
1: जी
0: दूसरी बात मैंने उसे कही, आप अभी से बिल्कुल ये संकल्प कर दो, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, आई एम सेलेक्टेड,
1: बिल्कुल
0: और ऐसा देखो कि अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में आ गया है अभी, और उसको एंजॉय करो।
1: जी,
0: तो पिक्चराइज करना,
1: बिल्कुल, तो एक मनोचित्रण वो करें, एक बना लें कि ऐसा हो गया है जो मैं देख रहा हूँ। और भ्राता जी, इसमें क्लैरिटी का होना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, संपूर्ण क्लैरिटी से भी एक अच्छा शब्द हम यूज करेंगे, बिल्कुल विश्वास,
1: विश्वास
0: कि ये मिला कि मिला और ये मुझे मिलना ही है, और उसे वो मिल गया था, उसका इंटरव्यू ऐसा हुआ कि साथ ही साथ अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया।
1: बहुत सुंदर,
0: तो बहुत ही अच्छी बात थी। तो पहली चीज है मानसचित्रण करना।
1: भ्राता जी, एक एग्जांपल से, जैसे आपने अभी एक इंटरव्यू का एग्जांपल दिया कि कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, उसने इस प्रकार से विजुलाइज किया, ये एक मनोचित्र उन्होंने बना लिया। ऐसा ही कोई और एग्जांपल कि हमारे बहुत युवा अच्छा। बहुत अलग अलग फील्डों में प्रयास करते रहते हैं, वो किस प्रकार से अपने लक्ष्य का मनोचित्रण
0: देखिए, मेरे पास 12वीं क्लास का जो एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बच्चे बहुत आते हैं जिन्हें हायर एजुकेशन में जाना है,
1: जी,
0: तो मैं उन्हें सिखाता हूँ, बोलो कितना परसेंटेज चाहते हो आप, वो मुझे बताएंगे, 92, 93, 95।
1: जी,
0: तो मैं उन्हें कहता हूँ, पहली चीज तो आप ये करेंगे कि 7 दिन तक रोज सवेरे 5 बार कम से कम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ लिखेंगे कागज पर, मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं। बहुत अच्छी चीज है। तो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करने लगेगा। और इसके पीछे एक रहस्य है कि जो नंबर देने वाले हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ेगा, और जो हमने क्रिएट किया है ना विजन, लक्ष्य, बस वो काम करेगा, उनके मन को वो बदलेगा, उनकी बुद्धि को वो बदलेगा, और वो वैसे ही मार्किंग करेंगे। दूसरी चीज ये थी कि हम एक ऐसा विजन बनाए फाइनल कि मार्कशीट आ गई है, बिल्कुल जैसे हम मार्कशीट देख रहे हैं और मेरे टोटल इतने मार्क्स हैं, इसमें भी संपूर्ण विश्वास के साथ। तो मेरे पास ऐसे बहुत लोग स्टूडेंट्स के अनुभव हैं जिनको वही प्राप्त हुआ जो उन्होंने विजन बनाया।
1: शायद इसमें यह भी होता होगा प्रता जी कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्तियां हैं वो भी उस लक्ष्य की ओर चलने लगती होंगी और उसे प्राप्त करने में मदद करने लगती
0: होंगी। इसमें यह है कि हमारे ब्रेन की समस्त शक्तियां हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में एक्टिव हो जाती हैं। और जैसे मैंने कहा, जो मार्क्स दे रहा है, जो कॉपी चेक कर रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड इट बिकम्स ए यूनिवर्सल माइंड। तो इसमें क्या है कि हमारे थॉट उनके थॉट्स को अफेक्ट करने लगेंगे, और बस उनके मन में वही थॉट्स उठेंगे जो हम उठा रहे हैं, उनका मूड भी अच्छा होगा। अब देखिए, कॉपी चेक करने वाला प्रोफेसर टीचर, मान लो घर में लड़के आया है, उसका मूड आज ऑफ है और वो कॉपी चेक कर रहा, तो कैसी मार्क देगा?
1: बिल्कुल
0: कहेगा क्या लिखा है ये, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है।
1: इसलिए भ्राता जी, कई बार बच्चे ये कहते हैं कि मैंने लिखा तो बहुत अच्छा था, शायद वो चेक करने वाले का मूड ठीक नहीं था।
0: बिल्कुल यही होता है, सच्ची बात यही है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का जो यूज है वो उनके मूड को फ्रेश भी रखेगा, ये हमें मदद मिल जाएगी। और इस तरह अगर हम बहुत सुंदर विजन बनाते हैं तो बहुत सफलता होगी।
1: लेकिन भ्राता जी, एक चीज भले ये विषय से थोड़ा सा हट के है, विद्यार्थी कहीं इसे अन्यथा तो न लें कि भाई मैं कुछ चीजें पढ़ूं और उसे ही अपने अंदर सबकॉन्शियस में डालूं और मैं वहां से अपना कनेक्शन जोड़ लूं और यही चीजें वो दे, वही चीजें चेक करे।
0: ये होगा नहीं, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रिजेक्ट करता जाएगा जो चीज रियल नहीं है ना। मान लो अपनी योग्यताओं के अनुरूप उसने विजन नहीं बनाई, उसके मार्क्स आते थे 60 और उसने एकदम 90 पे बना दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा।
1: मतलब अपना लक्ष्य थोड़ा बड़ा जरूर बनाए लेकिन इतना बड़ा ना ना दें जो एक्सेप्ट ही ना कर।
0: इसमें दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे इंटरव्यू के लिए हो, चाहे किसी को अपने बिजनेस में हो, किसी फैक्ट्री वाले को अपनी फैक्ट्री के प्रोडक्शन में हो, किसी कंपनी वाले को कहीं हो, उसके लिए दृढ़ इच्छाधारी होना, जिसकी बहुत कमी लोगों में पाई जाती है, वो कहीं ना कहीं निराशा में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका उमंग उत्साह कम हो जाता है। इच्छा बहुत दृढ़ हो, संपूर्ण हो, तो हमारी इच्छा शक्ति हमें उस लक्ष्य तक ले जाने में बहुत मदद करती है।
1: तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम लक्ष्य की ओर बढ़े। भ्राता जी, एक आपने जो दृश्य दिखाया वो एक शॉर्ट टर्म गोल की तरह था कि हम अपने इस एग्जाम में इतना मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं और वो इस प्रकार से अपने आप को एक मनोचित्र दे। लेकिन एक पूरे जीवन का यदि एक लक्ष्य देना चाहता है कोई व्यक्ति अपने आप को, तो वो किस प्रकार का चित्र रखे अपने सामने?
0: देखिए, इसमें ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक जीवन का भी लक्ष्य मनुष्य को देना ही चाहिए।
1: और जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्राता जी, तो उसके साथ साथ मैं भी चाहूंगा कि जैसे एक हम मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल

0: को देखे भी कि अगर उसे एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक डीआरडीओ का बनना है और उसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, उसे इंजीनियरिंग करने के बाद उसके इंजीनियरिंग में भी इतने ऐसा ग्रेड होना चाहिए, ऐसे मार्क्स होने चाहिए, और फिर जो उसको उसके लिए कंपटीशन देना पड़ेगा उसमें भी उसकी ये तैयारी होनी चाहिए, मानसिक रूप से भी उसको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा
1: जी,
0: और बौद्धिक रूप से भी अपनी क्षमताओं को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, और इसी में जुड़ जाता है स्पिरिचुअलिज्म, जिससे स्पिरिचुअलिटी का यहाँ अर्थ है वो अपने मन को प्रसन्न भी रखे, इस लक्ष्य को टेंशन न बना दे। कहीं कहीं ये भी हो जाता है कि एक ऊंचा लक्ष्य ले लिया तो वो लक्ष्य उसके लिए टेंशन बन गया, वो किसे बात नहीं कर रहा है, कोई उससे बात करता है तो उसे गुस्सा आता है, हटो मुझे पढ़ना है, मुझे ये सब नहीं, यहाँ शोर क्यों हो रहा है, टीवी बंद करो, घर में ऐसा क्यों, मेहमान क्यों आ गए हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे यहाँ पहुंचना है। तो स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है रिलैक्सेशन, जिसमें उसको रिलैक्स भी करेगी ये स्पिरिचुअलिटी, और वो उस लक्ष्य को एंजॉय करेगा। ठीक है, लक्ष्य मिलेगा ना, इसमें बहुत टेंशन में आने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें रात दिन पढ़ना है।
1: तो कई लोग यही होता रहता जी, लक्ष्य मिल जाए तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उस दरमियान भी अपने आप को खुशी में हम रखें, खुश होकर के लक्ष्य की ओर बढ़े, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
0: ये स्पिरिचुअलिटी है कि मान लो कहीं हमने 7 साल हमारे पास हैं और 7 साल में हमने ईयरली एक प्लान बना लिया है कि इस साल में हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इस साल में हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, फिर हम ये तैयारी कर लेंगे, फिर हम गेट एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम है, कैट का एग्जाम बहुत सारे हैं, मैं तो हंसी में कहा करता हूँ रेट का भी एक एग्जाम होना चाहिए, तो हम ये एग्जाम देंगे, ये हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हम रिलैक्स रहें, बहुत प्रसन्न रहें, बहुत पीसफुल रहें, सोशल भी होकर रहें। ऐसा नहीं हम अपने फ्रेंड्स से मिलना छोड़ दें, ऐसा नहीं हम किसी फंक्शन में जाना छोड़ दें, ऐसे नहीं घर में किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है और हम अलग अलग रहें, हम तो तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं। यही स्पिरिचुअलिटी का महत्व है कि वो इन सब चीजों को जोड़ देती है। और देखिए, हम ये बात बार बार कहेंगे अपने विशेषकर विद्यार्थियों को कि जितना उनका मन प्रसन्न रहेगा, जितने वो पीसफुल रहेंगे, यानी नो टेंशन, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उनकी आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ेंगी, चाहे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी हो, चाहे उनका मनोबल हो, ये बहुत बढ़ेगा और वो तब इस यात्रा को बहुत एंजॉय करेंगे।
1: देखें कि सभी के साथ मैं बहुत ही आनंदित हूँ, सभी के को समय दे रहा हूँ और हर फील्ड में मैं अपना 100% दे रहा हूँ, एंजॉय करते हुए
0: सफल हैं हम हर फील्ड में। कोई हमें ये नहीं कह रहा कि भाई ये तो बस सीरियस हो गए हैं, इनको तो बस पढ़ना पढ़ना है और किस चीज से इनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, परिवार में आपसी प्यार भी बहुत रहता है, फंक्शंस भी होते हैं तो एंजॉयमेंट भी होते हैं। तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि बिल्कुल ये भूल जाओ कि बहुत पढ़ने से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे, नहीं, आप अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, अपने को बहुत फियरलेस करो और स्ट्रेस फ्री करो, एंजॉय करो, तो आप ज्यादा सफल होंगे। मैंने ऐसे भी देखा, सेकेंड क्लास स्टूडेंट थे
1: जी,
0: आज फर्स्ट क्लास साइंटिस्ट हैं, टॉप क्लास स्टूडेंट थे वो बेचारे कहीं भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल ध्यान पढ़ने पढ़ने पे दिया, किताबों पर, जिसको लोग कहते हैं ना किताबी कीड़े बन गए थे, और जो सेकेंड क्लास स्टूडेंट थे उन्होंने इन सब चीजों पर अपना ध्यान लगाया, हेल्थ पर भी, मेंटल डेवलपमेंट पर भी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पर भी, सोशल एंजॉयमेंट पर भी,
1: मतलब इन सभी को, इन सभी को मिला करके हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं,
0: इसमें हम संपूर्ण मानव बनते
1: हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर भ्राता जी, आज आपने बहुत प्यारी बातें हमारे युवाओं के सामने रखी हैं। वक्त अब इशारा कर रहा है कि आज हम आपसे इजाजत लें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं दर्शकों से मुखातिब होऊंगा। तो आपने देखा मित्रों की बहुत सुंदर रहता है यदि जीवन में एक सुंदर और श्रेष्ठ लक्ष्य है हमारे पास, लक्ष्य को किस प्रकार से हम अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी चर्चा आज हमारी हुई है। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि लक्ष्य की गुह्यता को समझ सकें और जीवन के सुंदर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन के सुंदर लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए हमारी ढेर सारी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। बने रहिएगा, दीजिए इजाजत अपने मित्र रूपेश को, नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना है, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं जो आप सभी ने भी ज़रूर सुना होगा। कहते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। जी हाँ, हैप्पी मदर्स डे, आज मातृ दिवस भी है। तो मातृ दिवस प्रत्येक वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। माँ को खुशियाँ और सम्मान देने के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम होती है, फिर भी विश्व में माँ के सम्मान में मातृ दिवस मनाया जाता है। मातृ दिवस विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, परंतु मई माह के दूसरे रविवार को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। भारत के कुछ भागों में 19 अगस्त को भी मनाया जाता है, परंतु अधिक महत्ता अमेरिकी आधार पर मनाए जाने वाले मातृ दिवस की है। अमेरिका में ये दिन इतना महत्वपूर्ण है कि ये एकदम से उत्सव की तरह मनाया जाता है। मातृ दिवस का इतिहास देखा जाए तो सदियों पुराना है, प्राचीन है। यूनान में बसंत ऋतु के आगमन पर रिहा परमेश्वर की मां को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता था। 16वीं सदी में इंग्लैंड का ईसाई समुदाय यीशु की मां मदर मेरी को सम्मानित करने के लिए ये त्यौहार मनाने लगा। मदर्स डे मनाने का मूल कारण समस्त माओं को सम्मान देना और एक शिशु के उत्थान में उसकी महान भूमिका को सलाम करना है। इसको आधिकारिक बनाने का निर्णय पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 8 मई 1914 को लिया था। इस मोड पर एक हमारे रेडियो मित्र हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी। हेलो बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: जी जी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिरोज भाई।
1: जी जी, और आपने जो लक्ष्य के बारे में बोला ना, तो बहुत अच्छी जानकारी दिया
0: जी।
1: और लक्ष्य के ऊपर ऐसे हारना नहीं है
0: जी,
1: लक्ष्य के ऊपर ही अपना जो रखते हैं तो एक दिन अपने को सफलता मिलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आज मातृ दिवस भी है, अपने मम्मी को कैसे याद करते हैं आप, कैसे धन्यवाद देते हैं?
1: माँ के ऊपर तो मैंने तो कई, इसमें मेरी फ्री डायरी के अंदर मेरे माँ के ऊपर कई कितने काव्य लिखे हुए हैं।
0: जी जी ओके।
1: तो माँ से तो बड़ा कोई नहीं है, और माँ के आप चार धाम की यात्रा करो या मक्का मदीना हज पढ़ के जाओ, माँ की जो सेवा नहीं किया वो बेकार है।
0: राइट
1: और माँ के चरणों में स्वर्ग है।
0: जी जी जी बिल्कुल, उनकी दुआओं से ही हम बहुत सारी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए, बताने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति। तो ये है हमारे फिरोज भाई फ्रॉम पालनपुर से। आइए, हम बात कर रहे थे आज के दिन विशेष के बारे में, मदर्स डे के बारे में, तो हम आज के पंचांग के बारे में भी जान लेते हैं। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार

अष्टमी तिथि दोपहर 3:06 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज धनिष्ठ नक्षत्र शतभिक्षा नक्षत्र के साथ ब्रह्म इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज चंद्रमा दोपहर 12:12 तक मकर राशि में रहेंगे और इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे और इसके साथ साथ विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थ ही है, शक संवत 1948 पराभव है, पूर्णिमात ज्येष्ठ है, अमात वैशाख है, रविवार है। और इस्लामी हिजरी है 1447 22 जिलकाद इतवार बुल्ला है आज के दिन। आइए लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो माधुबन 107.8 FM।

वेलकम बैक. सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू. आइए चलते हैं हम वेदर रिपोर्ट्स की ओर. आज हमारी राजधानी जयपुर में 39 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है. उदयपुर में 42 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है. आबूरोड में 43 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है. माउंट आबू में 30 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 21 डिग्री तक जा सकता है. पाली में 44 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है. जोधपुर में 44 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है. सूरत में 41 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है. मेहसाणा में 44 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है. राजकोट में 41 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है. गांधीनगर में 42 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है. अहमदाबाद में 42 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 28 डिग्री तक जा सकता है. राजधानी दिल्ली में 37 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है. कोलकाता में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है. बेंगलुरु में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 22 डिग्री तक जा सकता है. मुंबई में 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 29 डिग्री तक जा सकता है. चेन्नई में 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 28 डिग्री तक जा सकता है. क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तूफान जैसा हालात रहेगा, यानी कि जोरदार बारिश होने की संभावना है चेन्नई में. और वहीं पर जिला सिरोही में 40 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है. हवा की शुद्धता के बारे में बात करें तो 114 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI. अस्वास्थ्यकर है जिला सिरोही में थोड़ा सा हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स. अगर हम राजधानी जयपुर के बारे में बात करें तो राजधानी जयपुर में हवा की शुद्धता क्या है, 112 है. वहाँ पर माउंट आबू में तो शुद्ध होगा, और राजधानी दिल्ली और अहमदाबाद और गांधीनगर की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हवा की शुद्धता 104 गांधीनगर और अहमदाबाद के अंचल में. लेकिन हमारे राजधानी, हमारा राजधानी है सिरोही, तो सिरोही में हवा की शुद्धता थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा खराब है. और दिल्ली में 139 एयर क्वालिटी इंडेक्स, अस्वास्थ्यकर है ये भी. तो हम कोशिश करें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार पुलिंग का यूज़ करें. अगर सेम डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, सेम ऑफिसेस में जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो कोशिश करें एक ही की गाड़ी में जाएं. हम पेट्रोल और डीजल बचाने की कोशिश करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स को सही रखने की कोशिश करें. ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स वाले प्लास्टिक के थैली और कचरा हो उसे ना जलाएं, उसे सही तरीके से निस्तारण करने की कोशिश किया जाए. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप 8:01 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। ग्वालियर से साबरमती तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22547 8:25 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। अरावली एक्सप्रेस 14702 8:30 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 12461 9:05 पर पहुंचेगी। साबरमती अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस 16532 9:10 पर पहुंचेगी। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 19224 9:45 पर पहुंचेगी। अजमेर से आने वाली मैसूर तक जाने वाली एक्सप्रेस 16209 10:10 पर पहुंचेगी। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचने वाली है। योगा एक्सप्रेस 19032 10:50 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 14822 11:40 पर पहुंचने वाली है। संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 है। दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 19412 23 देरी से चलते हुई 11:53 पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर आने वाली है। और अभी वर्तमान समय ताजा जानकारी के मुताबिक लगभग आधा घंटा देरी से चलती हुई दौलतपुर से गांधीनगर जाने वाली एक्सप्रेस 11:58 पर आएगी। और वहीं पर गांधीनगर से दौलतपुर जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19411 12:55 पर संभावित प्लेटफॉर्म 1 पर आएगी। और भावनगर से हरिद्वार तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन 09271 1:15 पर अपने समय के अनुसार पहुंचेगी। और जन्मभूमि एक्सप्रेस 19107 और ये गाड़ी वर्तमान समय कैंसिल है। जी हाँ, तो ये भावनगर से चलने वाली और कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन तक जाने वाली एक्सप्रेस जन्मभूमि एक्सप्रेस कैंसिल है। साबरमती से जम्मू तवी जाने वाली एक्सप्रेस 19223 2:10 पर पहुंचेगी आबू रोड रेलवे स्टेशन। संभावित प्लेटफॉर्म 1 है। योगा एक्सप्रेस 19031 2:03 पहुंचने वाली है आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आज आबू रोड रेलवे स्टेशन पर 2:03 तक आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी। आपसे 8 घंटे तक आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां लेते हैं। यहाँ पर एक अल्पिना, उससे पहले एक दोस्त हमारे मध्य हैं, आइए उनसे करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: नमस्ते नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग आबू, शिवाजी दीदी, नमन करते हैं आपको।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ और सुबह से सुन रहा हूँ। अमृत धारा सुना और दादाजी को सुना, बहुत अच्छा सुना है। और अभी आपको सुन रहे हैं। आपने जो मौसम के बारे में बताया है, गाड़ियों के बारे में बताया है, तो गाड़ियों के बारे में हम उन ड्राइवरों को नमन करते हैं जो पैसेंजर बैठे हैं उन सबको। और पैसेंजर को ये कहें कि भाई एक दूसरे की धमकी मत दो और एक दूसरे को जगह दो, थोड़ी देर तुम बैठो, थोड़ी देर वो बैठो,
0: क्या बात,
1: और एक दूसरे की मदद करो तो कोई परेशानी या गर्मी भी नहीं आएगी। और एक दूसरे का सम्मान, और सबसे ज्यादा सम्मान बच्चे वाली माँ का और बुजुर्ग लोग का करना जरूरी है।
0: जी
1: जी,
0: और
1: आपको नमस्कार दीदी जी। और बस अब हमारे को भी गाड़ी बुला रही है, देखो आ रही है, देखो जा रही है, हम भी जा रहे हैं। ओम शांति,
0: ओम शांति, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे मदन लाल जी फ्रॉम मेहसाना से। और बिल्कुल, जो रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं रास्ते पर और हेवी व्हीकल्स हो या पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं, रिस्क तो है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी रेडियो मधुबन की तरफ से भी। तो हम रेल इन्फॉर्मेशन के बाद लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, सुनते हैं एक बहुत अच्छा गाना जो आधारित है माँ के ऊपर। गाना को गाया है आकाश कलावन जी ने, बॉलीवुड प्रोडक्शन।

0: माँ इस शब्द में दुनिया समाई है, प्यार की मूरत कहाँ किसी ने माँ जैसी पाई है। माँ वो जिसके स्पर्श से सारे दुख मिट जाए, माँ वो जो हमारी खुशी में हमसे भी खुश हो जाए। कितने लकी हैं माँ जो आसपास है, किसी की फरिश्ता बन साथ है, पर माँ हमेशा माँ है। माँ को ढेर सारा प्यार दें और याद करें तो मुस्कुरा के, ताकि माँ की स्माइल भी गुम ना हो पाए। रेडियो मधुबन करता है हर माँ को सलाम।
1: तुझसा प्यारा इस जहां में ना कोई लगता मुझे।
2: ओम शांति। आज मदर्स डे है, जिसे हम मई के दूसरे रविवार को हर साल मनाते हैं। तो सबसे पहले तो विश्व की सभी माओं को आज के दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मुबारक हैं। और ये दिन माँ का हमारे जीवन में क्या योगदान है, उसके प्रति आभार व्यक्त

करने के लिए हम मनाते हैं। माँ ही हमें जीवन देती है, माँ के गर्भ में ही शिशु का सिंचन होता है, माँ ही हमारी प्रथम शिक्षक है, माँ ही हमारी प्रथम दोस्त होती है, माँ ही हमें संस्कार देती है, अच्छे या बुरे। यानी माँ जैसा आचरण करती है वैसा ही बच्चा अपने जीवन में बनता जाता है। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और माँ हमारे लिए अपनी सभी खुशियों का त्याग करती है, अपने सपनों का त्याग करती है। बच्चे के लिए वो रात रात भर जागती है, अगर वो बीमार है तो दिन रात वो उसकी सेवा में लगा देती है। फिर चाहे वो काम करती हो यानी ऑफिस जाती हो, चाहे वो गृहिणी हो, लेकिन वो कभी कोई बहाना नहीं देती, और इसीलिए माँ का ऋण हम नहीं चुका सकते। माँ के लिए मैं कहूँगी कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। एक बार ऐसे ही एक बच्चा था, तो माँ ने उसे कुछ काम कराए, उसे दूध मंगवाया, उसे कुछ सब्जी मंगवाई, उसने घर की चीज़ों को ठीक करने में माँ को मदद की, कुछ रसोई में मदद की। तो उसने उसको लिखा एक पेपर पर कि हर एक काम का इतना रुपया और कुल इतने रुपये, और माँ को दे दिया कि माँ आपने मेरे से काम कराया उसका इतना पेमेंट है। तो फिर माँ ने उसी के नीचे लिखा, तुमको 9 महीना गर्भ में रखा, नो चार्ज, तुम्हारी दिन रात सेवा करती हूँ, नो चार्ज, तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाती हूँ, नो चार्ज। तो माँ ने जब वो लिखा और फिर लिखा कुल, नो चार्ज, तो बच्चे ने उसको पढ़ा तो बच्चे को समझ में आ गया, और फिर उसने नीचे लिखा इंडेप्टेड फॉर फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए माँ मैं आपका ऋणी हूँ। तो माँ का ऋण बच्चा कभी भी नहीं चुका सकता है, और माँ हमेशा ही हमारे साथ खड़ी होती है, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम सुखी हैं, चाहे हम सही हैं या हम गलत हैं, मुश्किल वक्त में हम माँ को ही याद कर रहे होते हैं ना, माँ के सिवाय हमें और कोई याद नहीं आता है। तो आज का जो दिन है वो हम केवल फूलों को दे करके मदर्स डे ना मनाएं, है ना, फूलों का गुलदस्ता हम दे दें माँ को या कोई गिफ्ट हम दे दें, नहीं, ये इस तरह से मनाने का दिन नहीं है, लेकिन उनकी सेवाएं जो वो हमारे जीवन में हमें प्रदान करती रही हैं उसके लिए हम उनको स्नेह दें, सम्मान दें और सदा ही उनकी सेवा में तत्पर रहें। कई बार देखने में आता है कि जब माँ वृद्ध हो जाती है तो कई बच्चे माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या कोई तीर्थों पर आश्रम में छोड़ देते हैं। तो जो उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किए, अब जब उन्हें आवश्यकता है तो फिर हमें भी उनके लिए हाजिर रहना चाहिए। यही हम कहेंगे सच्चा मदर्स डे मनाना है। तो हम कभी भी उनको दुख ना दें, जैसे वो हमारे दुख दूर करने के लिए सदा तत्पर रही हैं। तो मैं कहूँगी कि कोई एक दिन की बात नहीं, पर हर दिन हमारा मदर्स डे होना चाहिए, हर दिन हम उनके प्रति अपना आभार माने। तो सभी को फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप डॉक्टर सविता दीदी को सुन रहे थे जो वीमेन विंग यानी कि महिला प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्म कुमार इसके। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे अर्थव्यवस्था के साथ उसके ऊपर भी नजर डालते हैं। सेंसेक्स 77,328.19 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी वहीं पर 24,176.15 के स्तर पर बंद हुआ है। और एक USD के मुकाबले इंडियन करेंसीज के रेट्स चल रहे हैं 94.44। पेट्रोल और डीजल के बारे में भी बात करेंगे हम, उससे पहले सोने और चांदी के दामों के ऊपर नजर डालते हैं हम। सोना और चांदी 10 ग्राम के हिसाब से 24 करेट गोल्ड रेट्स हैं 152,500 रुपये। 22 करेट सोने के दाम है 10 ग्राम के हिसाब से 139,800 रुपये। 18 करेट दाम है 10 ग्राम के हिसाब से 114,410 रुपये। और वहीं पर चांदी के दामों के ऊपर नज़र डालें तो 1 किलोग्राम के हिसाब से है 275,000। प्लैटिनम के बारे में बात करें तो प्लैटिनम है 10 ग्राम के हिसाब से 62,280 रुपये। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के ऊपर भी हम नज़र डालते हैं। पेट्रोल प्रति लीटर है 103.54, लेकिन हमारे शहर में कितना है आइए जानते हैं। हमारे राजस्थान में कितने हैं, गुजरात में 94.62 पेट्रोल प्रति लीटर, राजस्थान में है 104.94। और वहीं पर डीजल रेट्स क्या कुछ चल रहा है वो भी हम जान लेते हैं। डीजल है 90.41 रुपये। और गुजरात में 90.29 रुपये। तो डीजल में इतना फ़र्क नहीं है लेकिन पेट्रोल में बहुत फ़र्क है राजस्थान और गुजरात के बीच में। और वहीं पर LPG है 912.50 रुपये घरेलू सिलेंडर्स की अगर हम बात करें तो। और कमर्शियल LPG 19 KG वाला 3,024 रुपये है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे अर्थव्यवस्था के साथ, सोना चांदी के साथ। और यहाँ पर एक अल्पविराम लेने से पहले एक मैसेज आया है व्हाट्सएप के जरिए। जिंदगी किसी मैनुअल के साथ नहीं आती, ये एक माँ के साथ आती है। माँ का गले लगना और उनके हाथ छोड़ने के बाद भी देर तक महसूस होता रहता है। घर वही है जहाँ हमारी माँ होती है। दुनिया के लिए वो एक माँ है लेकिन अपने परिवार के लिए वो पूरी दुनिया ही है। जी, तो मदर्स डे की शुभकामनाएं दिया है उन्होंने, आपको भी मदर्स डे के बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। जी हाँ, एक और दोस्त कहते हैं कि माँ आप ही वो गोद हैं जो हमें एक साथ जोड़े रखती है। आप ही वो रोशनी है जो हमें राह दिखाती है। आप ही वो सुकून है जिसकी तलाश में हम सब आपके पास आते हैं। जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है क्योंकि माँ इसमें शामिल है, क्योंकि माँ इसमें शामिल है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ये, हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। धन्यवाद दोस्त इस मैसेज के लिए। आप भी कर सकते हैं मैसेज 94-14-15-14-15 पर व्हाट्सएप पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनिए ये अगला गाना।

0: हाँ छोले भटूरे, अरे वाह आज फिर से मजा आ जाएगा आज खाने में। तो तू बता तू क्या लाया टिफिन में?
1: मैं तो बिस्किट और नमकीन।
0: बिस्किट और नमकीन? तू तो रोज यही लाता है, तेरे पापा को खाना नहीं बनाना आता क्या?
1: माँ को आता था बहुत अच्छा, पर अब माँ नहीं है ना।
0: अरे यार मेरा टिफिन तू खा, मेरा टिफिन तेरा टिफिन है और मेरी माँ तेरी माँ है और मैं हूँ ना तेरे साथ हमेशा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है। दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित ना रहे। हर माँ को और उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए इस मोड़ पर एक श्रोता मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे करते हैं हम बात। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। फिलहाल उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई है। आइए चलते हैं, हम कुछ बातें करते हैं जो युवाओं के साथ जुड़ी हुई है और जॉब के साथ जुड़ी हुई है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जुड़ी हुई है। NTPC में 250 पदों पर भर्ती है। इंजीनियरिंग पास छात्र छात्रा कर सकते हैं आवेदन, careers.ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट मुझे लगता है कि ये निकल चुका है, क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए।

0: अब हम बात करते हैं कि बिहार में इंस्ट्रक्टर के 726 पदों पर निकाली गई है भर्ती। फीस है 100 रुपीज़ सिर्फ और लास्ट डेट है इसका 15 मई 2026। तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने BTSC किया है या फिर ITI किया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपकी डिग्री है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: ओम शांति दीदी, राजू भैया बोल रहा हूँ पांथावाड़ा गुजरात से।
0: जी जी जी जी जी, पांथावाड़ा गुजरात से बहुत दिनों के बाद, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया है दीदी, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बिल्कुल बढ़िया ही हूँ, और आज तो आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप बताइए।
1: आज मदर दिवस की रेडियो मधुबन की पूरी टीम को शुभकामना।
0: जी
1: जिस माँ ने तुमको 9 महीने पेट में रखा, 3 साल अपनी गोद में रखा और जिंदगी भर अपने दिल में जगा दी, उस माँ को सलाम दीजिए। એટલે તો ગુજરાતીમાં કીધું છે કે માં તો માં છે ને બીજા બધા વગડાના વા છે
0: જી।
1: માતા કી દુઆએ કભી ખાલી નહીં જાતી, માતા કી આશાએ કભી ટાલી નહીં જાતી, 4 બેટો કો એક અકેલી માં પાલતી હૈ, ઝાડુ બર્તન માંજ કર લેકિન 4 બેટો સે એક માં પાલી નહીં જાતી।
0: દુખદ બાત હૈ, યે રિયાલિટી હૈ લેકિન સચ્ચાઈ હૈ। जी
1: आज
0: जी।
1: माताओं को आज वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है दीदी?
0: जी क्या हम उनकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं?

0: जी
1: मदर का भी सब्जी से इंतजार कर रहे थे।
0: जी बिल्कुल। और आप अपने मम्मी का नाम ही बता दीजिए अभी।
1: हाँ, मेरी मम्मी का नाम दुर्गा देवी महेश्वरी।
0: दुर्गा देवी महेश्वरी जी। और आपकी मम्मी को घूमना पसंद था?
1: हाँ, मम्मी को घूमना पसंद था बिल्कुल।
0: अभी भी आप क्या आप मतलब जो फेवरेट जगह जहाँ पे घूमे होंगे आप दोनों मिल करके, तो ऐसे कोई जगह याद है आपको?
1: हाँ, मैं और मेरी मम्मी हम पुष्कर गए थे घूमने के लिए।
0: जी, तो वो
1: और
0: यादें हैं आपके साथ?
1: हाँ, पुष्कर में हमने तालाब में स्नान किया, वहाँ पे जो ब्रह्मा जी का मंदिर था वहाँ पे दर्शन किए।
0: ओके ग्रेट। और बचपन में हम सभी खेलते थे अपने मम्मी के साथ, कोई भी गेम्स है ना घर घर में, तो आप क्या खेलते थे?
1: हाँ, मम्मी के साथ तो हम बस छोटे मोटे बस घर के अंदर ही वो संतोलिया और वो कबड्डी, यही लूडो, यही मम्मी के साथ खेलते
0: जी
1: थे।
0: जी ओके।
1: मेरी मम्मी को वैसे इन्होंने धार्मिक जगह पे बहुत जगह इन्होंने दर्शन किए हुए हैं, हरिद्वार वगैरह बहुत बार गई हुई है,
0: जी
1: लेकिन अभी अभी वो पैर काम नहीं कर रहे तो घर के बाहर भी नहीं निकल पाती है।
0: जी जी जी और इसके साथ थोड़ा एज भी है जी। तो ये बताइए कि आपकी मम्मी का पसंदीदा फूड क्या है, क्या खाना पसंद करते हो?
1: वैसे तो सभी मम्मी को पसंद ही है, लेकिन लेकिन वो केला और आम मम्मी को ज्यादा बहुत पसंद आता है। जी
0: केला और आम। चलिए, आपको उनके सब चीजें पता है, याद है। फुल पास हो गए आप। ठीक है।
1: हम तो बहुत धन्यवाद भाग्यशाली हैं कि हम माँ के साथ हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाग्यशाली हैं आप, और उनके चरणों में जन्नत है जिसे कहा जाता है। उनके आशीर्वाद से, दुआओं से हम बहुत आगे बढ़ते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए बात।
1: थैंक यू
0: आपका
1: भाई साहब।
0: दिन अच्छा हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी मम्मी जी को भी नमस्ते, प्रणाम उनके चरणों में। आइए, यहाँ पर हम कुछ बातें कर रहे थे जॉब्स के रिलेटेड, तो उस बातों की ओर फिर से हम लौटेंगे। और जैसे हम BTSC के बारे में बात कर रहे थे, तो वैसे सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के पद पर भी वैकेंसी है, तो इसे आप आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. और बात कर रहे थे ब्रेक से पहले हम नौकरियों के बारे में. तो IBPS रिक्रूटमेंट 2026 और डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स और डिवीज़न हेड CFO पदों पर भर्ती निकली है. तो IBPS ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स और डिवीज़न हेड एवं CFO के पद पर भरे जाएंगे और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 20 मई तक IBPS के आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं. तो ये कुछ नौकरियों के बारे में जानकारियां आप सभी के समक्ष पहुंचा रहे थे. आइए आसपास के घटनाक्रमों के ऊपर भी नजर डालते हैं. हनुमान जी मंदिर वर्षगांठ पर मंडल की बैठक आज है और उसके साथ साथ माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव का आगाज शनिवार को रन फॉर माउंट आबू में उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया और पहले दिन छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया. इसके साथ साथ पारा 39 डिग्री फिर भी 44 डिग्री जैसा एहसास. अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. इस मोड पर एक हमारे श्रोता मित्र यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका.
1: नमस्ते, कैसे दीदी?
0: बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: बस अच्छे हैं. कल तो बात नहीं हो पाई, कल शायद कार्यक्रम था, नहीं था पता नहीं, लेकिन कल बात नहीं हो पाई.
0: जी जी, कल के दिन बात नहीं हो पाई थी. आज क्या स्पेशल कर रहे हैं मदर्स डे पर?
1: बस स्पेशल तो क्या है, माता जी को याद कर रहे हैं. वो तो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन जी जी कहते हैं ना, माँ चाहे हो ना हो लेकिन माँ तो माँ होती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो, हाँ, तो कौन सी ऐसी चीज है जो ज्यादा याद आती है आपको? मैं याद दिलाना चाहती तो नहीं, लेकिन एक चीज बता दीजिए.
1: अभी 2 साल हो गए माता जी को
0: जी
1: गुजर गए, लेकिन फिर भी तो याद तो बहुत आती है, चाहे मदर डे हो ना हो. क्योंकि वो तो एक दिन ऐसा रखा है सब माँ को याद करे, लेकिन ऐसा नहीं होता. सब माँ को हर रोज याद करना चाहिए, माँ का कहना मानना चाहिए. माँ की गोद तो कोई ले ही नहीं सकता, कोई जगह ले नहीं सकता माँ की. और हम तो देवी ऐसा चाहते हैं कि हर बेटे माँ बाप की बहुत सेवा करे, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिलता है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते हैं.
0: राइट राइट. तो जी,
1: जब होते हैं तब कदर नहीं होती माँ बाप की, लेकिन जब चले जाते हैं बाद में बहुत पछताते हैं और कहते हैं कि अब मेरी माँ नहीं है. लेकिन कई कई लोगों से नहीं देखा है, माँ को बहुत परेशान करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए जाते हैं, खुद बेटा जाते हैं.
0: जी,
1: तो ऐसा नहीं करना है, माँ बाप को अच्छी तरह से रखना है. क्योंकि जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उसको कुछ नहीं चाहिए, आपका प्राण भाव चाहिए बस. और तो कुछ माँ बाप मांगते नहीं है कुछ बच्चों से.
0: राइट.
1: बस उसको अच्छी तरह से रखो और माता का आशीर्वाद ले लो, माता पिता का. क्योंकि सब कुछ मिलता है लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद तो कभी नहीं मिलेगा.
0: सही सही बात. जी,
1: मैं तो देखिए यही कहता हूँ, हम देखते हैं कई लोग वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत दुख होता है कि आपने इतना बड़ा किया, अच्छा आपको पूरी जिंदगी तक बड़ा किया, शादी करवाई, क्योंकि आप माँ की कदम नहीं की आपने.
0: राइट. नहीं करना चाहिए. जी जी जी.
1: माँ बाप को रखना अच्छी तरह से, वो तो दुआ जो माँ बाप की दुआ दी कभी खाली नहीं जाती है. जब आप माता पिता को ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे आपको साथ ऐसा ही वर्तन करेंगे. तो ये भूल नहीं जाना है.
0: जी जी
1: जी. माँ का कोई अच्छा ज्ञान आपकी तरफ से सुना देना समय मिले तो देखिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका. नमस्ते. शुक्रिया. नमस्ते. ये थे हमारे सुरेश भाई दर्जी फ्रॉम जोटाना से. जब तक उनके मम्मी थी, मम्मी के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करते थे और अभी मम्मी की याद आती है. और डेफिनेटली सबको अपने मम्मी की याद तो ज़रूर आती ही है. बात कर रहे थे हम आसपास की खबरों के बारे में. तो हनुमान जी मंदिर वर्षगांठ आज है शिवगंज में और वहीं पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन है आज नक्की झील माउंट आबू में शाम को 7 बजे से. और अगर आप दैनिक भास्कर देखेंगे तो आज बहुत अच्छे अच्छे लेख छपा हुआ है माँ के बारे में, मदर्स डे में माँ के आंचल में सृष्टि. ये बहुत ही खूबसूरत लेख है, ये भी आप पढ़ सकते हैं. और मैं यहाँ से आप सभी के बीच से विदा लेना चाहूँगी. फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हैप्पी मदर्स डे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वारंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से

0: नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
8: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक चार श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
9: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चित समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं, लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: मारो नाम लोकेश देवप्रह है, मैं उदयपुर बोल रहा हूँ। आशा भुंडिया और रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनता रहो।

0: लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए।
1: बुआ आलोरी सुनाओ ना।
2: हाँ बेटा।
0: जू जू जू जू जू जू जू जू जू।
3: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है, दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित न रहे। सभी मम्मीज को, हर उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप समझ गए होंगे आज हम किस विषय को लेकर बात करने वाले। जी हाँ, सही पहचाना आपने, मदर्स डे। माँ तू एक पेड़ है, तेरी छाँव में मैं रहूं उम्र भर। तेरी डाली से निकला हुआ मैं, तुझी से जिंदा हूँ मैं। कभी सूख जाऊं पत्तों सा, फिर भी टूट कर तेरी गोद में रहूं। धूप हो बारिश हो तुझसे लिपट जाऊं मैं। हवा जब मुझे उड़ा ले जाए, तुझी से चिपक जाऊं मैं। तेरी जड़ में समा जाऊं मैं, तुझसे शुरू हूं तुझी पर खत्म हो जाऊं मैं। तेरे आंचल सा फैला है विस्तार तेरा, मुझ में तू है तुझसे है पूरा संसार मेरा।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज विशेष मदर्स डे है। जी हाँ, एक ममतामय दिवस है आज, तो आज उस ममतामय माँ की कुछ खूबसूरत यादें आपको ताजा कराऊंगा और आशा करूंगा कि आप जब कार्यक्रम सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने माँ के आंचल के आसपास अपने आप को पाएंगे, है ना। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। मैं हूँ आपका हम सफर आरजे रमेश।

साथियों, दुनिया का एकमात्र अक्षर का सबसे छोटा शब्द कितनी बड़ी खूबियों को अपने में छुपाया हुआ है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं वो शब्द है माँ। इस एक शब्द में ही हमारा सारा जीवन आ जाता है। माँ के आंचल तले जो सुकून हमें मिलता है वो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता है। सुख की छांव व शीतलता, असीम स्नेह की वह धारा होती है जो हमारे जीवन को बनाती है, और हम बच्चे पल्लवित व पुष्पित होते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि बच्चे माँ के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। कोई भी बच्चा अपनी माँ के स्नेह का मूल्य नहीं चुका सकता। माँ हमारे लिए वृक्ष है, छायादार वृक्ष है। वो हमारा जीवन संवारती है। अपने स्नेह के द्वारा हमारे जीवन पथ को वो स्वयं दुख सह कर भी प्रकाशवान बनाती है, ताकि उसका बच्चा निष्कंटक उसे रास्ते पर चलकर अपने जीवन यात्रा को सुगम बना सके। माँ ही वो पहली शिक्षक है अपने बच्चों की। श्रोताओं, माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, मगर वो हमें ऐसी ऐसी सीख देती है, वो हमारे जीवन में गुणों को भरती है। कई बार उसको लगता है कि उसका बच्चा शक्तिहीन है, तो वो अपने स्नेह के द्वारा अपने गुणों से बच्चे के जीवन को ऐसे सुंदर बना देती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये गुण कब हमारे जीवन में आ गया और कैसे आ गया। साथियों, आइए माँ के प्यार की, माँ की आंचल की और बातें आपसे जरूर करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं स्पेशल एपिसोड। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

साथियों कहते हैं इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार विशेष एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं। ममता में दिवस की आप सभी को फिर एक बार ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए आइए बात करते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपनी यादों को पीछे ले जाए, अगर हम याद करें अपने बचपन की, वो अपनी माँ की शायद स्नेह से भीगी उसकी यादों में माँ की बातें कहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी आंखें नम हो जाती है और जब उनसे बिछड़ना होता है तो और जो है दिल घबराता भी है। पता नहीं ऐसा क्या कनेक्शन रहता है कि माँ से बिछड़ना हर बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगी।

0: जो रिसेस होता था उसके पहले वो गेट पर आके खड़ी होती थी और मेरे लिए खाना लेकर आती। वैसे रेगुलर जो है वो बना के ही देती थी सवेरे, लेकिन जिस दिन नहीं होता था या कुछ कारणवश जब वो नहीं बन पाता तो मुझे यकीन है कि वो 12:30 के पहले ही खड़ी हो जाती थी टिफिन लेकर। और जब भी मिस हुआ हो तो 12:30 के करीब वो कुछ खास बना कर लेकर आती थी। तो इस बात का मुझे दुख नहीं होता था कि आज मिस हो गया, तो मैं ये सोचता था कि सवेरे मिस हो जाए ताकि
1: दोपहर में
0: मुझे कुछ अच्छा और मिल जाए। तो ऐसी छोटी खट्टी मिट्टी यादें हैं। चलिए, मुझे लगता है कि हम सभी लोग, आप सभी लोग और शायद हर एक बच्चा अपनी माँ के विषय में एक किताब लिख सकता है।

आप में से चाहे दुनिया का कोई भी कितना बड़ा लेखक हो, अगर वो भी अपने माँ के विषय में लिखने बैठे तो उसको भी लगेगा कि किताब तो लिख दी मगर बहुत कुछ शायद बाकी रह गया है, क्योंकि माँ का रूप ही ऐसा होता है, अलिखित, अकल्पित, अनिवर्चनीय है, सिर्फ एक एहसास है जो हमारे सारा जीवन साथ साथ चलता है। माँ की ममता किसी भी परिभाषा से परे होती है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण होती है। माँ न केवल अपने बच्चों को जन्म देती है बल्कि उनका पालन पोषण कर उन्हें सशक्त व सफल बनाने का हर संभव प्रयास करती है। माँ का काम एक कुम्हार की तरह से हमारे जीवन में होता है। थोड़ी थपकी लगाकर हमारे जीवन को सुंदर आकार में ढाल देती है। वो हमारे अवगुणों को देखकर नाराज नहीं होती है, लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कफा नहीं होती। भगवान हर जगह नहीं है, इसलिए उसने माँ को बनाया। एक माँ वो समझती है जो उसका बच्चा कहता नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया में लेखकों ने न जाने कितनी बुक्स और कंटेंट लिखे हैं। माँ का दिल एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ माफ हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ, जो आपको अपनी माँ के प्यार और स्नेह से भर देगा। साथियों, अगर माँ रोती है तो बच्चा भी रोता है। बच्चे के दिल में हमेशा एक भावना रहती है, वो है ये, और शायद आपका भी होगा।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार स्पेशल एपिसोड में। ममता में दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश और आज हम बातें कर रहे हैं ममता की। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी कहानी बचपन की याद आती है जो आपके दिल को भी छू जाएगी। होता ऐसे कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता कितना गहरा और खास होता है ये इस छोटी सी बात से समझ जाएंगे। ऐसा होता है कि एक बार एक माँ किसी हादसे में अपनी याददाश्त को खो बैठती है। उसे कुछ याद नहीं आता और उसका एक बच्चा होता है तो उस बच्चे की दुनिया एकदम से बदल जाती है। सोच के देखिए, अगर आपकी माँ किसी हादसे में उनका याददाश्त खो

जाए तो आप क्या सोचिए? बिल्कुल ठीक इसी तरह बच्चे की दुनिया बदल जाती है। इस हादसे ने सिर्फ उस माँ की यादों को नहीं छीना, बल्कि उस मासूम बच्चे से उसकी सबसे बड़ी ताकत और सहारा भी छीन लिया। बच्चा हर रोज अपनी माँ की आंखों में सवाल देखता है, तुम कौन हो? और वो खुद अंदर ही अंदर टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, यही समय है उम्मीद का, हिम्मत का और प्यार का। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, इंसानी जज्बा और प्यार उन्हें पार कर सकते हैं। बच्चा अपनी माँ को हर दिन नए तरीके से समझाने की कोशिश करता है और वो उसकी सबसे प्यारी चीज है। और वो माँ जो अब धीरे धीरे जिंदगी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, हर छोटी खुशी में अपने बच्चे के साथ महसूस करती है। और धीरे धीरे साथियों, माँ अपने बच्चे के साथ इतना प्यार करती है, उसको पुरानी यादों की नहीं, नई यादें जो बच्चे ने दिया है वो उसको ज्यादा खुशी दे रही है।

साथियों कहते हैं अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। स्वागत है आप सभी का फिर से ममता मई दिवस की बहुत शुभकामनाओं के साथ। मंगल कामनाएं लेकर आ गए हम, भूल जाओ सारे गम। चलिए बात करते हैं माँ के बारे में। आज आपको माँ की कुछ खूबसूरत यादों से आपके जीवन को महकाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो चलिए कुछ यादों को अगर आप ताजा कर ले, मैं आपको उन यादों में ले चलता हूँ। आपने देखा होगा और आपको याद होगा कि पापा के मना करने पर माँ चुपचाप जब आपके हाथ में अपनी जमा पूंजी से बचाए पैसों को थमा दिया करती थी कि मेरे बच्चे का दिल न टूटे। उसे बीते वक्त के विषय में मुझे ये लाइन याद आ रही है, हर जिद पूरी की है मेरी माँ ने, वो मेरी माँ किसी खुदा से कम नहीं है। दोस्तों आपने सुना होगा कि हर माँ के लिए उसका बेटा राजा होता है और बेटी राजकुमारी। तो ये खूबसूरती है एक माँ के दिल की, अपने बच्चों के प्रति वो अपने बच्चों को कितनी ऊंची नजर से देखती है, साथ साथ उसकी दुआएं भी बच्चों के साथ चलती रहती हैं। जब तक उसका बच्चा चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए घर वापस नहीं आता, वो भगवान से जुड़ी होती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है।

बच्चा अगर शहर से दूर है, बीमार है, परेशान है, तो सबसे पहले माँ को पता चल जाता है। ये है माँ की ममता, बिना किसी मोबाइल फोन के कितना जुड़ा होता है उसका दिल अपने बच्चों से।

वो खुद भूखी रहती है मगर उसके बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो आपने भी अपने जीवन में कई बार देखा होगा। मुझे तो लगता है कि जितना लंबा समय हम अपनी माँ के साथ रहते हैं वो बहुत ही अनमोल होता है। उसके प्यार में हर रंग होता है, हर मौसम होता है जो हमें सब कुछ देता है। उसकी गोद के सुख के आगे तो सब कुछ फीका है। आइए आगे बढ़ते हुए एक माँ के साथ माँ का प्यार का ममता में ये गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई तबीश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। मैं

स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। साथियों आइए, एक बात और मुझे याद आती है कि माँ का दिल तो उसका अपना होता ही नहीं है, पहले होता है उसका बच्चों का। चाहे कितनी बच्चे हो, वह सबको बराबरी का ही प्यार देती है। माँ के आंचल तले हम सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। दोस्तों, माँ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वो अपने बच्चों को जैसा चाहे वैसा बना दे। आपने जीजाबाई शिवाजी महाराज की माँ का नाम तो सुना है, ध्रुव की माँ का नाम भी सुना है। कितना बड़ा साहस और संकल्प है जो एक माँ यह सब कुछ कर दिखाती है। विश्व के इतिहास में न जाने कितने ऐसे अनगिनत नाम हैं जो बड़े ही गर्व के साथ लिए जाते हैं। हर रिश्ते में मिलावट, अच्छी कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन माँ के चेहरे पर न कभी थकावट देखी, न ममता में कभी मिलावट देखी। साथ में जब माँ बच्चे को जन्म देती है, तभी से वह उसकी संपूर्ण रूप से हो जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे मना करने पर भी माँ प्यार से, मनोहार से या थोड़ा गुस्से से हमें थोड़ा ज्यादा खाना खिला देती थी। तो वह उसका उसके बच्चे के लिए प्यार होता है, और ये प्यार सिर्फ हमें माँ के रहने तक ही मिलता है। तब हम उस बात को भले ही ना पसंद करें, मगर जब उसके जाने के बाद ये सब कुछ याद आता है तो दिल भर आता है। तब हम कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ यादें यादें यादें रह जाती।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। ढेर सारी खुशियां। आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटी सी कहानी आपको बताता हूं मैं। एक बार एक मेले में खुशियां, रंग बिरंगे झूले, खिलौने और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैली हुई है, और ऐसे में माँ और बच्चे उस मेले को देखने जाते हैं। बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि आज ये नया क्या देखने को मिला। माँ भी अपने बच्चे की खुशी में खो जाती है और बच्चा यहाँ वहाँ घूमने लगता है। माँ की नजर तो रहती है, लेकिन अचानक एक दुकान पर माँ कुछ चीजों में उलझ गई, और जब वो दुकान से बाहर निकली तो देखा कि बच्चा उसके आसपास नहीं है। उस भीड़ भाड़ में वो अपने बच्चे को बिछड़ा महसूस करती है। माँ घबराती है, चारों तरफ देखती है, उसकी आंखों में डर, दिल में बेचैनी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है। वो हर जगह दौड़ती है, लोगों से पूछती है, शायद कोई उसके बच्चे की एक झलक। मेले का शोर अब उसे खुशी की जगह बेचैनी का एहसास करा रहा है, और बच्चा वो भी भीड़ में अकेला डर के मारे रो रहा है। उसकी छोटी छोटी आंखें हर चेहरे में अपनी माँ को ढूंढ रही है। हर कदम उसे और ज्यादा सहमाता है, लेकिन साथियों यही पल है हमें धैर्यता से काम करना। माँ का दिल उम्मीद नहीं छोड़ता, और वो मेले के हर कोने में अपने बच्चे की खोज करती जाती है। आखिरकार जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं।

नमस्कार साथियों, कहते हैं जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाबों में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाबों में आ जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से ममतामय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साथियों, माँ के जाने के बाद यादें ही रह जाती है, और जब यादें आती हैं तो एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, एक कविता मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रोटी की कलाकार तुम, लोरी की फनकार तुम, तेरे आंचल में महफूज माँ, जीवन की हो पतवार तुम, तेरा स्पर्श ही मरहम है माँ, जीवन का पहला प्यार तुम, देवी भी तुम, शक्ति भी तुम, मेरी ढाल तुम, तलवार तुम, जन्म का वरदान दिया, शिक्षा भी तुम, संस्कार भी तुम, न धर्म कोई न रस्म कोई, प्रत्यक्ष हो माँ अवतार तुम, घाटे का सौदा करती रही हो, कर दो एक और उपकार तुम, बोल क्या हो तपस्या न मेरी, जन्मों जन्म मेरी माँ बनो हर बार तुम, माँ बनो हर बार तुम। तो साथियों, आपने देखा होगा कि लड़कियां अपनी माँ से बहुत सारे गुण व परफेक्शन सीखती है, जो सारी उम्र उनके साथ साथ चलता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उनका नाम उनकी माँ से जुड़ता है। माँ की जिम्मेवारियां तब और बढ़ती है जब उसके बच्चों की शादियां हो जाती है, और ये सारी जिम्मेवारियां वो बहुत खुशी से जिंदगी भर निभाती है। वो अपने बच्चों में शिक्षा, संस्कार व गुण भरकर समाज में एक सभ्य नागरिक बनाकर खड़ा करती है। अगर आपको याद होगा, जब आप बचपन में कभी बीमार होते थे तो माँ के हाथ का स्पर्श आपके माथे पर रखते ही आपकी बीमारी दूर हो जाती थी। वो आपके लिए जाग जाग कर भगवान से दुआएं मांगती रहती थी। सबको साथ में लेकर परिवार को एक करने की कला माँ ही जानती है। माँ केवल एक रिश्ता ही नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। माँ वह आधार है जो न केवल परिवार को संजोती है, बल्कि हर मुश्किल में प्रेरणा और संबल बनकर खड़ी रहती है। जब आप माँ के प्यार, उसके संघर्ष और उसकी अनमोल भावनाओं को महसूस करेंगे, जो हर इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जी हाँ श्रोताओं, ये एक छोटा सा शब्द जिसने सारे संसार के वजूद को अपने में समेटा हुआ है, उसकी परिभाषा लिखने में शायद पन्ने भी कम पड़ जाएंगे, तो ऐसी होती है माँ। साथियों, माँ का जितना गुणगान करे कम है, जितनी बातें करे उतना कम है। शायद हम और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन समय हमें बांध देता है और कार्यक्रम का समय भी हमें अब बता रहा है कि अब लीजिए इजाजत। साथियों, माँ पर बस आज इतना ही, फिर मौका मिले तो जरूर मैं और बातें करूंगा। तब तक आप बने रहिए। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, ओम शांति, वंदे मातरम।

0: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 इयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी, कहते हैं ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा। भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी जो तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे, तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आए, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया।
1: हाँ।
0: और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी,
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल की।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: नहीं, कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे, कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था? उस समय आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। मना हमारा पेशवे कालीन वाड़ा था, 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे, और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसे खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते हैं, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़ा नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहां पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, माना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। प्रिंसिपल स्कूल में तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी। मैं मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडी स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में माना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ, है
1: खेल बील, पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
1: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविता वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को पहले से। पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रीय गीत आप सुनाते थे?
1: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़ी करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती ही नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
1: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन, जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 74 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपकी बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
2: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
1: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
2: हाँ, बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
2: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, कोई गाती हूँ।

0: अच्छा, तो आप मराठी में गाते थे है ना,
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे। हाँ, तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना, इसीलिए
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था, और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी, गीत बनाते थे?
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता
0: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे।
1: था। हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छे अच्छे आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक, उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे। केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी, पूरन
0: अच्छा,
1: पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं, रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी, उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: थे। 2 बरस तक की,
0: अच्छा,
1: पगार
0: और
1: 400 रुपए था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपये?
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना? क्योंकि आपके बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15 साल 17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी। सोना 140 रुपये है
0: तोला?
1: तोला।
0: जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुणे छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का,
1: तो छोड़ के बम्बई में आई। उसके बाद हम नहीं कर सके, क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बम्बई में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोकण चले गए।
1: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
0: अच्छा, तो फिर आप कोकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोकण में कभी?
1: हाँ, बीच बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था, लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी, और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी उस माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आई, और उसका एजुकेशन बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई, क्योंकि सास को दोनों दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई, और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई।
0: अच्छा अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई
1: बचपन से,
0: ऑफ हो गई थी। अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद।
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां है और एक बेटी हो, तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत, सुनते रहो।

0: काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम आप बॉम्बे में, मतलब तीन बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
1: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उन्हों को, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
0: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना, तो आप क्या क्या करते थे घर में?
1: हम घर में सब थैलिया पर्दा ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी, माना हमने कोर्स किया था
0: सिलाई का।
1: हाँ,
0: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
1: पुणे में किया था।
0: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
1: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
0: अच्छा, कभी आपने मॉल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
1: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
0: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
1: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
0: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
1: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
0: तो पूरे आपका ग्रुप था?
1: हाँ, माना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, माना शास्त्रोक्त गाना भजन गीत सिखाते थे हमको।
0: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
1: सत्संग नहीं इतना किया हम।
0: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
1: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
0: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
1: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
0: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
1: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
0: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
1: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
0: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
1: 1-2 बरस तक गई।
0: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
1: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
0: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन जैसे आप सीखे 1-2 साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
1: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
0: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि 1-2 साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
1: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
0: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
1: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
0: अच्छा, पर सारे मराठी में।
1: हाँ,
0: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
1: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
0: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
1: नहीं,
0: कभी कोशिश नहीं की?
1: नहीं, याद भी नहीं आया।
0: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां हैं, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
1: बाजू वाले एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
0: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
1: हाँ।
0: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
1: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
0: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
1: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
0: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए?
1: सबको, हमको, सभी को।

0: अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
2: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
1: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
2: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
2: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए, और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
1: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
2: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
1: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
2: नहीं, उसने नहीं किया।
1: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
2: शादी की उसकी, और अच्छी तरह रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो। तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया, उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पुणे से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
1: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
2: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
1: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
2: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते जी।
2: आपका शुभ नाम?
3: तेजश्री।
2: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
3: जी हम बड़े हैं।
2: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आप किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
3: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा, ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेली प्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था, तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
2: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
3: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा ये हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है, जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
2: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहने हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
3: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
2: 55 के आप, क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है, वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
3: जी देखो, ये शादी एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी, और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से, मतलब शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है। तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
2: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा, कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है। फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
3: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए, और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
2: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
3: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा, इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना? तो ये मेरी सदिच्छा है।
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणा में रहे, पुणा में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
4: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी इसीलिए हम उसके साथ आए।
2: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए।
4: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
2: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
4: 2 साल हुई।
2: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
4: हाँ, आबू तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है।
2: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
4: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मना द्वंद्व नहीं रखते।
2: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
4: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मन।
2: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
4: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं होके भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रहे हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
2: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में खड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, रविवार की सुप्रभातम। कैसे हैं सब? भले चंगे होंगे। आप सभी श्रोताओं को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। आप जानते हैं माँ का महत्व कितना होता है। कई बार तो कहा जाता भगवान से भी ऊपर माँ है। कहे कि माँ जन्म दे के आपको दुनिया में न लाए तो आप कैसे भगवान को भी याद करेंगे। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं, आगे मदर्स डे के ऊपर भी आपसे बतियाएंगे। राजस्थान का एक शांत गाँव, उसमें पुराना पीपल का पेड़ रहा, जहाँ अक्सर पक्षियों का बसेरा रहता था। उही पेड़ पर एक चतुर लेकिन थोड़ा लालची कौआ भी रहता था। एक दिन उसे खेत के पास मांस का एक टुकड़ा मिल गया। वो बहुत खुश हुआ और उसको अपनी चोंच में दबाकर ऊंची उड़ान भरते हुए सोचे लगा कि आज तो वो आराम से बैठकर स्वादिष्ट भोजन करेगा। लेकिन जैसे ही वो आकाश में उड़ा, कुछ चीलों ने उसे देख लिया और वो तेजी से उसके पीछे पड़ गई। कौआ डर गया, वो और ऊंचा और तेज उड़ने लगा, लेकिन चीलें उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं रही। कौए की सांसें तेज हो गई, उसका मन घबराहट और डर से भर गया। उसे लगने लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। उही समय आसमान में उड़ते हुए गरुड़ ने उसकी परेशानी देखी और वो उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, मित्र तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कौए ने कांपते हुए कहा, इन चीलों को देखो, ये मुझे मार डालेंगे। गरुड़ मुस्कराया और बोला, वो तुम्हें नहीं, उस मांस के टुकड़े को चाहती है जिसे तुमने पकड़ा हुआ है। अगर तुम इसे छोड़ दो तो देखना क्या होता है। कौए ने पहले तो संकोच किया, कहे कि वो उस मांस को छोड़ना नहीं चाहता रहा। लेकिन जब उसको अपनी जान का खतरा महसूस हुआ तो उसने गरुड़ की बात मान ली और मांस का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। और जैसे ही मांस गिरा, सारी चीलें तुरंत उसके ऊपर झपट पड़ी और कौए का पीछा छोड़ दिया। अब कौआ पूरी तरह सुरक्षित था। उसने राहत की सांस ली और पहले से भी ज़्यादा ऊंचाई में उड़ने लगा। उसे समझ आ गया कि असली खतरा चीलें नहीं थी, बल्कि वो बोझ था जिसे वो पकड़े हुए था। गरुड़ ने उसे समझाया, जब तक हम अनावश्यक चीज़ों को पकड़े रहते हैं, तब तक हम डर, तनाव और परेशानी में रहते हैं। जैसे ही हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। गांव के लोगों ने इस घटना को देखा और उससे बड़ी सीख ली। उन्होंने समझा कि जीवन में हम भी कई बार अहंकार, क्रोध, तुलना, नकारात्मक भावनाओं का बोझ उठाए रखते हैं। यही चीज़ें हमें परेशान करती हैं और हमारी शांति छीन लेती है। अगर हम इन्हें बस छोड़ दें तो जीवन सरल और सुखी हो सकता है। ये कहानी का सार यही है कि जो चीज़ें हमें नीचे खींचती हैं, उन्हें पकड़ कर रखने के बजाय छोड़ देना ही बेहतर है। जब मन हल्का होता है, तभी हम जीवन में ऊंची उड़ान भर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, कई बार हम नाम से, मान से, शान से, झूठी अपनी दिखावट से, इससे इतने जुड़े रहते हैं और थोड़ी सी किसी ने कुछ बात बोल दी तो बहुत जल्दी अपमान हो जाता है। लेकिन अगर ये ना करें तो हमारा जीवन सही में सरल हो सकता। कई चीज़ें ऐसी अनावश्यक 90% आपका घर में पड़ी होंगी, जेका आपने कई साल से उपयोग नहीं किया। अरे काहे पड़ रही है, सड़ रही है, रखी है, उठा के किसी को दे दीजिए, आप हल्के हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा चीज़ों को, वस्तु को, नाम को, मान को, शान को हम पकड़े रहते हैं, जो हमें जीवन में उड़ने नहीं देती, यानी ऊंचा बनने नहीं देती, जो हम जीवन में लक्ष्य चाहते हैं वो करे नहीं देती। तो आज से अपने मन में, बहुत शुभ दिन है, आज से अपने मन में ये प्रण कर लीजिए, देखेंगे कौन सी चीज़ हमारे काम की नहीं है। या भले ही अपना सूक्ष्म अहंकार हो, अपनी विशेषता का अहंकार हो, उसको भी त्याग दीजिए, वो भी आपको ऊंचा नहीं उठने देता। कहे कि आपके मुंह पे भले ही कोई कुछ ना बोले, लेकिन पीठ पीछे तो कुछ करते हैं तो बोलबे करते हैं। और फिर आज मातृ दिवस की शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। लड़कियों को फूल की तरह पालने के बजाय जो तोड़ने पर गिर जाएगी, लड़कियों को फूल की तरह पालने के बजाय जो तोड़ने पर गिर जाएगी, उन्हें झांसी की लक्ष्मी की तरह पालें, जो उनका मजाक उड़ाने वालों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें।
क्षणिक सुखों और मनोरंजन के गुलाम बनने के बजाय भुवनेश्वरी बने, जो विवेकानंद को पाले, जो परिवार के सम्मान और वैदिक भूमि की महानता का प्रदर्शन करेंगे। अपनी बेटियों के लिए ये सब बात गांठ में बांध के रख लीजिए। परमहंस की पत्नी शारदा माता को प्रणाम करें, जिन्होंने जन्म न देने पर भी श्रेष्ठ संतों को जन्म दिया। ऐसी आशियाम्मा बने जो अब्दुल कलाम जैसे असाधारण बच्चों को जन्म देती हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर भक्ति और धैर्य हो तो शिक्षा का गरीबी से कोई संबंध नहीं है। जगन माता बने जो भारत भूमि के लिए स्वर्णिम बच्चों का पालन पोषण करती है, जो वो भूमि है जहाँ देवता विचरण करते हैं। कर्म और धर्म की भूमि है हमारा भारत। जगदम्बा सरस्वती अम्मा की दिव्य कहानी जाने, जो अपने मन वाणी और कर्म से परम पिता शिव के दिव्य ज्ञान का अभ्यास करके सभी के लिए एक उदाहरण बन गई। शिव परमात्मा का गहन स्मरण करके माता पार्वती बनो, जो विघ्नेश्वर प्रदान करने में सर्वशक्तिवान हैं, जो इस पवित्र देश के सामने आने वाली बाधाओं और बाधाओं को दूर करेंगे। अपनी बेटी को सबल बनाइए, कमजोर नहीं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाइए। मदर्स डे के इस पावन अवसर पर हम उन सभी दिव्य मातृ स्वरूपों को नमन करते हैं। परमात्मा जो हर आत्मा का सच्चा पालनहार है, ड्रामा जो हर परिस्थिति में हमें सीख देकर आगे बढ़ाता है, धरती माँ जो असीम सहनशीलता से हम सबका भार उठाती है, ब्रह्मा माँ जिन्होंने दिव्य संस्कारों से जीवन को श्रेष्ठ बनाया, और मम्मा जिनकी मधुर पालना और पवित्र वाइब्रेशन आज भी आत्माओं को शक्ति देती है। आइए इस मदर्स डे पर केवल जन्म देने वाली माँ ही नहीं, बल्कि उन सभी आध्यात्मिक मातृ शक्तियों का भी सम्मान करें जो हमारे जीवन को प्रेम, संस्कार और दिव्यता से भर देती। चलिए यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: माँ इस शब्द में दुनिया समाई है, प्यार की मूरत कहाँ किसी ने माँ जैसी पाई है। माँ वो जिसके स्पर्श से सारे दुख मिट जाएं, माँ वो जो हमारी खुशी में हमसे भी खुश हो जाए। कितने लकी हैं माँ जो आसपास है, किसी की फरिश्ता बन साथ है, पर माँ हमेशा माँ है। माँ को ढेर सारा प्यार दें और याद करें तो मुस्कुरा के, ताकि माँ की स्माइल भी गुम ना हो पाए। रेडियो मधुबन करता है हर माँ को सलाम।
1: तुझसा प्यारा इस जहां में ना कोई लगता मुझे।
2: गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी सीता और 8 साल की बिटिया गुड़िया के साथ रहता रहा। गरीबी इतनी रही कि कई बार रात को तीनों केवल पानी पीकर सो जाते, लेकिन वो छोटी सी झोपड़िया में गुड़िया की हंसी कौनो मंदिर की घंटियों जैसी गूंजती रहती थी। गुड़िया बहुत समझदार रही, खुद भूखी रह जाती मगर माँ बाप के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती थी। कभी माँ के सिर में तेल लगा देती, कभी पिता के फटे कपड़े सी देती। रामू उसे देखता तो मन ही मन सोचता, काश मैं अपनी बेटी को सारी खुशियाँ दे पाता। लेकिन वक्त के थपेड़ों ने रामू और सीता को अंदर से तोड़ दिया रहा। एक रात सीता रोते हुए बोली, हमसे अपना पेट नहीं भरता, कल को बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी कैसे करेंगे, लोग दहेज मांगेंगे, कपड़े मांगेंगे, हम का देंगे। रामू चुप रहा, उसकी आंखें भीग गई। बहुत देर तक दोनों बैठे रहे, फिर गरीबी ने इंसानियत को हरा दिया। भारी दिल से उन्होंने फैसला कर लिया कि सुबह गुड़िया को जंगल ले जाकर मार देंगे। अगली सुबह सीता ने पहली बार अपनी बेटी को बड़े प्यार से नहलाया, उसके बाल सवारे, माथा चूमा, अपनी पुरानी साड़ी का साफ हिस्सा काट कर उसके लिए रिबन बनाया। गुड़िया मासूमियत से बोली, माँ आज इतना प्यार काहे कर रही हो, का मुझे कहीं दूर भेज रही हो। सीता कुछ न बोल सकी, उसका गला भर आया, उसने बेटी को कसकर सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद रामू हाथ में फावड़ा और चाकू लेकर आया, उसकी आंखें नीचे झुकी थी। वो बिना कुछ बोले गुड़िया को साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते भर गुड़िया खुश होकर बातें करती रही, लेकिन रामू के कदम भारी रहे। तभी अचानक उसके पैर में बड़ा कांटा चुभ गया, दर्द से वो वहीं बैठ गया। गुड़िया तुरंत दौड़ कर आई, उसने अपने छोटे छोटे हाथों से कांटा निकाला और अपनी फटी चुनरी का टुकड़ा फाड़ कर पिता के पैर पर बांध दिया। अब दर्द कम हो जाएगा पिताजी, उसने मासूम मुस्कान के साथ कहा। रामू का दिल कांप उठा। दोनों जंगल पहुंचे, रामू कांपते हाथों से गड्ढा खोदने लगा, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। गुड़िया दूर बैठी उसे देखती रही, कि धीरे से पास आई और अपनी चुनरी से उसका पसीना पोंछने लगी। रामू ने खुद को कठोर दिखाने के लिए उसे दूर धकेल दिया, लेकिन गुड़िया फिर भी मुस्कुराई। कुछ देर बाद जब रामू थक कर बैठ गया तो गुड़िया फावड़ा उठाते हुए बोली, पिताजी आप थक गए हो ना, लाओ मैं खुद देती हूँ, मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती। बस इतना सुनना था कि रामू के भीतर का पत्थर टूट गया, फावड़ा उसके हाथ से गिर पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगा, उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं ये गड्ढा तेरे लिए खोद रहा था, लेकिन तू तो मेरी जान है। जो बेटी अपने पिता का दर्द नहीं देख सकती, उसे कोई बाप कैसे मार सकता है। गुड़िया कुछ समझ नहीं पाई, मगर उसने अपने नन्हे हाथों से पिता के आंसू पोंछ दिए। उस दिन रामू खाली हाथ घर लौटा, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। उसने सीता से कहा, हम गरीब जरूर हैं मगर हमारी बेटी हमारा अभिशाप नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। मैं मजदूरी करूंगा, भूखा रहूंगा, लेकिन अपनी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। उस रात पहली बार उसकी झोपड़ी में गरीबी नहीं इंसानियत जीती थी। बेटियां बोझ नहीं होती, वे तो भगवान का दिया सबसे अनमोल उपहार होती है। बेटा भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यही कहेंगे, जो आज हम भेदभाव करते हैं, बेटा होना चाहिए, बेटी ही तो पराए घर का वो है, ये सब कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास में जी रहे हैं। ये कहानी पे हम बहुत साल पहले मुनिया नाम से फिल्म भी बनाए रहे, लेकिन बड़े दुख के साथ है कि कितना भी अच्छा बोल लो, कितना भी अच्छा आप समझ लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो भेदभाव बेटी और बेटे के बीच में आज भी देखा जा रहा है। हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। बेटियाँ किसी बेटे से कम नहीं होती, हम बेटे के खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि बेटियाँ सही में वो सौभाग्यशाली होते हैं माँ बाप जिनके घर में बेटियाँ होती हैं। आज फिर इस बात का भी प्रण लीजिए कि कभी भी बेटे बेटी में फ़र्क नहीं करेंगे। क्यों बेटी को यहाँ पे भी घर में भी, अरे तुम तो लड़की हो पराए घर का, भैया को वो दे दो, भैया को यहाँ पे भी दबाएंगे, ससुराल में जाके पता नहीं कैसे मिलेंगे, वहाँ पे भी वो लोग अपने हिसाब से चलाएंगे। तो बेटी बनना अभिशाप हो गया आज के ज़माने में। क्या ये सिर्फ हमारे ही देश में होता है, विदेशों में ये नहीं होता है? वहाँ पे तो बेटा हो बेटी हो बहुत खुशी मनाते, हम क्यों इन उलझनों में, इन अंधविश्वासों में पड़े हैं? माँ वो शक्ति है जो अपने स्नेह और सहयोग से कमजोर को भी उमंग में उड़ा देती है, क्योंकि वो जानती है 9 महीने कोख में रखा है, और वो बेटी के प्रति और बेटी माँ के प्रति, कई बार तो देखा बेटी पिता से भी ज़्यादा, माँ से भी ज़्यादा पिता को प्यार करती है। मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। कहा है कि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। इसलिए जीवन के हर क्षण को उमंग उल्लास से जिए, हर क्षण एक नया उत्सव है। कार्य ऐसे करो जो असफलता असंभव हो जाए, असफलता गले का हार बन जाए। परमात्मा याद और बताकर किए गए हर कार्य में सफलता मिलती ही है। सभी को साथ रखो लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। सभी को साथ रखो लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। इन बातों को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। बीच की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है, इसलिए कभी भी ये भ्रम न पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। अरे आप हैं तो भी दुनिया चल रही है, आप नहीं होंगे तो भी दुनिया चलती रहेगी। काहे को झूठा अहंकार पाल रहे हैं हम, नहीं पालिएगा, करण करावनहार परमात्मा है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यही वो साधन है जो आपको खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा, देखिए जीवन कितना सुखमय होता। किसी व्यक्ति का बुद्धिवान होना बुरा नहीं है, लेकिन बुद्धि का चंचल और कुटिल होना ये अवगुण व्यक्ति को

0: अधूरे नहीं रह सकते। जीवन में केवल वहाँ तक ही झुकना चाहिए जहाँ तक संबंधों में मान और मन में आत्मसम्मान बना रहे। दान और भक्ति ये दोनों तभी फलदायी होते हैं जब इनमें स्वार्थ नहीं समर्पण होता है। कोई भी चीज स्वार्थ से मत करिए। जब कोई तूफान आता है तो सभी बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन साधारण घास हमेशा बची रहती है। इसलिए साधारण और अहंकार मुक्त होना ही हमें अधिक शक्तिशाली और स्थिर बनाता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। काहे कि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। वो चलती जाती है कि एक न एक दिन सागर मिलेगा। हम आत्माएं भी पुरुषार्थ करें, परमात्मा को याद करें, भलाई करते रहें, एक न एक दिन आत्मा परमात्मा से मिल ही जाए। थके नहीं, हारे नहीं, ये न पूछे कि और कितनी दूर है, पैर में छाले पड़ गए, नहीं, ये हमारी हार है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व ही ना हो। ना है तो ना रहे, आप तो अपने स्वमान में रहिए ना। कोई दे मान तो दे, नहीं दे तो भगवान तो दे रहा है, भगवान ने तो आपको चुना है, भगवान की अच्छी बातें तो आप सुनते हैं, तो अपने स्वमान में रहिए। ये सोचना कि कोई हमें मान नहीं दे रहा, ये भी देह का अहंकार है, सूक्ष्म अहंकार है, और अहंकार कभी इंसान को खुश नहीं रहने देता। जिस दिन तुम्हें हेलो
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हो?
0: ओम शांति, गुड मॉर्निंग, एकदम ठीक हूँ भैया, तुम कैसे हो?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कल का भी और आज का भी प्रोग्राम बहुत ही प्यारा, मीठा, अच्छा हो रहा है, लग रहा है। और मातृ दिन की हर माँ को सलाम, हर माँ को प्रणाम, और हर बेटियों को, बहू को, सहचारिणी को, सभी से प्यार करो, क्योंकि कल की वो माता ही है। तो आपको रेडियो मधुबन परिवार सभी को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार दीदी। ओम शांति,
0: ओम शांति। रेडियो मधुबन के पूरी टीम की तरफ से सुभाष भाई को भी बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। तो देखिए भाई, जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य समझ आ गया, उस दिन के बाद किसी की प्रशंसा या निंदा तुम्हें हिला नहीं पाएगी। हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालतों को बदल दे। कोई भी बड़ा कार्य बाधाओं के बिना पूरा नहीं होता। थोड़ी बहुत परीक्षाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, लेकिन सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। हम भी प्रयास करना ना छोड़ें, जो कार्य में लगे हैं पूरे तन मन धन संकल्प से लगे रहें, सफलता आपके कदम चूमेंगी। चलिए यही बात पर और एक गीत सुन लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। सुनिएगा मीठा सा

0: खुशियों का घर कहाँ है?
1: माँ की गोद में।
0: मसलों का हल कहाँ है?
1: माँ के प्यार में।
0: जन्नत सा सुकून कहाँ है?
1: माँ के हाथ के खाने में।
0: सबसे सुंदर हम कहाँ है?
1: माँ की नजरों में।
0: माँ दूर हो या पास, साथ तो हमेशा है।
1: लॉकडाउन में भी उसकी दुआएं हर सीमा को पार कर हम तक पहुंच ही जाती हैं।
0: हर माँ को सलाम करता है रेडियो मधुबन। हैप्पी मदर्स डे।

0: मैले शब्दों का बोझ, संस्कारों की अनमोल सीख। एक छोटा सा गांव में एक अत्यंत समझदार, शांत, असंस्कारी महिला रहती रही। अभी गांव के लोग उसकी विनम्रता और धैर्य की मिसाल दिया करते थे। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। उसका एक बेटा रहा जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और हर बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करता रहा। एक दिन सुबह सुबह माँ और बेटा कोनो काम से गांव के दूसरे छोर जा रहे थे। मौसम बड़ा सुहावना रहा। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में एक पागल औरत आ गई। उस औरत का स्वभाव बहुत उग्र था। हेलो,
1: हाँ दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बोलता
0: हूँ, शांति। एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: बस अच्छे हैं। अब तो बहुत अच्छा दिन है दीदी, मदर डे है, यानी कि आज माँ पर सारी बातें हम सुन रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं दीदी
0: जी।
1: माँ के बारे में तो जितना कहे उतना कम है,
0: कम है जी।
1: माँ बाप से तो बढ़ के कोई होता ही नहीं है, माँ से बढ़ के
0: जी।
1: तो मैं तो दीदी यही कहूँगा बस कि माँ बाप जब तक है तब उसको बहुत अच्छी तरह से रखे
0: जी,
1: उसको कोई कमी ना होने दे। क्योंकि कहते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं तब से जो माँ बाप इसके पीछे लग रहे हैं
0: जी,
1: जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, जॉब कर ले किसी नौकरी पर करवा देते हैं, और कहीं ना कहीं दीदी आज भी कोई अपने माँ बाप को परेशान बहुत हो रही है
0: जी।
1: अच्छा बेटा अच्छी तरह से बुलाते नहीं है, बहुत अच्छी तरह से नहीं रखती है, कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में जाने का सहारा आज माँ को मिल रहा है
0: जी।
1: तो ऐसा ना हो दीदी, माँ बाप से कभी कष्ट नहीं करना। देखो आज जो माँ बाप को दुखी करते हैं वो अगले, तो इसका भी नंबर आता है, जो जो हम माँ बाप के साथ करेंगे वो बच्चे आपके साथ जरूर
0: के साथ करेगा जी।
1: माँ बाप को नहीं कर, माँ बाप को बहुत अच्छी तरह से रखना दीदी। आज मेरी माँ नहीं है, मुझे बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें।
0: लेकिन आपके साथ उनकी दुआएं हैं, आपने इतनी सेवा की उनकी है ना।
1: बहुत दुआएं हैं मेरे पास, तो मेरी माँ से माँ थी दीदी। मैंने कभी आज तक इतने साल हुए 85 साल, लेकिन माँ को कभी कष्ट में नहीं दिया। हर बच्चे से कहते हैं कि माँ बाप को दुखी मत करिए,
0: माँ है तो दुनिया है जी।
1: सुखी रहना है तो माँ बाप की सेवा कीजिए, आप बहुत सुकून पाएंगे
0: जी।
1: दुनिया में कभी जिंदगी में दुखी नहीं होंगे
0: जी। ये सभी लोग समझ जाए तो वृद्धाश्रम बंद हो जाए,
1: बंद हो जाए जी। मैंने 2-4 दिन पहले एक देखा था वीडियो, तो माँ को खुद बच्चे लेके वृद्धाश्रम में भेजने के लिए आए थे। तो उस सामने वाले ने सवाल किया कि भाई क्या है बात है, तू अट्टा कट्टा है, पैसा कमाता है, फिर भी माँ को की में
0: जी।
1: क्योंकि मेरी बहू से बन बनती नहीं है, और मेरी माँ और बहू झगड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि ये झगड़ने से आपकी माँ को आप भेजने आए हैं उस आश्रम में, तो आप इसे समझाओ अम्मा अपने बहू को, क्यों ऐसे माँ को इसी हाल में छोड़ने आए हैं। मतलब ऐसा ऐसा गुस्सा हो रहा है माँ बाप।
0: मैं रेडियो में भी बोलती हूँ, मैं फिल्में भी बनाती हूँ इसी टॉपिक पे। अभी हमने फिल्म बनाई है इसी टॉपिक के ऊपर, आज उसका ट्रेलर लॉन्च किया। आप लोगों के पास तो आती होगी हमारी,
1: शायद अभी तो नहीं आई मेरे पास।
0: अच्छा, वो ओम शांति शांति प्रोडक्शन आप लोग वो कर लेंगे ना, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हर प्रोग्राम अपने आप आएंगे। उसमें सैकड़ों कहानियां हैं मेरी, 6 साल से मैं हर संडे एक कहानी डालती हूँ 5 मिनट की, करीब 300-400 स्टोरी है और 20 फिल्में हैं हमारी उस पर। तो जितनी भी देखेंगे ना, तो मैं ये वैल्यू बेस और ये माँ के ऊपर तो मैंने बहुत बनाई है, बेटी के ऊपर, माँ के ऊपर, बेटे के ऊपर अभी बहुत अच्छी बनाई है, अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन वो आप सब लोग ग्रुप में शेयर करेंगे तो आपको उससे भी और किसी को दिखाने के लिए भी, क्योंकि रेडियो का प्रोग्राम तो सिर्फ रात तक ही सुन सकते हैं, वो फिल्में तो आप कभी भी किसी को दिखा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी उद्देश्य यही है कि जागरण लाना है कहीं ना कहीं, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी के पास शक्ति तो बहुत है लेकिन दिशा नहीं है, उनकी दिशा और दशा दोनों कैसे हम ठीक करें, उसी को चिंतन चलता है हमारा और उस पर ही हम फिल्में बनाते रहते हैं। तो आज यही मैं सभी से ही कह रही हूँ कि मातृशक्ति को अगर आप सम्मान करेंगे तो ऊपर वाला आपको हर चीज़ से हमेशा भरपूर रखेगा, क्योंकि माँ नहीं तो हम दुनिया में, माँ नहीं होती तो हम दुनिया में कहाँ से आते, ये दुनिया माँ से तो है।
1: परेशानी नहीं आए वो गारंटी है, भगवान भी कहता है कि भाई मैं बेटा हूँ आप माँ बाप को दुखी मत करना।
0: जी सही,
1: लेकिन आप माँ बाप को दुखी करेंगे तो ही तो अब अभी आप दुखी इसीलिए हैं, आज बच्चों बेटे भटक रहे हैं यहाँ तहाँ क्या करें, इसी वजह से भटक रहा है कि अच्छी तरह से माँ बाप को नहीं रखते।
0: थैंक यू, थैंक यू भैया, ओम शांति। कहानी सुना रहे थे, आधी कहानी रहे कि वो औरत का स्वभाव बहुत उग्र था, वो अचानक वो महिला पर चिल्लाए लगी, वो पागल जैसी थी जो बिना किसी कारण के वो उसे अपशब्द कहने लगी। उसने महिला के चरित्र, उसके परिवार और यहाँ तक कि उसके पति के लिए भी बहुत बुरी बातें कहीं। आसपास खड़े कुछ लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस महिला के चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं आया, उस शांत भाव से मुस्कुराती रही और बिना कुछ कहे आगे बढ़ती रही। पागल औरत को लगा कि शायद उसकी बातें कम असर कर रही है, इसलिए वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। अब वो और कटु शब्द बोलने लगी, मगर फिर भी महिला ने कोनो प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार जब वो औरत लगातार चिल्लाते चिल्लाते थक गई और सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। बेटा ये सब देखकर भीतर ही भीतर परेशान हो गया। कुछ दूर जाए के बाद उसने अपनी माँ से पूछा, माँ वो औरत ने आपको इतना अपमानित किया, पिताजी और पूरे परिवार तक को बुरा भला कहा, फिर भी आपने उसे कुछ जवाब काहे नहीं दिया, का आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? माँ मुस्कराई, लेकिन उस समय उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बेटे को लेकर सीधे घर पहुंची। घर पहुंचे के बाद माँ अंदर कमरे में गई और थोड़ी देर बाद कुछ बहुत मैले और बदबूदार कपड़े लेकर बाहर आई। उसने वो कपड़े बेटी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा अपने साफ कपड़े उतारो और ये कपड़े पहन लो। बेटे ने जैसे ही उन कपड़ों को हाथ लगाया उसने तुरंत उन्हें दूर फेंक दिया और बोला, माँ ये कपड़े कितने गंदे हैं, इनसे तो बहुत बदबू आ रही है, मैं इन्हें कैसे पहन सकता हूँ? तब माँ ने बड़े प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जैसे तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े पहनना पसंद नहीं कर सकते, वैसे मैं भी किसी के गंदे शब्द अपने साफ मन में धारण कर कैसे कर सकती? यदि मैं भी उस औरत की बातों का जवाब गुस्से से देती तो मेरा मन भी मैला हो जाता। माँ की बात सुनकर बेटे की आंखें खुल गई, उसे समझ आ गया कि सच्चे संस्कार वही है जो परिस्थिति कैसी भी हो मन की शांति को टूटने न दे। दूसरों के कटु शब्द तभी तक हमें दुख देते हैं जब तक हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। जिसका मन शांत और स्वच्छ होता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। आशा है आप इस कहानी से भी कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे। चलिए यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद और अच्छी अच्छी बात करेंगे। सुनिएगा गीत।

0: एक गांव में एक बहुत धनी किसान रहता रहा। उसके पास खेत खलियान पशु धन दौलत नौकर चाकर की कोनो कमी नहीं थी और ये सारी संपत्ति उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली रही। अधिक धन होने के कारण वो बेहद आलसी हो गया था। उसका अधिकांश समय घर में बैठे बैठे हुक्का पीने और आराम करने में बीतता था। खेती बाड़ी और घर की व्यवस्था पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। हेलो
1: जी, नमस्कार। मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार, कैसे हैं? हम एकदम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ और आप भी हमेशा बढ़िया रहते हैं और आप आके हमको और भी अच्छे आवाज से हमें अच्छे हो जाते हैं।
0: जी,
1: और क्या प्रोग्राम अच्छा चल रहा होगा
0: जी।
1: हम तो कंपनी से हैं
0: जी, जी।
1: अब शाम को तो आदमी सुनेंगे
0: नहीं, आज रात को नहीं आता, शनिवार को ही आता है 11 से 12, रविवार का नहीं आता जी।
1: बहुत बहुत आप बहुत दिन से आए, आपको बहुत बहुत नमस्कार है। टाइम से है और हमारे सभी दोस्त सुन रहे हैं, सभी को नमस्कार है
0: जी।
1: और गर्मी से बचते रहिए और पानी पीते रहिए ठंडा, और बस एक दूसरे का सेवा करता रहिए, ऐसी भावना से भावना।
0: थैंक यू।
1: और बस और थोड़ा गुनगुनाएंगे?
0: हाँ, गुनगुनाइए।
1: यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। ऐसा कोई लाख आदमी कोई सीधा साधा, हर एक हमने

0: गया नहीं बासनो यार हमारी बासनो ऐसा एक इंसान सुनो और जिसने पाप ना किया हो तो पाप ही ना हो।
1: नमस्कार दीदी जी,
2: नमस्कार, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों ये थे मदन लाल भाई, अपनी ड्यूटी पर होते हैं, प्रोग्राम नहीं सुन पाते लेकिन बातें जरूर करते हैं। ये आप सबका स्नेह हमें आपसे 14 वर्ष से जोड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको कहानी सुना रहे थे परिश्रम का असली धन। तो वो आलसी रहा भाई, खेती बाड़ी और घर की व्यवस्था पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। किसान की इसी लापरवाही का फायदा उसके नौकर और रिश्तेदार उठाने लगे। कोई अनाज चुरा लेता तो कोई दूध और घी में गड़बड़ी करता। रिश्तेदार भी मीठी बातें बनाकर धीरे धीरे उसका धन हड़पने लगे। किसान को इन बातों की कोनो खबर नहीं रही। एक दिन उसका पुराना मित्र उससे मिलने आया। उसने किसान के घर और खेतों की बुरी हालत देखी तो बहुत दुखी हुआ। उसने किसान को समझाया कि यदि वो इसी तरह आलसी बना रहा तो एक दिन उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन किसान पर उसकी बातों का कोनो असर नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद मित्र ने किसान से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे महात्मा के पास ले चलूँगा जो धन बढ़ाने का अद्भुत उपाय बताते हैं। धन बढ़ाने की बात सुनकर किसान तुरंत तैयार हुए गवा। दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा ने किसान से कहा, हर रोज सूर्योदय से पहले एक दिव्य हंस आता है। जो व्यक्ति उस हंस के दर्शन कर लेता है उसका धन निरंतर बढ़ता रहता है, लेकिन वो हंस किसी के देखने से पहले ही गायब हो जाता है। अगली सुबह किसान पहली बार सूरज निकलने से पहले उठा और हंस को खोजने खलिहान की ओर गया। वहाँ वो देखा कि उसका एक रिश्तेदार बोरे में अनाज भरकर चोरी से ले जा रहा है। किसान ने उसे पकड़ लिया। वो शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगे लगा। फिर किसान गौशाला पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक नौकर दूध चुरा रहा है और पूरे स्थान पर गंदगी फैली हुई है। किसान ने नौकरों को डांटा और सफाई तथा ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया। अब किसान रोज जल्दी उठने लगा। वो खेतों खलिहानों और गौशाला का निरीक्षण करता। उसकी सतर्कता देखकर नौकर और रिश्तेदार भी डर गए और अपने काम ईमानदारी से करने लगे। खेतों की उपज बढ़ने लगी, चोरी बंद हो गई और किसान का स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा हुई गवा। कुछ महीनों बाद किसान फिर महात्मा के पास पहुंचा। बोला, महाराज, मुझे अब तक वो हंस दिखाई नहीं दिया लेकिन मेरा धन लगातार बढ़ता जा रहा है। महात्मा मुस्कराए और बोले, तुमने उस हंस के दर्शन कर लिए हैं लेकिन पहचान नहीं पाए। वो हंस कोई पक्षी नहीं बल्कि परिश्रम है। मेहनत और जागरूकता ही असली धन बढ़ाने वाले हंस हैं। किसान को अपनी भूल समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने आलस छोड़ दिया और मेहनत को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि परिश्रम सफलता और समृद्धि की कुंजी है, चाबी है। केवल धन होने से जीवन सुरक्षित नहीं होता बल्कि उसकी देखभाल और मेहनत जरूरी होती है। जो व्यक्ति समय पर जागरूक होकर ईमानदारी और लगन से काम करता है उसके जीवन में सुख स्वास्थ्य और समृद्धि अपने आप आने लगते हैं। तो देखिए भाई, जीवन में आलस मत करिए। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आपको अपनी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो लक्ष्य है उससे आपको दूर करता है। और जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, मन लगा के पूरा परिश्रम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी तबीयत भी ठीक रहती है और आप लक्ष्य के थोड़े थोड़े करीब जा रहे होते, क्योंकि आपके पास बहुत समय होता है सोचने का और उस सोचने के समय में आप कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेते हैं, दिमाग चलाते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, तन और मन का दोनों पे एक दूसरे का असर पड़ता है। इसीलिए कहते मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अगर आपको जीतना है, सफलता पाना है तो कभी भी मेहनत से जी ना चुराएं और देर तक बिस्तर पे ना पड़े रहें, यानी सुबह जल्दी उठें और उसके बाद देखें कि आपकी हर मनोकामना पूरी होती है कि नहीं। आज के इस युग में वैसे ही साइंस ने हमें बहुत बहुत आलसी बना दिया है। कहे कि हर चीज़ मशीन में होती, मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, मशीन में मसाला पिस जाता है, हर चीज़ तो हमारी हो जाती है और उसके बाद फिर काम का बचा, हाथ पैर की मेहनत होती नहीं, शरीर मोटा होते जाता है और जहाँ मोटापा आया तो का होता है, बीमारी घर कर लेती है। तो आपसे यही कहेंगे, ये कहानी से शिक्षा लीजिए। परवा पंडिताइन सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आती है, परवा पंडिताइन आपको कोई ना कोई ऐसी बात जीवन से जुड़ी सुनाए को आती है, जैसे आप अगर कर रहे हैं गलती तो वो गलती ना करें और आपके जीवन में सुख शांति आए। हमारे प्रोग्राम का मतलब सिर्फ मनोरंजन करना नहीं बल्कि परिवर्तन करना भी है, आदतों को, हमारे संबंधों को, हमारे अपने स्वास्थ्य को, सबको ठीक कैसे करें वो बात हम आपसे करते हैं। आशा करते हैं कि ये बातें कहीं ना कहीं आप जीवन में धारण कर रहे होंगे। हमको तो बतियाते बतियाते आपसे 14 साल हो गए और हमेशा कोशिश ही रहती है कि हर बार हम कुछ नई बात लेकर आएँ, कुछ नई बात ऐसी करें जैसे अगर कहीं आप वो गलती कर रहे हैं तो गलती ना करें। आशा करते हैं आप हमारी बातों पे ज़रूर ध्यान देंगे और ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। मेरी तारीफ़ों में इतना जोर नहीं है, भगवान कहते हैं मेरी तारीफ़ों में इतना जोर नहीं है, तुम मुझे बेवजह पसंद हो, वजह कोई और नहीं है। भगवान किसी कारण से आपको प्यार नहीं करते, भगवान तो आपको प्यार करते ही, हर आत्मा को प्यार करते हैं। ज्ञानी वही सच्चा ज्ञानी है जो इस संसार को देखता तो है पर भीतर से ये जानता है कि यहाँ पकड़ने लायक कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो यहीं के यहीं रह जाएगा, हमारे साथ जाए वाला नहीं है। और ये बात अगर मन में धारण कर ली तो किसी चीज़ में आसक्ति नहीं, किसी चीज़ में लोभ नहीं और जीवन सफल। अंत में एक बात करके अपनी वाणी को विराम देंगे, जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब फिर वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। जो हमेशा कहता है कि मेरा पास समय नहीं है, इसका अर्थ यह है वो व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त है। सबके पास स्मार्ट वॉच तो है किंतु समय किसी के पास नहीं। बुराई से डरो, बुरा करने से डरो, जो दोगे वही वापस मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और सभी मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और यही चाहते हैं कि नारी शक्ति जागे तो दुनिया क्या भा, दुनिया भी बदल जाएगी लेकिन सबसे पहले हमारा घर परिवार और देश बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ख्याल के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज हम ध्रुपद के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि ये भी ख्याल जैसे ही गीत का एक प्रकार है। इस शैली का जो गीत होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिकता होती है। ईश्वर के प्रति आस्था की प्रस्तुति में हम आसानी से भगवान को रिझा सकते हैं, मना सकते हैं। ऐसा ही है ना श्यामली जी?
1: हाँ जी।
0: पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं संगीत की दुनिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। सब लिसनर को, जितने सारे हैं, सबको नमस्कार करती हूँ।
0: जी जी श्यामली जी, हमने जो बताया कि ये जो ध्रुपद, ये भगवान के प्रति जो हमारी भावनाएं होती हैं, उसको हम प्रस्तुत करने में ये हमको बहुत सहजता से मदद करती है। ऐसे
1: ये एक तरह की तरह जैसे हम आम दुनिया में क्या करते हैं, एक उपन्यास होते हैं और एक ऐसे होते हैं, स्टोरी होते हैं, ऐसे ऐसे जैसे।
0: हाँ जी।
1: तो स्टोरी, हाँ, स्टोरी जो होता है ये है ख्याल, जो ऐसे होता है निबंध जो होता है वही है ध्रुपद।
0: ओके।
1: थोड़ा गंभीरता है, लेकिन इसमें जब ईश्वर के ऊपर जो स्तुति होते हैं तो उसमें कैसे करते हैं उसको हम शुरू करते हैं आलाप से, नोम तोम तेरी एरी ऐसे करते हैं।
0: अच्छा, आलाप ऐसे
1: पहले आलाप होता है, उसके बाद जो स्थाई अंतरा होता है इसको तुक भी कहते हैं। हाँ, ये जो पहले स्थाई है, चार तुक की भी ध्रुपद होता है, दो तुक की भी होता है, इसको तुक कहते हैं। उसके बाद वो जो संगीत होता है, बंदिश होता है, बंदिश के ऊपर बाट होते हैं, क्योंकि उसका पहले डबल छंद होता है, तीसरा छंद होता है, चौथा छंद, ऐसे ऐसे छंद होता है। जब करते हैं उसके बाद वो संगीत समाप्त हो जाते हैं। ये ख्याल में जो जब हम तान करते हैं उसके बाद ख्याल समाप्त होते हैं, लेकिन इसमें बाट होते हैं, तो वो अलग भावना है, अलग सी शैली है, हम बाद में सिखाएंगे।
0: अच्छा।
1: आज आपने ध्रुपद के ऊपर बोल रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा जानकारी
0: सा बता दिया। जी जी जी।
1: तो फिर अभी आज हम क्या करेंगे, अंतरा करेंगे। अंतरा के साथ अगर समय होता है बंदिश भी दे देंगे।
0: ओके।
1: ठीक है
0: जी जी,
1: तो शुरू करते हैं।

0: वही मुकरा हम चार मात्रा से लेंगे, जैसे कि चार मात्रा से शुरू होता है, अंतर भी चार मात्रा से शुरू होता है। जब बंदिश करेंगे तब लिसनर को समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
1: अच्छा,
0: पहले स्वर लिपि देती हूँ, उसके बाद हम धुन में बैठाएंगे। अंतरा अगर लिख लेते हैं लिसनर, गा मा पा धा सा आ सा आ, ये जो सा है ऊपर की सार है। तो पहले हमने बताया चार मात्रा मुकरा है, ये गा मा पा धा जो है चार मात्रा की मुकरा है। गा मा पा धा सा आ नी ई धा पा करिमा आ गा आ मा आ गाड़ी नी, ये जो नी है नीचे नी है मंद्र सर की, नी ई रे ए गा आ करिमा गा पा आ मा गा रे ए सा आ करिमा आ पा आ करिमा आ पा नी धा पा मा गा, फिर गा मा पा धा आ गया। अगर इसमें धुन में बैठाएंगे तो और भी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अभी धुन में करती हूँ।
1: ओके।

0: ये जो हमने स्थाई और अंतर दे दिया है, स्वरलिपि दे दिया, अभी अगर लिसनर कितना आसानी से कर पाएंगे, कैसे कि अगर इसमें आ करेंगे, आकार सहयोग से करेंगे ना, वो पहले वो कंठस्थ हो जाएंगे। जब हम बंदिश दे देंगे, क्योंकि इसमें जो एक ही लाइन इतना लंबा है 48 मात्रा की, जैसे हमने पहले द्रुत सिखाया था, मध्य लय के सिखाया था, वो तो 16 मात्रा की था। 16 मात्रा चार आवर्तन, तीन आवर्तन कभी भी होता है, दो आवर्तन है तो, लेकिन इसमें 48 मात्रा है। लिसनर को फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें आता है तो ये तो एक लाइन 48 मात्रा ही है। अगर इसमें पहले आकार करेंगे तो कंठस्थ हो जाएंगे,
1: माने आकार के साथ करेंगे तो बहुत, भले 48 मात्रा है फिर भी आप आसानी से
0: कंठस्थ हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, तब जब बंदिश उसको बैठाएंगे आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, बंदिश जो है बंदिश दे देती है,
1: अच्छा
0: हम बाद में करेंगे। मेरा मन बाधली लोड़ी, मेरा मन बाधली लोड़े हारे इन जगिया के साथ। यह छोटा है लेकिन विलंबित है ना, इसमें लगते बहुत बड़ा है, लंबा है, लेकिन इसके जो बोल बंदिश है बहुत छोटे होते हैं।
1: अच्छा।
0: मेरा मन बाधली लोड़े हारे इन जगिया के साथ, अंतरा है सदा रंग कर्म करो क्यों ना इन प्राण नाथ के हाथ। सदा रंग कर्म करो क्यों ना इन प्राण नाथ के हाथ। ये जो अभी जो बंदिश में सदरंग जो ये जो शब्द आए गए, शायद बाद में सामने जनता के सामने ये जो सदरंग जो है, ये जो बहुत विख्यात एकदम बहुत फेमस शास्त्रीय संगीतकार है, इन्होंने सबके सामने लाए हैं।
1: अच्छा।
0: इसलिए इन्होंने जो
1: फाउंडर फादर
0: हाँ रचनाकार जो है इसमें, इसलिए हर रचना में सदरंग ये
1: ओके वो आएंगी,
0: वो आएंगी,
1: शब्दों का प्रयोग,
0: शब्द प्रयोग होता है। ठीक है
1: जी श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आनंद लेंगे हम सभी यमन राग से संबंधित एक सुंदर सा मीठा सा गीत का। पुनः हम लौटेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने बहुत एक सुंदर से गीत का आनंद लिया होगा और ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से सुना यमन राग के बारे में, स्वर लिपि दे दी और उसमें आकार के साथ अगर करने से बहुत सहजता होगी। हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, श्यामली जी? हाँ,
1: जी कठिन नहीं लगेगा। जितना कंठस्थ हो जाएंगे अंदर चले जाएंगे तो वो अपने आप से कर सकते।
0: भले ये 48 मात्रा है फिर भी
1: थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो
0: हो जाएगा। जो संगीत सीखना सचमुच में चाहते हैं उनके लिए तो कोई
1: करना ही चाहिए,
0: इम्पॉसिबल ऐसे तो नहीं होगा।
1: तो अभी हम क्या करेंगे, हमने पहले ब्रेक के पहले जो बंदिश दिया था
0: जी,
1: मेरा मन बाध लीलोड़े हारे इन जोगिया के साथ, ये पहला जो स्थाई का है बोल है। और अंतरा की जो बोल है, सदा रंग करुम करो क्यों ना इन्हें प्राण नाथ के हाथ। ठीक है, तो हम देखिए कैसे हम बैठाते हैं, इतना लंबा चौड़ा स्वर लिपि है, इसको कैसे बैठाते हैं।
0: जी जी,
1: तो लिसनर को तो याद होगा ना कि चार मात्रा मुखड़ा है
0: जी।
1: ठीक है, तो हम करते हैं नी पा नी धा नी रे सा, ये जो मुखड़ा है हम क्या करेंगे, मेरा आमन बा।
0: अच्छा, उसके साथ साथ आप बिठाई देंगे,
1: बैठाते हैं क्योंकि लिसनर को सीखना है ना,
0: समझ में आ जाएगा। हाँ, आसानी से
1: अगर बा के ऊपर सम आ गया उसके बाद चार चार मात्रा चलेंगे, अगर लिसनर ध्यान से सुनते हैं एकदम अगर लिख लेते हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे।
0: जी जी,

0: तो आपने देखा कि हम कैसे आसानी से स्थाई अंतरा के जो बोल है इसमें बैठा दिया
1: जी।
0: अभी क्या ये जो मेरा मन वा मेरा मन हम आपको दिखाना चाहती हूँ थोड़ा से एक मिनट के अंदर कि इसको ख्याल कैसे किया है। जैसे हमने किया है

0: हमको चार मात्रा में मुकर करना है।
1: अच्छा।
0: हम ख्याल से अपना इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जब हम रिपीट करेंगे एक आवर्तन हो जाएंगे, फिर हम रिपीट करेंगे, बाद में हम सिखाएंगे सरगम या तान वगैरह सिखाएंगे। हम मेरा मन जो है, मेरा आमन बान, फिर से हम नेक्स्ट आवर्तन में कर सकते हैं, मेरा मन बान। खाली वही स्वर लेना है, ऐसे नहीं है,
1: माना चेंज भी कर सकते हैं।
0: चेंज भी कर सकते हैं। हमने जो ये जो हमने किया है, ये स्वल्पी के साथ किया है, हम चेंज भी कर सकते हैं।
1: ओके, हाँ हाँ।

0: हम जैसे अपने इच्छा अनुसार करेंगे लेकिन ताल के सहित।
1: जी जी,
0: हम तो थोड़ा ताल भीन किया है, इसके ताल में हमने स्वरलिपि दे दिया क्योंकि लिसनर जो है पहले सीखते हैं। ये जो ख्याल इसको कहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं
1: उसको ख्याल कहते हैं।

0: अरे हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको कहते हम नहीं जवाब किया, इसको बिस्तर कह सकते हैं। बिस्तर में हम बाद में हम सिखाएंगे थोड़ा कैसे बिस्तर करना है, अभी इतना तक ही ठीक रहेगा कि
1: थोड़ा सा धीरे धीरे सिखाएंगे तो वो लोग, क्योंकि रेडियो से सुनकर सीख रहे हैं ना, ऐसे प्रत्यक्ष में कोई गुरुजी से शिक्षा लेना और रेडियो से डायरेक्ट लेना थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। श्यामली जी, आज आप जाते जाते हमको क्या सुनाना चाहेंगे?
0: आप हर दिन पूछते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है गीत गाने की।
1: जी जी, उमंग, हमको तो इसका इंतजार रहता है।
0: एक बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत पुराना भी नहीं, ऐसी आंधी फिल्म का गीत है।
1: आंधी फिल्म, जी जी,
0: आंधी फिल्म में लता जी का एक गीत है, लता जी और उसमें किशोर कुमार जी भी है। इस मोड़ से जाते हैं, ये भी इवन रखी ऊपर आधारित है, हम कोशिश कर सकते हैं।
1: जी
0: है?
1: जी, okay.

0: वाह, आज मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई संगीत सीखे ना सीखे, आपसे हमको बहुत अच्छी अच्छी ओल्ड फिल्म के सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। सच में श्यामली जी, बहुत भले आप कोशिश शब्द का प्रयोग करते हैं, और होना भी चाहिए, नहीं होना भी चाहिए, मगर
1: जिन्होंने गाए वो मेरे गुरु माँ है
0: जी,
1: तो हमने कोशिश किया है। मेरे साथ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है ना
0: जी जी,
1: इसमें शायद कुछ इधर उधर होता है,
0: क्योंकि पुरानी फिल्म के गाने हमने सुने जरूर है, मगर इतने डीपली शब्दों के साथ में हमको आज याद नहीं है।
1: हाँ।
0: और आज वो पुरानी यादें ताजा कर देते हैं।
1: हाँ।
0: इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, जाते जाते आपने हमारा दिल खुश कर दिया, हमारे श्रोता मित्रों ने भी इस गीत का आनंद लिया होगा। समय देता है हमको यहाँ पे ही इजाजत, फिर मिलेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन जाते जाते आपको एक बात जरूर कहूंगी कि आप अगर संगीत के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, आपके कोई अलग से संगीत के संबंधित प्रश्न होंगे, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। मिलते हैं अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। रेडियो मधुमन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: राम राम भाई, राम राम।
1: अरे राम राम, राम राम भाई। कंचन आओ भाई आओ।
0: हाँ भाई रतन, काई रोंगटा खड़ा कर देने वाले गीत सुन रही आज तू।
1: अरे भाई कंचन, यो भी को राज है।
0: हाँ।
1: जो जरूर बताऊ मैं थाने।
0: हाँ।
1: पर आपा स्वागत करा हा अपना श्रोता बंधुओं रो गावरी बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM।
1: सुनता रहो,
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो गावरी बातें कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधु जुड़ गया है। और कंचन, मैं अबे थाने बताऊ कि मैं यो गीत क्यों सुन रही हूँ।
0: वो गीत भी भाई काई गीत है, पर चल तू बता।
1: देख मैं एक बेनू के कौन बात कर रही हूँ। जाने अपने रेडियो मधुबन री टीम तो गाँव गाँव में जाती।
0: गाँव गाँव में जावे। हाँ।
1: तो एक गाँव में कटी गया हा बटे वह बेन जी वहां टाबर का साथ में अकेली रह रही।
0: टाबर के साथ।
1: हाँ, हाँ। पति हूँ अलग, ससुराल वाला हूँ अलग।
0: ओ
1: तो वहां ने पूछो भाई कई व्यो कई नहीं व्यो, तो वे बता रहे हाँ वहां की 14 साल की उम्र में ब्याह हो गयो।
0: 14 साल की उम्र में पढ़ना दी।
1: हाँ। और घर वालों हो 17 साल को।
0: ओहो,
1: तो दो ही टाबर
0: जब तो समझ भी नहीं हो है।
1: समझ ही नहीं हो। 17 साल का छोरा ने कई ठा पड़े और 14 साल की छोरी ने कई ठा पड़े।
0: सही बात
1: भाई, बचपन रा दिन है, खावा खेलवा का और पढ़वा की उम्र है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आनी उम्र में गृहस्थी को बोझ दे दो तो वो तो संभालता संभालता वो कहे परिपक्व उम्र में जदि अक्कल आवे।
0: जदि अक्कल आवे, अनुभव ही तो सिखावा।
1: हाँ, अनुभव सिखावे। अबे माँ बाप तो अच्छी शिक्षा ही देवे पर एक उम्र भी गणो मायनो रखे।
0: सही बात है ना। तो टाबर शारीरिक रूप से पूरा विकसित हुआ है और ना ही मानसिक रूप से।
1: बिल्कुल। तो कंचन वे बता रहे हा कि 14 साल की उम्र में परण आया। सासू ससरा थोड़ा समझदार होना चाहिए वही टाइम पर वे कहिए कि बस घर को काम को बहुत सब बाका ऊपर सौंप दी दो।
0: ओहो,
1: यो भी करनो वो भी करनो, सुबह भेगो उठनो रात मोड़ो सुनो, दिन में रेस्ट कोनी करनी और घर को काम करनो।
0: यानी पूरी की पूरी गृहस्थी को बाहर ई उम्र में।
1: हाँ। और पियर में तो काम की दो कोनी।
0: सही बात है।
1: तो भाई कभी भी बनाई तो एकदम परफेक्ट तो कोनी बनी।
0: हाँ, वो तो अनुभव से धीरे धीरे देख ज्ञान मान कि आपा भी तो अबे तक सीख रहा है।
1: वो सीखो कह के जन्म लेवे वदियूं इंसान अनी
0: मृत्यु तक। हाँ, सीखे
1: मृत्यु तक वो सीखे ही करे। हाँ, सीखे ही करे तो भी यूं नहीं कह सका मैं परफेक्ट हूँ।
0: मैं परफेक्ट हूँ क्योंकि कही है लर्निंग इज टोटल लाइफ ऑफ ए अपा।
1: हाँ, एक आरती बता दे अपना श्रोता बंधु। हाँ,
0: भाई ये वही है जीवन को एक पर्याय है।
1: बिल्कुल। तो कंचन अबे वह सब काम वकापू कराता।
0: हाँ।
1: अबे वही टाबरी जी तो काम आछो कोनी हो तो सासू जी लड़ लड़ करता, ससुरा जी गालियां देता, पाचे नाना अंदर देवर ये है वे भी माँ बाप का लारे लागन माने भाभी ने सुनाता कई
0: बता का बता। यानी ज्ञान मान ले कि भी पुराना जमाना में लगभग ज्यादातर ज्ञान की तो केस होता।
1: हाँ, ये केस ज्यादा ही होता।
0: हाँ।
1: बाकी भावना नहीं समझता। आज अपना ही बच्चा है उम्र में वे तो आपा माने कतरो काम भरावा। प्यार तो देवा नहीं देवा।
0: प्यार तो देवा
1: कि कोई प्यार नहीं मिलतो।
0: हाँ।
1: पति देव 17 साल
0: और एक तो देख भाई दूसरो परिवेश दूसरो गाँव दूसरे। हाँ? लोग या मैं बेचारी ने यान देख ले कि भी कतरो
1: एक एडजस्ट बेता भी टाइम लाग गए।
0: टाइम लाग गए
1: और 17 साल का पति की उम्र अब वो भी कई समझतो को नहीं।
0: हाँ,
1: तो पढ़ते हो।
0: सही है।
1: तो बाहर भी पढ़ रहे हो पचे बेटा ने तो भेज दी दो कॉलेज में पढ़वा का लिए बाने।
0: हाँ।
1: पियर वाला क्यों कि भाई माई माँ की बेटी ने ले जावा।
0: हाँ।
1: ताकि यदि बेटा होशियार वेन आ जाए।
0: हाँ,
1: जत्र माँ की छोरी मोटी हो जाए पचे भेजा।
0: लोग
1: नहीं इन्हें कटे ले जाओ।
0: अच्छा।
1: इन्हें तो कोनी भेजा। इन्हें भेजे कोनी क्योंकि भाई अबे बिना पैसा की नौकरा नहीं मिल गई।
0: हाँ।
1: तो सब काम कराता विकापो
0: सब भाई कदे कदे तो घणो ही शोषण होता। और पुराना जमाना की तो बात ही अलग होती है।
1: सही बात
0: एक तो
1: है।
0: देख कम उम्र में पढ़ना देता है कम उम्र में पढ़ना देता और वही वाली बात की आपा कहता तो चोखा कोनी लागे कि भाई यहाँ बिना पिया की नौकरानी मिल गई। पर कहिए कि एक मानसिकता तो ज्ञान की होती गणा लोग
1: मानसिकता होती कि चलो यार यही घर में तो काम करी
0: तो काम करी।
1: हाँ। तो वो कहे जत्र आपा काम ने छोड़ता जावा आलस से अपना ऊपर चढ़तो जावे।
0: हाँ।
1: और पचे अपना लिए पानी के गिलास भरता भी
0: जोरावा लाग जाए। तो बैठे तो कहिए सास तो भाई ज्ञान आराम सु कि भाई चल अब तो बहू आ गई।
1: हाँ,
0: मैं कई काम करूं मैं काम करती चौकी को नहीं लागू। तरह तरह की मानसिकता हुआ
1: तरह तरह की मानसिकता हो तो आसान वेका सब काम करा था। और चे बीचे यदि छुट्टी वेती जो हस्बैंड भी आते हो।
0: हाँ।
1: तो 16 साल की उम्र में तो एक टाबरी होगी। हर प्रकार को शोषण विकास तो ही हो पचे तो मारपीट भी करवा लाग गई
0: यान मान ले भी आपा फिजिकली मानसिक और इमोशनली सभी तरह से
1: इमोशनली शारीरिक हर ऋतु शोषण और हस्बैंड तो उम्र परिपक्व नहीं ही तो वो भी नहीं सुनते
0: वो भी ना समझी हो
1: ना समझ हो और पचे माँ बाप भाई कहीं भी कहता या आसी है थू परो जावे कॉलेज या आसी है या वसी है
0: यानी तो। के मान ले कि रोज को कले को वातावरण ही बन जाता
1: हाँ
0: और पूरी गृहस्थी खराब ये यान देख ले ई वास्ते ही तो ई दर्द ने वो कही है कि टाबर अपने घर में अपनी माँ के लारे होते देखा है तो टाबर भी चोखो को नहीं हुआ बापे भी इफेक्ट पड़े
1: अरे बच्चों भी हर पल दरब तो रहे भाई भीत रहे
0: भयभीत रहे
1: वे नहीं यू डर लागे मारी माँ ने कटी मारी नहीं और फिर बेटी होगी तो और सब नाराज अगर है तो बेटी ने जन्म दी दो
0: सही बात है
1: दो साल की बेटी हुई पाचो दूसरो बेटो हो गयो और विकास साथ में व्यवहार बच्चों को बच्चों बनो रियो
0: ई वास्ते तू कही है आज यान को गीत लगान सुन रही है मैंने अब समझ में आयो है
1: अबे मैं काले ही विकी बात सुनी तो पचे मने तो कई पतो यो गीत भी थोड़ो मार्मिक है
0: भाई बिल्कुल सही कहे हो
1: तो कदी कदी कही है मन उदास होए ना सुनीता ये बात सुनो मारो मन तो उदास हो गयो
0: देखो आपा ज्ञान मान ले कि भाई आपा मोक्ष धाम आवा लोटा जद ज्ञान की विरक्ति छा जब आपा
1: हाँ बिल्कुल
0: ज्ञान के माहौल में आपा रवाना थोड़ी देर तो वाको इफेक्ट है तो आप अपने मानस पे और हृदय पे पड़े ही पड़े
1: अरे बिल्कुल कंचन तो मैंने वही बात याद आ रही विकी को विकी कई जिंदगी है घनी मुश्किल हुआ 9 साल तो सेन की दो पछे वा डिसीजन ले ली तो मैंने पियर भी कोनी जावा देता माँ बाप कहता माँ की छोरी आल तक नानी है तेरी उम्र कोई नहीं कदिक तो भेजो ही ना
0: कदिक तो भेजो
1: भेजे 2 दिन में पाचा बुला लेता
0: अरे घना जना तो कपड़ा भी कोनी देवे
1: हाँ
0: देखो खुद तो देवे नहीं पैरवा के वास्ते एक उम्र हुआ भी पहनवा करवा को चाव होवे
1: यही उम्र होवे जो खावा पीवा की पैरवा ओढ़वा की
0: हाँ और जचे भी
1: सही बात है
0: और भाई देखो रवे तो टाबर भी कही है सोसाइटी में ये वास्ते वाकी इच्छा भी वो एक दूसरे ने देख
1: बिल्कुल तो भी नहीं देता कोनी
0: देवे कोनी और पियर जावा को नहीं देवे
1: अनपियर भी नहीं जावा देवे तो बच्चे कई करे 2 दिन जावा दे नहीं भाई बस घरे काम है अबे नहीं रेवा दाका की अबे बने तो सबने आलस आ गयो अबे काम कौन करे
0: काम कौन
1: या है जो कर रही है सीधो काम मल रो है और इंसान ढलतो ढल जावे और काम भी सीख जावे
0: हाँ।
1: पर एक टाइम तो लागे ना
0: टाइम तो लागे
1: हर घर को सिस्टम अलग है
0: बस
1: तो 9 साल बाद सेन की दो पछे भी के कोई सखी सहेलिया विका पियर का रिश्तेदार विने सपोर्ट की दो कि तू कतरा दन सेन करी
0: हाँ भी मरो तो नहीं जावे नहीं सेन तो करनो अच्छो है थोड़ो सहन करो थोड़ो सो एडजस्ट करो वो सब तो ठीक है पर कहीं अति तो बुरी हुआ है
1: अति हो जावे विको अंत हो भी होवे अब 2 टाबर हो गया 2 टाबर के खावा पिया का ठिकाना नहीं विके कपड़ा का ठिकाना नहीं आदमी ने वैसे मुट्ठी में कर दी दो तो वो वैसे सुनी कोई नहीं
0: सुनी को
1: बच्चा पे भी जीव को नहीं तो बच्चे सबके ऊपर यूं थोड़ी जिंदगी चले और दिखवा में खूब रूपाली
0: और ज्ञान की भी होवे भाई वो रंग रूप का ही है भगवान बनाए डो है
1: वो सही है अब 14 साल की उम्र में विके शादी वेगी तो वह 5वीं 6वीं भाणन बस
0: सही बात है
1: ज्यादा पढ़ी भी कोई नहीं क्योंकि माँ बाप की परिस्थिति एड़ी ही कोनी
0: हाँ।
1: और अच्छो घर मल रहे हो पैसा वालो तो पढ़ना दीदी
0: बस कदे कदे वो भी तो लालच मार जावे कि अच्छो घर है पर अच्छो घर पाछे कई नाच न चावे वो तो पाछे पतो लाग गए
1: पाछे खबर पड़े तो भी तो भाई कई होशियार हो गयो भाई अच्छी नौकरी लाग गयो भाई डिसीजन ली दो क्योंकि कतरी बार भाई देखो विकास सामने भी बहन ने अशांति ससुराल में मारनो कुटनो भाई की भी वे शर्म नहीं राखी यदि पचे भाई क्यों माँ बाप ने भाई अभी बहन ने आपने नहीं भेजने नहीं तो ये पाचे भाणेजा भाणेजी की जिंदगी खराब हो जाए याने भी नहीं पढ़ाई या का ऊपर खर्चो नहीं और वहां भी सोचो कि आदमी भी अपनो नहीं है तो घर में रेवा को कोई
0: रेवा
1: मतलब
0: को
1: नहीं
0: है। मतलब
1: तो पाचे बात छोड़ दी दो और बड़ी मुश्किल हुई छोड़ो भी सरल नहीं हो वे
0: हाँ भाई कतो इमोशनली अटैचमेंट हो जावे
1: अटैचमेंट हो और ससुराल वाला ऐसे छोड़े थोड़
0: यान छोड़े नहीं हो और देख एक महिला ने तो कतरी इज्जत बेइज्जती को कतरो सोचा है
1: घनो सोचनो पड़े
0: कि भी लोग यान कही वो तो आपने ऊपर लेन देखा बेचारी
1: हाँ
0: कि भी लोग मने ही ओछी नीची बोली है मारे लिए यान की खबर दे ही
1: मारा छोटा भाई बहन का कई हो या कई कोई बेटी दे ही नहीं गई मारे बहन को ब्याह वेक नहीं वेक कतरो ही सोचे
0: पियर को ससुराल को अड़ोस पड़ोस को समाज को नारी की तो मैं यान कहूं कि धन्य जो एडजस्ट कर जावे।
1: सही बात है। तो भाई भी परन गयो, बहन भी परन गई, दो बहना ने एक भाई है।
0: हाँ।
1: पचे डिसीजन ले दो पचे। अच्छा। सबके अबे तू घबरा मत, माँ थारो सपोर्ट करा।
0: हाँ।
1: और तू छोड़ दे।
0: हाँ।
1: तो चल कंचन, टाइम हो गयो है एक गीत सुनवा को, पचे आप बात करा पचे आगे कई हो।
0: हाँ भाई बिल्कुल सही।
1: तो यो ही गीत सुना था, छोटी सी उम्र पर ना यो बाबू सा।
0: बहुत अच्छो गीत है, सही।
1: तो सुनता रहो,
0: मुस्कुराता रहो।
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM।

0: भाई वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। साथ साथ लारे लारे बहन भाई, देखो क्यान खेल रहे हैं टाबर, और पछे पढ़ना देवे दूर।
1: सही बात है,
0: तो
1: दूर पढ़ना देवे, फिर बाली उम्र में पढ़ना में, छोटी उम्र में पढ़ना में।
0: बाली उम्र तो क्यान की होवे। चल एक खेल खिलौनो ज्ञान
1: हाँ,
0: खिला दे,
1: गुड्डा गुड्डी को खेल वे जो वही टाइम पे तो यूं ही लागे।
0: बस ए, और वो आकर्षण कतरे दिन रवे।
1: वो तो जदी जमीन पे उतरा एक, वो क्या 4 दिन की चांदनी पछे अंधारी रात।
0: तो पच्छा पता लग गए कि भाई, और देखो ससुराल वाला या भी तो सुनवा के लिए तैयार नहीं हुआ है कि मैंने याद आ रही है।
1: हाँ अरे भाई क्यों अटे काम करना पड़ रहे जो पियर की याद आ रही।
0: काई बात
1: हाँ
0: बताऊं कि भी निजी भी अनुभव बताऊं तो मैं देखे, वो बात तो बिल्कुल सही है कि ससुराल वाला कोई भी यो नहीं मानना चाहे कि भी मैंने आज याद आ रही,
1: हाँ
0: या
1: सही
0: पियर
1: बात
0: की
1: है।
0: याद आ रही है, या हमारे कतरी बार तो ज्ञान को हुआ है कि पियर को नाम लेते भड़क जावे।
1: हाँ, सही क्यों कंचन, बिल्कुल एड़ो ही होवे है पियर को नाम तो। भाई जानी घर में जन्म लिदो जटा मोटा हुआ बटा की याद नहीं आई।
0: बैठे की याद नहीं आई। और वो अनुभव मैं एक हमारी टीचर को भी बता रही हूँ कि भाई हाँ, वो बतावा है कि भी मारे तो ससुराल में काई है एक दो बार की भी पियर को नाम ले दी दो तो बस मारे सास ससुर तो बात को तिल को ताड़ बना लियो। और जदे पाछे मैं भी कसम खाली सोगंद खाली कि कद्दे भी जाके आगे ना तो मैं बात करूं और ना ही कोई वाकू नाम लू
1: चर्चा
0: चर्चा
1: करो,
0: करूं।
1: सही बात
0: देखो
1: है,
0: भाई कतरो मन मारनो पड़े,
1: घणो मन मारनो पड़े भाई।
0: और
1: ये
0: वो
1: तो
0: तो शिक्षित नारी कह रही है,
1: हाँ, जो शिक्षित नारी तो अनपढ़ को बच्चे कई
0: तो
1: कहना,
0: अनपढ़ को तो
1: तो
0: काई
1: वाणी
0: हाल।
1: बेन का तो मना आश्चर्य होवे केड़े कम पड़ोड़ी है। तो विकल आरे हालत खराबी ही, और विक भी पियर थोड़ो दूरी हो। हाँ पर नहीं छेटी ही पैसा वाला देखन पढ़ना दीदी छोरी आराम करी बड़े वो दूर वो भाई छेटी वेन छोरी सुखी वेती वे तो आपने कही है तो छेटी भी दे दी दो तो घड़ी घड़ी कोई आ नहीं सके।
0: आ नहीं
1: पर
0: सका
1: अड़ोस पड़ोस का द्वारा रिश्तेदारी का द्वारा ठा पड़ जावे कि माँ की छोरी सुखी कोनी
0: सुखी को नहीं
1: तो
0: है।
1: पहली तो वह केती भी कोनी पछे केवा लागी भाई घणो ही होवे तो कहनो ही पड़े।
0: सही बात
1: और
0: है।
1: जदी भाई की माँ बाप की वे लोग शरम भूल गया पछे माँ बाप ही क्यों नहीं अपनी शरम नहीं है तो अबे आपने छोड़ो। तो घनी मुश्किल वाणी बेटी ने तलाक दी दो क्योंकि वे देवा ही तैयार नहीं भरण पोषण को कहीं भी कोनी दी दो।
0: बताओ।
1: भरण पोषण को कहीं नहीं दी दो, जदी भी ने जावा दी दो, दो टाबर ने क्या ले जाओ अटे नहीं राखनो। वे तो वहां के छोरा के यूं है एक दूसरी पढ़ना देवा पर या छोरी नटगी मारे कटे नहीं परन्नो। और भैया अबे ज्यादा पढ़ोड़ी कोई ना पचे भी ने पियर लाया वे ने पार्लर को काम सिखायो और सिलाई सिखाई।
0: सिलाई
1: का तू
0: सिखाई।
1: 6 महीना भूल जा कहीं नहीं माँ कह रहा खर्चो, तू 6 महीना थारा काम पे ध्यान दे। टाबर ही थोड़ा थोड़ा मोटा हो गया और वे क्यों टाबर पे भी माँ ध्यान देवा तू आछो पार्लर को कोर्स कर ले और सिलाई सीख ले
0: सिलाई सीख ले,
1: जो थाना अच्छो आ जाए वही करवा लाग जा जे।
0: बहुत
1: और पार्लर
0: बढ़िया।
1: को काम सीखो तो पचे कंचन पार्लर में तो चांदी चांदी आपने काम
0: आजकल
1: अजमो
0: तो घणो ही
1: छावे।
0: चल रही हो।
1: हाँ और ज्यादा पड़ोड़ी कोने पर देखो नाम हाम सब आवे और वह तो पार्लर को करे तो पार्लर
0: देखो
1: विके बढ़िया चालवा लाग्यो। धीरे धीरे धीरे पहले आईब्रो चालू की दी, आईब्रो तो आजकल हर कोई करावे है 20-20, 30-30 रुपया
0: गांव में
1: लेवे।
0: कूणा कूणा पे
1: हाँ
0: खुल गया।
1: और पचे भी ने बाने भी जावा की छूट दे दी थी थाने झट्टू ऑर्डर आवे बटे जाओ और काम करो।
0: सही,
1: तो अबे वाह वीके पार्लर को काम बढ़िया वीके
0: यानी
1: चाल गयो
0: अपने पैर पे खड़ी होगी।
1: खड़ी होगी।
0: देखो भाई नहीं तो अतरी कम उम्र के मायने पढ़ना देवे तो कतरो को टाबर को अभी तो इमोशंस कतरे हुआ अपने परिवार के प्रति और वाके प्रति, और ससुराल वाला सुने नहीं ज्ञान का अत्याचार हुआ है तो कतरो मुश्किल हुआ है।
1: खतरों मुश्किल
0: पर
1: हुआ
0: देख
1: है
0: भाई अबे तो कहिए बाल विवाह हो गया पूरी तरह से लगभग खत्म।
1: आज भी कंचन कटे कटे छाने छाने वेरिया।
0: हाँ वो तो हो रहा है।
1: हाँ अबे इको भी किदो बाल विवाह तो ठानी पड़वा दीदी या भी घणी
0: अच्छा
1: मोटी कोई ने उम्र में आज 50-55 साल की है। हाँ तो खानगी में किदो क्योंकि
0: सही
1: कटे
0: बात।
1: सरकार ने खबर पड़ जाई तो माँ बाप अनिल लालचू कर दी दो छोरी अच्छा घर में जा रही और ये भी खूब प्रलोभन दी दो ताकि छोरी ने यूं रहा का
0: न्यू
1: ताकि
0: रखा
1: छोरी ने
0: न्यू
1: यूं
0: रखा।
1: रहा का।
0: कबा में तो
1: तो
0: काई है।
1: हाँ तो असान ब्याह भी हो तो वे बेन जी रोता जा रहे कहीं भी देखो आज सुखी वे जाओ पर पहला दुख का दिन कदी कोई भूले को नहीं।
0: कोई भूले को नहीं, सही बात है।
1: तो वे रोता जा रहे सब बात बताई मारे साथ में एडो एडो हुआ। अब आज ये मस्त है पूरी रीतु तलाक हो गयो के भरण पोषण के 1 रुपये नहीं दे दो तो मान गया भाई मत दो शांति छावे
0: आपनी मतलब मेहनत बहुत रंग लावे।
1: रंग लावे। तो पचे भी ने लाग्यो मैं पार्लर को कैच कर सकू तो महीना 2 महीना सिलाई सीखन बंद कर दी दो पूरो फोकस पार्लर पे ध्यान दी दो और अच्छो सीख गई और विके बढ़िया चालवा भी लाग्यो और थोड़े है होशियारी है तो बोलता करता सब आ गयो।
0: सब आ गयो।
1: क्योंकि पैसा वाला घर में ब्याह भी हो तो वाके थोड़ी लैंग्वेज तो हाउस वे बहू ने भले गाली गलौज करी लोगा का सामने तो अच्छा बोली।
0: सही बात है, ओ बिल्कुल सही कही तू कि वाको कही है कि जो पिया वाला है वाको रहन सहन माँ बाप भी कई देख है रहन सहन देख ले वे और तो कही है कि भैया रहन सहन तो बनावटी आजकल सभी कन ऊंचाई रखवा की कोशिश कर
1: बस वो दिखावो ज्यादा हो
0: दिखावो ज्यादा हो हाँ। तो वास्ते कही है कि घनी बार तो पहचान में भी नहीं आवा कि मनख के मायने का ही है,
1: हाँ। सही है।
0: पहले तो कम से कम है जो यान मान ले कि भी छोटा तबका का मान लो कि ये होता तो कम से कम वो दिखता कि भी हाँ एक करेक्टर का भी ज्ञान हुई।
1: हाँ हाँ जो इंसान पहली कही है जो महीने हो वही बाने हो
0: बस
1: आज तो महीने कही अलग बाने कही अलग
0: माने कुछ अलग। हाँ
1: तो अबे वाकेरिक मैं अबे आराम में हूँ और पियर का बड़े ही घर ले ली दो किराया पे कनी भाई भाभी है भतीजा भतीजी है काले मन मुटाव है रिश्तो टूटे इका पेली वो क्या पानी आवा के पेली पाल बांध दो बढ़िया
0: पाल बांध दो।
1: हाँ
0: बिल्कुल सही करो भैया
1: तो समझदारी मुचाली।
0: हाँ हाँ तो ये बात से निभी गई
1: निभी गई और आज माँ बाप भाई बहन आवे सब राजी है बहन कचोरी मेहनत की दी और मेहनत तो ऊंची आ रही है और स्वाभिमानु जीवन जी रही है
0: स्वाभिमानु जीवन।
1: हाँ टाबर को खर्चो गामड़ा में रहवे अनिवास से ज्यादा खर्चो कोई नहीं पास पास में ऑर्डर आवे बाने परी जावे आ जावे छोरा छोरी ने तो माँ बाप ही हाचव लेवे भाई सपोर्ट तो करे जदी इस बच्ची कहीं भी कर सके
0: बस वो तो है ही भाई माँ बाप जान की कोई चीज नहीं हुए।
1: हाँ
0: तो जो दुख दर्द वाने महसूस हुए नहीं वो ओने नहीं हुए
1: नहीं होवे क्या माँ पापनी वे तो ही अपनी वे
0: अपनी हुए
1: जो कहा वे तो पापनी नहीं वे वे पर फिर भी दुनिया में केवे पापनी वे तो ही अपनी वे
0: तो ही अपनी हुए।
1: हाँ
0: अबे देख लो भी कोई बाहर के लोगा के वास्ते कोई कितनी सख्त हो कुछ भी हो पर माँ की ममता तो हुए ही हुए।
1: अरे हो गई है नारियल की नियान वे
0: वास्ते।
1: हाँ नारियल की नियान वे वे ऊपर कड़क वे पर अंदर सॉफ्ट वे वे
0: सॉफ्ट हुए
1: तो वहां कह रही अभी मैं अच्छो कमा भी लू बानू भी ऑर्डर ले लू और टाबर ने भी अच्छो पढ़ा रही हूँ। तो देखो भाई जीवन में कई भी तकलीफ आवे मान लो ये तो कम उम्र में पढ़ना ही और तकलीफ आई घना जना ने परिपक्व उम्र में पढ़ना आवे तो भी तकलीफ आवे
0: घनी बार आवे। अच्छा तो और थोड़ी सी एक यो समस्या है कि छोटो पौधो लगावा आपा तो कहिए कि जमीन में थोड़ो सो एडजस्ट हो जावे बढ़ जावे।
1: हाँ
0: एक यानी मैं बाल विवाह की बात को नहीं कर रही अठा है पर एक लगभग होती भी उम्र पढ़ना है तो है ना।
1: हाँ।
0: पर कहिए आजकल और ट्रेंड चल गयो भी कोई 30 की होगी कोई 32 की होगी
1: ओवर एज वेगी
0: वो ओवर एज होगी और वठे एडजस्टमेंट को कहिए कि बड़ो वृक्ष ले जान कठ प्रत्यारोपित करे नहीं लगावा आपा तो भूमि में एडजस्ट हुआ में थोड़ी सी मुश्किल हो जावे।
1: हाँ सही बात।
0: अब कहिए कि वाको नेचर वाको स्वभाव वाका विचार वो मुख्य हो जावे
1: वो कहवे के काचा हांडा पे घर छेटे पाका पे नहीं छेटे। एक परिपक्व उम्र हो जावे तो वह वणी माहौल में ढल जावे तो पछे भाई एडजस्ट और खुद में बदलाव करवा को बेबी नहीं भी मैं
0: मतलब अति परिपक्व भी नहीं होने आप यान नहीं कह रहे कि बाल विवाह को मतलब भाई वो ही है कि भी हाँ आप 20-22 ने भी बाल विवाह कह रहे वो नहीं है।
1: हाँ
0: बाल विवाह की जो आयु है वहां से नीचे नहीं होनी चाहिए।
1: हाँ नीचे नहीं होनी चाहिए और घनी ओवर एज भी नहीं होनी चाहिए 24-25 साल की उम्र में छोरिया ने पढ़ना दो जत्र छोरिया भण भी काटे और नौकरी भी लाग जाए।
0: सही बात है और
1: जो
0: वो
1: भी
0: तो...
1: कर वो छावे वो कर सके।
0: हाँ
1: तो चाल भाई कंचन अनिवास्ते में गीत सुन रही ही मार्मिक गीत पर अबे जावा को टाइम हो गया है।
0: तो गीत घणो चोखो लाग्यो भाई वो ही मैं भी सोची कि पहले इन्हें सुन लियो इको आनंद ले लूं पण कहिए मैं तो धूजनी चढ़ गई यहां से वो गीत
1: गीत एड़ो है ना जो पर चलो कंचन क्योंकि आपने लड़वा वाला कोई को नहीं पर जिम्मेदारी अपनी आपा समझ सका।
0: सही बात है जिम्मेदारी समझा जदे ही तो मैं आठा आ सका।
1: हाँ तो टाइम पे आवा और टाइम पे जावा ताकि घर वाला ही राजी और सब राजी
0: सब
1: श्रोता बंधु भी राजी
0: बिल्कुल ताकि आपा मिलता रहा
1: मिलता रहा। तो आप जे भाई राम राम
0: राम राम भाई राम राम।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।

माँ इस शब्द में दुनिया समाई है, प्यार की मूरत कहाँ किसी ने माँ जैसी पाई है। माँ वो जिसके स्पर्श से सारे दुख मिट जाए, माँ वो जो हमारी खुशी में हमसे भी खुश हो जाए। कितने लकी हैं माँ जो आसपास है, किसी की फरिश्ता बन साथ है, पर माँ हमेशा माँ है। माँ को ढेर सारा प्यार दें और याद करें तो मुस्कुरा के, ताकि माँ की स्माइल भी गुम ना हो पाए। रेडियो मधुबन करता है हर माँ को सलाम।

0: कोई कहता है कि माँ की तस्वीर दिखाओ, वो गोरी है, सावली है, लंबी है या नाटी है। मैं कहता हूँ उसका रंग माँ है, उसका कद भी माँ है, उसका पहनावा, उसका स्वभाव, उसकी आवाज, बस माँ जैसी है। आखिर उसने अपनी पहचान इस शब्द में ही तो समेटी है आज तक। उसकी व्याख्या कैसे करूं? शब्द समेट नहीं सकते उसकी ख्याति, वो मेरी माँ है। कहते हैं हर माँ एक जैसी होती है। अपनी माँ तो हम सब जानते हैं, और अपनी माँ और पापा की माँ से भी पहचान है हमारी, यानी कि हमारी दादी, हमारी नानी। पर क्या आप अपनी दादी और नानी की माँ को जानते हैं? वो कैसे रहती थी, क्या करती थी, स्ट्रिक्ट थी या नरम? उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, ना ही इंटरनेट। तो इस बार मदर्स डे पर हमने अपनी दादी और नानी से पूछा कि आपकी माँ कैसी थी। सुनेंगे उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं।
1: हमारे जमाने में वो टाइम मदर डे नहीं था, फिर भी मेरे को मालूम है न्यूली अभी जो चल रहा है, हमारे जमाने में मम्मी ऐसे स्ट्रिक्ट और ऐसे लीनियंट भी बहुत थी, लेकिन पापा की प्यारी थी और सबसे बड़ी थी भाई बहन में, तो ज़्यादा मेरा चलता था। और पापा जो भी कुछ चाहिए वो पापा के थ्रू मैं मम्मी को बोलती थी, बहुत लाडली थी। उन्होंने पूरा खानदान में चाचा बुआ सबकी लाडली थी, क्यों पहले ही घर में मैं आई थी, और वो टाइम बहुत अच्छी रिश्ते मेरे को पालना भी सबसे अच्छी मिली है। मेरी मम्मी का पूरनपोली और उंधिया सब भाजी में बनाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता था। ज़्यादा करके बीमार नहीं हुई, लेकिन वो तो है कि वो जमाने में बच्चे लोग के बहुत ख्याल करते थे, तो मम्मी दवाई दे देती थी। वो टाइम बोली हूँ ना, स्ट्रिक्ट भी बहुत थी और लीनियन भी थी, टाइम टू टाइम उसको सब चाहिए करके, ये टाइम में घर आ जाने का, ये टाइम में खाने का, ये टाइम में उठ जाने का, ये सब ऐसा स्ट्रिक्टनेस थी। बाकी पापा के साथ हम लोग खेलते थे, करते थे सब कुछ पहले से, और आज हैबिट हम लोग को वही पड़ा कि टाइम टू टाइम सब करना। बहुत अच्छी सुंदर। अभी मेरी एज 80 है। बिफोर ये जो जमाना था ना, वो टाइम बच्चे लोग माँ बाप का सुनते थे, आजकल के बच्चे लोग माँ बाप का सुनते नहीं है, इसलिए झगड़ा झगड़ी होती है। वो टाइम में नहीं था, पहले तो बच्चे लोग ने मम्मी के लिए इतनी अच्छी रीति जो माँ बोलती है वही करना है, लेकिन आजकल के बच्चे वो करते नहीं है, वो समझते कि हम लोग जो बोले वो पापा मम्मी करे। माँ बाप का सुनने का वो पहला है, और दूसरा है कि जो भी अपने कुछ भी गलती हुई, क्या माँ बाप की भी कुछ है, तो उसको समझा के माँ बाप को भी अंडरस्टैंड करने का। पहले जैसे माँ बाप भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, वही करने का है। लेकिन बच्चे लोग ने समझना चाहिए कि जो माँ बाप बोलते हैं वो सही है, वो बाद में उसको मालूम पड़ता है, जब भी एक्सपीरियंस होता है तभी, तो बिफोर माँ बाप को भी सुने, और ऐसा लगे तो प्यार से उसको समझावे कि देखो ये ऐसी बात नहीं, ऐसी ठीक करके, और आराम

मेरी मम्मी तो बहुत सीधी थी, बहुत मेहनती थी और हार्ड वर्कर थी, बहुत सहनशील भी थी। उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में लोगों का सहनी किया, किसी का किसी बात का जवाब नहीं देती थी और बहुत ही वो परिवार में भी बहुत वो अच्छी मानी जाती थी। कि जब मेरे पापा मुझे डांटते थे ना, तो मुझे लेकर के भागती थी कि कहीं पापा मार ना दे इसको, क्योंकि मैं अकेली बेटी थी ना माँ की, इसलिए हमेशा मेरी माँ मेरी मतलब किसी की पिटाई ना लगे इसलिए हमेशा मुझे बचाती रहती थी। मेरी मम्मी जब मैं बीमार होती थी तो वो मेरे को पैसे से बहुत ये प्यार था, तो इतना सारा जो कॉइन होता था ना वो ला के मेरे पास रख देती थी, और जब उसमें बिजी होती थी फिर वो नहाने खाने जाती थी, क्योंकि उनको छोड़ती नहीं थी ना, तो वो चली जाती थी पैसे दे करके, फिर वो जाती थी तो नहाना खाना करके फिर आती थी मेरे पास। वो बीमार होती थी तो उनको मैं अपने घर बुला लेती थी। उनको चाय बहुत पसंद था, अगर अभी वो चाय पिए एक घंटे के बाद फिर कोई आया चाय बनाया तो अगर पूछे थे मम्मी चाय पीना है तो हाँ, चाय बहुत उनको प्रिय था। और खाना उनको जो भी चाहिए गरम गरम चाहिए, तो ये जब मेरे घर आती थी तो मैं उनको पूरा ध्यान रखती थी। आज के समय के अनुसार जो मैं देख रही हूँ कि बच्चे माँ बाप को पूछते नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप का ध्यान रखना, जहाँ तक हो उनके अनुसार चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और जब आप बड़े हो जाएं तब भी उनका ध्यान रखना। जो आजकल देखते हैं लड़के शादी करके माँ बाप को छोड़ देते हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है कि माँ बाप को अंत तक उनका ध्यान रखना। माँ एक बहुत बड़ी सहारा होती है बच्चे के लिए, अगर माँ ध्यान ना दे तो बच्चे पता नहीं कैसे हो जाए, लेकिन कितना अपना एक एक क्षण अपने बच्चों के लिए वो लगाती है और बच्चों का ध्यान रखती है कि मेरे बच्चे अच्छे हों, मेरे बच्चे स्वस्थ हों, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ाई करें, उनका जीवन अच्छा बने, उनकी खुशी के लिए ही सारा समय वो देती है माँ। मेरी मम्मी बताए ना कि वो तो एक आदर्श माँ थी, वो मेरे लिए ही नहीं बल्कि किसी भी बच्चे को अगर देखती थी उसको ज़रूरत है तो एक माँ की तरह उनकी पालना करती थी, और हमेशा उनको ऐसा नहीं लगा कि मेरी दादी है ये मेरी नानी है, ऐसा नहीं लगा, एक माँ की तरह ही हर बच्चे को संभालती थी।

पहले जमाने में ऐसा था कि बहुत अन्य लड़कियों को तो बहुत कंट्रोल में रखते थे। पहले मैं अपने बता दी कि मैं कभी पिक्चर विक्चर भी नहीं देखती थी पहले, और हमारे जैसे मम्मी बोलती थी यहाँ बैठना तो यहीं बैठे रहते थे। लेकिन अभी नहीं है, अभी वो समय नहीं है। अभी तो जैसे लड़के लोग अभी तो अपने मम्मी पापा का कहना भी नहीं सुनते हैं, और हम लोग तो बहुत अपने मम्मी पापा के कंट्रोल में रहते थे बहुत पहले। पहले के समय तो था कि ये पिक्चर फिल्म आदि सब नहीं होते थे, ना मेकअप करते थे, ना कुछ नहीं, सिंपल रहते थे। डिसिप्लिन पे बहुत था, हम लोग डिसिप्लिन में पले हैं, और अभी डिसिप्लिन तो पूरा खत्म हो चुका है, अभी नहीं है वर्तमान में, पहले बहुत था। हाँ ऐसे तो होता था, मम्मी डांटती थी कुछ भी थोड़ा सा गलती होती थी, लेकिन पापा मना करते थे कि नहीं बेटी लोग को नहीं डांटना है, नहीं बोलना है, कि उन लोग तो पढ़ाई घर की है। वैसे तो खाना सभी अच्छा रहता था, सभी अच्छा बनाती थी, वही मैंने सीखा है अभी। मम्मी क्या जो खाना अच्छा बनाती थी वही मैंने अभी सीखा है, तो मैं घर पे वही बनाती हूँ अभी। वैसे मम्मी तो ठीक थी, हम लोग को पाल पोस के जैसे भी बड़ा किया। से वैसे गरीबी रेखा में वैसे थी, वैसे फिर भी माँ बाप ने हमारे, हम लोग 7 बहन भाई थे, उन्होंने पाल पोस के से बड़ा किया हम लोग को। आप लोग मम्मी पापा जो बोलते हैं, अभी जो डिसिप्लिन में चलना चाहिए अभी के बच्चों को, तो वही बेटर रहेगा। जो मम्मी पापा कहें वही पढ़ाई करो या कुछ भी कहो, उनके बोलेंगे वही में, उसी में चलना चाहिए।

मेरी माताजी बहुत अच्छी थी, मेहनतू थी, होशियार भी थी। हम तीन छोटे छोटे बच्चे थे, वो इतने बच्चों के साथ रखते भी उसने सिलाई काम 4 साल किया, डिप्लोमा किया और गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दी। घर में बैठे भी सिलाई काम करती थी और अपना खर्चा आनंद से हम लोग को चला के आनंद से रखती थी। हमारी शादी वादी सब उसने ऐसे ही किया उसमें ही, और पिताजी भी सर्विस करते थे लेकिन इतना पहुँचता नहीं था, तो ये भी हमारा काम हो जाता था। बहुत बिजी थी मेरी माता जी, सब सुबह काम करके खाना पका के सब काम निपटा के क्लास में जाती थी, सिलाई क्लास में। शाम को आते आते सब्जी लेके आती थी और शाम को फिर खाना पका के हमें खिलाती थी। फिर रात को 10 बजे या 10:30 बजे तक वो मशीन का काम करती थी, फिर बंद करके सोती थी। घर का काम के लिए हमें सर्वेंट रखा था वहाँ, तो घर का काम बर्तन है, फिर झाड़ू है, वो तो कर लेते थे। छोटे छोटे बम्बई में थे तो कर लेते थे, लेकिन बर्तन के लिए और कपड़ा सुखाने के लिए सर्वेंट था, वो करता था। सुबह सुबह 5 बजे माँ कपड़ा धो लेती थी हमें। टाइम तो थोड़ा थोड़ा अपना काम करते करते, सिलाई काम करते करते टाइम देती थी, बात करती थी हमारे साथ, कुछ सिखाती थी, कुछ बताती थी। बहुत अच्छे अच्छे मेरे लिए फ्रॉक भी तैयार करती थी सिलाई काम सीखते सीखते, कि बहुत अच्छा आता था उसको। होशियार भी बहुत अच्छी, 7 भी पढ़ी नहीं थी, 5 तक पढ़ी थी लेकिन 7 का सर्टिफिकेट लेके गवर्नमेंट एग्जाम दी थी उसने। तब तो मदर्स डे का इतना फेमस भी नहीं था, अभी फेमस हुआ। तब तो हम छोटे थे, तो आज मैं वो भी 74 ईयर्स की, तब मदर्स डे कहाँ कोई सेलिब्रेशन करता था। छुट्टियों में स्कूल में जाती थी, जब छुट्टियों होती थी तो मैं खाना में ही बनाती थी, और शाम के टाइम भी कुछ चाय पानी बनाना है वो बना तो मैं सब कर देती थी मम्मी को। मम्मी मशीन का काम करती थी, मैं उसके लिए थोड़ा कुछ जरूर पड़ेगा काम बताती थी। हाँ मनाती थी, बच्चे है वो है, मैं उसको समझा दूंगी ऐसे पापा को बोल देती। वो मम्मी काम करते करते भी मेरा ख्याल भी रखती थी, मुझे जो कुछ अभी मुँह खराब हो जाता है, बुखार आता है, तो कुछ भाता नहीं था तो कुछ भी बना के खिलाती थी। मेरी फूफी भी हमारे साथ थी, फूफी भी मेरा ख्याल रखती थी। हम लोग पहले बा बोलते थे, मम्मी नहीं बोलते थे, बा बोलते थे। हम 6:30 बजे स्कूल से आते थे ना, तो हम भूखे हो जाते थे, तो तैयार रखती थी हमारे लिए खाना, और घर में केला भी रखती थी क्योंकि सुबह को नाश्ता नहीं करते थे हम लोग, 2 केला खा लेते थे, तो केला ला के रखती थी। 10 बजे खाना खा लेते थे, खाना खा के फिर तैयार होके स्कूल में जाते थे। मैं शादीशुदा थी और डिलीवरी हो गई थी, छोटा बच्चा था, तो छोटा बच्चे के लिए मेरे को प्रॉब्लम होता था, लेकिन माँ समझा बुझा के मेरे को बहुत अच्छी तरह से बच्चे को संभालने के लिए बताती थी, और मेरा ख्याल भी रखती थी समय समय पर, और अपना काम भी करती थी, सब कुछ करते भी, संभालते भी, अपना काम भी कर लेती। मैं अपनी मम्मी के लिए यही कहूँगी कि मेरी मम्मी बिजी थी हर घर काम में, बाहर का काम में, मेरे पिताजी को, बच्चे को, सबको हाथ बटाती थी। तो ऐसे ही हमें मौज शौक तो सब करते ही है, लेकिन मौज शौक में हमें इतना कुछ मिलता नहीं है, लेकिन दूसरे को खुशी देने में जो मिलता है ये बहुत बड़ी बात है, कि बच्चों को, पति को, घर वाले को, दूसरे को खुशी देती है, वो बहुत बड़ी बात है। हमारी मम्मी के लिए हमें यही करना चाहिए कि मम्मी जो चाहती थी कि मेरे बच्चे ऐसे बने वैसे बने, वैसे हमें ही बनना है। मम्मी में सहन शक्ति बहुत थी, हमारी फूफी, मेरी दादी सब साथ में रहते थे। पहले तो बड़ों का स्वभाव बहुत कड़क होता था, तो भी मेरी माँ सहन करती थी, वैसे हमें ये सिखाया भी, बेटा सहन करना है सबका, सहन करेंगे रहेंगे तो आगे और अच्छा होता है।

बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, आज से समझ लो 50-60 साल पहले की बात बताती हूँ। मेरी मम्मी बहुत मुझे साधारण रूप में दिखाई दी, बहुत खूबसूरत, नाटी, 5 फुट की और देखने में सुंदर, गोरी और गाना वाना भी गुनगुनाती रहती थी, काम करती रहती थी। और शौक उनको बहुत था, बहुत बड़ा घर था और उनको तरह तरह के शौक, घर को सजाने का शौक और उससे भी ज्यादा बाहर का जो एरिया था उनको सजाने का बहुत शौक था। माली को रखा तरह तरह के, हर वैरायटी के पेड़ लगाना, गार्डन को सुंदर सजा के रखना, और अकेली ही करवाती रहती थी काम। उनको देख देख के मेरे अंदर ये सारे शौक अपने आप ही पैदा हो गए। और हमारे पापा हमारे संग नहीं रहते थे, वो बाहर रहते थे, 6 महीने में कभी आते थे, कुछ दिन रह के फिर अपने काम पे चले जाते थे। और हम 3 बच्चे और मम्मी, हम ही लोग सारे घर को चलाते रहते थे नौकर चाकर के साथ में। और

0: मम्मी ने बहुत ही अच्छे से सिखा दिया। मम्मी को अच्छी अच्छी पिक्चर देखने का भी शौक था, लेकिन साधारण सुंदर सीधी सादी पिक्चर देखने का, और गाना वाना भी कभी कभी गुनगुनाती थी। और उनको सिलाई बुनाई का भी बहुत शौक था, खाना बनाने का भी बहुत शौक था, और अपने आप को ठीक ठाक रखने का भी बहुत शौक था। एक उनकी बहुत अच्छी मुझे क्वालिटी याद आती है, कभी भी हम बोलते थे ना कि ये मम्मी आपकी चीज़ है ये वो, तो बोलती थी नहीं मेरा कुछ भी नहीं है। हम कहते थे आपने अलमारी में बंद करके रखा है, कहती ध्यान से देखो मैंने कुछ बंद नहीं करा हुआ, अलमारी खाली बंद है और उसमें ताला नहीं लगा हुआ, चाबी नहीं लगी हुई, देखो। सुबह स्कूल जाते हो, आके अपना काम करो, थोड़ी देर किसी को मिलना है अपनी फ्रेंड को जाओ, लेकिन याद रखना मेरी बच्चियों जब शाम को लाइट जलेगी तो घर आ जाना। लाइट घर में आके तुमने ही जलानी है, अंधेरा पड़ते हुए जैसे ही अंधेरा होता है तो जहाँ पर भी हो तो एकदम घर में आ जाओ। रात का खाना सब एक साथ खाते थे, दिन में तो स्कूल जाना। और मम्मी पापा को मैंने देखा सुबह सबसे पहले उठते थे मम्मी, हम लोग चाहे जल्दी खा के चले जाएं या बाद में खाएं, लेकिन मम्मी पापा नाश्ता एक साथ, जब पापा वहाँ होते थे तो एक साथ नाश्ता खाते थे। कभी उनकी लड़ाई नहीं मैंने सुनी जिंदगी में, कभी पापा जी मम्मी के ऊपर नहीं चिल्लाए, और कभी मम्मी ने आगे से जवाब नहीं दिया। अगर कभी पापा नौकर चाकर को कुछ बोल देते तो मम्मी को लगता था ये अच्छा नहीं, ये डर जैसे उनको लगता था कि ये जोर से बोल रहे हैं, तो इशारा करती थी भाई धीरे बोलो। फोटो होती थी लगी हुई ड्राइंग रूम में गांधी जी की और स्वामी दयानंद की और विवेकानंद की, इसके अलावा हमने और अपने रिश्तेदारों की या इधर उधर कोई फोटो नहीं रखी। और मेरी मम्मी कभी अपने उनकी चार उनके देवर जेठ वगैरह थे, और उनकी तीन नंदें थी, यानी तीन हमारी बुआ और चार हमारे चाचा और एक हमारे पिताजी, और सब कभी नहीं देखा कि मम्मी किसी के सामने ऊंची आवाज में बोले, जबकि हमारी मम्मी अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा रईस फैमिली की थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि वो बहुत रिच हैं या उनके पास बहुत बहुत कुछ है उनको मिला हुआ, और इतने बड़े घर में हैं। एकदम साधारण रीति से रहती थी और बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत डिसेंट, हर तरह का उनका खाने पीने बनाने में अच्छे से अच्छा खाना बनाना, अच्छी से अच्छी वो मिठाइयाँ भी बहुत सुंदर सुंदर बनाती। अपनी माँ के साथ भी ज्यादा वो बात नहीं करती थी, यानी हमारी नानी के साथ वो ऐसी बातें नहीं करती थी कि मेरे भाई ये बच्चे बड़े गंदे हैं या ये लोग ये नहीं करते, वहाँ पढ़ते नहीं या मेरी बात नहीं सुनते, या ऐसी बातें कभी नहीं करती थी। बस वो कहती थी देखो वो माली आया है, मैंने वो देखो वहाँ पौधा वो लगवाया है, मैंने उस क्यारी में वो फूल लगवाए हैं, और आज गाय ने देखो गाय के उसने इतना दूध दिया है, अभी मैं मक्खन बनाना है, मक्खन बना के फिर मैं घी बनाऊंगी और फिर मैं इसको ऐसे खाऊंगी पंजीरी कैसे बनाते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें किया करती थी, कभी हमने सुना ही नहीं कि वो पड़ोसियों की बुराई कर रही हो या किसी की भी बुराई कर रही हो। कभी चांटा तो किसी को उन्होंने मारा ही नहीं होगा, मेरा भाई जैसे शैतानी कर रहा, पढ़ नहीं रहा, पढ़ने में वो कुछ उसको ज्यादा, उसका आउटडोर में बहुत शौक था, साइकिलिंग करना इधर उधर वो सारे ऐसी चीजें, पढ़ाई में ज्यादा वो नहीं था। लेकिन मम्मी ने कभी नहीं डांटा, आएंगे ना तेरे पापा जी तो मैं उनको बताऊंगी कि तू पढ़ता नहीं है ठीक से।
1: कमाल है ना, न पड़ोसियों से बैठकर बातें करना, नियमों की पक्की, कर्मठ और सुपर टैलेंटेड थी दादी नानी की माँ। वैसे माँ किसी भी शताब्दी किसी भी युग की हो, एक बात कॉमन है, जानते हैं क्या? उसका प्यार, बेहिसाब प्यार, जिसे सिर्फ आज नहीं बल्कि हर दिन सलाम करते हैं हम। और जो प्यार दे या हम पर ममता बरसाए, फिर चाहे जो भी रिश्ता कहलाता हो, वो माँ का दर्पण है। इसीलिए हम सब के पास माँ है, किसी के पास माँ के रूप में, तो किसी के पास पापा, दादी, नानी, दोस्त या चाची, मासी, किसी भी रिश्ते के रूप में। मजा आया ना आज अपनी दादी नानी की माँ को जानकर। कभी कभी अपनी दादी नानी से भी पूछ लिया करिए उनके बचपन की कहानी, जानने को बहुत कुछ मिलता है और सीखने को भी। आखिर माँ हर रूप में खुशियों का खजाना है। तो दोस्तों, आप सभी की जो माँ है या माँ का फर्ज किसी और रिश्ते के रूप में अदा करते हैं, तो उन सभी को रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: हाँ छोले भटूरे, अरे वाह आज फिर से मजा आ जाएगा आज खाने में। तो तू बता तू क्या लाया टिफिन में?
1: मैं तो बिस्किट और नमकीन।
0: बिस्किट और नमकीन? तू तो रोज यही लाता है, तेरे पापा को खाना नहीं बनाना आता क्या?
1: माँ को आता था बहुत अच्छा, पर अब माँ नहीं है ना।
0: अरे यार मेरा टिफिन तू खा, मेरा टिफिन तेरा टिफिन है और मेरी माँ तेरी माँ है और मैं हूँ ना तेरे साथ हमेशा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है। दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित ना रहे। हर माँ को और उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: आज मदर्स डे है, जिसे हम मई के दूसरे रविवार को हर साल मनाते हैं। तो सबसे पहले तो विश्व की सभी माओं को आज के दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मुबारक हैं। और ये दिन माँ का हमारे जीवन में क्या योगदान है उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम मनाते हैं। माँ ही हमें जीवन देती है, माँ के गर्भ में ही शिशु का सिंचन होता है, माँ ही हमारी प्रथम शिक्षक है, माँ ही हमारी प्रथम दोस्त होती है, माँ ही हमें संस्कार देती है अच्छे या बुरे। यानी माँ जैसा आचरण करती है वैसा ही बच्चा अपने जीवन में बनता जाता है। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और माँ हमारे लिए अपने सभी खुशियों का त्याग करती है, अपने सपनों का त्याग करती है। बच्चे के लिए वो रात रात भर जागती है, अगर वो बीमार है तो दिन रात वो उसकी सेवा में लगा देती है। फिर चाहे वो काम करती हो यानी ऑफिस जाती हो, चाहे वो गृहिणी हो, लेकिन वो कभी कोई बहाना नहीं देती, और इसलिए माँ का ऋण हम नहीं चुका सकते। माँ के लिए मैं कहूँगी कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। एक बार ऐसे ही एक बच्चा था, तो माँ ने उसे कुछ काम कराए, उसे दूध मंगवाया, उसे कुछ सब्जी मंगवाई, उसने घर की चीज़ों को ठीक करने में माँ को मदद की, कुछ रसोई में मदद की। तो उसने उसको लिखा एक पेपर पर कि हर एक काम का इतना रुपया और कुल इतने रुपये, और माँ को दे दिया कि माँ आपने मेरे से काम कराया उसका इतना पेमेंट है। तो फिर माँ ने उसी के नीचे लिखा, तुमको 9 महीना गर्भ में रखा, नो चार्ज, तुम्हारी दिन रात सेवा करती हूँ, नो चार्ज, तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाती हूँ, नो चार्ज। तो माँ ने जब वो लिखा और फिर लिखा कुल नो चार्ज, तो बच्चे ने उसको पढ़ा तो बच्चे को समझ में आ गया, और फिर उसने नीचे लिखा इंडेप्टेड फॉर फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए माँ मैं आपका ऋणी हूँ। तो माँ का ऋण बच्चा कभी भी नहीं चुका सकता है, और माँ हमेशा ही हमारे साथ खड़ी होती है, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम सुखी हैं, चाहे हम सही हैं या हम गलत हैं, मुश्किल वक्त में हम माँ को ही याद कर रहे होते हैं ना, माँ के सिवाय हमें और कोई याद नहीं आता है। तो आज का जो दिन है वो हम केवल फूलों को दे करके मदर्स डे ना मनाएं, ना फूलों का गुलदस्ता हम दे दें माँ को या कोई गिफ्ट हम दे दें, नहीं, इस तरह से मनाने का दिन नहीं है, लेकिन उनकी सेवाएं जो वो हमारे जीवन में हमें प्रदान करती रही हैं उसके लिए हम उनको स्नेह दें, सम्मान दें और सदा ही उनकी सेवा में तत्पर रहें। कई बार देखने में आता है कि जब माँ वृद्ध हो जाती है तो कई बच्चे माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या कोई तीर्थों पर आश्रम में छोड़ देते हैं। तो जो उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किए, अब जब उन्हें आवश्यकता है तो फिर हमें भी उनके लिए हाजिर रहना चाहिए, यही हम कहेंगे सच्चा मदर्स डे मनाना है। तो हम कभी भी उनको दुख ना दें, जैसे वो हमारे दुख दूर करने के लिए सदा तत्पर रही हैं। तो मैं कहूँगी कि कोई एक दिन की बात नहीं, पर हर दिन हमारा मदर्स डे होना चाहिए, हर दिन हम उनके प्रति अपना आभार मानें। तो सभी को फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति।

0: बुआ ऑल ओवर सुनाओ ना।
1: हाँ बेटा। जू जू जू जू जू जू जू जू जू।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है, दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित न रहे। सभी मम्मीज को, हर उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: सभी सुनने वालों का स्वागत है। वेलकम वेलकम। और मेरा फेवरेट्स प्रोग्राम जो आपको भी पसंद आता है, जिसका नाम है जुनून। और हम लोग मिलते हैं किसी न किसी जुनूनी से। इस बार हमारे साथ है युवा जुनूनी, जिनका नाम है सत्यनारायण राव। आप आते हैं अजमेर जिले के सरवाड़ ब्लॉक से। सरवाड़ एक पंचायत समिति है, अजमेर से कुछ दूरी पर है, अजमेर शहर से। और जाना जाता है वहाँ के की फेवरेट दरगाह के लिए। दरगाह के बारे में तो हमारे साथी बताएंगे, सत्यनारायण जी जहाँ से आते हैं। सत्यनारायण जी आप क्या करते हैं, थोड़ा बताएं अपने बारे में।
1: जी, मैं एक संस्था में काम करता हूँ और
0: जी
1: जिस संस्था का नाम है समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र तिलोनिया।
0: जी
1: तिलोनिया एक गांव है, छोटा सा गांव है, जिसमें एक संस्था है। इस संस्था में मैं काम करता हूँ और मेरा मुख्य काम यह है कि मैं कठपुतलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, गाने के माध्यम से लोगों को मैं जागरूक करने का काम करता हूँ और गांव-गांव में प्रचार प्रसार करने का काम करता हूँ, जो कि जितनी भी सरकार जो स्कीम्स बनाती है उसके प्रति मैं लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया। तो आपकी जो कठपुतलियां हैं, वो कौन कौन सी कठपुतलियां आपके साथ अभी आप लाए हैं?
1: जी, तो एक 8-10 तरीके की अलग अलग कठपुतली है, बनी हुई है। एक तो है कि ग्लव्स पपेट हुआ, दूसरा पपेट स्टीयरिंग पपेट हुआ, और एक लाइफ साइज पपेट हुए, मास्क हुए और
0: जी
1: एनिमल मास्क हुए,
0: जी
1: जोखिम चाचा भी है और बेम्बू पपेट भी है। जो कि स्ट्रिंग जो वाला जो पपेट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो वो स्ट्रिंग वाला पपेट वो राजा महाराजाओं की हिस्ट्रीज के लिए काम में लिया जाता था, जिस जमाने में राजाओं का राज था उस जमाने में। बट हमने इस वाली पपेट को चलाना बनाना छोड़ा और फिर हम ग्लव्स पपेट पे आए, क्योंकि वो ऑलरेडी पावरफुल लोगों की पपेट हुई। और आज की हमें हमारा हक, हमारा अधिकार क्या है, भारत का संविधान क्या है, तो तमाम सारे इश्यूज को कहने के लिए हमने ग्लव पपेट को अडॉप्ट किया।
0: जी
1: और जिसमें बच्चे की पपेट बनी हुई है, महिलाएं की पपेट बनी हुई है, पुरुषों की पपेट बनी हुई है, और इन पपेटों के माध्यम से हम अपनी सहज भाषा में, गांव की भाषा में सरकारी योजनाओं को कैसे उतारे और कैसे समझाया जाए, तो इस वाली पपेट को हम गांव गांव में लेके जाते हैं और शोज के माध्यम से, गाने के माध्यम से हम गांव में प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं।
0: बहुत बढ़िया। तो जोखिम चाचा जो आपके साथ हैं, ये क्या जोखिम लेते हैं, इनका क्या जोखिम है? जी
1: इसका जोखिम चर्चा इसलिए है क्योंकि इसके सामने चाहे वेल क्वालिफाइड लोग बैठे हों या गांव का आदमी हो, चाहे 500 आदमी है चाहे 100 आदमी है, ये आसानी से उन लोगों के बीच में अपनी बात को रखता है
0: जी
1: और इसको कोई सिक्योरिटी गार्ड की इसके कोई जरूरत नहीं है।
0: जी
1: इसलिए
0: जी
1: इसका नाम
0: जी
1: इसलिए इसका नाम जोखिम चाचा रखा हमने।
0: अच्छा, इसलिए जोखिम लेता है। इनका
1: जी
0: जोखिम यह है कि कोई भी अपनी किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं और वो इनको पीट सकता है, ये इनका जोखिम है।
1: जी
0: जी, और आजकल भावना नाम की जो बेटी है वो बड़ी बड़ी कमजोर, उसको कुछ कुछ खिलाता नहीं है तो वो तुरंत आहत हो जाती है ना।
1: जी जी जी
0: उनकी तो सामने वाले की तो भावना आहत होती है और वो हमारे को शारीरिक रूप से आहत करने के लिए तैयार हो जाता है। खैर, तो ये तो हुई सरकास्टिक बात। आपके पास एक ग्लव पपेट है जिसको आपने बोला पावरफुल लोगों की पपेट है, ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि वो वाला जो पपेट है वो, उसमें अमर सिंह राठौड़ का पपेट हुआ, उसमें दुर्गादास जी का पपेट हुआ, और उसमें महाराणा प्रताप के पपेट हुए, और भी राजा महाराजा की पपेट जिसका मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन उन लोगों की पपेट हुई। तो वो पपेट जो है, ये पपेट इसमें अपने को, आज की अगर बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ कि पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, यातायात के साधन नहीं है,
0: जी
1: शायद मामला बैठता नहीं, क्योंकि वो एक राजा महाराजों की पपेट हुई,
0: ग्लव्स
1: इसलिए मैंने बोला कि वो पावरफुल लोगों की पपेट हुआ।
0: पपेट का मतलब क्या किया, कहीं ग्लव्स इन्वॉल्व है उसको चलाने की प्रक्रिया में?
1: उसमें और इसमें, ग्लव पपेट में और स्टीयरिंग पपेट में ये फर्क है, क्योंकि वो वाला जो स्टीयरिंग वाला जो पपेट है वो लकड़ी और कपड़े की सहायता से वो बनता है, और वो धागे के माध्यम से और 10 अंगुलियों के कमांडिंग से उस वाली पपेट को हैंडल किया जाता है। तो वो वाला जो पपेट है उसको लिमिट ऑडियंस ही वाच कर सकती है, 50 से 100 लोग ही उसको देख पाते हैं। और ये जो ग्लव पपेट है इसको हम हाथ में पहनते हैं ग्लव्स की तरह, इसलिए इसको ग्लव पपेट बोला हमने। तो हाथ में पहन के, और ये रद्दी अखबारों से बनती है, अखबार के छोटे छोटे टुकड़े किए, पानी में डाला और 2-3 दिन गलने के बाद में उसको वापस निकाला, मूंगफली में कूटा, फेनोग्रिक पाउडर उसमें मिलाया और उसके बाद में ये वाला पपेट, तकरीबन 7 दिन के प्रोसेस में ये वाला पपेट कलर पेंटिंग होता है, प्राइमर कलर होता है, कलर वार्निश होता है, और कपड़े सिलाई करते हैं तो इसमें 7 दिन का प्रोसेस रहता है, ये वाला पपेट तैयार हो जाता है।
0: आपने बताया कि जो पपेट्स आपके कट पपेट से मतलब कठपुतलियां जो राजा महाराजाओं के समय ग्लव पपेट कहलाते थे, अब जो पपेट्स हैं वो नए पपेट्स आ गए हैं समय के साथ, जो समय से ग्रामीण परिवेश से नए पपेट्स निकल कर आए हैं, उसमें कौन कौन से पपेट्स आपके हीरो बने हैं? अब जिसमें मुझे किसी ने बताया कि नूरती बाई एक नई पपेट है जिनको अब हमारे लिए रोल मॉडल है, थोड़ा सा बताएं उनके बारे में।
1: एक मांगी बाई है, हमारे राठ है जिसको हम दादा की उम्र में हो गए थे दादा बोलते हैं जी। और एक नूरती माँ है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इसमें रामू काका हुआ, आरती जी हुई, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये वाला पपेट के माध्यम से, और ये जो पीछे वाला जो मेरे पीछे जो पपेट है इस पपेट में भी बहुत सारे अलग अलग करेक्टर बने हुआ है
0: जी। तो कोई आपका फेवरेट करेक्टर, और जब वो गांव में जाके प्रचार प्रसार करता है योजनाओं को लेकर, तो वो कैसे करता है? गीत के माध्यम से आप पेश कर सकते हैं छोटा सा गीत? कोई जब पपेट गांव में जाता है तो वो लोगों से वो करता है?
1: हमारा, हम जब टीम के जो साथी हैं वो स्टेज पर जब गांव में प्ले करने के लिए जाते हैं तो हमारा एक छोटा सा 4-5 फीट का एक स्टेज लगता है, उस स्टेज में ब्लैक कलर का पर्दा होता है, उसके हम सब लोग पीछे रहते हैं, और उसमें एक रामू काका के पपेट हुआ, उस वाली पपेट से हम गांव में जाते हैं तो हम हाथ में पहन के उसको नमस्कार बोल के उस गांव की भाषा में,
0: स्ट्रिंग्स के माध्यम से, राइट,
1: ग्लव्स पपेट के माध्यम से,
0: ग्लव्स पपेट के माध्यम,
1: ग्लव पपेट्स के माध्यम से। तो जी, मेरा नाम रामू काका हुआ, मैं एक गांव का किसान आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप हमारे इस बेफर कॉलेज के अंदर आए, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आप जानते हैं कि इसे बेरफुट कॉलेज क्यों कहते हैं? तो बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं साहब, नहीं जानते हम क्या है, तो कि बेरफुट कॉलेज इसलिए कि यहाँ पे ना कोई कास्ट बैरियर है, ना कोई जेंडर बैरियर है, ना कोई रिलीजन बैरियर है, और ना कोई इकोनॉमिकल बैरियर है, इसलिए इसे बेरफुट कॉलेज कहते हैं। तो यहाँ लोग काम करने के लिए आते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और सीखते सीखते फिर गाँव में काम करते हैं, इसलिए इसे बेरफुट कॉलेज कहते हैं। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट हुआ, आर्टिजन हुआ, कम्युनिकेटर हुआ, रेडियो जॉकी हुआ, सोलर इंजीनियर हुए, तो ऐसे करके इसको बेरफुट कॉलेज कहते हैं। ये रामू काका का मैसेज होता है
0: जी। तो मैं चाहूंगा कि कोई गीत के माध्यम से, किसी योजना को किसी गीत के माध्यम से जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो करके बताएं।
1: जी सर, अभी मेरे हाथ में रामू काका का पपेट पहना हुआ हूँ, तो उसके माध्यम से मैं अपने गाने के माध्यम से उस बात को रख रहा हूँ
0: जी।

तो फुटपाथ पर आबाद है, 100 में 70 आदमी सिर्फ हंग

0: बहुत
1: जैसे
0: बढ़िया, आपने दुष्यंत कुमार को पेश किया हमारे बीच में।
1: जी
0: जो श्रोता हम देर से जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे शो में। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8, और हमारे साथ है सत्यनारायण राव, जो कि एक कम्युनिकेटर है। अपने गीतों और अपने पपेट्री के माध्यम से आम जन को जागरूक कर रहे हैं। सत्यनारायण जी, जो मैं आपसे बात कर रहा था, आपके सरवाड़ और अपनी परवरिश के बारे में बताइए थोड़ा सा। और मैं भूल गया उस दरगाह का नाम जो आपके सरवाड़ में है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो श्रोता दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़े हैं।

0: वो जानना चाहते हैं आपकी परवरिश और आपकी जगह के बारे में जहां से आप आते हैं।
1: हाँ जी सर, मैं अजमेर जिले में सरवाड़ के पास में एक छोटा सा गांव है गणेशपुरा, वहां का मैं रहने वाला हूँ। और जिस दरगाह की आप जो बात कर रहे हो वो अजमेर में है, छोटे भाई की दरगाह है सरवाड़ में।
0: जी
1: बड़े भाई साहब जो है ख्वाजा साहब, तो वो ख्वाजा साहब अजमेर के रहने वाले हैं और उनके जो छोटे भाई हैं वो सरवाड़ में है,
0: अच्छा,
1: उनका दरगाह
0: हाँ उनका नाम मैं भूल गया
1: सरवाड़।
0: हूँ, खैर उनका नाम याद आएगा तो बात करेंगे। खैर, तो आपके साथ जो जोखिम चाचा है वो कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं?
1: वो सरकारी योजना में तमाम सारी योजना, जैसे पालनहार हुआ, पीएम किसान निधि योजना के हुआ, बहुत सारे बुढ़ापे की पेंशन हुई, ये सब सरकारी योजना में ये काम करते हैं। हर सिर्फ जोखिम चाचा ही नहीं, उसके साथ में स्टरिंग पपेट हुआ, ग्लव्स पपेट हुई,
0: हाँ,
1: बेम्बू पपेट हुआ, ये सब उन्हीं के साथ में चलते हैं।
0: तो जब जोखिम चाचा किसी सरकारी योजना का प्रचार करते हैं थोड़ा सा वो गीत के माध्यम से प्रेजेंट करिए ना।
1: जी बिल्कुल जरूर। मैं बुढ़ापे की पेंशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बुढ़ापे की पेंशन में गाना गाता हूँ। अरे बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों, बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों, हकदार ने ओ हक पानो है, बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों। कटा सू अटकी कटा सू भटकी, पतोई को लगानो है, बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों। कागज कार्रवाई पूरी करा कर, कागज कार्रवाई पूरी करा कर, अरे जयपुर तक की दौड़ लगानो है, बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों। सेंटर कार्यकर्ता गवा गवा घूमे, सेंटर कार्यकर्ता गवा गवा घूमे, वासु भी बतलानो है, बुढ़ापा की पेंशन हक है आपनों। तो क्योंकि ये सहज भाषा में, गांव की मारवाड़ी भाषा में ऐसे गाने भी बनाए कि बुढ़ापा की पेंशन हक है हमारा, इस हक को हमें नहीं छोड़ना, इस हक को हमें पाना है।
0: जी, इस पूरी प्रक्रिया में मैंने एक पालनहार को लेकर भी आपका एक गीत सुना था, वो भी बड़ा अच्छा था, वो भी मैं आप सुनना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जो ग्लव सपेट जो कागज की वास्तव अखबार की लुगदी से बना है, अखबार की लुगदी जो है वो ये देखिए, जो लोगों तक सूचना नहीं पहुंचा पाया जो समाचार पत्र, उसको आपने गला के लुगदी बनाकर कठपुतली बनाकर और फिर लोगों तक जानकारी पहुंचाई, तो जहां पर समाचार पत्र फेल हो गए वहां पर आपकी पपेट्री काम आई। तो ये एक महत्व की बात है आपकी पपेट्री के बारे में। लेकिन मैं चाहूंगा आपसे कि एक पालनहार योजना को लेकर जो आपने एक शानदार गीत बनाया है वो भी आप हमारे रेडियो श्रोताओं को सुनाए। जो
1: जी सर, जरूर जरूर।
0: श्रोता हमें दुनिया के अलग अलग कोनों से सुन रहे हैं हमारे मधुबन रेडियो एप्लीकेशन के माध्यम से, या कहें कि देश के अलग अलग हिस्सों से, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पालनहार योजना ऐसे व्यक्तियों के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए है जिनके माता पिता दोनों ही जीवन में नहीं है, और सरकार जो है वो उन बच्चों के दायित्व लेती है उनके जीवन पालन को लेकर, और उनको हर महीने एक कुछ राशि उनके पालन पोषण के लिए दी जाती है। उस योजना का नाम पालनहार योजना है, और लोगों को इसकी जानकारी रहे उसके लिए प्रचार करना आवश्यक है। मेरा मानना है कि राजस्थान सरकार वो पहली सरकार है जिसने ऐसी इस योजना का शुरुआत की, और भी राज्य सरकारों ने ऐसी योजना का शुरुआत की होगी, लेकिन राजस्थान सरकार का ये एक नवाचार है और ये योजना कई सालों से राजस्थान में कार्यरत है और इसे लाखों लोगों को लाभ हुआ है। आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ हैं सत्यनारायण राव। सत्यनारायण जी, आप निकाल पाए हैं?
1: सुनाता हूँ सर।
0: जी
1: बिन माँ बाप का टाबर राखो कुण है जिम्मेदार, बिन माँ बाप का टाबर राखो कुण है जिम्मेदार, इकी राजस्थान में योजना लागू है पालनहार, इकी राजस्थान में योजना लागू है पालनहार। एकल नारी दिव्यांगता सु पीड़ित जो परिवार, अरे नाता गोता वाले माता हो कोई लाचार, योजना की बात ने ते घर घर पहुंचा तारो, योजना की बात ने ते घर घर पहुंचा तारो, सरकार का लोगा सु भी थे बतला तारो, बिन माँ बाप का टाबरा को कुन है जिम्मेदार, बिन माँ बाप का टाबरा को कुन है जिम्मेदार, इकी राजस्थान में योजना लागू है पालनहार, HIV सिल्कोसिस कुष्ठ रोग सु बीमार, माँ बाप ने पासी हो या उम्र कैद को भार, जरूरत वाला कागजा ने भी बनवा तारो, अरे जरूरत वाला कागजा ने भी बनवा तारो, जी की पात्रता हो भी ने थे लाभ दिरा तारो, बिन माँ बाप का टाबरा को कुण है जिम्मेदार, इकी राजस्थान में योजना लागू है पालनहार, बिन आसरा का टाबरा ने पाले जो परिवार, बिन आसरा का टाबरा ने पाले जो परिवार, बने स्कूल को सारो खर्चो देवे पालनहार, अरे ज्यादा जानकारी चाहो ई मित्र तैयार, जन सूचना पोर्टल थे तो देखो बारंबार, बिन माँ बाप का टाबरा को कुण है जिम्मेदार, इकी राजस्थान में योजना लागू है पालनहार। तो सर जी मैं अकेला नहीं गाता हूँ, मेरी टीम के 3-4 लोग हैं, वो सब हम
0: जी
1: इसको इसको म्यूजिक के माध्यम से पूरा,
0: जी
1: वो म्यूजिक बजता है हमारा, एक ढोल बजता है, हारमोनियम बजता है, और फिर उसके साथ में हम तीनों चारों लोग गाते हैं।
0: जी देखिए, टीम वर्क है और जीवन भी एक टीम है और हम भी आपकी टीम के पार्ट हैं। मधुबन रेडियो ने इसलिए आपको एक मंच दिया है कि आपकी प्रतिभा और आपके कार्य को लोगों तक पहुंचे और आपका जुनून जो है वो लोगों तक पहुंचे और लोग जान पाए कि हम किस प्रकार से कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही
1: जी
0: शानदार, बेहतरीन। और आपको ये जुनून कहाँ से आया सत्यनारायण जी?
1: मैं जब गांव में था तो गांव में मैं सिर्फ 8वीं पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद में गांव में मेरा काम ये था कि किसी के भी शादी हो गई तो उसमें ढोल बजाना, उसमें गाने गाना, और मैं मेरे ढोल के माध्यम से, मैं मेरे गाने के माध्यम से लोगों की शादी रचाता था।
0: जी
1: फिर उसके बाद में मुझे समय काम करने का मौका मिला, फिर मैं संस्था में इधर आया तिलोनिया बैरफुट कॉलेज के अंदर, तो फिर इसमें मुझे विशेष, इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज पे काम हो रहा है, लेकिन मुझे जो काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो संचार विभाग सेक्शन में काम मिला,
0: जी
1: और संचार विभाग में काम करने से मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और बहुत खुश इस मायने में हूँ कि भले ही इससे अलग दुनिया में मैं अगर होता तो शायद ज्यादा पैसे कमाता और भी, या कहीं ना कहीं ज्यादा और आगे कहीं जाता, लेकिन मुझे यहाँ काम करने से, मेरे कठपुतली के माध्यम से मुझे ये समझ में आया कि इंसानियत क्या है।
0: जी
1: आज मैं मेरी कठपुतलियों के माध्यम से ना केवल कि मेरी परिवार का आलन पालन भरण पोषण करता हूँ, मैं मेरी कठपुतली के माध्यम से गाँव में जाता हूँ तो सहज भाषा में पालनहार के पैसे बच्चों को कैसे दिलाएं, राशन कार्ड कैसे बनवाएं, आधार कार्ड किसी का नहीं बना हुआ तो उनको आधार कार्ड का कैसे बनवाएं, दिव्यांग लोग हैं उनका हम उनको कैसे सरकार से कैसे फायदे दिलाएं, तो ये सारा सब काम करने का एक हमें मौका मिला।
0: जी बहुत ही बढ़िया। तो हम चाहेंगे कि हम आपसे और तो बातचीत करते रहेंगे, कम्युनिकेशन और पपेट्री के बारे में और बारीकी से बात कर सकें आपके साथ। हम चाहेंगे कि आप हमें मांड या फिर जो भी आपको पसंद हो, राजस्थान के लोक संगीत से कोई भी गीत आप पेश करना चाहें तो आप पेश कर सकते हैं।
1: जी सर, जरूर। तो फोक सॉन्ग में केसरिया बालम
0: जी वो तो राजस्थान
1: जाना,
0: की, हाँ वो राजस्थान की पहचान है और
1: हाँ जी,
0: श्रोता दुनिया में अलग अलग हिस्सों से सुन रहे हैं, वो लाइक भी करेंगे इसको।
1: हाँ। और सर जी मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई, अगर हमें हमसे अगर कोई और कोई अलग सा कोई
0: जी
1: गाना सुनना चाहे, या आपके जो श्रोता, जो भी श्रोता लोग भी सुन रहे हैं, तो उनकी
0: नहीं,
1: क्या फरमाइश है सर उसके
0: राजस्थान
1: अनुसार?
0: की, राजस्थान का फेवरेट केसरिया बालम।
1: केसरिया बालम, तो केसरिया
0: जी
1: बालम गाए सर, आपका अगर इजाजत हो तो आपके
0: जी
1: श्रोता।
0: जी

केसर से पगदोवती

मैं तो पल पल पजवारू जी पधारूनी मार दे सजी केसरिया

0: बहुत ही शानदार, बेहतरीन। मन तो हो रहा है कि आपको गले लगा लिया जाए, लेकिन रेडियो की एक सीमा है।
1: जी
0: सत्यनारायण जी, आपने केसर कर दिया राजस्थान की इस भूमि को, और डेफिनेटली केसरिया पालम। जो लोग श्रोता हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं हमारा फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8, और आपके लिए हमारे साथ थे आज सत्यनारायण राव जी। नमस्ते श्रोताओं, मेरा नाम है शरद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। आप हैं हमारे फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन के साथ, और आपकी फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM। अरावली की सर्वोच्च पहाड़ियों और पहाड़ियों पे बिखरी हुई हरी घास और वनस्पति, एक स्पाइरल रोड, हमारे शांतिवन में फैली हुई एक शांति, एक सुरमई शाम। और हमारे साथ हैं हमारे सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव जो हैं वो सरवाड़ से आते हैं, अजमेर के एक हिस्से से, जो कि एक सब डिविजन भी है, एक ब्लॉक है, पंचायत समिति है। सरवाड़ बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे सत्यनारायण राव से, और वो जाने जाते हैं अपनी पपेट्री के लिए। पपेट्री की शुरुआत सत्यनारायण राव, आपकी जिंदगी में कैसे हुई?
1: जी, पपेट्री की शुरुआत सन 1981 से हुई विभाग की, पर मैं 2014 से पपेट्री सेक्शन में काम करने लगा। और मैं कठपुतलियों के माध्यम से, क्योंकि कठपुतली के माध्यम से इसलिए कि अखबार में जो लिखी हुई बातें थी, उस बातों को गांव में ग्रामीण लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, सरकारी योजनाओं को, अखबार में लिखी हुई बातें को, हमारे हक, हमारे अधिकार की बातों को, इसको अपने सहज भाषा में हम कैसे गांव में पहुंचाया जाए, उसको लेके पपेट्री का विभाग चालू हुआ। और

0: विभाग में मैं काम करता हूँ।
1: विभाग से मतलब है आप जिस संस्था में काम करते हैं उसके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं। आपने पपेट्री को ही क्यों चुना कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में? क्या आपको लगता है कि आज भी एक सशक्त माध्यम है संचार के लिए?
0: जी जी जी बिल्कुल, इसीलिए पपेट को हमने चुना। और क्योंकि ऐसे अगर हम गांव में जाके अगर बात करें, जन चेतना की बात करें, तो शायद लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन है क्या है। तो उस दृष्टि से मैं पपेट के माध्यम से जब जाता हूँ, तो उसमें चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे और पुरुष लोग हैं, चाहे वो देश में किसी भी कोने के रहने वाला हो, किसी भी पहनाव को पहनने वाला हो, हम अपनी सहज भाषा में पपेट के माध्यम से अपनी बात को कैसे रखें। एक तो ये माध्यम हुआ। और पपेट में क्या है कि पपेट में सर मतलब ये मतभेद नहीं है कि सिर्फ महिलाएं आएगी या पुरुष लोग आएंगे या बच्चे आएंगे, उसमें सभी लोग आते हैं पपेट शो देखने के लिए। और पपेट शो के माध्यम से, गाने के माध्यम से, गाने के साथ साथ पपेट शो के साथ साथ हम गाँव में क्या कमी खामी है उस बात को आसानी तौर से पपेट से रख देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पपेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।
1: जी, आपको क्या लगता है कि पपेट्री ने पिछले कुछ सालों में, या कहें कि कुछ कुछ कुछ सैकड़ों सालों में, अपने रोल में, मतलब कि अपनी भूमिका में क्या बदलाव किया है?
0: पपेट को लेके या अपना
1: हाँ, आप मेरे सवाल
0: अपनी
1: को मैं मेरे सवाल को स्पष्ट करता हूँ। पिछले कई वर्षों में पपेट्री ने अपनी भूमिका में क्या बदलाव किया है?
0: पपेट ने अपनी भूमिका में ये बदलाव किया है कि जैसे हम बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो जैसे मैंने पिछली बार में बताया था कि स्टेरिंग जो पपेट हुआ, वो स्टेरिंग पपेट राजा महाराजाओं के बखान के लिए, उनका हिस्टोरियंस के लिए काम में लिया जाता था। तो पपेट एक हमारा राजस्थान का एक पारंपरिक ट्रेडिशनल मीडिया रहा शुरू से,
1: जी
0: लेकिन हमने उस वाली पपेट को ब्रेक दिया। फिर उसके बाद में वही हिस्सा हमने दूसरी दृष्टि से अपनाया, एजुकेशन से, कि
1: जी
0: एजुकेशन का मायना क्या है, शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, भारत का संविधान हमें क्या देता है, हमारा हक हमारा अधिकार क्या है। तो तमाम सारे इश्यूज को कहने के लिए सहज भाषा में हमने ग्लव पपेट का इस्तेमाल किया। इसलिए पपेट, क्योंकि जब राजा महाराजों का एक दरबार लगता था, जैसे मैं बात करूं कि आज के तकरीबन 400 साल 500 साल पहले, ऐसे मैंने मेरे सीनियर लोगों से सुना है कि
1: जी
0: जिस जमाने में दरबार लगता था, उस टाइम में वह लोग अपनी बात को कैसे उन राजा तक पहुंचाया जाए,
1: जी
0: तो उसको पपेट के माध्यम से, कठपुतली एक खेल के माध्यम से, वो अपनी भाषा में राजा साहब को, क्योंकि आने जाने की अनुमति तो सिर्फ उन्हीं लोगों की थी जो कि अपने राजा के निकट जो लोग रहते थे, बाकी
1: जी
0: लोगों को पीने का पानी की समस्या है, कि आने जाने का साधन नहीं है, कि खाने के लिए अनाज नहीं है, तो ऐसी बातों को राजा तक कैसे पहुंचाया जाए। तो राजा को एक खेल के माध्यम से, कि दरबार आपके इसमें हम एक खेल दिखाना चाह रहे हैं, उस खेल के माध्यम से फिर वो उस बात को कठपुतली के माध्यम से रख देते थे कि सर आपने जो सुना है वो पर्याप्त नहीं है मेरे लिए, पीने का पानी नहीं है, या इधर में इस दरबार में, इस नागौर में या पाली में या बाड़मेर में या जैसलमेर में बात करें तो साहब इधर में अकाल पड़ा हुआ है, पानी की सिचुएशन अभी बहुत डाउन है। तो इस बात को राजा तक कठपुतली के माध्यम से उस टाइम में रखा करते थे। और आज हम उससे हट के ग्लव पपेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना क्यों जरूरी है, किसका राशन कार्ड बना हुआ है, किसका आधार कार्ड बना हुआ है, सरकार स्कीम्स बहुत अच्छी बना देती है परंतु वो बेनिफिट गांव में उतरा कि नहीं उतरा, तो तमाम सारे इश्यूज को कहने के लिए हम पपेट का अपनाया और पपेट के माध्यम से आज भी प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। तो ये हमारा भूमिका रहा और इसमें ये बदलाव आया।
1: जी निश्चित रूप से पपेट्री ने अपनी भूमिका ही नहीं बदली है, बल्कि अपनी रेलेवेंस, मतलब कि अपनी सार्थकता को भी बनाए रखा है। यह बात आपसे बेहतर तो कौन बता सकता है। तो आज के दिन जब आप पपेट्री को लेकर या पपेट्री के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, संचार हक अधिकार की बात करते हैं, वो हक
0: जी
1: अधिकार की बात क्या है? वो संविधान की बात है? वो संविधान की बात क्या है जो आप लोगों के साथ संप्रेषित करते हैं?
0: बात करते हैं, जैसे गांव में पालनहार के पैसे हुए हैं,
1: जी
0: कि पालनहार किनको मिलना चाहिए, कौन किन किन बच्चों को कितने पैसे मिलते हैं, पीने के पानी के ऊपर बात हुई, अस्पताल में दवाई नहीं है तो उस पे बात हुआ, सरकार योजना बनाती है, उस योजना का बराबर गांव में बेनिफिट उतरा के नहीं उतरा, जैसे पीएम किसान निधि योजना के पैसे हुए, बुढ़ापे की पेंशन के पैसे हुए उनका, वो योजना हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हम गाँव में जाके इन बातों को सहज रूप से रखते हैं।
1: जी, जैसे आपकी रंग बिरंगी पपेट्री जो है उसके
0: जी
1: पीछे नेपथ्य में एक साफ सुथरा पर्दा है सफेद रंग का, और वो
0: जी
1: कंट्रास्ट जब आता है तो बड़ा हमारी पपेट बड़ी निकल के आती है और संदेश बड़ा स्पष्ट समझ में आता है। तो ऐसे ही हक अधिकार की बात के पीछे एक संविधान का साफ सुथरा पर्दा है, या कहें कि एक आसमान है हमारे संविधान का, तो वो संविधान क्या है जिसकी बात आप लोगों तक लेके जाते?
0: संविधान की बातें, उसमें जो लिखी हुई बातें हैं कि हमें संविधान, तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं संविधान का एक छोटा सा हिस्सा बताऊंगा। जैसे संविधान की बातें, हम उसमें गांव में जाके आज बेटा और बेटी में भेदभाव है कि नहीं है,
1: जी
0: आज बराबर रूप से लड़का लड़की स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या आज भी समानता है कि नहीं है, क्या आज भी सब बराबरी से आजादी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं,
1: जी
0: बंधुता से रहते हैं कि नहीं रहते हैं, भाईचारा है कि नहीं है। तो इन सब बातों को लेके हम गाँव में, इन रूपों को लेके गाँव में जाते हैं और संविधान की बेसिक चीजों को हम गाँव में उतारने की कोशिश करते हैं कठपुतली के माध्यम से।
1: आप संविधान का कोई गीत हमें पेश कर सकते हैं?
0: संविधान का,
1: जी
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल,
1: जी
0: संविधान के ऊपर हमने गाना बनाया है हमारी टीम ने, उस टीम के एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूं, तो वो गाना मैं आपके सामने पेश करूंगा। वैसे हमारे 3-4 लोगों की टीम है, वो गाना बनाते हैं और गाना सुनाते भी हैं, तो
1: जी
0: उसमें से
1: आप
0: हम
1: चाहें तो जिन्होंने संविधान के इस गीत को लिखा है, आप चाहें तो उनके नाम ले सकते हैं मंच पे। जी
0: जी, रामनिवास जी, मैं जरूर लेना चाहूंगा, मेरे
1: जी
0: सीनियर साथी हैं रामनिवास जी, वो उन्होंने ये गाना बनाया है और वो गाना है जो मैं आपके सामने गा के पेश करूंगा सर।
1: जी
0: संविधान संदेश को, संविधान संदेश को दिल से अपनाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, रंग रूप भाषा और वेश रीत पंत हो भले अनेक, मत भेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सब नेक, लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश, हम न्याय समानता, हम न्याय समानता आजादी बंधुता लाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, हो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की, हो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की, हम संविधान के मूल को, हम संविधान के मूल को हर वक्त बचाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे।
1: जी श्रोताओं, जो हमसे देर से जुड़े हैं, हमारे साथ हैं सत्यनारायण राव जो सरवाड़ अजमेर जिले से आते हैं। आप न केवल एक जुनूनी हैं, एक युवा हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और आप संविधान, हक अधिकार और सरकार की योजनाओं को ले को पपेट्री के माध्यम से ग्रामीण भारत में लेकर जा रहे हैं। आपका जुनून काबिले तारीफ है, हम उसको सलाम करते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM, हमारे साथ सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव जी, आपने बहुत बेहतरीन गीत गाया, हम संविधान का मान बढ़ाएंगे। एक संविधान का एक गीत आपने हमारे श्रोताओं के लिए रखा। सत्यनारायण जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप पपेट्री को लेकर जो आपने एक ऐतिहासिक परिदृश्य हमारे सामने रखा, पपेट्री किस प्रकार से आज के दौर में अपनी भूमिका को बदल रही है परंतु सार्थकता भी लिए हुए है, ये कैसे संभव हुआ है?
0: पपेट्री, क्योंकि गांव में बहुत अनपढ़ लोग रहते हैं जो कि बहुत बेसिक उनको मालूम है कि, लेकिन उनकी नजर में कठपुतली क्या है? कठपुतली सिर्फ एक शो माना जाता है कि एक कठपुतली यहाँ, एक कठपुतली चल रहा है, एक कलाकार है, और कठपुतली एक तेजाजी के खेल के लिए भी यूज किया जाता है, अमर सिंह राठौड़ के खेल के लिए भी यूज किया जाता है, जगदेव कंकाली के लिए भी, खेल के लिए भी यूज किया जाता है। सिर्फ गांव में कठपुतली वहां तक ही सीमित है, लेकिन आज कठपुतली हक अधिकारियों की बातों को लेके, पीने के पानी के इश्यूज के ऊपर बातों को लेके, यातायात के साधन के ऊपर, सड़कों के ऊपर, तो आज कठपुतली गांव में सब लोग इस बात को समझने लगे हैं कि कठपुतली ना केवल एक मनोरंजन है, कठपुतली हमारा एक हिस्सा है, और कठपुतली के माध्यम से हम हमारे सहज भाषा में उस बात को रख सकते हैं। ये कठपुतली का एक बड़ा बड़ा
1: हाँ, एक मोटी समझ है। पपेट्री एक एंटरटेनमेंट ही नहीं, एक इंफोटेनमेंट का माध्यम भी है, कि
0: जी
1: इंफॉर्मेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है। तो ऐसी कोई घटना जो आपके मानस पटल पे हो और आपको याद हो, जिसने आपको न केवल आपको पपेट्री का या जीवन का साथी बना दिया और साथ ही पपेट्री के माध्यम से आपको भी एक पहचान मिली है इस
0: जी
1: समाज
0: सर
1: के अंदर और इस देश के अंदर,
0: जी
1: तो ऐसी कोई घटना जो आपके जीवन में हुई हो बताना चाहें हमारे बीच में?
0: सर, मैं एक गांव का रहने वाला आदमी हूं, और मैं एक हमारे गांव में छोटी सी प्राथमिक स्कूल है, वहां का मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर आज मैं मेरी कठपुतली के माध्यम से आज मैं बिरला यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बड़े बड़े कॉलेजों में जाता हूँ, और इस बात को लेके मैं सरकार तक गांवों की बातों को शेयरिंग करने का और सरकारी योजनाएं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का, ये मुझे बड़ा अवसर मिला। आज मैं, मेरे को खुद को नहीं मालूम था कि भारत का संविधान क्या है, लेकिन आज मैं बेसिक कि भारत का संविधान हमें क्या क्या चीजें देता है, इन बातों को लेके मैं आज गांव गांव में, शहर शहर में, वहां पे मैं जाता हूँ, तो मैं, मेरे जिंदगी में मेरे एक बहुत बड़ा, मेरी कठपुतली बहुत हिस्सेदार बनी मेरा, कि आज मैं उसी के माध्यम से, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरी कठपुतली लेके जाता हूँ और उसी के माध्यम से मैं अपनी बात को रखता हूँ।
1: जी, मैं इस मंच से आपसे ये जानना चाहूंगा कि न केवल आपने हक अधिकार की बात आपने की है, हक अधिकार के गीत आपने सुनाए, सरकारी योजनाओं को लेकर भी आपने प्रचार प्रसार किया, कोई ऐसा गीत हमारे बीच में रखना चाहें जो सामाजिक जागरूकता या सामाजिक चेतना गीत जिसे कहते हैं, जो लिंग भेद या जातिवाद को एड्रेस करता हो, हमारे देश में जो पसरा हुआ है उसको लेकर अगर गीत आपके बीच आप हमारे बीच रखना चाहें तो?
0: जी सर, बिल्कुल।

0: किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। क्या बात है सत्यनारायण जी, बहुत ही बेहतरीन गीत और बहुत ही शानदार प्रस्तुति। सत्यनारायण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण भारत में आज की जो समस्याएं हैं, जो आज के हालात हैं, हमारे देश में जो हालात हैं, उसको आप अपने संचार के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बेहतर तस्वीर बन जाए, क्योंकि तो जागरूकता ही सब हर चीज की दवाई है, और जागरूकता के माध्यम से ही आप कोशिश कर रहे हैं कि समस्याएं जो हैं हमारे देश में वो कम हो और हमारे समाज में प्रगति आए और हम एक प्रगतिशील देश के रूप में विकसित भारत बने। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के अंदर आपको क्या लगता है कि पपेट्री जो एक कला है, जो कई बार ऐसा लगता है कि बदलते दौर में और इस समय में वो लुप्त होती जा रही है ये कला, और युवाओं ने इसको उस आतुरता के साथ नहीं अपनाया जैसा कि पूरे विश्व में अपनी कलाओं को लोग हम सहेजने की बात करते हैं, तो आपका क्या मानना है इस बारे में?
1: कठपुतली धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है सर, क्योंकि जिस जमाने में राजाओं का राज था उस जमाने में तो ये पपेट चलता था, लेकिन आज तो राजाओं का राज भी गया, तो धीरे धीरे क्या कि कठपुतली और परंपरागत, जैसे उस जमाने में हमारे यहाँ पे जो लोकल देवी देवता है उन देवी देवताओं को भी प्रचार प्रसार करने में कठपुतली का बहुत बड़ा एक हाथ रहा, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ये कला खत्म होने के कगार पे आ रही है। तो अभी भी ये बहुत सारा काम बाकी है कि इस कला को कैसे वापस जिंदा रखें और इस कला से हम कैसे लोगों को एक मैसेज दें, इस बात पे काम करने का अभी भी जोर थे सर।
0: जी, नहीं, निश्चित रूप से हम लोग भी कुछ ना कुछ आगे की कुछ योजनाएं साथ में बनाएंगे, प्रयास करेंगे कि रेडियो मधुबन के मंच पर हम कुछ और पपेट्री संबंधित कार्यक्रम कर सकें और युवाओं तक इसके बारे में एक अवेयरनेस पहुंचे, एक समझ बने। हालांकि ये तो कला है, इसको तो अपने उंगलियों से ही सीखना होगा और गीत संगीत के माध्यम से ही इसको प्रस्तुत करना होगा। तो और आपको तो पता ही है कि हमारे समाज में कला को लेकर एक रुझान बना रहे युवाओं में, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। मैं चलते चलते आपसे कुछ मांड या फिर ऐसा फोक गीत जो मारवाड़ी में आप सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर। तो सर मैं अपनी ओर से ही रखूं या आप कुछ डिमांड करेंगे सर, थोड़ा डिमांड के अनुसार से जो आप चाहते हैं या?
0: एक गीत जो जेंडर को लेकर, या कहें कि एक दिखाता है कि पत्नी कैसे अपने पति से सीधे बात नहीं कर पाती है और उसको उसकी बहन को बोलती है, मतलब भाई सारा वीरा, तो भाई सारा वीरा भी सुना सकते हैं हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर जरूर।

जयपुर जाजो जी भाई सा रबीरा थे जयपुर जाजो जी लेता तो हाजो।

0: श्रोताओं,
1: हाँ
0: जयपुर की जो चुनरिया है, जो जिन पर एक हमें काम दिखता है, हमें गोटे का और साथ साथ उस पर डेकोरेटिव वर्क दिखता है, तो उस चुनरी की डिमांड हमारी गायिका जो है, हमारी जो इस गीत की जो जिसने भी गीत पहली बार गाया होगा वो डिमांड कर रही है अपने अपने हस्बैंड से, बट वो सीधा नहीं बोल पा रही है, तो वो कह रही है बहन के जो भाई हैं वो आते समय वो चुनरी लेकर आया। खैर, तो एक अच्छी बातचीत हमारे साथ रही, और एक पार्ट टू में आज हमारे साथ थे सत्यनारायण राव, और आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। और रेडियो मधुबन में ऐसे ही हम इसी प्रकार के जुनूनियों से मिलते रहेंगे, और जिनका जुनून अपने उरूस पर जब पहुंचेगा तो रेडियो मधुबन उनके साथ होगा। थैंक यू वेरी मच सत्यनारायण जी, आप हमारे बीच में आए और आपने एक समय दिया और पपेट्री की बारीकियों से हमें अवगत कराया। निश्चित से हम फिर से मिलते रहेंगे, आपकी ज्ञान और आपकी इस कला को आप सहेज के रखें और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर जरूर करें। थैंक यू वेरी
1: बिल्कुल,
0: मच
1: और
0: सर।
1: सर आपको भी और मेरे सभी श्रोता जो भी सुन रहे हैं उनको सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने आपका बहुत ही अमूल्य कीमती समय मेरे लिए निकाला, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
0: आपका आभार सत्यनारायण जी, नमस्ते।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भैया बताओ क्या क्या लगाना है?
2: देखो भैया, दो ढाइया समोसा ले आओ,
1: दो ढाइया समोसे, 5 रुपए की जलेबी। आप बोले भैया,
3: चाय जरूर बोले।
1: हाँ, चाय कितनी? चाय कितनी?
3: अरे भैया,
1: गरम में भी समोसे, आलू बंडे, भाजी बड़े हैं।
3: आलू बंडे,
1: आलू बंडे, टमाटर की चटनी के साथ।
3: गाड़ी क्या हो रही है?

0: भी चाचा भी आ गए। चाचा पाए लगी, काका आ जाओ।
1: खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे भाई, आज तो तुम लोगों ने महफिल ही जमा रखी है।
2: बस काका, आपकी ही कमी थी। अच्छा। वो भी पूरी हो गई।
1: अरे भाई, तो ये कौन सा गाना गा रहे थे यार तुम लोग?
0: अरे काका, वही वतन पे जो फिदा होगा।
1: अरे बेटा, इसका मतलब भी समझते हो?
0: अरे काका, थोड़ा थोड़ा मतलब तो हम समझते हैं, मगर पूरा पूरा मतलब आप ही समझाइए ना।
1: अरे बेटा, इसका मतलब है कि वतन पे फिदा होने वाला शख्स जो है वो कभी मरता नहीं है ना, और बल्कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ठीक बोल रहा हूँ ना? बेटा, हमारी यादों में, हमारे दिलों में, हमेशा के लिए। और बताएं, तुम लोगों ने ये वतन पे फिदा होने की बात कही तो हमें एक ऐसे ही शख्स का नाम याद आ गया, राव तुलाराम।
3: राव तुलाराम?
1: हाँ बेटा, राव तुलाराम, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी सेना के साथ मिलकर 1857 की गदर में हिस्सा लिया। अहिरवाल क्षेत्र का नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने।
2: हाँ हाँ काका, ये क्षेत्र तो हरियाणा राज्य में आता है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा।
2: काका, आप 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं।
1: हाँ।
2: तो एक बात बताइए।
1: हाँ बोलो बेटा।
2: क्या ये विद्रोह एक दिन में अचानक हो गया?
1: नहीं बेटा, हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों के कारण भारतीय सैनिकों और राजा नवाबों और बाकी रियासतों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया और वो 1857 की क्रांति के रूप में फूट पड़ा।
0: अच्छा, मतलब काका कि 1857 में पाप का घड़ा फूटा।
1: हाँ बेटा, और इसी क्रांति की आग में बहुत से लोगों ने आहुति दी और उन्हीं में से एक थे
3: राव तुलाराम।
1: अरे लो भैया, बस भी आ गई। अब बेटा पूरन,
2: अब
1: तुम जल्दी जाओ बेटा, ग्राहक आने वाले हैं।
2: हाँ पूरन, जल्दी निकल लो, नहीं तो अम्मा चालू हो जाएंगी।
4: पूरन, ए पूरन,
0: का है अम्मा?
4: ये निकल गए बेटा, आलू बंडा लगा दियो चार जगह।
0: आ रहे अम्मा। काका, हम अभी आ रहे हैं, अब कहानी आगे मत बढ़ाना।
4: अरे का उतांगो तांग दिन भर बैठी रहे, तो इतने आ जल्दी।
0: अब अम्मा, तुम ही तो कहती हो ना कि अच्छी बातें सुननी चाहिए, और काका की बातें तो तुम जानते ही हो।
4: हाँ, हम तो खूब ही जानत है काका की बातें। चलो जे लो, प्लेट लगा दो चार जगह जल्दी।
0: वैसे अम्मा एक बात कहें, अब तुम्हारे आलू बंडे में ना वो स्वाद नहीं है।
4: हाँ, वो स्वाद नहीं है अम्मा, तो ये सही बने हैं, जे आधा स्वाद चाहिए सो अपनी घरवाली से बनवा लाइयो।
0: अरे अम्मा चिल्ला का रही हो, हम तो मजाक आ कर रहे थे। है?
4: हाँ, जे हंसी मजाक अपनी घरवाली ऐसे करियो भैया। अब जल्दी जा, चलो टैंक पे लेट लगा दू चार जगह।
0: हाँ जात।
5: हाँ भैया, अरे बस यहाँ आधा घंटे और रुकेगी, जिसको जो भी खाना पीना करना है आधे घंटे में कर ले। अरे काका प्रणाम।
1: अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो, बड़े दिनों बाद आए बेटा।
5: काका, बहुत दिनों से यहाँ के फेरे ही नहीं लग रहे थे। जैसे ही इस तरह माना हुआ तो अम्मा के आलू बंडे और आपकी कहानियों का रस लेने आ गए हम।
1: अच्छा अच्छा,
5: वैसे काका आज किसकी कहानी सुना रहे हैं आप?
1: बस बेटा, बैठे बैठे आज इन लोगों को एक वीर देशभक्त राव तुलाराम की कहानी सुना रहे हैं।
5: अरे वाह काका।
1: हाँ।
5: अरे ये तो अपने एक बहुत कमाल की बात कर दी।
1: अच्छा।
5: ये तो अपने ही क्षेत्र के हैं।
1: अरे,
5: अरे
1: हाँ।
5: हरियाणा के।
1: हाँ, तुम भी तो वहीं के हो।
5: हम भी तो वहीं के हैं काका।
1: हाँ।
5: तो काका सुनाइए ना।
1: हाँ बेटा, तो भाई रामपुर रेवाड़ी के राव बहादुर निरपुर परिवार में पूरन सिंह और ज्ञान कौर के घर में 9 दिसंबर 1825 को नन्ही किलकारी जागी। नाम रखा गया तुलाराम। हाँ बेटा, तुलाराम नाम रखा गया। और बालक के तेज को देखकर कोई बोला,
6: पूरन सिंह जी, आपके घर में तेजस्वी बालक ने जन्म लिया है। ये बालक राज्य की सीमाओं को दुरुस्त करेगा और एक आदर्श शासन करेगा और मातृभूमि के लिए पूर्णतः समर्पित रहेगा।
7: पंडित जी, एक पिता और राजा के लिए यह खुशी की बात होती है। कि उसके घर ऐसा पुत्र हो जो रियासत की बागडोर अच्छे से संभाल सके।
6: जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये बालक इन सभी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा।
1: और बालक को फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी सभी भाषाओं का ज्ञान अपने घर में मिला। हाँ, हिंदुस्तान को विदेशी राज से मुक्ति दिलाने का सपना तुलाराम के मन में बचपन में ही जाग गया था। अब क्या हुआ कि नवंबर 1839 में पिता की मृत्यु हो गई तो रियासत को संभालने की जिम्मेदारी बालक तुलाराम के कंधों पर आ गई।
2: लेकिन काका,
1: हाँ,
2: बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति राव तुलाराम के मन में इतना आक्रोश क्यों था?
1: अरे बेटा, दरअसल अंग्रेजों ने राव परिवार की जागीर को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसकी वजह से राव तुलाराम उनके विरोधी हो गए। और जब 10 मई 1857 को क्रांति की अलग जगी तो राव तुलाराम अपनी आहुति के लिए कूद पड़े।
2: हाँ काका, एक सच्चा देशभक्त अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे स्वीकार कर सकता है?
1: और बेटा, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा छीनी अपनी जागीर पर दोबारा कब्जा किया।
2: काका,
8: गोपाल देव, हमें बहुत प्रसन्नता है कि सिर्फ 500 सिपाहियों को लेकर तुमने जी तरह अंग्रेजों को अपनी जमीन से भगाया है। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तारी यो वीरता देखकर हम आपको अपने राज्य का सेनापति नियुक्त करते हैं। थारे जैसा वीर पाकर अपना रेवाड़ी राज धन्य हो गया।
9: ओह, आप जैसा राजा पाकर सारी प्रजा धन्य हो गई महाराज। बोलो महाराज तुलाराम की जय। बस महाराज, मारी विनती है कि यूं जीत से उत्साहित होकर यही ना रुक जाना चाहिए, बल्कि यूं आजादी स्थायी रहे और राज्य की सीमाएं भी सुरक्षित रहें, इसके लिए अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारियां लगातार चलती रहना चाहिए महाराज।
8: हम इस बारे में पहले ही सोच चुके हैं गोपाल देव, और राज्य को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए सारी रूपरेखा भी हमने तैयार कर ली है।
1: और इस तरह अपनी खोई जागीर वापस पाने के बाद वो राज्य के निर्माण के काम में जुट गए।
8: गोपाल देव, प्रजा के कल्याण और सैन्य शक्ति के विकास के लिए हमें अपने राजस्व विभाग को दुरुस्त करना होगा।
9: महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार हमने 5,000 सेनानियों की बड़ी सेना तैयार की और हथियार बनाने का कारखाना भी बना लिया है। और महाराज, आपको जानकर खुशी होगी कि अपनी क्षमता का लोहा तो अंग्रेज भी मान रहे हैं।
8: क्या मतलब?
9: महाराज, ये देखिए, अपने कारखाने में बनी तोप की तारीफ तो इनके अखबार के इस अंक में भी छपी है।
8: क्या बात है गोपाल देव।
0: मतलब ये काका की तकनीकी मामले में भी वो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे।
1: हाँ बेटा, और इसी कार्य कुशलता को देखकर शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर ने उनकी मोरा और शाहजहांपुर के राजा बनने की पुष्टि भी कर दी।
10: हम राव तुलाराम की सियासती समझ बूझ की कद्र करते हैं और उनकी मोरा और शाहजहांपुर की तख्त पोशी की तामील करते हैं।
1: और एक बात बताएं बेटा।
0: क्या काका?
1: बेटा, सचमुच सियासत के मामले में ना तुलाराम बहुत दूरंदेशी थे। उन्होंने अपने साथ देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत वीर देशभक्तों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, और उनमें से एक थे कृष्ण सिंह।
0: कृष्ण सिंह?
1: हाँ
2: काका, ये कृष्ण सिंह वही है ना जो पहले अंग्रेजों की मुलाजिमी में थे।
1: हाँ,
2: और मेरठ के कोतवाल भी थे।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये वही थे और उनकी मुलाजिमी में थे। मगर एक बार क्या हुआ मालूम?
11: सरपंच जी।
6: नमस्कार कोतवाल साहब।
11: गांव वालों को सूचित कर दीजिएगा कि विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजी सरकार आपसे बदला लेना चाहती है, इसीलिए आप लोग यहां से कहीं और चले जाएं।
12: Order, order.
13: मिस्टर कृष्ण सिंह, तुमको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेल्प करने वाली गांव वालों को भगाकर तुमने गलत काम किया है. यू फील गिल्टी और नॉट?
14: नहीं.
13: गवर्नमेंट तुमको कसूरवार मानते हुए तुमको फंस से अलग करती है और विद्रोही गांव वालों के लिए भी सजा का ऐलान करती है.
1: और भैया, इस बात से कृष्ण सिंह अंग्रेजों के विरोध में खुल के सामने आ गए और कोतवाल पद से अलग होके राव तुला राम के साथ हो गए.
0: वाह, क्या बात है काका. एक देशभक्त तो दूसरे देशभक्त के ही पास जाएगा ना काका.
15: बोलो बख्त खां, क्या खबर है?
16: महाराज, अंग्रेजों के प्रति आपकी दुश्मनी और मातृभूमि के प्रति आपका प्रेम देखकर कृष्ण सिंह आपके साथ होना चाहते हैं महाराज.
15: कृष्ण सिंह, यो नाम तो हमने पहले भी सुना है. यो कृष्णा वो ही तो नहीं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध गांव वालों का साथ दिया?
16: जी महाराज.
15: तो ऐसे देशभक्त से तो हम भी मिलना चाहते हैं वक्त खां.
16: वो भी आपसे मिलने को उतावले हैं महाराज और आपकी सेवा में हाजिर हैं.
15: अरे तो वक्त खां, अब देर किस बात की, उन्हें पूरे सम्मान के साथ हमारे पास लाइए.
16: जी महाराज. आइए कृष्ण सिंह जी, आइए
15: आइए आइए.
17: महाराज की जय हो.
15: रेवाड़ी में आपका स्वागत है कृष्ण सिंह जी. आज थारे रूप मामण एक वीर देशभक्त मित्र ने पाके प्रसन्नता हो रही है. थारी विशेष योग्यता ने देखकर हम आपको अपनी अश्वारोही सेना का सेनापति नियुक्त करते हैं.
17: महाराज, जो आग आपके सीने में जल रही है वही आग मेरे सीने में भी धधक रही है. आपने मुझे इस काम के लिए चुना, ये मेरा सौभाग्य है महाराज.
16: महाराज.
15: बोलो वक्त खां.
16: महाराज, बहादुर शाह जफर के अगुवाई में सेना लगातार अंग्रेजों से मोर्चा ले रही है, मगर महाराज धन और अन्य अभावों के चलते मोर्चा संभाले रखना बहुत मुश्किल हो रहा है महाराज.
15: अरे तो सेनापति वक्त खां, ऐसी हालत में महाराज को कब काम आवेगा? यो लड़ाई हिंदुस्तान के वजूद की लड़ाई है. अब जाइए बादशाह से कहिए कि इस क्रांति में मारा तन मन धन सब न्योछावर है.
16: जी महाराज.
15: और हमारे राजनी ओर से 45,000 रुपया, 3 टुकड़िया खाद्य सामग्री और बारूद बनाने के लिए गंधक भी पहुंचाई जावेगी. इन अंग्रेजों को देश से भगाना हर देशभक्त का पहला कर्तव्य है.
16: जो हुक्म महाराज. महाराज, अभी अभी खबर मिली है कि ब्रिगेडियर शॉवर्स ने इस बार अपनी पूरी ताकत और चौगुनी सैन्य बल के साथ इसी ओर कूच किया है. और महाराज, उन्होंने आपके नाम संदेश भेजा है कि अगर आप आत्मसमर्पण कर दें तो आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा.
15: आत्मसमर्पण? अरे आत्मसमर्पण का तो सवाल ही ना उठे है वक्त खां. यो लागे है कि अंग्रेज सच्चे देशभक्त को नहीं जानते. वो अगर अपने प्राण भी बचाता है तो इसलिए कि सही समय पर उसे अपने देश पर न्योछावर कर सके.
16: तो फिर क्या किया जाए महाराज?
15: अब तो वक्त खां, आने वाले समय की योजना बनाई जाए ताकि सही समय पर दुश्मन पर हमला किया जा सके. इसीलिए वक्त का अभी हमें रेवाड़ी छोड़कर जाना पड़ेगा.
0: फिर क्या हुआ काका?
1: फिर क्या होना था, ब्रिगेडियर शावर सेना लेकर पहुंचा मगर उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो पाया और राव तुलाराम ने मेवाड़ के मोहम्मद शमशाद खां, घरी बोलनी के राव साहब तुलाराम, वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और झज्जर के नवाब अब्दुल समद खां के लश्कर की मदद से हमला बोल दिया.
0: वाह काका, इसे कहते हैं नहले पे दहला।
1: और हाँ, फिर उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की।
0: वाह,
1: रेवाड़ी पर झंडा फहराया और नारनौल पर अधिपत्य स्थापित किया।
5: वाह काका, इस जीत से तो अंग्रेज बौखला गए होंगे है ना?
12: Damn it! I don't want to listen more excuses again. एक बार फिर हम राव तुलाराम से हार गए।
14: Sir, they are attacking on us with good strategy, and I think ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। We have to be careful next time.
12: Officer, you're not here to tell us that they are quality now. I give you full charge, Colonel Gerard, and I want result. Anyhow, is it clear, Colonel?
14: Don't worry, sir. हम इन क्रांतिकारियों का नामो निशान मिटा देगा। इस राव तुलाराम ने हमारी नाक में दम कर दिया। We should attack with full of strength.
1: बल्कि और ज्यादा लश्कर के साथ जेरॉड, नारनौल और महेंद्रगढ़ की ओर गए, मगर वहां की जमीन रेतीली थी, जिसकी वजह से अंग्रेजी सेना को रुक रुक के जाना पड़ रहा था। और उसी समय राव तुलाराम की सेना ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया।
0: सिपाहियों, हम पर अचानक हमला हुआ है, अपने को सेव करते हुए उन पर अटैक करो।
18: मेजर कांसे
0: नाउ, यू टे

0: भैया तभी कर्नल जेरार्ड को गोली लगी और उनकी वहीं मृत्यु हो गई।
1: हमको इन सब का खात्मा करना है। एनी हाउ हमला और बढ़ाओ, ज्यादा गोलाबारी करो, कम ऑन अटैक।
0: मेजर कनफील्ड ने तुलाराम के सैनिकों पर जबरदस्त गोलीबारी की। लेकिन भैया इस दौरान कृष्ण सिंह की गोली लगने से मृत्यु हो गई।
2: वंदे मातरम। सिपाहियों अपनी पूरी ताकत से लड़ो, हम हारे या जीते मगर दुश्मनों को बता दे कि जब तक इस धरती की रक्षा के लिए हम जैसे बहादुर सपूत हैं, तब तक इस पर किसी नापाक को हम टिकने भी नहीं देंगे। वंदे मातरम।
3: काका, काका ये तो बहादुरी की मिसाल हुई ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बहुत बड़ी बहादुरी थी।
4: महाराज, सेनापति कृष्ण सिंह के साथ राव किशन सिंह, राव रामलाल और नवाब समत खां के पुत्र लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं महाराज।
5: यह तो बहुत बुरा हुआ बख्त खां।
6: पर महाराज, हमने अंग्रेजों के 70 सिपाही मार गिराए हैं और 45 सिपाही घायल हुए हैं महाराज। कैप्टन वेलिस और कर्नल जेरॉल्ड भी मारे गए हैं महाराज।
4: महाराज, इस पराजय से हरियाणा और उत्तरी राज्यों में क्रांति का अंत हो गया
7: ना
4: है।
7: बख्त खां, ना, क्रांति का अंत तो क्रांतिकारी के मरने के बाद ही होता है। हमने तात्या टोपे से बात की है और अब हम उनके साथ मिलकर क्रांति की मशाल जलाएंगे।
0: और भाई लोगों, इसके बाद क्या हुआ मालूम?
3: क्या काका?
0: इसके बाद 1 नवंबर 1857 को रानी विक्टोरिया ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी किया।
8: हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से आप सभी को प्रॉमिस करते हैं कि सरेंडर करने वाले सभी लोगों की गलतियों को माफ कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और हम नरमी से पेश आएंगे। There will be no charges against them.
0: मगर बेटा, अंग्रेज अधिकारी राव तुलाराम को भयंकर अपराधी मानते थे और किसी भी तरह की छूट भी नहीं देना चाहते थे।
9: I think राव तुलाराम, no, we can't take him easily, and we are not going to consider him. हम तुलाराम को माफी नहीं दे सकते। No way.
0: और रानी विक्टोरिया की घोषणा के बावजूद भी वो सब तुलाराम को किसी भी तरह की छूट नहीं देना चाहते थे। इसलिए राव तुलाराम 1862 को हिंदुस्तान छोड़कर ईरान चले गए और फिर वहां से अफगानिस्तान पहुंच गए। लेकिन बेटा, देश से दूर रहने के विछोह के कारण 18 सितंबर 1863 को 38 साल की कम उम्र में ही उनका निधन हो गया।
3: नहीं काका, उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि वो अमर हो गए हमेशा के लिए।
0: हाँ बेटा,
3: हमारे दिलों में, हमारे जहन में।
0: तो बेटा, अब तुम समझ गए होगे इस गाने का मतलब कि वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा।
10: सर पूरा नहीं काका, अरे हम सब समझ गए। क्यों भाइयों, अब राव तुलाराम जैसे देशभक्त हमारे जेहन में हमेशा रहेंगे। हाँ अच्छा काका, अब चलता हूँ।
0: अच्छा बेटा,
10: अपनी बस का टाइम हो गया। लेकिन काका, आज आपकी कहानी से एक याद लेकर जा रहा हूँ।
0: अच्छा बेटा, फिर आना।
10: ठीक है काका।

ये था कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्देशन तापसी नागराज, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। क्रांति कथाओं को सुनकर आपको हमें भेजना है एक प्रेरक स्लोगन। इसी समय फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की गाथा लेकर कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा में।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत। जागृति इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने का एक कार्यक्रम, जहां पर हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को लेके आते हैं और उनसे महिलाओं के संबंधित जानकारियां हम लेते हैं और कुछ नई बातें भी सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम सभी को जानकारियां देने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हमें जानकारियां देंगे। हमारे साथ है वीरेंद्र जी। आप पिछले 10 सालों से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है आज, हर्षिता सेतिया जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट है यानी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों हरियाणा से हैं और हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, खास करके जब महिलाओं की बातचीत हम कर रहे हैं तो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उनके मानसिक स्वास्थ्य क्यों अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनकी मानसिक असंतुलन हो रही है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों आज के इस विशेषज्ञों को, हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम जागृति में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो अभी तो हम काउंसलर एक शब्द से बहुत परिचित हैं, लेकिन जैसे आप दोनों की थोड़े डिफरेंसेस है प्रोफेशन में, लेकिन डील करते हैं वही मानसिक रोग के लिए। तो काउंसलिंग तो वही है, लेकिन जैसे हर्षिता जी आप कहते हैं कि आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं और वीरेंद्र जी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये डिफरेंस क्या है?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या फिर जिसको हम साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, उनकी एक प्रॉपर डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने पहले MBBS किया है, उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में गए हैं जो कि साइकियाट्री है। तो वो एक आपको प्रॉपर डॉक्टर हैं जिनसे आप जाकर अपने मानसिक रोग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम मनोरोग विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आप BA या BSc, MSc या MA करके फिर आप PhD करते हैं या MPhil करते हैं। आप दवाइयां नहीं लिख सकते, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, वो बेसिकली आपको दवाइयों से उनके द्वारा आपको ठीक किया जाता है। लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ का जो बेसिक काम है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो आपको थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है।
0: बहुत सुंदर। मतलब जब हमारी मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं तो समय जब उस तीव्रता को कंट्रोल करना है, जहां पर मेडिसिंस की भी आवश्यकता होती है, तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं उनको। और जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, एक लंबे अरसे की लाइफस्टाइल के कारण कुछ आदतें ऐसी हो जाती जिससे खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरे भी उनसे डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो इमोशंस को डील करने के जो तरीके हैं, वो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हम सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। तो हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी स्पेशलिटीज और आपकी एक्सपर्टीज को तो हम समझे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहते हैं, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव्स में देखें तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम समझे कि हाँ, ये चीज़ें अगर संतुलन में हैं तो हाँ, हम मेंटली फिट हैं।
2: आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी श्रृंखला है वो महिलाओं के बारे में है, हम कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आज अपने आप से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या मुझ में या मेरे आसपास जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनमें ऐसा हम क्या देखें जो हमें पता लगे कि हाँ मुझे कुछ चीजें हैं कि मुझे दिखाने की जरूरत है या फिर मुझे ये देखने की जरूरत है कि मेरे आसपास भी कोई इन चीजों से तो नहीं जूझ रहा। अगर हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत लंबे समय से उदास चल रहा है, हम खुशी लोग खुश हैं, मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं फील होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको यहाँ पे कि आपका पॉइंट है, एक इंडिकेटर है, एक रेड फ्लैग है कि आपको रुक के अपने आप को देख लेना चाहिए कि अब 15 दिन या 20 दिन से ऊपर हो गया है तो आपको कहीं ना कहीं अब एक रेड फ्लैग आ गया है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है। और जो हम अगर दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या करना है जी के, कुछ भी तो नहीं अच्छा लग रहा, किसके लिए जीना है मुझे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मेरा तो परिवार ही ऐसा है, सारा दिन तो मैं बच्चों की करती रहती हूँ, फिर भी मेरे को इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे अंदर अगर ये थॉट्स आ रहे हैं जो कि एक पैटर्न बन के लीड कर रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स पे अगर मैं पहुंच गई हूँ तो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अब ये आपके लिए इंडिकेटर है, आपको जान जाना चाहिए कि अब मुझे कहीं ना कहीं सहायता की, मदद की ज़रूरत है। तीसरा, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, नींद बहुत कम आने लग गई, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, आपको बिना दवाई के नींद नहीं आती है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखा लेना चाहिए। ये 3 से 4 इंडिकेटर मेजर हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ या मेरे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस समय साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर चले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए।
0: ये पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम बीमार हैं, लेकिन एक स्वस्थ मन या एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट हम किसे कहते हैं? क्योंकि आज की डेट में तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। महिलाओं को अगर देखते हैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो डांट नहीं खाती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान नहीं है, तो फिर ऐसे में फिटनेस क्या है?
1: देखिए, स्वास्थ्य की जो WHO की डेफिनेशन है उसके अंदर में 2 भाग आते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, तभी आप उसको हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO की है उसमें ये बोलते हैं इट्स अ कंप्लीट वेलबींग बोथ फिजिकली एंड मेंटली। इसका अर्थ ये है कि आप अपने मानसिक तौर पर भी अपना 100% अपना 100% दे पा रहे हैं। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ये चीज़ दिखाता है कि आप उस स्ट्रेस को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कोप कर पा रहे हैं। कोई चीज़ ख़राब हुई, आपको किसी ने डांटा, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उससे कितना जल्दी निकल पा रहे हैं वो आपका मानसिक स्वास्थ्य को दिखाता है। जैसे अगर आप इन्फेक्शन फैल रहा है, बाहर बुखार हो रहा है, पर फिर भी आपको बुखार नहीं हुआ तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ चल रहे हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी वैसा ही है कि जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही आपके आसपास में, आपका पूरा दिन खराब निकल रहा है, फिर भी आपका दिमाग उससे कोप अप कर पा रहा है, उन चीज़ों से आपको निकाल पा रहा है और आपको इतना एनर्जेटिक रख पा रहा है कि आप अपने काम पर ध्यान रख पा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं मानसिक तौर पर, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। और जब भी आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं किसी काम के अंदर में, इसका मतलब कि चीज़ें ठीक नहीं रह रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
0: जी, तो वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि कोई डगमग हो रहा है तो फिर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है और स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आमतौर पे ये बताते हैं कि थोड़ी सी तो बात है, अभी घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा तो बोलेंगे, अभी इतना भी आप सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, तो फिर एक द्वंद चलता है इंसान के माइंड में, मैंने गलत किया मुझे बोला तो फिर भी समझ सकते हैं, जहाँ पे मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। और एक ज़माना था जहाँ पे महिलाएं सुनते सुनते सुनते आदी हो चुकी थी, फिर उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मुझे उल्टा जवाब देना है या मुझे घर छोड़ना है या उन चीज़ों से परेशान होना है ऐसा। लेकिन अभी की जनरेशन में हम ये देखते हैं कि एक रेबेलियसनेस है, जिससे कभी कभी अगर वो उसको रिस्पॉन्स करती है या फिर उसको समाधान या जवाब देती हैं तो फिर उनको अलग रीति से लोग ट्रीट करते हैं, तो फिर वो जो छोटी सी बात जहाँ पे वो रोकने के लिए कोशिश करती, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर अपने डिग्निटी को बचाने की कोशिश करती है, तो फिर वो बात बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे में वो कैसे हैंडल करे कि उसके साथ जो गलत हो रहा है, भले वो लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ एक शुरुआत होती है। अभी वो एक छोटी सी चीज़ को अलाउ करती है लोग उनको बोलने में, या फिर पहली वो थप्पड़ है या पहली वो डांट है या एलिगेशन है या कोई भी चीज़, जिससे जो शुरुआत होती है इन चीज़ों की परंपरा की, तो वो कैसे रोके उस चीज़ को?
1: देखिए, सबसे पहले तो जैसे जैसे ज़माना बदला है, समय बदला है, औरतें इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, काम करने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, तो उसके बाद में समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। हमारा समाज जो है बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, और जो गलत नहीं है बहुत हद तक ठीक भी है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, तो औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तब वो ये एहसास कर पा रही हैं कि हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ को समझ पा रही हैं। इससे पहले की जो सोसाइटी थी, उस समय अगर गलत हो रहा था औरतों के साथ में, तो उनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो इस चीज़ों से निकल पाएं या इस चीज़ से लड़ पाएं। जैसे कि आपने बोला कि जब पहला थप्पड़ पड़ रहा है, तो अगर औरत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या वर्किंग है या थोड़ा हिम्मत वाली है, तो उस थप्पड़ का मुकाबला कर सकती है, उसका जवाब दे सकती है या उस थप्पड़ को उठते समय रोक सकती है, बाउंड्री सेट कर सकती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। पर जो आज से पुराने का जमाना था, जिस समय औरतों के पास ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो सिखाया भी ऐसा जाता था, माँ बेटी को आगे यही सिखा के भेज रही है कि जो भी होगा तुझे यहीं पे रहना है, घर से निकल गई तो डोली जा रही है, वहाँ से बर्थी ही निकलेगी, तेरा और कोई देखने वाला नहीं है, तू अलग नहीं हो सकती, तो हंस कर रो कर मार खा कर जैसा भी रहना है तुझे वहीं पर रहना है। अब ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है, इसमें इंटरनेट का बहुत योगदान है, लोग पढ़ाई का बहुत योगदान है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं अब, मैं समझता हूँ पढ़ाई का सबसे अधिक योगदान है। पढ़ने से ही, एजुकेशन के साथ में ही आदमी का दिमाग खुलता है, उनको एहसास होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और कहाँ उनके अधिकार खाए जा रहे हैं। और देखिए, अधिकार जहाँ तक खाने की बात है, या अधिकारों में जब भी चोट लग रही है, तो आपको पहली चोट के साथ ही जवाब देना होता है। आप अगर ट्रैफिक का कोई नियम कोई तोड़ रहा है, तो आप हमेशा पहली बार तोड़ते हो, तभी आपको अगर पुलिस ने देख लिया, आपको उसी समय फाइन करते हैं। ये नहीं कहते कि आपको पहली बार नियम तोड़ते हुए छोड़ दिया जाए। तो जब भी आपके अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, जब भी वो पहला थप्पड़ या पहली गाली उठ रही है, आपको उसी समय जवाब देना चाहिए। तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक बल की बात यहाँ हो नहीं रही, झगड़ने की बात नहीं हो रही, हमें उनको रोकना है, तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
0: तो वो मानसिक स्वस्थता को कैसे कायम रखें? और जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो सीखते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है, रा खाना है, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है इस तरीके से, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटली हम स्ट्रांग रहने के लिए, और जिस तरीके की आपने बात कही कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी उस चीज़ की ट्रेनिंग तो इंटेंशनली या कॉन्शियसली बचपन से तो किया नहीं जाता है। और जैसे आपने कहा कि अभी यहाँ से डोली उठी तो फिर उधर से अर्थी उतर दी, यही साइकोलॉजिकली फिट करके भेजते हैं महिलाओं को, तो वो कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्षम है, कुछ भी है, लेकिन वो जो सोच है, वो सोच उसको वहाँ पे रोक देती है। तो फिर यहाँ पे फिटनेस या स्ट्रेंथ क्या है जिससे वो अपने आप को मोल्ड करे या फिर उससे बाहर आ सकती है?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें जो एक लूप या साइकिल चल रहा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों की ही है, उन्हें अपनी बेटियों को जो सदियों से उन्हें शिक्षा मिलती आ रही है, उसको अब रोकना होगा। तभी बेटियां मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक बलवान हो पाएंगी, जब उन्हें समय रहे, जब उन्हें पता रहेगा कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको कहाँ रोकना है, और जब उन्हें वो डर नहीं होगा कि अगर मैंने इन्हें रोका या कुछ किया, उसके जो अंजाम होंगे उसमें मुझे सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमारे समाज में डाइवोर्स या फिर तलाक जैसे जो शब्द हैं, वो औरतों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं कंपेयर टू मर्द। और वो उसके पीछे कारण ये है कि पीछे से एक पीढ़ी के पीढ़ी इधर पीढ़ी सेम ही बात सिखाई जा रही है। तो उसको रोकने की जिम्मेवारी औरतों की होगी, क्योंकि बेटियाँ ये शिक्षा अपनी माँ से ही लेती हैं, और कहीं से नहीं मिलती। कोई भाई बाप ये सिर्फ शिक्षा नहीं देता, माँ के साथ सबसे अधिक समय बिताती हैं, तो माँ को वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक बेटी के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और जहां तक आपने बोला कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाए, तो दो चीजें हैं इसमें, आप मानसिक रोगी हुए या नहीं हुए। तो जब तक आप नहीं हुए, उससे पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, कि आप मानसिक रोगों से अपने आप को कैसे बचा पाए। तो उसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें जैसे जो जो चीजें शारीरिक हिस्से में काम करती हैं, वैसे वैसे चीजें मानसिक रूप में भी काम करती हैं। इसमें योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सैर करती हैं, आप पॉजिटिव चीजों को देखती हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहती हैं, और सबसे बड़ी बात चीजों को वेंट आउट, मतलब चीजों को बाहर निकालती हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाते हैं। चीजों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आपके मन में कोई भी कुंठा हो रही है, कोई भी बात हो रही है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगी, तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकती। तो आई थिंक वेंटिंग आउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर में आपको अपना कोई ऐसा साथी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ता है, जहां से जहां में आपके अंदर जो भी द्वंद चल रहे हैं आप उसको बाहर निकाल पाए।
0: जी, सो अगर हम पॉइंट आउट करें, हमको हमेशा हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ सकारात्मक बातचीत करते रहे, और जो हम मीडिया में, यूट्यूब में या कहीं पे भी जो इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हम कॉन्शियसली फिल्टर्स लगाएं कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को ही देखें। और तीसरा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो लड़कियों को ये चीज़ें ना सिखाए, तुमको दब के रहना है, तुमको सहन करना है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हिम्मत से खुद के लिए खड़ा होना भी हमें सिखाना है, और उसके साथ साथ लड़कों को भी कुछ सिखाना है, वो भी तो माँ बाप की जिम्मेवारी।
1: बिल्कुल, लड़कों भी को भी सिखाना है, लड़कों को सिखाना है, लड़कों को उनकी बाउंड्रीज सिखानी है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो सामने वाले को भी बुरी लगती है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जेंडर देखकर नहीं आती, दोनों की होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है। तो हाथ उठाना, गाली गलौज करना, बल का प्रयोग करना, ये आप अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। मैंने वही आपको बोला कि लड़कियों की हमें शिक्षा रोकनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें नहीं सीखनी है आपको जो पीछे चलता रहा था, और लड़कों को सिखाना है आपको ऐसे बनकर रहना है, सामने वाले को सम्मान देना है, जितनी आपकी सम्मान है उतना ही सामने वाले की भी इज्जत है। तो ये चीज़ें अपने लड़कों को तो सिखानी ही पड़ेंगी।
0: जी, तो जब घर में माँ बाप या बहन भाई, वो बचपन से जिन भी रिलेशंस के साथ वो रहते हैं, वो हर किसी को अगर रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली एक उम्र के बाद उनके जीवन में जब नए रिश्ते आते हैं, तो फिर उनको भी वो उसी तरीके से सम्मान करना वो सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल, जब आप स्त्री का सम्मान करना सीख जाएंगे तो फिर आप हर रिश्ते में करेंगे उसको। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ माँ का सम्मान कर रहे हैं और बीवी का नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा, फिर आप हर जगह सम्मान कर पाएंगे।
0: जी, सो वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और मेंटली फिट होने के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे आपने योग और मेडिटेशन दो चीज़ों का कॉन्वर्सेशन में जो जिक्र किया है, मेडिटेशन तो हमको समझ में आता है कि हमें ध्यान करना है, केंद्रित करना है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है मेडिटेशन करने का, लेकिन ये योग और मेडिटेशन का जो डिफरेंस, और योग से हमारी मानसिक संतुलन में कैसे प्रभाव पड़ता है।
1: आई थिंक डॉक्टर हर्षिता इसमें ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी।
2: जब हम बात करते हैं योग या मेडिटेशन की, दोनों में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, माइंडफुल होके कर रहे हैं। इसमें जो माइंडफुलनेस है वो बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो काम में आता है। मैं जो हूँ यही हूँ अभी हूँ, ना तो मैं कुछ पास्ट का देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। अगर अभी मुझे माइंडफुलनेस का अर्थ ही यही है, टू लिव इन प्रेजेंट, अभी यहीं पर, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में जो मेडिटेशन सिखाते हैं, अपने अपने तरीके से सिखाते हैं। बेसिकली वो आपको काम डाउन ही करवा रहे हैं, और इससे ज़्यादा वो आपको कुछ नहीं कराना चाह रहे। जब हम कामनेस चाहते हैं, क्या वो कामनेस मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ? आंसर यस है। क्या वो कामनेस, वो शांति मैं अपने रिश्तों में चाहता हूँ? बिल्कुल, इसका आंसर यस है। वही शांति मुझे अपने घर में चाहिए? बिल्कुल चाहिए। फिर हम कहते हैं कि मेडिटेशन आपको करना है, आपको एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना है इज नॉट अ मेडिटेशन। आप चलते फिरते घूमते फिरते आप प्रेजेंट में रहें, यहीं रहें, बिना मतलब आप पास्ट में ना जाएं। उसने मेरे साथ ये किया था, 3 साल पहले उसने मेरे को ये बात बोली थी, अब मेरे अंदर एक ग्रज बैठ गया उसके लिए। हम फॉरगेटफुल और फॉरगिवनेस अगर नहीं लाते हैं, वो चीज़ें फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलती रहती हैं। कहाँ से माइंडफुलनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बेटर चीजें हो जानी चाहिए। एक हद तक थिंक करना इज गुड, बट देन अगेन ओवर थिंकिंग आ जाना इज बैड। ओवर थिंकिंग होना, चाहे वो फ्यूचर की है या वो पास्ट की है, वो आपको कभी मेडिटेशन में लिंक नहीं करवा पाएगी। इसलिए आप जो कर रहे हैं यही है, अभी हूँ और यही इंजॉय कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम योगा जब अगर करते हैं तो मेरा इससे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हमारा मानसिक, जो मेरी मेंटल हेल्थ है, वो मैं अच्छा हूँ। मेरी हेल्थ तभी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर मैं बेड पे बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्या वो खुशी बहुत देर तक चलेगी? अगर मैं 2 दिन लगातार बेड पे बैठूँ तो नहीं चलेगी। फिजिकली मैं एक्टिव नहीं हुआ, मैं उठ के नहीं चला। सेम जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाहर जाओ, योगा करो, जिम करो, वॉकिंग करो, सैर करो, इट इज़ इंटर रिलेटेड। ये चीज़ें करेंगे तो हमारे जो केमिकल लेवल्स हैं अंदर, जो बनते हैं खुश रहने के हॉर्मोन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल योगा है, आप ज़रूरी नहीं आपको योगा ही करना है, आप सैर पर जाएं, आप जॉगिंग पे चले जाएं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप जिम के लिए जाएं, बट थोड़ा टाइम आपको अपने लिए बाहर निकालना ज़रूरी है। उस रूम से बाहर निकलें, उस स्पेस से बाहर निकलें, बाहर जाएं, गार्डन में जाएं, ग्रीनरी देखें, लोगों से बात करें, ये डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है।
0: मतलब कुल मिलाकर के हमारी लाइफस्टाइल में एक ऐसी आदत हो जिसमें हम हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैलेंस लेकर के चले, और हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खाने पीने पे अटेंशन हो, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, या प्राणायाम, योगा, जो भी कर सकते हैं, जिससे एक रिफ्रेशमेंट होती है, एक रिजुविनेशन होता है, और जब प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेंट आउट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें बोल के वेंट आउट होते हैं, कुछ चीज़ें बिना बोल के भी वेंट आउट हो जाते हैं। और मेंटली हम एड ऑन करने के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें हम अपने विचारों को देखें और सकारात्मकता की ओर हम अपनी विचारों को डाइवर्ट करें या डायरेक्शन दें। सो थैंक यू सो मच आज की इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही सीख वाली बातचीत आप दोनों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमको आपसे और भी बहुत सारी विषयों के ऊपर, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लिए, आज के इस कार्यक्रम का समय की सीमा को देखते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों, ये था आज का जागृत कार्यक्रम, जहाँ पर हमने मानसिक स्वास्थ्य, खास करके महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दोनों से हमने चर्चा की है। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हाँ छोले भटूरे, अरे वाह आज फिर से मजा आ जाएगा आज खाने में। तो तू बता तू क्या लाया टिफिन में?
1: मैं तो बिस्किट और नमकीन।
0: बिस्किट और नमकीन? तू तो रोज यही लाता है, तेरे पापा को खाना नहीं बनाना आता क्या?
1: माँ को आता था बहुत अच्छा, पर अब माँ नहीं है ना।
0: अरे यार मेरा टिफिन तू खा, मेरा टिफिन तेरा टिफिन है और मेरी माँ तेरी माँ है और मैं हूँ ना तेरे साथ हमेशा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है। दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित न रहे। हर माँ को और उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य एक ऐसी एक्सपर्ट हाजिर हैं जो 11 इयर्स यानी कि 11 साल के छोटी उम्र से आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीते आ रहे हैं। लगभग 51 साल से आप राजयोग ध्यान मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप मुंबई से आए हैं, तो मुंबई के सेलिब्रिटीज हो या फिर आम जनता हो या व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो या यूथ हो या बच्चे हो, सबको आप इंस्पायर करती आ रही है इतने वर्षों से। लगभग 40 साल से आप सेंटर पे रहते हुए लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि क्रीना दीदी जी आज हमारे मध्य पधारे हैं जीवन रोशनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए उनसे हम जानेंगे जो बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में कि हम एकाग्र नहीं रह पाते कई बार। तो एकाग्रता क्या है, फोकस्ड कैसे रहें, और कई बार हम चाहते हैं फोकस रहना लेकिन हम अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अटेंशन क्या है, फोकस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस बारे में आज प्रकाश डालेंगे आदरणीय क्रीना दीदी जी। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्शी जी।
3: थैंक यू।
4: मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो मधुबन के लिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी छोटी सेवाएं भी दे सकूं।
3: जी थैंक यू। तो दीदी आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार सोशल मीडिया का ज़माना भी है, हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, AI को लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कई बार हम सही इस्तेमाल करते हुए भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि AI के कारण या इंटरनेट के कारण हम अपने अटेंशन स्पैन घटा रहे हैं और फोकस नहीं रह पा रहे, क्या कहना चाहेंगे?
4: बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मीडिया और AI का उपयोग तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट इवन छोटेपन में होता है वो जल्दी से इसको ग्रास्प कर रहा है और बहुत बहुत ही उसका यूज़ कर रहे हैं। अभी कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो तो हर एक की अपनी चॉइस है, पर बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि फोकस या अटेंशन स्पैन जो है वो कोई बाहरी वस्तु के कारण कम हो रहा है ऐसा नहीं है
3: जी।
4: लेकिन जो उसका प्रभाव अलग अलग हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है, कई बार उनसे हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं
3: जी।
4: या व्यक्ति थोड़ा वीक है अपने नेचर में और जितनी भी परिस्थितियाँ आती है उन सब के प्रभाव में आता जाता है, ही गेट्स अफेक्टेड, तो फिर उसके थॉट लेवल पे बहुत ज़्यादा विचार करना शुरू कर देता है। और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सब विचार पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव का तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा होता है और वेस्टेज जो थॉट्स के होते हैं वो तो खुद को भी पता नहीं पड़ता है, इतना वेस्टेज होता है
3: जी।
4: तो जब इतना सारा क्लाउडेड हो जाता है ना मन और बुद्धि का जो स्पेस है वो, तो उसके कारण वो ज़्यादा लंबे समय तक एक बात पर केंद्रित अपने मन बुद्धि को नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे से उसके थॉट्स उसको इंटरफेयर कराते रहते हैं
3: जी,
4: खुद के। तो जितना इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, हर एक बात से उसको कुछ और याद आता है, कुछ और याद आता है, तो डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, तो नेचुरली उसका अटेंशन स्पैन कम होगा
3: जी,
4: फोकस नहीं रहेगा। ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि बाहर के तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन हमको उसको यूज करना है। जितने भी साइंस ने हमको साधन दिए हैं वो सब यूज करने के लिए दिए हैं
2: जी,
4: तो हम उस पे दोष न डाल के अपने ऊपर अटेंशन ज्यादा दे कि मेरी जो मन की स्थिति है वो ये सब यूज करते समय कैसी है
2: जी,
4: और उस पर अगर हम ध्यान दे करके अपने आप में थोड़ा एनर्जाइज अपने को करेंगे और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी वंडरफुल बनी हुई है कि वो जल्दी से बना अपना फोकस तोड़ सके, पर आज ऐसा हो गया है
2: जी। तो ये सब यूज़ करते हुए हम कैसे मन को एकाग्र रखें, और आपने कहा कि यूज़ करना भी है, इन्फॉर्मेशंस भी हमें चाहिए क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, तो अगर इन्फॉर्मेशंस या नॉलेज नहीं होगा तो हम शायद कम्पीट नहीं कर पाएंगे
4: जी। सही, प्रैक्टिकल फील्ड में देखो तो ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल उसके बिना जो कई सिस्टम्स हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं, तो इसलिए जिसकी प्रायोरिटी होती है तो उसको तो हेल्प लेना ही पड़ेगा व्यक्ति को। लेकिन अगर आपको अपना फोकस मेंटेन करना है तो आपको एक प्रैक्टिस तो मिनिमम करनी पड़ेगी
2: जी,
4: कि जैसे फोकस किसको कहा जाता है, डिक्शनरी मीनिंग भी अगर आप देखो ना, जहाँ पर सारी जो लाइट की रेज है ना वो एक पॉइंट पे मिलती है,
2: एक केंद्र पे,
4: केंद्र बिंदु बोला जाता है उसको
2: जी,
4: उसको फोकस कहते हैं। ऐसे ही अगर हम एक प्रैक्टिस करें कि कोई भी कार्य करने से पहले, भले वो ड्राइविंग हो या अपने लैपटॉप के सामने हो या व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन हो, आप जो भी नई परिस्थिति में जा रहे हो उस समय आप हर चीज को वापस समेटते जाओ और वो केंद्र बिंदु पर आप अपने आप को ध्यान केंद्रित करो।
2: ओके, तो
4: क्योंकि जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन आप ऑफ करो तो क्या होता है पता है, पूरी लाइट ऐसे पॉइंट पे आके फिर ब्लैकआउट हो जाता है
2: जी जी, राइट।
4: और जब टीवी चालू भी होता है तो हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक पॉइंट से ही पूरा पिक्चर एनलार्ज होता है। वही सिस्टम हमारे अंदर है, तो क्योंकि हम उसको मिस कर रहे हैं, आजकल कई लोगों को वो टेलीविजन की टेक्निक भी भूल गए
2: जी,
4: उनको लगता है कि हाँ टीवी चालू हो गया, टीवी बंद हो गया, पर ये टेक्निक होती है, कोई भी चीज में कुछ जब विजन पे आती है तो वो पॉइंट से इमर्ज होती है
2: जी।
4: ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हम पहले जहां से भी निकले वहां से सारे थॉट्स को मर्ज करके एक केंद्र बिंदु पर ला ले, क्या सीखा हमने उससे
2: जी,
4: और फिर थोड़ा उसको डीप साइलेंस में ले जाएं कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर दूसरी परिस्थिति की ओर जाएं, और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका अटेंशन स्पैन जरूर बढ़ेगा और आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम महसूस होंगे
2: जी। कई बार जैसे मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो वही थॉट्स चलते हैं जो हमने देखा, जो इन्फॉर्मेशंस हमने कलेक्ट किया, तो फिर हम फोकस नहीं रह पाते,
4: नहीं कर पाते,
2: तो ये धीरे धीरे होगा करते करते।
4: ये चीज करना जरूरी है जब भी मेडिटेशन में भी बैठो, ये तो हम एक्टिविटी में बैठने की बात कर रहे थे, पर अगर प्योरली मेडिटेशन में भी बैठते हो तो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग, आपको पहले हर चीज बाहर की मर्ज करके एक पॉइंट पर आपको आ जाना है, भले वो पॉइंट ऑफ लाइट हो, पॉइंट जहां पर सारी रेज मिल गई है, सब कुछ आपकी बाहर की दुनिया समेट ली है, आपको उस पे आना पड़ेगा, और ऐसी पोजीशन पे आप उसमें आएंगे कि वो सेकंड आप सब कुछ भूल जाएंगे।
2: ओके, तो वो क्या टेक्निक से कैसे समेटेंगे अगर मन बार बार बाहर की ओर जा ही रहा है या फिर कुछ और बातें मन में चल रही है, तो क्या बात करेंगे हम मन से?
4: तो जब आप मेडिटेशन में बैठे या एक एक्टिविटी पूरी की, तो आप पहले उस एक्टिविटी को रिवाइज करके कि भाई मैंने ये किया, मैं वहां गई थी, मैं वहां मिली, मैंने ये ब्रेकफास्ट खाया, मैंने ये कार्य किया, उस सब को याद करते हुए पूरा जैसे अंदर ले रहे हैं आप कि अब मैं थोड़े समय के लिए इससे भी फ्री हो रही हूँ, ब्रेकफास्ट जो खाया उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये भाई से मिली वो उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये कार्य कर लिया उससे भी फ्री हो रही हूँ, अब मैं उनमें नहीं हूँ। अपने मन को कहना है, अपने को समझाएं कि अब मैं उन सब में नहीं हूँ, मैं सबसे फ्री हो गई हूँ.
3: मन को हम ऐसे समझाएं
4: उसको, इसको वो मार्ग दिखाएं. ये सब अभी अगर इसके बारे में सोचोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे,
3: तो प्रेजेंट में आ जाओगे.
4: हाँ, तो जब प्रेजेंट पल में कैसे आएंगे, जब ये सारे पास्ट की चीजों को आप मर्ज कर देंगे. जैसे समझो कपड़ों का फैलावा है कमरे में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपका कोई फ्रेंड आ रहा हो या कोई ऐसा कुछ भी कार्य नेक्स्ट इस कमरे में होने वाला हो, तो आप सारे कपड़े समेट कर घड़ी करके आप कबाट के अंदर रख देंगे ना
3: जी.
4: पहले वो क्लियर करेंगे ना, तभी आप दूसरे को एंटरटेन करेंगे रूम में. तो आपको वो विस्तार डिस्टर्ब करेगा
3: जी.
4: और आपको लगेगा कि सामने वाला आएगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा
3: जी.
4: तो आप पहले उसको समेट लेते हैं. ऐसे ही हर बात को, जहां से भी आप आए, जिसके लिए भी आए, एक सेकंड के लिए सब समेट लो कि अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो मैंने किया पास्ट का. कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य क्यों ना हो, पर अब वो नहीं है. अब मैं प्रेजेंट में कहां पर हूं और मुझे इसी के बारे में सोचना है. तो सबसे पहले अंदर सब समेट कर मैं केवल एक पॉइंट हूं
3: जी.
4: हम अपने आप में ही फोकस है. मैं पॉइंट हूं, मैं जहां भी अपनी लाइट को स्प्रेड करूंगी ना, एनर्जी को भेजूंगी, वहां का कार्य होगा
3: जी.
4: तो अगर मैंने उसमें भी 10 जगह एनर्जी भेजी, तो फिर कितना वेस्ट हो जाएगा एनर्जी
3: जी.
4: क्योंकि वो दूसरे 9 कार्य तो होने नहीं है.
3: बिल्कुल,
4: अभी एक ही कार्य होना है, तो फिर वो एक ही कार्य के लिए मुझे एनर्जी भेजनी है. तो एकदम फ्रेश आउटलुक भी मिलता है.
3: ओके, तो कई बार हम अपने आप के साथ भी युद्ध करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, बट हम आ भी नहीं पाते हैं.
4: प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज का, तो आप वापस अपनी उस स्थिति पर आ सकते हो. नामुमकिन नहीं है.
3: तो ये लाइफ के हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है.
4: हर सिचुएशन के लिए. और दूसरा, रात को सोने से पहले.
3: ओके,
4: ये भी बहुत इम्पोर्टेंट. रात को सोने से पहले भी, जैसे आप पैर धुलाई करते हो, हाथ धुलाई करते हो, ब्रश करते हो, बाकी सब चीजें रख देते हो
3: जी.
4: हाँ, फिर यू चेंज योर क्लोथ्स, ये सब आप करते हो ना प्रक्रिया
3: जी.
4: क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक माइंडसेट तैयार करना है कि अभी मेरा दिन पूरा हो गया, अब मुझे सोना है. कई लोग प्रेयर करते हैं ताकि उनको लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये सबसे अच्छा काम करेगा, कि मेरे को पूरे दिन के जो प्रभाव से मुक्त करेगा, इसलिए वो प्रेयर करते हैं. ग्रैटिट्यूड के लिए कई लोग करते हैं रात को सोने से पहले. ये सब फिजिकल एक्टिविटी है.
3: ओके,
4: वैसे ही आपके सारे दिन की दिनचर्या को आपको अंदर समेट लेना है. ये हम भूल गए हैं. भूली हुई चीज जब वापस करने को कोई बोले तो तकलीफ होती है. बार बार फिजिकल चीजें ही याद आती है
3: जी.
4: और अपने को लगता है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटली हम करते हैं उसके लिए बहुत कम टाइम चाहिए. फिजिकली जो करते हैं नहीं, रात को सोने से पहले की बात है. कार्य कर जो फिजिकली करना है उसमें टाइम लगेगा, जैसे ब्रश करना है या हाथ पैर धोने हैं या कपड़े बदलने हैं. लेकिन मेंटली जो आपको एक्टिविटी करनी है सब कुछ समेटने के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो तो कुछ सेकंड में भी हो सकता है
3: जी.
4: इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो रात को सोने से पहले भी ये पॉइंट तक वापस समेट लो, ये बहुत जरूरी
3: जी.
4: माना हमेशा समझो कि हर चीज एक स्पार्क से शुरू होती है. हर चीज
3: स्पार्क से शुरू होती है.
4: स्पार्क से शुरू होती है, स्पार्क पे ही एंड होती है. तो हम अपने लिए ये चीज भूल गए.
3: राइट जी. तो बच्चों की बात पूछना चाहूंगी कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो बार बार मन भटकता है, तो वो स्पार्क कैसे लाएं कि हम फिर से वापस पढ़ाई पे आएं
4: जी. तो उनको एक सेंटेंस अपने लिए निर्धारित करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को
3: जी.
4: और वो सेंटेंस उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस रिपीट करना होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेरी स्टूडियस पर्सन
3: जी,
4: या माई इंटेलेक्ट इज रेडी टू ग्रास्प, जो भी सेंटेंस है
3: जी.
4: मेरी बुद्धि पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए तैयार है, बस इतना बोलना है मन में. लेकिन ये पढ़ाई के बीच में 10 बार बोलना है
3: जी. पढ़ाई के
4: उसका
3: बीच में
4: इम्प्रेशन बुद्धि पे पड़ता है और बुद्धि उस बात को ग्रास्प करती है.
3: अगर मैं पढ़ाई में सही नहीं हूँ तो भी ओके,
4: तो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बुद्धि आपको मदद कर रही है और मन भी साथ दे रहा है कि आप वो अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग आपको याद आ रहा है जो आपके लिए और इंटरेस्टिंग है, या समझो आपको बार बार ये आ रहा है पर ये किस काम की पढ़ाई है, किस काम की पढ़ाई है, मैं कर तो रही हूँ, एग्जाम ही देना है बस और कुछ नहीं होगा इसका, जितना उसके लिए नेगेटिव वेस्ट थॉट्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगा और कहीं और जाएगा। तो आपने जब कहा कि नहीं मेरी बुद्धि अभी ग्रास्प करने के लिए तैयार है तो वो बुद्धि कैच कर लेती है और आपको मदद करती है कि जो कर रहे हैं उसी में ग्रास्पिंग आपका बढ़ जाता है। तो आपकी मन और बुद्धि ही आपका पूरा एनर्जी जो है कहाँ पर आपको ले जाना है, गाइड करना है, डायरेक्ट करना है, वो मदद करती है। लेकिन आज हम यही दो बातों को बहुत जल्दी भूल गए हैं क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है, हमारा जो नेचर है, वो ही जो बन गया है वही डिस्ट्रैक्ट कर लेता है
3: जी,
4: वही डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं
3: जी। तो जैसे आप हैबिट्स की बात कर रहे हैं और सोमान की बात भी आपने कही कि आप स्टूडियस हो, ये आप बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपकी बुद्धि भी स्वीकार करने लगेगी और शायद यूनिवर्स भी साथ देता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दिन में कई बार हम ओवरथिंकिंग भी कर लेते हैं तो ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ओवरथिंकिंग? मान लीजिए किसने कुछ कहा तो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि हम अपने आप से तो बोल रहे हैं कि हम स्टूडियस हैं लेकिन टीचर ने ये कह दिया कि तुम तो गधे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये ओवर थिंकिंग करने लगता है
4: जी। और ओवर थिंकिंग जो करता है उसका एजुकेशन पे असर भी पड़ता है और उसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है
3: जी।
4: तो इतना वीक हम ना बन जाएं जो हम अपने आगे के रास्ते को ही ब्लॉक करें, उसके लिए आपको पहले से ही इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि लोग अपना ओपिनियन देते रहेंगे। और मुझे बहुत छोटेपन से ही इसका अनुभव मिलता रहेगा, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, फिर मेरी फ्रेंड, मेरे टीचर, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, है ना। और पहले क्या होता है, हम बहुत फ्रेजाइल होते हैं, हम हर एक पे ट्रस्ट रखते हैं, हमको लगता है हर एक मेरे लिए है, यू नो, और सबके ओपिनियंस फिर धीरे धीरे घर कर जाते हैं
3: जी।
4: तो उसमें आप अपनी आइडेंटिटी को लूज करने का पूरा चांस अपने आप को दे देते हो
3: जी।
4: भले सब ओपिनियन दे, आपको केवल अपने ऊपर फोकस करके देखना है कि सचमुच ये मेरी गलती है या इस प्रकार से भी चीज की जाती है, या इनका ओपिनियन है पर मुझे अभी भी इस बात का जो मैंने किया उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल राइट है, तो चेक करने का। अगर आपको लगे कि नहीं ओपिनियन बेटर है मेरे विचारों से तो वो ओपिनियन स्वीकार करे और आगे बढ़े, पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम्स आपका कॉन्फिडेंस भी काम कर जाता है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अनबायस्ड रह करके डिसीशंस लेने होंगे, चेक करो क्या मेरे ये मिस्टेक हुई है, मुझे इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, मेरे से ये मिस्टेक नहीं हुई है लेकिन सामने वाले का ओपिनियन है तो मुझे इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। है तो आपकी जीवन
3: जी,
4: है तो आपकी आइडेंटिटी बनाने की बात है ना, तो वो आपको ही डिसीशन अल्टीमेट लेना पड़ेगा
3: जी। तो ये
4: फिर आपका ओवर थिंकिंग नहीं होगा। अगर छोटेपन से ये गाइडेंस दी जाए
3: जी,
4: है ना
3: जी,
4: जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गिर गया तो हम जमीन को ऐसे मारते हैं, कहते देखा इसकी भूल है, इसकी भूल है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर दूसरों को दोष देने लगता है, वो बच्चा आगे चल के भी
3: जी।
4: लेकिन अगर उसको समझाया जाए कि कोई बात नहीं, देखो तुम दूसरी बार इधर ध्यान से चलना तो नहीं होगा, वो भी पॉजिटिवली बोल सकते हैं ना
3: जी,
4: तो फिर वो उस रीति से समझेगा कि मुझे चलते समय ये ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन अगर हमने कहा अरे तुम गिर गए, अरे बहुत लगा क्या, हाँ चोट लगी, दिख मैं ऐसे कर, तो फिर वो पैम्परिंग से वो ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, और फिर वही संस्कार आगे चल करके बच्चा भी प्रदर्शित करता है। तो ओवर थिंकिंग तब होता है जब आपने कुछ रॉन्ग गाइडेंस दे दी और फिर वो उसी रीति से चलता रहा, तो आगे चल के वो लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हमेशा ओवर थिंक करेगा, क्योंकि वो खुद अपनी एनालिसिस नहीं करता है।
3: जी, तो आजकल हम मल्टीटास्किंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्टिव होता है या इससे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है?
4: नहीं, मल्टीटास्किंग से कंसंट्रेशन कम होने का कोई मार्जिन वैसे नहीं है, पर अगर आपका ढंग जो है वो हर चीज को अधूरा छोड़ के दूसरे पर जाना, या समझो आपका डेलीगेशन ठीक नहीं है, आपके डिसीशन ठीक नहीं है, तो नेचुरली फिर जो होगा उसके रिपरकेशन में, उसके लिए आपको ओवरथिंकिंग पे ले जा सकता है।
3: मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए मैं गाना सुनते सुनते खाना खा रही हूँ, या फिर मैं कुछ और करते हुए अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, वो मल्टीटास्किंग होता है साथ साथ में दो चार चीज़ें करने में, या फिर कैसे मल्टीटास्किंग करते हुए भी फोकस रह सकते हैं?
4: द रियल सेंस ऑफ मल्टीटास्किंग माना कि व्यक्ति ऑफिस भी संभाल रहा है, घर के बच्चों का भी देख रहा है, और साथ में कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, साथ में कोई डोनेशन का कार्य भी कर रहा है,
3: मतलब बैलेंस करके चल।
4: हाँ, मल्टीटास्किंग वो नहीं है कि मैं गीत सुनते हुए अपना स्टडी कर रही हूँ, दैट इज नॉट कॉल्ड मल्टीटास्किंग। दैट इज योर इंटरेस्ट कि आपको कुछ आवाज चाहिए ऐसी जिससे आप कॉन्सेंट्रेट कर सको, वो अलग बात है। माना आप हॉबी और आपके टास्क को मिक्स कर रहे हो टू मेक द एटमोस्फियर लाइट और व्हाटएवर।
3: जी,
4: है ना, कोई जोर जोर से बोल के पढ़ता है वो मन में नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसको वही ज्यादा बोलना भी चलता है और पढ़ना भी हो रहा है, वॉकिंग भी हो रही है।
3: जी जी,
4: तो ऐसे भी लोग करते हैं, बट दैट इज नॉट मल्टीटास्किंग।
3: ओके,
4: दैट इज मिक्सिंग योर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग थिंग्स विद वन एक्टिविटी। बाकी मल्टीटास्किंग माना कि एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य बाहर अंदर उस सामाजिक रूप से कर रहा है,
3: कर रहा है,
4: एंड ही फाइंड्स टाइम,
3: लेकिन एक टाइम में एक ही चीज करना है, मतलब ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम है।
4: डिपेंड्स, अगर आप एफिशिएंट हो, आप ओवर थिंकिंग में नहीं जा रहे हो, आप इफेक्टिव हो हर कार्य के लिए, तो व्हाई नॉट।
3: ओके,
4: आपके टैलेंट पर है।
3: जी, तो ये चेक करना है कि आप कैसे कर रहे हो।
4: पोटेंशियल तो हर एक में होता है, आप कई बार पोटेंशियल यूज ही नहीं करते, कई बार आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने पोटेंशियल के बारे में।
3: तो कैसे चेक करें कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं?
4: ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जब आपको वो अवेयरनेस आती है।
3: ओके,
4: आती है तो उस समय अगर आप अवेयर हो कि इस परिस्थिति ने मेरे पोटेंशियल्स को बाहर निकाले, तो इट इज गुड नो इफ यू कैन एक्नॉलेज। बाकी तो परिस्थितियां लोगों को आती ही है,
3: वो अनुभव
4: फिर अगर, अगर थोड़ी नेगेटिव टाइप की परिस्थिति भी आती है कभी कभी, कभी पॉजिटिव भी आती है, परिस्थिति परिस्थिति है
3: जी,
4: उसमें आपने कैसे अपने पोटेंशियल्स को यूज किया वो आपके ऊपर है।
3: जी दी, जब मन भारी या दुखी हो तब फोकस को कैसे वापस लाया जाए?
4: जी, मन भारी या दुखी हो तो उस समय पहले तो उसको लाइट करना पड़ता है, लाइट, क्योंकि आप अपना कार्य अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते हैं।
3: जी,
4: और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर एक बार छोड़ने की आदत पड़ गई ना, तो छोटी छोटी बातों में आप छोड़ते रहोगे, फिर आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के योग्य नहीं बन सकते। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले जो चीज आपको लाइट करती है, जैसे आपको कोई संगीत है, फ्लूट प्लेइंग है, या आपको कोई गार्डन में जाके रिलैक्स होना अच्छा लगता है, या कोई वर्कआउट कर लेता है, कोई वॉक पे चला जाता है, यू नो कईयों के कई मेथड्स होते हैं, तो जो हर एक को सूट हो, अगर वो थोड़ा अपने को लाइट कर देना, तो फिर अपनी जिम्मेवारी पे वापस आ सकते हैं। तो ये लाइट होने के समय में वो ओवर थिंकिंग को साथ में नहीं लेता है, बिकॉज उसकी जो आदत है ना कि मैं पार्क में जाता हूँ तब मेरा ओवर थिंकिंग नहीं होता है, देखा हुआ है, उसका अनुभव है, इसलिए अगर वो भारी हुआ तो वो सीधा पार्क में जाएगा।
3: जी,
4: और सचमुच ही वो चीज उसको मदद करती है लाइट वापस होने के लिए, माना वो थोड़े समय के लिए वो जगह से, वो सिचुएशन से निकल के एक ऐसी जगह जाता है जहां उसको अनु

0: गीत बजा दो, एक कमेंट्री बजा दो, भले वो बैठे जो आए हैं वो, उसकी चिंता मत करो। और जैसे आपको फील हो कि अभी हो गया है, आप जाओ वहाँ, बहुत ब्यूटीफुल क्लास हो जाए, उल्टा यू नो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस,
1: क्योंकि आप अपने रोल को मना भी नहीं कर रहे हो,
0: नहीं,
1: और आप जा भी रहे हैं और भगवान से बात करके जाएंगे तो हेल्प तो मिलेगी।
0: हाँ जरूर, या आप साइलेंस में चले गए, या आप बिल्कुल अपने को हल्का छोड़ दिया रिलैक्स करके मेडिटेशन रूम में, और फिर जाओ तो आप एक नए व्यक्ति ही हो समझो पास्ट से।
1: बिल्कुल, तो ऐसे हर किसी के घर में एक छोटा सा मंदिर या फिर भगवान की फोटो जरूर होता है, तो आप उसके सामने जा करके अपनी बात कह के जा सकते हैं। जी, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान की अवधि के बारे में कि क्या ज्यादा जरूरी है, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना या कम समय में गहराई से फोकस रहना।
0: ओके, शुरू तो कम समय से ही होता है, और वो कम समय जैसे 5 मिनट या 10 मिनट में आपको कितना टाइम ध्यान लगा वो इम्पोर्टेंट है
1: जी,
0: है ना। तो वो प्रैक्टिस की अगर नोट की जाती है तो धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ाते हुए देखते जाएंगे
1: जी।
0: लेकिन आपने नोट ही नहीं किया, आपने एक चार्ट मेंटेन ही नहीं किया, तो एक संस्कार बन जाएगा कि भाई मेरे से तो लंबा टाइम का नहीं होता है, मेरा तो 10 ही मिनट इनफ है, मेरा तो 20 मिनट ही इनफ है। तो वो आपने क्या किया, आपने प्रगति के लिए चार्ट नहीं बनाया, पर आपने अपना एक नेचर बना दिया, फिर आपको कंसंट्रेशन केवल 10 मिनट या 20 मिनट लगेगा, फिर कोई 1 घंटा बिठा देगा ना तो आपका नहीं होता। वी डोंट हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर संस्कार, पर हमें चार्ट रख के अपनी अवधि को भी बढ़ाना है, अपने फोकस को भी बढ़ते हुए अनुभव करना है। दिस इज द मोस्ट सिस्टमैटिक वे, है ना।
1: ओके, आपको चेक करते हुए अपने आप को धीरे धीरे,
0: हाँ जी, नॉट जस्ट मेकिंग अ नेचर के भाई हाँ मैंने देखा है मैं 10 मिनट बैठती हूँ ना तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है, तो ये नेचर बना दिया। योगी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, उसको कई बार पूरी रात पढ़ना पड़ता है
1: जी, राइट,
0: और कई बार दिन में 1 ही घंटा पढ़ना होता है। तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि आज मैं पूरी रात नहीं पढ़ सकता हूँ, उसको पढ़ना होगा। तो वो एक ही प्रकार का संस्कार नहीं बनाता है,
1: फ्लेक्सिबिलिटी
0: भी लाता है, और रोज से प्रैक्टिस से अपनी अवधि भी बढ़ाता है कभी कभी, और देखता है कि कितना फोकस रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि दीदी जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो ये देखते देखते क्या हमारे अटेंशन स्पैन पर भी असर पड़ता है कि हम भी जो भी काम करते हैं उसमें हम फोकस नहीं रह पाते, 10 मिनट भी नहीं या 5 मिनट के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है।
0: थोड़े समय पहले मैंने देखा था कि वेस्ट के टीवी में बहुत जल्दी एड्स और आती है और एकदम फास्ट फास्ट मूव होती है, उतनी स्पीड में इंडिया में नहीं होता था। इंडिया में आप पूरा एड लाइक देख पाते थे अच्छी तरह से, जबकि वेस्टर्न टीवी में बिल्कुल फास्ट होता था
1: जी।
0: तो मुझे भी सोच चलती थी कि ये लोग इतना फास्ट क्यों करते हैं। तो मुझे एक जगह पता चला कि क्योंकि वहाँ उनकी दिनचर्या भी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ है उन लोगों की, कि अब उनको लंबा स्लो सुनने को ही नहीं होता है। इसीलिए वो लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन फास्ट फास्ट फास्ट रीलों में देते हैं, ऐसा पता चला
1: जी।
0: और फिर यहाँ भी हम देखते हैं कि अभी थोड़ा फास्ट कर दिया है हर चीज, और छोटे छोटे बनाते हैं, क्यों छोटे छोटे, अरे आजकल कोई लंबा देख नहीं पाता है, इसे छोटा ही बनाने का वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग का है
1: जी।
0: जितना हमारा ओवर थिंकिंग बढ़ता है ना तो नेचुरली अटेंशन स्पैन कम हो जाता है।
1: ओके, तो मूल कारण ओवर थिंकिंग।
0: हाँ जी, इट इज नॉट कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन दैट। आप एक लेक्चर भी सुनो 1 घंटे का, बहुत इफेक्टिव होता है
1: जी।
0: और उसका ही एक छोटा रील देखो, वो भी इफेक्टिव रहता है।
1: हाँ, क्योंकि आजकल लोग
0: यू कैन एंजॉय बोथ, यू कैन एंजॉय बोथ, पर कई लोग ऐसे हैं जो लंबा नहीं सुन सकते।
1: ये सबके लिए लागू नहीं होता।
0: हाँ, सबके लिए लागू नहीं होता। बाकी अगर आपका अटेंशन है, फोकस बराबर है, तो आप दोनों एंजॉय करें।
1: राइट जी,
0: इररिलेटिव ऑफ द स्पैन
1: जी,
0: है ना। जो भी है, आपका इंटरेस्ट बराबर होगा और आप हर चीज को बराबर सुनेंगे
1: जी। तो उसके लिए प्रैक्टिस

0: जरूरी है, और दीदी ने प्रैक्टिस की बात कही है
1: हाँ,
0: तो जरूर आप उस प्रैक्टिस करते
1: करते केवल नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं हो
0: हाँ, तो उसको चेक भी करना चाहिए हमको हाँ, कि
1: कैसे ओवर थिंकिंग जिसमें कम होगा ना वो दोनों एंजॉय करेगा
0: जी,
1: जिसमें ओवर थिंकिंग ज्यादा है ना तो पेशेंस कम है।
0: ओके, तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है फोकस रहने में
1: जी।
0: तो आजकल धैर्यता ज्यादा कम हो रही है,
1: धीरज कम हो रहा है,
0: धीरज कम हो रहा है तो,
1: और जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए कोई गोल गोल बात भी करेगा ना वो भी नहीं पसंद करता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ ऐसे कहते हैं,
0: डायरेक्ट बात करो, घुमा फिरा के मत करो,
1: घुमा फिरा के मत करो, क्योंकि लोग में धीरज ही नहीं है सुनने की।
0: जी
1: थोड़ा अभी सा, कोई कह रहा था
0: जी
1: कि होम्योपैथी दवा तो बहुत अच्छी है
0: स्लो
1: लेकिन
0: है
1: स्लो है, माना पहले वो सारी दूसरी दवाओं का असर बंद करता है फिर उसकी असर होती है, तो लोग तंग हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इसके असर ही नहीं है बीमारी पर, ऐसे होता है
0: होता है। तो अब हम शारीरिक बात करते हैं, क्या हमारी जो दिनचर्या है, तो स्लीप है, स्लीप साइकिल है, फूड है, एक्सरसाइज है, इसका भी एकाग्रता पर असर पड़ता है।
1: एक्टिविटी तो आप बहुत कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी उतनी शरीर को दी गई है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो, तो एक्टिविटी में भले कितना भी हो हाँ उतना भी नहीं हो कि जो आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है और फिर भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वैसा नहीं, पर मैक्सिमम आपको जितना होता है आप कर सकते। अगेन जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, आपकी एटीट्यूड्स है उसमें, आपके विचार है, आपके नेचर है, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ये जो सारी चीजें ना अगर वो बैलेंस्ड नहीं है ना उन एक्टिविटीज के साथ, तो उसमें आप देखेंगे कि आप एक्टिविटीज कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट इतना जल्दी से सब जगह नहीं मिल रहा है, या आप थक जाते हो या आप बर्डन फील करते हो,
0: तो जितना हो सके
1: इनसाइड एंड आउटसाइड का बैलेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो भले आप कितनी भी एक्टिविटी करो
0: जी। तो क्या हम क्या खाते हैं उसका भी असर पड़ता है?
1: हाँ खाते हैं उसका असर पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एज इज द फूड सो इज योर माइंड, माना जो खाना खाएंगे जहाँ खाएंगे जितना खाएंगे जैसा खाएंगे जिस रीति से खाएंगे तो उसका असर मन पर पड़ता है, तो ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है
0: जी।
1: तो खाना भी अगर आप धीरज से खाते हैं, बराबर च्यू करके खाते हैं, अच्छी जगह अच्छे वाइब्रेशन में खाते हैं,
0: टाइम पर
1: खाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला खाते हैं और जिसमें आपका मन भारी ना हो जाए ऐसा फूड खाते हैं, तो आपको मदद मिलेगी जरूर
0: जी। हाँ। और लंबे समय तक हम बैठ करके काम करते हैं सिस्टम के सामने, तो उस समय हमारे ध्यान को कैसे हम बनाए रखें?
1: लंबे समय तक बैठने पर एक ही प्रॉब्लम आता कि आपको एक पेन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को एक ही सिचुएशन में रखना आजकल के नॉर्मल लोगों का करना बहुत डिफिकल्ट है। पहले हमारे संत करते थे, ऋषि मुनि करते थे, घंटों एक ही पोजीशन में बैठ के उनकी तपस्या होती थी और उनको कुछ नहीं होता था, ऐसे ही खड़े होके चले जाते थे। पर अभी जो हमारा बॉडी बना है ना उसमें एक ही प्रकार का काफी समय तक रहना, जैसे खड़ा रहना, जैसे मॉल में हम देखते हैं ना कितने घंटे 12 घंटे व्यक्ति खड़ा ही रहता है
0: जी।
1: और अगर एक ही जगह खड़ा रहे तो क्या हालत होगी उसकी, ऐसे एक ही जगह सिस्टम के आप बैठे हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको कभी खड़ा होना है, कभी पांव को हिलाना है, कभी हाथ को, कभी कमर ट्विस्टिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है
0: जी।
1: ऐसे ही आपको कभी कोई प्लेजेंट म्यूजिक भी सुनना चाहिए या आप अच्छी बातें जो आपको रिलैक्स करती है, लाइट करती है, ऐसी अच्छी बातें भी आप देखो, मींस यू शुड फीड योर माइंड एट दैट टाइम विद वेरी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वेरी एनर्जाइजिंग थॉट्स और एक्टिविटी।
0: जो
1: अगर ऐसा करते हैं तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा, बाकी तो डेफिनेटली एक ही पोजीशन में अगर आप बैठे हो तो आपका अटेंशन स्पैन कम होने वाला है,
0: तो बीच बीच में आपको उठ के
1: या आप कोई एक्टिविटी दूसरी करो या आप कुछ फन एक्टिविटी अपने लिए करो, जिससे क्या होता है थोड़ी एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है, तो आपका अटेंशन स्पैन अच्छा ही रहेगा
0: जी। जिस जगह पे हम काम करते हैं कई बार हमें डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो चीज़ वस्तु हो, जैसे आप मॉल की बात कह रहे थे, तो वेराइटीज ऑफ कस्टमर्स आते हैं, तो उनकी व्यवहार से भी हम कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें तो स्माइल करनी है
1: जी,
0: और हम अपने साथ वालों के साथ रहना ही पड़ेगा
1: जी,
0: और मैनेजमेंट कैसा भी हो हमें सैलरी की जरूरत है, तो हमें उनकी भी बातें सुन करके काम करना है
1: जी।
0: तो कई बार व्यक्ति दुखी होने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है
1: जी,
0: और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन मोड पे चला जाता
1: है। हाँ हाँ,
0: तो उस एनवायरमेंट में रहते हुए भी, उस जगह में रहते हुए भी कैसे अपने आप को बचाए रखें।
1: राइट, इसमें ना अगर हम ऐसा देखें कि ये सब एक्टर्स है अलग अलग, और वो अलग अपना अपना रोल बजा रहे हैं, इनको ये रोल दिया गया है, इनको ये रोल दिया गया है, अलग अलग प्रकार का। हाँ, तो एक है जो एक्चुअली किसी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए खड़ा ही नहीं है, वो कम बात करता है, दिखाता है कस्टमर को लेना है तो लेगा, नहीं तो चला जाएगा। एक जन है वो बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में बात करता है और इनको ना थोड़ा इंस्पायर करता है कि ये लेंगे, तो वो एक नहीं चार चीजें लेके जाता है। तो हर एक अपना रोल बजा रहा है, ऐसे नेचर वाइज भी हर एक का रोल होता है। अब समझो कि जो सुपीरियर है उसको ये भाई पसंद आता है जो बातें करके एक से चार करता है, तो फिर उसका व्यवहार वो शांत वाले के साथ कैसा होगा? थोड़ा कम होगा ना, कम होगा, ही विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन। पर अगर वो समझे कि नहीं, ऐसे भी लोग जरूरी है मॉल में, सभी ऐसे होंगे तो नहीं, हर एक अलग अलग होते हैं एंड दे आर डूइंग द ड्यूटी बट इन डिफरेंट स्टाइल्स। ऐसे अगर हम अपनी सोच को बदलें कि भाई इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो मेरा इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसके नेचर को समझे कि इसका नेचर क्या है, वो कौन सी चीज से डिस्टर्ब होता है, तो हम अगर समझेंगे तो हम कुछ अपने अंदर पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं, नॉट टू प्लीज हिम बट टू मेक आवर सेल्व्स मोर इफेक्टिव
0: जी,
1: है ना।
0: तो वो सब देखते हुए भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
1: धीरे धीरे ऐसा रिजल्ट आएगा,
0: रिजल्ट आएगा, क्योंकि
1: जब तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा
0: जी। जी बिल्कुल, तो एक्सेप्ट करना
1: बहुत जरूरी है कि भाई एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल,
0: भले वो
1: तो मैं किसी का रोल नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने रोल को मोर इफेक्टिव बना सकती
0: हूँ, और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरा नेचर
1: हाँ।
0: अगर कि मैं, मुझे बात करने नहीं आती है
1: जी, जी कोई बात नहीं,
0: वो
1: कंपेयर किसी से कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं, वो अपना रोल बजा रहा है, मुझे अपना रोल बजाना।
0: अगर मैनेजर कंपेयर किया तो,
1: मैनेजर कंपेयर करे तो सुन लो फिर देखो कि मैं कौन सी चेंज अपने में ला सकती हूँ, और अगर ला सकते हो तो वेरी गुड है बैलेंस करने के लिए।
0: अगर बाकी आप करने
1: की, अगर आपने फोर्सिबली अपने में चेंज लाया तो वो न कस्टमर पर इफेक्टिव होगा न आपको अच्छा लगेगा,
0: क्योंकि वो नेचुरल नेचर नहीं है।
1: नेचुरल चेंज अपने में आना चाहिए, तो भले कोई कुछ भी बोले पर अपने को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, है ना। अगेन फोर्स करेंगे तो फिर आपका विचार बदलता रहेगा अंदर, तो सामने जो आ रहे हैं उनसे डील करने में आपकी जो खुलापन होता है, ओपन माइंडनेस होती है, वो नहीं होगा, वो डिस्टर्ब करेगा वातावरण को और भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आसपास के लोग डिस्टर्ब करते हैं तो शांत रहकर काम कैसे करें, घर में भी, घर में मान लीजिए सब मेंबर्स के साथ हमारा नहीं बनता है कई बार, क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं, तो कैसे शांत रखें अपने आप को और काम भी करें।
1: देखिए, शांत रहना ये चुप रहना अलग होता है।
0: ओके जी,
1: कोई चुप हो जाते हैं
0: लेकिन अंदर चलता रहता है
1: चुप हो जाते हैं और कोई भी बात करने को इग्नोर करते हैं, ज्यादा टाइम बाहर चले जाएंगे जब वो व्यक्ति होता है जिसके साथ नहीं जमता ऐसे, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है, और वो हो सकता है वाइब्रेशन के कारण और भी प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो आपको ये देखना है कि जितना उसका फील्ड है उतना मेरा भी फील्ड है और दूसरे का भी फील्ड है, पर ये फील्ड में हमको कैसे रहना है, है ना। तो अगर उसने गुस्सा किया और मैं भी गुस्सा कर रही हूं और बार बार ये चीज हो रही है, तो वातावरण में कौन से इमोशन फैलेंगे? नेगेटिव,
0: नेगेटिव,
1: है ना, तो दुख का वातावरण बढ़ेगा। तो ऐसा करना है कि जो लोग पॉजिटिव है घर में वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दे
0: जी। ओके,
1: सामने वाले को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन में ना जिए कि इसका गुस्सा कब कम होगा तब घर में शांति होगी। नहीं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाओ और जब बोलना ही है तब बोलो, बैलेंस से हर कार्य करो
0: जी,
1: है ना। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सामने वाले का गुस्सा भी कम होता जा रहा है। इसी को मेडिटेशन भी कहा जाता है। मेडिटेशन माना अपने माइंड के लेवल से आप कार्य कर रहे हो, केवल हाथ से नहीं, केवल मुख से नहीं, लेकिन माइंड के लेवल को भी आप इसमें ट्रेन कर रहे हो कि जो मन है वो दूसरे तीसरे चौथे डिस्ट्रैक्टिव विचारों में न जाए
0: जी,
1: ऊपर अटेंशन में रख रहे हो और उसको एनर्जी को आप मोबिलाइज कर रहे हो और आप उसमें भी एक अच्छा विचार रख करके कर्म कर रहे हो, जिसको हम कर्म योगी स्टेज बोलते हैं।
0: तो ये अटेंशन सदैव रख सकते हैं हम अपने ऊपर?
1: नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है,
0: धीरे धीरे
1: धीरे धीरे स्टार्ट होता है। कोई भी चीज ABCD से ही होता है, तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा।
0: लेकिन जैसे 24 घंटा हम अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए?
1: मे बी नॉट, पर जितना भी आप कर सकते हो ना, तो उतना भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो जरूर आएगा
0: जी,
1: है ना। और कभी कभी ना नेचुरल परिस्थितियां भी रिजल्ट को चेंज कर देती है। कई बार उसी व्यक्ति का इतना जोरदार ऐसी परिस्थिति आती है कि वो व्यक्ति एकदम रियलाइज करने लगता है, पछतावा करने लगता है और अपने आप को बदल देता है। आपने भले खाली एनर्जाइज किया पॉजिटिविटी को, पर वो परिस्थिति ऐसी आ गई जो वो व्यक्ति चेंज हो जाता है। तो कोई ना कोई रीति से रिजल्ट जरूर आती है
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू एनर्जाइज्ड पॉजिटिवली कि सामने वाला बदल गया, नहीं, अलग अलग रीति से।
0: क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, मानसिक शांति या फिर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए।
1: और आपने अपने घर के लिए भी किया ना,
0: घर के लिए भी किया।
1: ऐसा थोड़ी एक ही व्यक्ति को टारगेट करके करते हो, पूरे घर के लिए भी किया, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो सदा रहेगा ही रहेगा।
0: राइट,
1: उस व्यक्ति का जब भी चेंज होना होगा, जैसे भी होना होगा, वो हो जाएगा। पर नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं बनना है अपने
0: जी,
1: तो वो घर को पॉजिटिव नहीं बनाएगा। इतना तो अटेंशन दे ही सकते,
0: तो
1: माना अपने आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार कि नहीं, मुझे अपना रोल बजाना है, मुझे अपना रोल बजाना है। और अगर हो सकता है उस समय मैं शांत रहूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का सुन रही हूं या मैं उस व्यक्ति को गलत रीति से मान दे रही हूं, नहीं। पर उस समय मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। इट्स योर ओन डिसीजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स। समझे ना,
0: जब आपको लगता है कि बोलने से फायदा भी नहीं है और बात बढ़ेगी भी, तो नहीं बोलना
1: जी। जी
0: ओके। तो कई बार हम गलत जगह पे भी ना कह देते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, तो क्या ये सही है या कहाँ पे नो बोलना है, कैसे पता करें हम?
1: अभी क्या है कि बहुत ज्यादा नो भी तो कोई सुन नहीं सकता है, है ना। तो नो की जगह अगर आपको दूसरा कोई मेथड आता है, कोई दूसरे रास्ता आता है, तो आप वो उनको पूछ सकते, राय ले सकते कि मैं इस रीति से करूं या मैं ये कार्य करूं इसकी जगह। आप ऐसा ऑप्शन दो
0: जी,
1: तो एटलीस्ट वो व्यक्ति ना तो नहीं सुनेगा। कभी कभार कोई चीज के लिए आपको ना बोलना पड़ेगा, तो आप सॉरी बोल के बोलेंगे, लेकिन हमेशा ना बोलेंगे वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है
0: जी।
1: तो उसको थोड़ा टर्न करके, एक ऑप्शन दे करके आप बोलो तो बेटर रहता है
0: जी।
1: बाकी ना बोलना कोई गलत बात नहीं है।
0: जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या वो करने से आप ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो तब आप
1: गलत बात बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ना बोलना भी सीखना पड़ता।
0: राइट। और क्या बीच बीच में जब हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो हम ज्यादा फोकस रहता है?
1: छोटे छोटे ब्रेक्स माना किस प्रकार?
0: हम
1: चाय पीने जाएंगे ऐसे?
0: हाँ, चाय पीने जाएंगे या फिर घर का काम बहुत ज्यादा है एक साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा बैठ जाए अपने साथ बैठे, ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना चाहिए?
1: बहुत ज्यादा नहीं, पर लेना जरूरी है। बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपके करने की अवधि इतनी लंबी हो जाएगी ना
0: जी,
1: तो हो सकता है आपका कार्य ही पूरा ना हो। पर ब्रेक्स लेना जरूरी है,
0: पॉज होना
1: जरूरी है।
0: ओके।
1: कभी बॉडी को भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। ओवरडू कोई भी चीज को कभी नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: जैसे कोई, समझो कोई मंदिर पे जा रहा है और मंदिर पर चढ़ने के लिए लगभग 700 सीढ़ी है, तो वो 100 सीढ़ी चढ़ के 2 मिनट अगर बैठेगा रिलैक्स होने के लिए, तो वो कोई भगवान नाराज नहीं हो जाएगा? फिर वो एनर्जी इकट्ठा करता है और 150 सीढ़ी चढ़ जाता है
0: जी।
1: तो ब्रेक किस लिए आप ले रहे हैं?
0: ताकि आप थोड़ा और फास्ट मूव कर सको
1: और अपने को एनर्जाइज
0: कर सको जी।
1: बाकी जो ब्रेक लेता है बार बार और फिर थोड़े ही पास में आके कहता अब मैं मंदिर में तो नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो उसने क्या किया, ब्रेक नहीं ली लेकिन वहां भी अपनी एनर्जी को यूज की
0: जी।
1: ब्रेक लेना माना एनर्जी को कंजर्व करना ताकि आगे के लिए आप ऐड कर सको
0: जी,
1: तो ब्रेक अच्छी है
0: जी। बिल्कुल। और अभी तो वक्त हो गया है कि यहाँ से हम विदा लें आपसे, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे एक दो क्वेश्चंस कि बार बार आजकल हम मोबाइल चेक करते हैं नोटिफिकेशंस और ये सब, तो प्रैक्टिकली कैसे हम बदल सकते हैं इस आदत को?
1: देखिए उधर आता है मोबाइल में, डू यू वॉन्ट टू अलाउ नोटिफिकेशन और नॉट, तो अगर वो आता है और आपको नहीं चाहिए तो उसी समय ना बोल दो, है कि नहीं
0: जी।
1: आप अलाउ भी करते हो और फिर आप नोटिफिकेशंस को कैंसिल करने में टाइम गवाते हो, है कि नहीं
0: जी।
1: तो इतना तो पहला डिसीशन वो पूछता ही है कि आपको अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम जाता है तो पहले से ही आप उसको डिसाइड कर लो कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कि कई बार कई लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्या हो जाता है, फोन फुल हो जाता है।
0: यस, हम डिलीट भी नहीं करते हैं चीजें, कुछ
1: फुल हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको डिलीट करते रहना पड़ेगा
0: और अटेंशन भी देख के डिलीट करना पड़ेगा।
1: हाँ जी, अटेंशन देख के भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इस इंस्ट्रूमेंट्स का, आज का साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स का, ये थोड़ा ज्यादा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं कभी नहीं कैंसिल करती थी कुछ भी, तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक फोन से दूसरे फोन में सब ट्रांसफर करना था, तो आप नहीं मानेंगे एक पूरा दिन तक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। फिर वो भाई ने समझाया मुझे कि देखिए आप तो ओपन भी नहीं कर रहे हैं कहीं व्हाट्सएप, तो आपने क्यों रखा है, क्योंकि आपने ओपन भी नहीं किया, उस जगह लेता जा रहा है और अब यहाँ के लिए वो टाइम लगा रहा है
0: जी।
1: या तो आपको मेरे को ओपन करके देना पड़ेगा सब, तभी थोड़ा जल्दी होगा। तो मैंने देखा सचमुच वेस्ट था इतना सारा। तो ये बिगिनिंग से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पूरी नॉलेज नहीं है ना मोबाइल की, तो वो फिर ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं ना, तो उसकी थोड़ी नॉलेज ग्रास्प करना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको इफेक्टिवली यूज कर
0: सको। लाइफ भी ऐसी है।
1: अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा होगी इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा होगा, तो आपका अटेंशन स्पैन भी बेहतर ही रहेगा
0: जी।
1: तो आज तो लाइफ भी कभी कभी मेस में होती है,
0: राइट। तो कौन से नोटिफिकेशंस ऐसे हैं लाइफ में जो हमें बंद रखना चाहिए?
1: एक तो गॉसिप,
0: ओके,
1: गॉसिप तो जरूर, बैक बाइटिंग।
0: और डिलीट क्या करना चाहिए?
1: वरना यही जो है
0: ये नोटिफिकेशन बंद है और इसी को डिलीट करना है।
1: फिर दूसरा, दूसरों पर इल्जाम लगाना, दोष डालना, भले आपका भूल, तो ब्लेम गेम भी एक चीज है जो हमको नहीं रखनी चाहिए। फिर तीसरा, कोई कोई दुश्मनी हम क्यों बनावे, ऐसा ख्याल ही आपके अंदर क्यों आता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो वहीं पर अपने एक्शंस को पहले से थोड़ा कंट्रोल करो कि मुझे जरूरी नहीं है किसी को दुश्मन बनाना, भले दोस्त कम हो पर किसी को दुश्मन बनाना ये तो मेरी डायरेक्टरी में होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ है चीजें। दूसरा कि जितना हो सके मुझे शांति से कार्य करना है, मैं गुस्सा क्यों होती हूँ, क्रोध में क्यों आती हूँ, ये तो मेरी एनर्जी पूरी ये हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है इसमें, क्रोध करने में। तो अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ा रही है, कौन सी चीज मुझे रोक रही है, तो ऐसी सब नोटिफिकेशंस को हमें पहले से अगर नहीं डाले, डाउनलोड ही नहीं करे या तो डिलीट करते जाए,
0: वो एप्लीकेशंस ही ना रहे।
1: हाँ, क्योंकि वो तो ऑफकोर्स अपना फोकस बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में, और ऐसे नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है हमारे सामने जिनका फोकस बहुत अच्छा रहा, भले उनके कितने भी जेलिसी वाले दुश्मन बने, उन्होंने क्या क्या उनके साथ किया, उनको वो मैटर नहीं करता है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया वो ही मैटर करता है। और ये लोग बहुत फोकस्ड लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है बहुत फोकस्ड थे, जैसे मदर टेरेसा है वो अपने जमाने में बहुत फोकस्ड थी
0: जी,
1: है ना, खुद ही अपना जीवन निर्माण किया और खुद ही उसको सस्टेन भी करती रही
0: जी।
1: उसके बाद भले वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी किया हो, लेकिन उनके होते समय तो काफी मना फोकस्ड रही। ऐसे हमारे कई राजा महाराजाओं की फैमिलीज है जिसमें काफी फोकस्ड रूप से उन्होंने

0: राज्य भी किया और भारत को दुश्मनों से बचा के रखा।
1: तो
0: भले उनकी फैमिलीज थी, सब कुछ था, लेकिन काफी फोकस्ड लोग थे। उनका क्लियर थिंकिंग, फोकस्ड माना क्लियर थिंकिंग,
1: क्या करना है क्या नहीं करना है,
0: क्या नहीं करना है, बहुत क्लैरिटी होती है उनके थॉट्स में। ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स है, संत ज्ञानेश्वर का भी एग्जांपल है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट। ऐसे कई संत भी रहे हैं हमारे भारत में और पूरे विश्व में भी ऐसे कई लोग, जैसे अब्राहम लिंकन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा अमेरिका का, उसका भी काफी फोकस था। कितना कुछ वो डिफीट हो रहा था तो भी उसने अपना रास्ता ही नहीं छोड़ा। और एंड में जब से वो 60 साल का हुआ तब अमेरिका ने सामने से बोला कि हमको आपके जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है
1: जी।
0: अभी तो देखो कैसे वो अपने टारगेट पे पहुंच गया ना। तो ऐसे कई लोग फोकस्ड और उन्होंने हमें सिखाया है। ये तो क्या है कि हमने सीखना ही बंद कर दिया है
1: जी,
0: सीखना बंद किया तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हो, कैसे पर, और फिर गलत एग्जांपल्स ले लेके उसको फॉलो करते जा रहे हैं, तो फिर कैसे फोकस्ड रहेंगे।
1: अपने लक्ष्य को भी रिवाइज करना है,
0: करना चाहिए।
1: अगर मैं देख भी रही हूँ कुछ तो क्यों देख रही हूँ, मुझे क्या करना है,
0: मुझे क्या मिलना है इसमें से, वो जरूर देखना चाहिए। कोई भी चीज मिलती है ना आपको सामने से, तो उसके 3 प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न पूछो क्या ये मेरे लिए यूजफुल है, फिर दूसरा प्रश्न पूछो कि क्या ये आगे चल करके मेरी मेरी प्रगति करेगा, और तीसरा है कि क्या मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछ के आप उस बात को पहले एनालाइज करो
1: जी,
0: और फिर वो कार्य करो तो आप फोकस्ड रहेंगे।
1: राइट, बिल्कुल। तो अगर आपको एक लाइन में बताना हो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है।
0: पावरफुल मंत्र यही रहेगा कि आई एम हियर टू रीच माय ओन डेस्टिनेशन फ्रॉम माय ओन फ्री विल।
1: ओके,
0: आई एम हियर टू रीच माय डेस्टिनेशन विच इज क्रिएटेड फ्रॉम माय ओन फ्री विल।
1: जी, मेरी इच्छाओं से ही मेरे को अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बिल्कुल, इसे हम जरूर याद रखेंगे। दीदी, अभी वक्त हो गया विदा लेने का, तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को।
0: इसमें यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू मुझे समय देने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए आप सबके साथ, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस पर अपने थॉट्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और हर एक कुछ अपनी लाइफ का थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे, जैसे एक मिरर सामने रखते हुए अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखेंगे, और आगे ये भी समझो कि हर एक के अंदर वो फोकस है ही है, कहीं नहीं जाता है, केवल हमको वापस उसका अनुभव कैसे करना है। तो जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो जितनी भी नहीं काम की चीज़ें होती है वो निकाल देता है, एंड एट दी एंड वो मूर्ति अपने आप शेप ले लेती है। तो ऐसे ही हमारा भी फोकस अपने आप शेप ले लेगा अगर उसके अलावा जो भी वेस्ट है, जो डिस्ट्रैक्शंस आपको कर रहे हैं, वो आप धीरे धीरे एक बाय एक निकालते जाओ, तो लास्ट में क्या रहेगा, आपका प्योर फोकस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
1: थैंक यू सो मच दीदी आज हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है कि जब जब आप शांतिवन आएंगे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और हमारे श्रोताओं को आपके जो अमूल्य जीवन के ज्ञान है, जो आप प्रैक्टिकल जीते हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद आपको।
1: दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? डेफिनेटली अच्छा ही लगा होगा, तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं 94-1415-1415 पर। नमस्ते।

0: हाँ छोले भटूरे, अरे वाह आज फिर से मजा आ जाएगा आज खाने में तो। तू बता तू क्या लाया टिफिन में?
1: मैं तो बिस्किट और नमकीन।
0: बिस्किट और नमकीन? तू तो रोज यही लाता है, तेरे पापा को खाना नहीं बनाना आता क्या?
1: माँ को आता था बहुत अच्छा, पर अब माँ नहीं है ना।
0: अरे यार मेरा टिफिन तू खा, मेरा टिफिन तेरा टिफिन है और मेरी माँ तेरी माँ है और मैं हूँ ना तेरे साथ हमेशा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है। दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित ना रहे। हर माँ को और उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
3: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें दीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबका फेवरेट प्रोग्राम लेकर के जिसका नाम है हमराही। और इस प्रोग्राम में हम लोग कोशिश करते हैं कि नए नए लोगों से तो आपको मिलवाएं ही, साथ साथ हमारी ये भी कोशिश रहती है कि ऐसे लोग भी हम लेकर के आए जिनका जीवन जिनका काम इतना बड़ा रहा है, इतना विशाल रहा है, इतना जबरदस्त रहा है कि आप उनसे इंस्पायर हुए बिना रह ही नहीं सकते हैं। वैसे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो मैरिड कपल्स हैं उनसे बात करते हैं और ऐसे खासकर लोगों से बात करते हैं जिनमें से कोई एक किसी भी तरह की शारीरिक दिव्यांगता वाले हों। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही जबरदस्त मेहमान और बहुत ही जाना माना नाम कहना चाहिए कि भारत में शायद ही कोई होगा, और कुछ हद तक मैं अगर ये कहूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शायद ही कोई होगा जिन्होंने सर का नाम नहीं सुना होगा तो गलत नहीं होगा। खैर तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि बचपन से मैं जिनका नाम सुनता आया हूं आज उनके साथ प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए बहुत सारी भूमिका हो गई, आप रेडियो मधुबन सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। स्वागत करते हैं जॉर्ज इब्राहिम सर और रूपा मैम का। स्वागत है सर।
4: शुक्रिया।
3: तो जॉर्ज सर, जैसा कि मैंने कहा हम तो बचपन से ही आपका नाम सुनते आ रहे हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन संक्षेप में आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? वैसे तो हमको मालूम है आप स्कोर फाउंडेशन के CEO भी हैं, आईवे जिसका एक प्रोजेक्ट है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में ब्लाइंड क्रिकेट को शुरू करने का क्रेडिट अगर किसी एक इंसान को जाता है तो वो आप हैं। जी सर।
5: मैं क्या कहूँ, आपने सब कुछ कह चुके हैं ऑलरेडी। पर हाँ, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, खेल कूद का काफी शौकीन हूँ, और ये समझता हूँ कि मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे शिक्षा बढ़िया मिला, अच्छा मिला, मौके अच्छे मिले और अच्छा परिवार मिला। तो मैं जैसे कहते हैं आई एम ए ब्लेस्ड पर्सन, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और लोगों के साथ बांटने का भी मौका दिया है।
3: क्या बात है सर। तो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए ना सर, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी लाइफ की?
5: हाँ, मेरा जो जिंदगी है ये मेरा पेरेंट्स जो है वो इंग्लैंड में थे जब मेरा जन्म हुआ 1958 में। काफी वक्त गुजर गया अभी।
3: जी। Still sound young.
5: तो मुझे जब 10 महीने का था तो मुझे मेनिनजाइटिस का बीमारी हुआ था, जिसकी वजह से मेरा जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व दोनों इंपैक्ट हो गया और आंखों का रोशनी बहुत कम हो गया। सो ये जो दृष्टिबाधिता है ये जब से मुझे याद है ये मेरे साथ है। हालांकि पहले 40 लगभग वर्ष मुझे तो थोड़ा बहुत दिखता था, जिससे मुझे घूमने फिरने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। हालांकि लोगों को पहचानना, क्लास में ब्लैक बोर्ड पढ़ना, किताबें पढ़ना, लोगों को पहचानना, ये सब काफ़ी मुश्किल था। मैं अक्सर लोगों को आवाज़ से पहचानता या बिल्कुल पास में जब आते थे तब पहचानते थे। तो जैसे लोग कहते हैं मैं टोटली ब्लाइंड भी नहीं था, वैसे साइटेड भी नहीं था, तो बीच में था। और ये काफी एक अजीब स्टेटस था, पर जो भी है उसको लेके हम जिंदगी में आगे बढ़े। मेरा शिक्षा जो है लखनऊ से शुरू हुआ था, लामाट नियर गर्ल्स स्कूल में।
3: ओके,
5: इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहला लड़की था और अभी लड़का बन गया हूँ। मुझे उस वक्त उस दौरान चौथी कक्षा तक लड़कियां और लड़के साथ साथ पढ़ते थे लामाट नियर गर्ल्स स्कूल में, और फिर उसके बाद पांचवी कक्षा से लड़के निकलते थे बॉय स्कूल में। सो ये रहा मेरा शुरुआत, और वहां पर मैंने एक दो साल पढ़ा। फिर मैं दिल्ली आया, वहां पर फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में पढ़ा। फिर हम कर्नाटक गए, जहां पर हुबली, जहां पर मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा अप टू क्लास 11। और उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आया। सेंट स्टीवंस कॉलेज में मैंने अपना बी ऑनर्स किया मैथमेटिक्स में, और फिर एमए किया ऑपरेशन रिसर्च, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीवंस कॉलेज के थ्रू। तो ये रहा मेरी लगभग 21-22 साल की सफर
3: जी। तो सर इतनी जगह आपको ट्रेवल क्यों करना पड़ा, मतलब फादर की जॉब की वजह से या कोई और रीजन था?
5: शुरुआत में मेरे फादर इंजीनियर थे और ये बिहार के एक कोने में काम करते थे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जो पूर्व चंपारण है जहाँ पर गंडक नदी बहती है।
3: वहाँ
5: पर एक डैम बन रहा था, तो उस डैम का कंस्ट्रक्शन का काम एक कंपनी कर रहा था NPCC। तो वहाँ पर मेरे फादर इंजीनियर थे, तो उस दौरान मुझे स्कूल शुरू करने का वक्त हो गया, तो वहाँ पर तो कोई स्कूल था नहीं पास में। सो मेरी माँ ने कहा कि उनके बहन के यहाँ जो लखनऊ में थी उस वक्त, इसलिए मुझे लखनऊ जाके अपना स्कूलिंग शुरू करना पड़ा। और फिर मेरे आंट और अंकल जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो मैं उनके साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। फिर मेरे फादर जो है उनको हुबली नाम के शहर में नौकरी मिला, जिसमें जहाँ पर स्कूल वगैरह की व्यवस्था था। तो फिर मैं उनके साथ जुड़ के करीब क्लास 3 से क्लास 11 तक मैंने वहाँ पढ़ा, और फिर 17 साल की उम्र में मैं दिल्ली आया कॉलेज एजुकेशन के लिए। तो कॉलेज में तो ऑफकोर्स मैं हॉस्टल में रहा, तो पेरेंट्स केरल में थे, तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे दो तीन जगह पढ़ने का मौका मिला, और वो अच्छा है क्योंकि अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग टाइप के लोग, और अनुभव भी अलग अलग था। सो आई थिंक इट वाज अ नाइस जर्नी।
3: पूरा इंडिया घूम लिया आप कहीं कहीं सर।
5: जी
3: अच्छा, तो आपकी सर एजुकेशन में तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि ब्लाइंडनेस की वजह से कोई किसी तरह का बैरियर रहा हो, कोई इशू रहा हो। मतलब मुझे लगता है कि वहां तो सारी आपकी एजुकेशन जो है बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम की तरह ही हुई है मेरे ख्याल में।
5: हाँ, एजुकेशन तो मेन स्ट्रीम ही था, पर ऐसा नहीं कि बैरियर्स नहीं था, बैरियर्स तो काफी थे मुझे। वैसे जैसे मैंने कहा पहले कि मुझे ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा था, मुझे किताब नहीं पढ़ पा रहा था, और तो मेरी मम्मी और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे फादर सब लोग पढ़ते थे स्कूल में। टीचर्स जो थे वो भी काफी सपोर्टिव थे, वो जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे वो बोल के लिखते थे, और अगर मेरा कोई सवाल था तो वो बहुत ही धैर्य पूर्वक विद पेशेंस मेरे आंसर्स करते थे। और वैसे मैं काफी ब्राइट था और मुझे समझ जल्दी आ जाता था, तो लोगों को मुझे समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। पर इनफैक्ट मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलके पढ़ता था कंबाइन स्टडीज, तो वो लोग पढ़ते थे और मैं उनको समझाता था, तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन वहीं से शुरू हो गया था।
3: कोलैबोरेशन तो आपका वहीं से शुरू हो गया था।
5: बिल्कुल।
3: तो ये सर जब मैथमेटिक्स आप कर रहे थे
5: जी,
3: तो उसमें फिर कैसे किया आपने?
5: तो मैथमेटिक्स में पहले बोल दूं, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, एक कॉन्सेप्ट के बेसिस है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो फिर आप मैथमेटिक्स आराम से कर सकते हैं। और मेरा सौभाग्य था कि स्कूल में दो या तीन ऐसे टीचर्स थे जो मैथमेटिक्स मुझे पढ़ाया, बहुत ही फर्स्ट क्लास टीचर्स थे, बेहतरीन टीचर्स थे, और उनको कम्युनिकेट करके समझाने का कला था उनमें। हर कॉन्सेप्ट को अक्सर टीचर्स बोर्ड पे डायग्राम्स बनाते हैं, विजुअल एड्स लेके कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि जो मेरे टीचर्स थे वो बोल के समझा लेते थे, और आई वॉज लकी। एंड हालांकि कॉलेज में, क्योंकि मुझे वहाँ पर कॉलेज में जितना सपोर्ट स्कूल में था, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स के सपोर्ट था, उससे काफी कम सपोर्ट था कॉलेज में। तो कॉलेज में थोड़ा सब्जेक्ट्स था जो जिसमें थोड़ा दिक्कत हुआ था, बट फिर मैथ्स पर बिकॉज कॉन्सेप्ट से क्लियर आई कुड मैनेज थ्रू कॉलेज ऑल्सो कॉलेज एंड माई मास्टर्स। बट ये सब कहने की बात मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स इज एक्चुअली, अगर आपको मैथ्स सीखना है शुरुआत से तो विदाउट दिस टैक्टाइल एड्स एंड ये सॉफ्टवेयर वगैरह जो आज यूज करते हैं, बिना उनका मैथ्स सीखना थोड़ा मुश्किल है। और एंड आई थिंक अध्यापक जो है, टीचर्स जो है, उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है।
3: राइट सर,
5: स्कूल में टीचर्स आर मोर कनेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज में स्टूडेंट्स और कॉलेज के बीच में जो क्लासरूम में जो रिश्ता होता है, जैसे स्कूल में है वैसा नहीं होता है।
3: स्कूल में ही आपको डांट पड़ेगी, स्कूल में ही आपको समझाएंगे, कॉलेज में कोई कहने वाला नहीं है।
5: हाँ, कॉलेज में आप पढ़े तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो किसी का कुछ जाता नहीं है,
4: अपना जाता है।
5: राइट
3: जी। तो बड़ी सर मतलब जबरदस्त जर्नी रही है आपकी, लेकिन फिर भी जब हम लोग, मुझे लगता है कि बहुत ब्लेस्ड हैं जो मतलब आपको हमने देखा है और काम करते हुए आपसे हम इंस्पायर हुए हम सब। तो आपसे बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लगता है मैम के बारे में भी जान लिया जाए। तो रूपा मैम, बताएं जरा आप अपने बारे में हमारे सुनने वालों को।
4: मैं हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ।
3: ओह वेरी नाइस।
4: मैं गार्डन्स का डिजाइन करती हूँ, लैंडस्केपर, हॉर्टिकल्चर ओब्लिक लैंडस्केपिंग करती हूँ। मुझे पौधों से बहुत, आई लाइक प्लांट्स वेरी मच। मैंने एमएससी हॉर्टिकल्चर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया है, दिल्ली में।
3: दिल्ली में? ओके।
4: हाँ, पूसा इंस्टीट्यूट।
3: ओके।
4: तो वहाँ से किया हुआ है। तो बस अभी मेरा छोटा सा बिजनेस है।
3: वेरी नाइस मैम। तो आप इंडिया में कहाँ से हैं? आप इंडिया में कहाँ से हैं मैम?
4: मैं भी केरल की हूँ।
3: अच्छा, केरला से हैं आप?
4: हाँ।
3: अच्छा।
4: मैं जॉर्ज साहब को हुबली से जानती हूँ। फर्स्ट टाइम जॉर्ज वाज इन क्लास 3 और मैं क्लास 1 में थे।
3: अरे,
4: तो हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, इनके बर्थडे पार्टीज में मैं शामिल होते थे इनके। हम लोग संडे स्कूल जाते हैं चर्च में, तो इनके साथ जाती थी मैं। पिकनिक्स में भी गए हुए हैं हम लोग।
3: ओके।
4: तो हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे।
5: तो ऐसा है कि हम लोग करीब बचपन में आपस में जानते थे, फिर एक अरसा हुआ जब हम अलग हुए थे,
4: ट्रांसफर हुआ था। मेरा पापा रेलवेज में थे, तो हम लोग सेकेंड बैड में ट्रांसफर हुआ, तो हमारा फिर बहुत साल के बाद दिल्ली में मिला।
3: अच्छा। तो कैसे ढूंढा सर आपने फिर मैम को?
5: नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं था, हम लोग आमने सामने हो गए।
3: अच्छा, आमने सामने हो गए।
4: भगवान चाहते हैं ना, तो आमने सामने लगता है।
3: कोइंसिडेंट था या सर वास्तव में मतलब?
5: नहीं, कोइंसिडेंस था कोई, मुझे मालूम नहीं था कि रूपा दिल्ली में है, और शायद रूपा को मालूम नहीं था मैं दिल्ली में हूँ। एक शाम को मेरे दोस्त के साथ मैं एक चर्च गया, तो वहां पर मुझे एक लड़की से इंट्रोड्यूस किया गया, जो मुझसे मिलते ही रूपा कहती है कि मुझे तुरंत पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। बचपन का कुछ यादें उनको।
3: कौन से ईयर की बात है सर? ये दिल्ली वाली जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं, कौन से ईयर का होगा?
5: 1984 या 83 था।
4: 83।
3: ओके।
5: एनीवे 83-84 मेरे ख्याल से 83 था, बट
3: मैंने आपको पहचान लिया फिर सर।
5: फिर गाड़ी चलती रही। मैं उस वक्त मैं दिल्ली में एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम कर रहा था, तो 1984 मई महीने में मुझे मुंबई शिफ्ट हो गया। मैं उस तब बॉम्बे था, तो बॉम्बे में हो गया। तो फिर हाँ बोलो।
4: हाँ, मैं अपना कोर्स खत्म किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं अपने पेरेंट्स से लिखा था, आप लोग ढूंढ रहा होगा ब्राइडग्रूम के लिए, तो ये अच्छा लड़का है। तो मेरा पापा ने कहा, तो हमको, हमारे पास इनका पता तो नहीं है इनके पेरेंट्स का, यदि ये भगवान का राय है तो ये
5: इच्छा है।
4: तो देन ये लेटर पहुंचेंगे उधर। तो मेरे पापा ने लिखा अच्छा इनके पापा के लिए, तो वो काफी बार रीडायरेक्ट होके ना पोस्ट ऑफिस वाले केरल में इनके घर पहुंचाया।
3: अच्छा।
4: हाँ, तो वैसे हो गया। और फिर ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स मीट किया और बातचीत किया।
3: आपके केस में तो, आप लोगों के केस में तो ऐसा हुआ ना मैम, आप दोनों पहले ही रेडी हो गए तो फिर पेरेंट्स को तो रेडी होना ही था फिर।
4: नहीं नहीं, हम रेडी हुआ, ये जॉर्ज साहब ना बहुत लव मेरी साइड से थे, इनके साइड से तो अरेंज थे। मैं तो यहाँ पे गा रहे थे, बॉम्बे से आ रहा मेरा दोस्त जॉर्ज साहब को तो वो सब नहीं था, वो तो छानबीन कर रहे थे।
3: ये थोड़ा कहानी बताइए कि ऐसा क्यों, मतलब आप थोड़े से स्केरी क्यों हो रहे थे, मतलब क्या हो गया था सर?
5: नहीं, ये तो
4: सोच समझ के करता है, मैं तो अपने दिल से करता
5: बस दिल की बातों दिल की बातों

0: बीच में हम क्या बोलेंगे
1: क्या बात है, क्या बात है। लेकिन देखिए, वो 40 साल पुरानी मेमोरीज एकदम मतलब रिफ्रेश हो गई एकदम ना।
0: जी, एफ एफ एफ एफ क्या, F5 हो गया, F5। हाँ
1: F5 हो गया, F5। यस जी सर। तो आपने समझ लिया था सर मैम के लव को?
0: नहीं, इन्होंने प्रपोज किया और फिर मैं मजबूर हो गया।
1: तो उस समय क्या था जो आप दूर हो गए, मतलब मुंबई चले गए इस वजह से दूर हो गए या
0: नहीं,
1: कुछ?
0: हाँ नहीं, एक तो हम मुंबई था और हम अपने काम में मगरूर थे, और फिर जब ये प्रपोजल मेरे पास आया तो एक महीने बाद मैं केरल जा रहा था अपने फादर के पास। तो मैंने उचित समझा कि हम फादर के साथ आमने सामने बैठ के डिस्कशन करेंगे।
1: जी
0: तो हम लोग गए केरल, और फिर सोच वोच करने के बाद फाइनली डिसाइड किया कि रिश्ता अच्छा है, गाड़ी आगे जाना है। और हालांकि इन रूपा की तरफ से प्यार शादी से पहले ही शुरू हो गया था, उस वक्त मेरा सिर्फ दोस्ती ही था, पर एंगेजमेंट के साथ वो दोस्ती भी मोहब्बत में बदल
1: बदल
0: गया।
1: गई।
0: और
1: अब
0: अभी
1: 40 साल हो गया।
0: मई महीने में 40 हो जाएगा।
1: 40 हो जाएगा, क्या बात
0: जी
1: है। बहुत खूब सर, बहुत जबरदस्त। तो मतलब सर, आप या आपके पेरेंट्स, मतलब थोड़ा सा मतलब ये था कि भाई पेरेंट्स की एक बार परमिशन मिल जाए उसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं, ये बात थी या ये था कि आप मतलब देख रहे थे कि भाई वाकई में साथ निभाएंगी कि नहीं निभाएंगी?
0: नहीं, मेरे और रूपा के जो पेरेंट्स हैं मेरे ख्याल से थोड़ा ओपन माइंडेड थे, और ज्यादातर डिसीजंस हमारे ऊपर छोड़ दिया था। अगर हम
1: ओके,
0: राजी है तो वो भी राजी थे।
1: वो भी राजी थे जी।
0: बस मेरे ख्याल से वो अकल अंदाजी तब करते अगर हम बिल्कुल कम्युनिटी के बाहर हो या किसी और मजहब के लोग से। वैसे ज्यादा दबाव तो नहीं डालता, पर मेरे ख्याल से उन मौकों पर शायद वो अपना
1: इतने
0: राय या अपना
1: ऑर्थोडॉक्स, मतलब इतने
0: ऑब्जेक्शन
1: ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग नहीं
0: उठा।
1: थी उनकी।
0: हाँ,
1: जी
0: देवर प्रिटी ओपन,
1: ओपन,
0: दोनों दोनों
1: यस।
0: परिवार, दोनों पेरेंट्स देवर ट्रैवल्ड इंडिया के अलग अलग जगहों पे ठहरे थे। रूपा के पेरेंट्स भी आसाम में थे, उत्तर प्रदेश में थे, कर्नाटक में थे, आंध्रा में थे, काफी ट्रैवल किया हुआ है। मेरे पेरेंट्स भी काफी ट्रैवल्ड थे, सो दे हैड सीन द वर्ल्ड, सो यू नो, खुले दिमाग के थे एंड देवर ओपन।
1: क्या बात है सर। तो रूपा मैम, आपको कब पता चला सर की ब्लाइंडनेस के बारे में?
2: हमको
0: बचपन से ही मालूम
2: बचपन
0: था।
2: से मालूम है इनके परिवार का, व्हाट दैट, दिस टू रिकॉग्नाइज यू के परिचय है।
0: हाँ, एक्चुअली इनका कहना है कि ये हमेशा सबसे यही कहती है कि एक हमारा दोस्त, कॉमन दोस्त था, जो हर वक्त कहता था कि आपका दोस्त जॉर्ज था, अच्छा बंदा है, पर मेरे से जब बात करता है तो वो बगल लगता था कि वो बगल वाले से बात कर रहा है।
1: कर रहा है,
0: तो जब
1: ओके।
0: हम दिल्ली में कई साल,
1: आई कांटेक्ट नहीं करता है, आई कांटेक्ट नहीं
0: आई
1: करता।
0: कॉन्टेक्ट है, वो थोड़ा स्क्विंटेड था। तो जब हम दिल्ली में मिले तो जैसे मैं उनसे बात किया तो उनको लगा कि मैं बगल वाली से बोल रहा हूँ।
2: तो आप पता है, आप जॉर्ज अब्राहम है।
1: क्या बात है जी। फिर सर, अभी उन दोस्त से बात होती है तो अभी भी वैसा ही है?
0: नहीं,
1: बोलो।
0: वो तो रूपा तो याद रखा, पर वो तो भूल गए वो। परंतु वो जो दोस्त था उनसे भी हम बाद में मिले हैं।
1: तो मैम को सर कोई इश्यू कभी नहीं लगा ब्लाइंडनेस को लेके? कभी डिस्कशन इस बारे में हुआ? लग तो रहा है मैम तो काफी वैसे भी फ्रैंक है।
2: ब्लाइंडनेस, कभी कभी ब्लाइंड लोग थोड़ा इनसेंसिटिव है। सेंसिटिविटी और साइट थोड़ा साथ साथ जाता है।
1: तो मतलब आपको मैम याद कैसे रहे जॉर्ज सर, जैसे इतने सालों बाद जब दिल्ली में मिले तो कैसे याद
2: हाँ,
1: रहे?
2: नहीं
1: बहुत
2: मैंने
1: सारे लोग
2: बोला है ना,
1: देख
2: जब उन्होंने मुझसे हेलो कहा ना, तो मुझे ऐसे
1: रहे
2: लगा कि बगल वाले से हेलो कह रहा। तो ये जो
1: हैं।
2: हमारे बचपन में वो लड़का जो बोले थे ना, तुरंत तो याद आया। तब जब
1: ओके
2: याद आया तो उसके शक्ल भी तो वैसे ही, हाँ आई नो यू, योर जॉर्ज इब्राहिम, पटाक आ गया।
1: जॉर्ज सर, मतलब आपका बगल वाले से बात करना भी एक तरह से बून हो गया आपके लिए।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट लोग मुझे पहचानने लग गए।
1: तो श्रोताओं, सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर प्रोग्राम हमराही, और आज जॉर्ज इब्राहिम सर, रेनाउंड पर्सनैलिटी इंडिया में और ऑफ कोर्स वर्ल्ड लेवल पे भी, और उनके साथ उनकी बेटर हाफ रूपा मैम भी हैं। तो उनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। आप रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो फिर सर 84 से 86 तक तो फिर कोई, आई एम श्योर यहाँ पर तो कोई बैरियर नहीं आया सर मैरिज के लिए, मैरिज के लिए।
0: तो 84 में हम मिले थे, मेरे ख्याल से हमारा एंगेजमेंट हुआ था 85 में।
1: ओके
0: 85 में, और 85 के बाद हम लोग चिट्ठी लिखते थे, फोन पे बात करते थे हर महीने। मैं उस वक्त रूपा अपना एमएससी करके वो हैदराबाद में थी, सिकंदराबाद में, तो हर महीने में मैं फ्राइडे शाम को बॉम्बे से ट्रेन पकड़ता था और सैटरडे मॉर्निंग हैदराबाद पहुंचता था, और फिर सैटरडे संडे सिकंदराबाद हैदराबाद में स्पेंड करके फिर संडे इवनिंग को हम ट्रेन पकड़ते थे, और मंडे मॉर्निंग मैं 7 बजे से पहले मुंबई पहुंचता था और फिर 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता था। तो ये महीने में एक बार हम ये हैदराबाद का ट्रिप करते थे, और हम लोग दोनों पूरा वीकेंड साथ में बिताते थे, फिल्म देखते थे। मोपेड पे मैं पीछे बैठता था और रूपा चलाती थी, और हम लोग टैंक बंद में जाके मूंगफली खाते थे, बातचीत करते थे और मच्छर हमें काटते थे। और फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि इन्होंने मोपेड चला और सोचा कि मैं बैठा हूँ और चली गई,
2: और बातें करते करते चले गए, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पीछे देखा तो कोई नहीं है।
1: ऐसा कैसे हुआ?
0: सोचा कि मैं बैठ गया हूँ और अच्छा। चली गई।
1: और सर पीछे से आप, उस समय तो मोबाइल फोन भी नहीं था, आप सोच रहे
0: हो? बिल्कुल नहीं था, हम तो चलते गए, हमें मालूम था कि वापस आएगी। अच्छा।
2: लेकिन मैं बातें करते करते चला रहे थे गाड़ी, जब वापस आए तो लोग हंस रहे थे कि
1: बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट है, मतलब देखिए आज भी याद है कितना गजब। और ऐसा मतलब बहुत बड़ा रेयर है कि ऐसा हो जाए, लेकिन चलिए ये भी होना लिखा था। बहुत जबरदस्त सर। फैमिली ने तो कहा ही ओके ठीक है, चलिए आप दोनों रेडी हैं, तो यही बात रही होगी फिर उसके बाद तो सर?
0: हाँ 86 में शादी हो गया था और हम मुंबई चले गए। मुंबई में हम करीब 3 साल थे मेरे ख्याल, 86, 87, 88, 3 साल या 2.5 साल मुंबई में थे।
1: फिर उसके बाद से दिल्ली में ही है सर?
0: उसके बाद हम दिल्ली वापस आ गए। हाँ 84 तक मैं दिल्ली में था, 84 तक मैं दिल्ली में था, और 84 टू 88 हम मुंबई में थे। तो 88 में वापस दिल्ली आया, और हम लोग क्योंकि हमें बॉम्बे में लाइफ जरा मुश्किल लगा, क्योंकि जब मैं गया था पहले, मैं बॉम्बे में YMCA में रहता था, वो मेरे ऑफिस से करीब 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस था। और फिर जब, और बॉम्बे में अकोमोडेशन मिलना जरा मुश्किल है, रेंट में मकान मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम न्यू बॉम्बे, उस वक्त न्यू बॉम्बे बिल्कुल बॉम्बे के बाहर था और उसका डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं था। आज के तारीख में लोकल ट्रेन्स हैं कि हम वाशी में रह रहे थे, तो मैं घर से करीब 7 बजे निकलता था और रात को करीब 8, 8:30, 9 बजे पहुंचता था वापस। तो हमें लगा कि ऐसे जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। हमने फिर डिसाइड किया कि हम बॉम्बे छोड़ के वापस दिल्ली आएंगे, जहाँ पर हम पढ़ लिख के अपना स्टूडेंट लाइफ भी बिताया था, और रूपा का भी यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ बीती थी, और हम लोगों को जानते थे यहाँ पर, और दिल्ली शहर थोड़ा और ज्यादा मैनेजेबल लगा हमें। तो फिर हम दिल्ली में अपना जिंदगी दोबारा शुरू किया।
1: क्या बात है। तो सर जब मैम चर्च के बाहर आपको मिले, लगभग ऑलरेडी 25-26 साल की आपकी एज करीब करीब हो गई थी उस समय भी, है ना?
0: जी।
1: तो इससे पहले मतलब आपको तो नहीं पता था कि ऐसे किसी दिन चर्च जाऊंगा और मैम मिल जाएंगे आपको, लेकिन उस समय आप मैरिज के बारे में क्या सोचते थे, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ सोचते थे, कुछ सोचना शुरू किए थे या नहीं, टाइम ही नहीं मिला?
0: नहीं, सोचते थे, कौन होगा कैसे होगा वो मुझे मालूम नहीं था, पर हमें भगवान पे विश्वास था। हम एक ईसाई हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी जिंदगी का जो ओवरऑल कंट्रोल जो है ईसा मसीह के हाथ में है। तो मैं जानता था कि जब वक्त आएगा तो सही लड़की मेरे सामने आएगा,
1: और क्या बात?
0: तो वो विश्वास था, हालांकि मेरे पास काफी लड़कियों को वैसे भी ऐसा दोस्ताना लेवल पर जानता था, कॉलेज के वक्त में भी काफी दोस्त थे और फिर काम के दौरान भी काफी दोस्त थे, पर ऐसा कोई नजर नहीं आया जिनके साथ जिंदगी का गुजारने का सोच कभी आया नहीं दिमाग में।
1: जी। और जो आपकी वो सोच थी कि भाई सही वक्त पे सही लड़की अपने आप आ जाएगी, वो देखिए वो पूरी हुई।
0: इनफैक्ट मेरे

0: नॉट एज इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो मेरे फादर से जब पूछता था तो मेरे फादर कहता था कि मैं तो विश्वास करता हूँ कि एक दिन भगवान हमारे बहू के फादर को इस कमरे में लाएंगे, वो सामने वाले में कुर्सी में बैठ के पूछेगा मुझसे कि क्या मेरी बेटी आपके लड़के के साथ शादी कर सकता है. और ऐसा ही हुआ, हालांकि घर आके हमारे सामने नहीं बैठा बट फोन करके पूछा
1: जी
0: कि यू नो ये रिश्ता आपके लिए मंजूर है कि नहीं. तो हमारा जिंदगी काफी ऐसा चला है बचपन से ही, मुझे हमारा डिसिप्लिन यही रहा कि हम जिंदगी में करते हैं जो हम सही मानते हैं करते हैं, पर भगवान पे भरोसा करते हुए आगे चलाते हैं हम.
2: क्या बात है सर, बहुत खूब बहुत खूब.
0: और हमने ये भी देखा है कि जब हम गलत जगह पे जाते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है खुद, और हमारा विश्वास यही है कि भगवान वो दरवाजा आपके लिए बंद कर दिया है, नई दिशा दिखा देता है.
2: बिल्कुल, ये बात आपने सही कही सर कि वो अपने आप ऊपर वाला ही एक तय करता है कि भाई ये दरवाजा आपके लिए खुला है या बंद है.
0: जी
2: तो रूपा मैम ये बताइए कि सर का मैं कहीं सुन रहा था इंटरव्यू, तो सर बता रहे थे कि जब इन्होंने ब्लाइंड फील्ड में काम करने के बारे में सोचा तो आपके साथ डिस्कशन किया पहले, तो आपका क्या रिस्पॉन्स था उस समय? मतलब एकदम से आपको पहले से आप यू आर प्रिपेयर फॉर दैट और एकदम से लगा कि अब ये क्या करने जा रहे हैं?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर. हम लोग मुझे ना उस टाइम में ब्रेल सीखना था, तो हम लोग ब्लाइंड स्कूल गए थे, तो वहाँ तब जॉर्ज को ये लगा कि इस फील्ड में मुझे काम करने का जरूरत है इधर, तो ऐसे शुरू हुआ. तो मुझे कोई अचानक कुछ नहीं, हम लोग सोचे थे ये, और इनके पहला वाला शोफर और डिस्पैच क्लर्क और प्यून मैं रहा.
2: अच्छा.
0: शुरुआत में जब हम क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड शुरू किया था उस वक्त कुरियर सर्विस था, स्पीड पोस्ट भेजना था या
3: मंडल के टाइम भी बहुत टेलीग्राम भेजना था,
0: तो
3: पोस्टपोन होते रहा है जो नेशनल टूर्नामेंट सब. तो हम वो उन दिनों में टेलीग्राफ ऑफिस में जाना पड़ता था, वो टेलीग्राम्स काफी लिखे ना.
0: सो तो इनका सहयोग काफी रहा उस वक्त, और ये कह रही है कि ये
3: पर भी मैंने थे, गाड़ी चलाते थे, पहले ड्राइवर नहीं था जॉर्ज साहब के पास. मैं ही थी और प्यून भी मैं थी. सबसे पहले
2: जी सर. जी तो आपने सर जब काम करने के बारे में सोचा तो सबसे पहले मतलब क्या आइडियाज आए आपके माइंड में, कहां से सोचा कि अब यहां से शुरुआत करते हैं?
0: हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि शुरुआत में मैं क्रिकेट के बारे में जानता भी नहीं था. तो क्योंकि मैं विज्ञापन की दुनिया से आया था तो मैंने ये सोच के निकला था कि मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके माध्यम से लोगों का सोच में बदलाव लाना है, तो माइंडसेट को चेंज करना है. तो ये समझकर मेरा पहला प्रोजेक्ट आइडिया था कि टीवी के लिए एक सीरियल बनाना है.
2: ओके.
0: तो उस वक्त मैंने कहानी लिखा था, कहानी का नाम अभी भी मालूम है, अभिलाषा.
2: अच्छा.
0: तो एक ब्लाइंड व्यक्ति का कहानी था, और हमने सोचा कि ये कोई बड़ा फिल्म डायरेक्टर इसको बनाएगा. तो हमने कई लोगों से संपर्क किया, सत्यजीत रे, सईद मिर्जा, साई परांच पे, अमोल पालेकर, शशि कपूर, तो किसी से जवाब नहीं आया. तो मैंने, मेरे भाई उस वक्त मुंबई में था, तो मैंने उनको ये नाम दिया और कहा कि आपको इनका कोई फोन नंबर मिलेगा तो आप मुझे भेज दो. तो मेरे भाई ने शशि कपूर का नंबर भेज दिया, तो मैंने उनको फोन किया और शशि कपूर ने फोन उठाया. जब मैंने कहा कि मैंने ये प्रपोजल भेजा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे मिला नहीं. तो फिर उन्होंने मेरा उनका फैक्स नंबर दिया, तो मैंने फैक्स किया. और अगले दिन, वो संडे का दिन था, सवेरे हम लोग चर्च जाने वाले थे, तो तुरंत टेलीग्राम आया था हमारे पास शशि कपूर का कि आपका प्रपोजल मिला, आई एम इंटरेस्टेड, हम मिलते हैं, कब आप बॉम्बे आ सकते हैं. तो ये था पहला प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमने सोचा. फॉर्चुनेटली
2: रिस्पॉन्सेस आपको जो मिले इसके लिए, मतलब आपको भी यही होप थी कि ऐसा ही होगा, या आपको, आप यू आर ऑप्टिमिस्ट?
0: आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, एंड मेरा विश्वास ये है कि अगर आप कुछ कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं. द नीडल विल नॉट मूव विदाउट यू ट्राइंग. जो मैंने उचित समझा मैंने किया, और फिर लोग रिएक्ट किया. तो शशि कपूर साहब ने मुझे बुलाया, तो हमारा 2-3 बार मुलाकात हुआ, मीटिंग्स हुए. बस उस मीटिंग्स का बस एक ही फायदा हुआ, मुझे मेरा और उनका जान पहचान हो गया. बट वो टीवी सीरियल जो है वो आगे
2: नहीं, अभिलाषा को पूरा करने की अभिलाषा पूरी नहीं हुई
0: बिल्कुल. और उसी दौरान मैं देहरादून गया था, तो देहरादून में मैंने ये ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा और

0: मेरे समझ में आया कि एक तो ये बच्चे आवाज के माध्यम से खेल खेल रहे हैं और मजा ले रहे हैं, दूसरी बात ये खेल से इनको काफी फायदा हो सकता है क्योंकि खेल के मैदान में आप काफी कुछ सीखते हैं, आपके काफी कुछ स्किल्स आ जाते हैं, और तीसरी बात भारत देश में जहां पर क्रिकेट एक जुनून है तो लोग देखेंगे और उनका सोच बदल सकता है, और चौथी बात मैंने समझा कि ये खेल जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल तक ले जा सकेगा, कैन बी टेकन राइट टू द ग्लोबल लेवल। तो ये सब सोच के हमने वापस आया और रूपा से कहा कि हमारा पहला प्रोजेक्ट क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड होगा। और यहाँ पर हमारा क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड का जो जर्नी जो है शुरू हुआ, और 1990 में जैसे इतिहास मानते हैं अभी हिस्ट्री नोज इट दैट पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ टाटा स्टील चैलेंज कप, जिसको NIBS देहरादून ने जीता गुजरात की टीम को हराते हुए।
1: बिल्कुल सर।
0: और फिर उसके बाद हर साल ये क्रिकेट टूर्नामेंट होना शुरू किया, और फिर 1993 में हमने कहा कि वी नीड टू रेज द बार, और हमने कहा कि वर्ल्ड कप होना है 5 साल बाद। तो उस सिलसिले में हमने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका से मुलाकात किया, उनको दिल्ली बुलाया सितंबर महीने 1995 में। तो वहां पर 2 दिन का मीटिंग हुआ और फिर स्टैंडर्ड रूल्स हुआ, फिर बॉल को डिसाइड किया क्योंकि हर देश में बॉल अलग था। तो ये फैसला हुआ कि भारतीय बॉल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूज किया जाए जब तक एक नया बॉल डिजाइन न हो।
2: थोड़ा सा सर अगर आप ब्रीफली अगर समझा पाए कि अलग अलग कंट्रीज की बॉल्स में किस किस तरह के डिफरेंसेस थे, थोड़ा सा।
0: बिल्कुल, हाँ, इंग्लैंड में जो है एक छोटा सा फुटबॉल था, वो
2: अच्छा
0: फुल फुटबॉल नहीं था, एक छोटा सा इसका फुटबॉल था जो हाथ में पकड़ने के लिए मुश्किल है, तो हाथ में पकड़ेंगे रिस्क के सहारे वो पकड़ते हैं उस बॉल को। और ऑस्ट्रेलिया के जो बॉल है वो काला केन से बना था, वो एक अंडेकार था, इट वॉज लाइक ओवल एंड एलिप्स, एंड उसके अंदर मेरे ख्याल से बॉटल कवर्स था, तो जिंग जिंग करता था। और फिर श्रीलंका और भारत में ये सेम बॉल था जो इंडियन बॉल ही था, पाकिस्तान में इंडियन बॉल से थोड़ा बड़ा था वो बॉल, नहीं आवाज करता था बट इट वॉज स्लाइटली बिगर। तो अच्छा। इस मीटिंग में जब डिस्कशन हुआ, जाहिर है कि हर देश के लोग बिल्कुल, तो आखिर में जाके हमने कहा कि अगर आपको वर्ल्ड कप करना है तो हमें बॉल के बारे में डिसाइड करना है। तो न्यूजीलैंड का जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने उठ के कहा कि मैं प्रपोज करता हूँ कि हम लोग भारतीय बॉल यूज करेंगे, एक तो वो आवाज अच्छा, और अगर पसंद नहीं है तो हम यू नो जर्नी तो शुरू। तो फैसला कि पहला वर्ल्ड कप नवम्बर में और भारतीय बॉल, तो बस 2-3 साल लगे हमें पूरा कार्यक्रम एक साथ करने में क्योंकि स्पॉन्सरशिप था, लॉजिस्टिक्स था, वॉलंटियर्स की ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत थी, और तो उसमें काफी हम चलते चलते हम सीख भी रहे थे, हम कैसे करना पहले से जानकारी नहीं था, तो हम सीख रहे थे कि हमें ये ऐसे करना है, तो एक मैच कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो सब हम चलते चलते सीखा। इंडियन टीम को कैसे चुनना है, और आप जानते हैं कि क्रिकेट के टीम में 3 वैरायटी के प्लेयर्स होते हैं, एक B1, B2 और B3।
2: यस सर।
0: और फिर वहां पर मेडिकल चेकअप में भी काफी धांधला होता है, यू नो कुछ लोग कहते हैं कि मैं
2: ये सब बातों पे मतलब इतने क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस कोई बात है कि आपको लगता है सर कि जेन्युइन क्रिकेट हो रहा है, ब्लाइंड क्रिकेट आज अगर आप देखते हैं तो?
0: नहीं, आज हम क्रिकेट उतना ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, पर मेरा एक ही सोच था और मेरा एक ही कमिटमेंट था कि जो खिलाड़ी खेलेंगे वो जेन्युइन खिलाड़ी होना चाहिए, बट जितना भी हम प्रयास करेंगे एक आध लोग ऐसे निकल जाते हैं जो इन रूल्स को ब्रेक करते हैं, वो तो हमारे हाथ से बाहर है क्योंकि हम उस वक्त जब हम सिलेक्ट करते हैं हमें वो जानकारी नहीं है, हमें डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस पे पूरा निर्भर होना पड़ता है, और डॉक्टर्स को भी यू नो ये B3 और B4 में फर्क उनको ज्यादा मालूम नहीं है। सो B3, B2, B1 और B1 में भी काफी गड़बड़ हुआ करता था क्योंकि काफी लोग
2: थोड़ा बहुत गड़बड़ तो B1 में ही होता है सर।
0: इसीलिए हमने वो ब्लाइंड फोल्ड का सिस्टम लाया, पर ब्लाइंड फोल्ड का सिस्टम देखने में उतना अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अ गुड विजुअल। वो था, बट एनीवे लोगों को मजा आया, दुनिया को मजा आया क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड।
2: पहले वर्ल्ड कप के बाद पूरे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया लेवल में क्या रेस्पॉन्स मिला आपको सर?
0: नहीं, काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स था, मीनिंग हर देश में लोग काफी उत्साहित थे एंड लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा भी, यू नो क्योंकि
2: हमारे यहाँ राजस्थान के भी 2 बंदे फर्स्ट

0: थे, मिस्टर निर्मल एंड राजेंद्र वर्मा जी।
1: हाँ दोनों थे, बिल्कुल बिल्कुल जी। इनफैक्ट वो पहले 3 वर्ल्ड कप्स खेले थे।
0: यस सर राजेंद्र वर्मा,
1: अब्दुल सत्तार नाम का एक लड़का भी था।
0: हाँ बिल्कुल, बीकानेर से मिस्टर अब्दुल सत्तार भी। जी हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल, या
0: यस सर।
1: हालांकि राजेंद्र वर्मा जो है
0: निर्मल थे,
1: निर्मल कुमार था। आनंद राजस्थान का नहीं है, आनंद बिहार का,
0: कर्नाटक से मेरे ख्याल से आनंद।
1: नहीं वो मूल रूप से वो बिहार के हैं, वैसे कर्नाटक में पढ़ाई किया था उन्होंने।
0: ओके, एजुकेशन उनका वहां से था। ओके
1: जी जी जी।
0: तो सर अभी ब्लाइंड क्रिकेट की बॉल पर हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि जब उस समय जो बॉल का आप लोगों के बीच में इतना डिस्कशन हुआ, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट तो काफी इवॉल्व हुआ है सर, लेकिन वो क्रिकेट बॉल आज भी वैसा के वैसा ही है।
1: उसके ऊपर वो डिबेट अभी बंद हो गया है, अभी लोग बदलने का बात नहीं कर रहे हैं अभी। एटलीस्ट मेरी सुनाई में नहीं आ रहा है।
0: व्हाट डू यू थिंक सर इसके बारे में?
1: नहीं मेरे ख्याल से बॉल शायद यू नो आगे जाके अभी आजकल
0: थोड़ा और भी मतलब बता दूं इसमें कि मेरे बात एक और बात बीच बीच में आती रही कि कुछ ऐसी बॉल्स हैं जिसमें जब हमारे पास में वो आती है तो वो जंप लेती हुई आएगी और उसमें कुछ विस्लिंग होता है, ऐसा भी कुछ बीच में आया था।
1: नहीं अभी टेक्नोलॉजी लेके काफी कुछ हो सकता है और मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे इस बारे में सोच भी रहे होंगे। तो 2008 के बाद मैंने क्रिकेट से बिल्कुल संन्यास लिया, क्योंकि अभी जो स्कोर फाउंडेशन और आईवे शुरू हुआ तो मेरा ध्यान उसकी तरफ हुआ और मैंने सोचा कि जो क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड में जो योगदान मुझे देना था वो मैं दे चुका था। मेरा योगदान मेरे ख्याल से वो स्टार्ट करना था और एक नियोजित तरीके से आगे जाने का एक नींव डालना था। तो उसके बाद मेरा कुछ काम उसमें बचा नहीं था। दूसरा क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड में जो मेरा जो पैशन था, जुनून था, वो दूसरे डायरेक्शन में जाना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं खुद जिसको प्रोजेक्ट को मैंने शुरू किया मैं खुद उसका एक रुकावट बनूंगा आगे जाके। तो आई डोंट वांट द गेम टू स्टॉप, आई वांट द गेम टू प्रोग्रेस। और इतना ही नहीं मेरे जीवन काल में इसको डेवलप करते हुए मुझे देखने का भी मौका मिल रहा है अभी।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब बहुत खूब। नहीं ये बहुत जबरदस्त बात है, जनरली पीक पर आने के बाद शायद ही मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसे टाइम पर उसको हैंड ओवर कर दिया और जिन्होंने उसको मतलब टेक ओवर किया वो भी बहुत ही ब्रिलियंटली इसको मतलब रन कर
1: आगे, आगे, हाँ, बिल्कुल आगे
0: ले जा रहे हैं। यस तो सर अब स्कोर फाउंडेशन पे आ जाते हैं थोड़ा सा।
1: जी जी,
0: ये कॉन्सेप्ट कैसे आया माइंड में और ये खासकर नाम जो है स्कोर फाउंडेशन ये कैसे तय किया?
1: तो जब हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था 1990 में तो
0: स्कोर कहीं ना कहीं क्रिकेट से जुड़ा हुआ है ना सर?
1: या क्रिकेट से जुड़ा है। शुरुआत में मेरा प्रोजेक्ट था कम्युनिकेशन और रिसर्च पे काम करने का मेरा इरादा था। तो हमने सोसाइटी फॉर कम्युनिकेशन एंड रिसर्च नाम का एक संस्था शुरू किया था 1989-90 में। तो उसका शॉर्ट फॉर्म था स्कोर। और फिर उस स्कोर को हमने 1996-97 में बंद कर दिया था और क्योंकि क्रिकेट आगे बढ़ गया था। और जब मुझे दोबारा एक संस्था शुरू करने का अवसर मिला या जरूरत पड़ी तो मैंने सोचा कि मुझे स्कोर नाम से लोग जानते हैं तो मुझे वो स्कोर नाम को ही आगे ले जाना है। तो स्कोर नाम मैंने सिर्फ SCOR लगाया और इसको स्कोर फाउंडेशन बना दिया। और एक कहानी है यहाँ पर कि मुझे एक दिन बुलाया गया एक कॉन्फ्रेंस के लिए जहाँ पर मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में एक पैनल चलाना था, मुझे मॉडरेटर बनाया था। तो पैनल शुरू होते होते काफी देर हो गया क्योंकि बारिश हो रहा था, लोग देर से आए। तो ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास आके बोला कि आप तो मॉडरेटर हैं, आपको सिर्फ हम 1 मिनट देंगे। आपको इंक्लूजन का जो एसेंस है, कॉन्सेप्ट है, ऑडियंस को समझाना है उस 1 मिनट में और फिर पैनलिस्ट से क्वेश्चंस पूछना है। तो मैंने कहा कि इंक्लूजन का मतलब ये है, स्पेस फॉर ऑल, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, रिकग्निशन बाय ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल।
0: क्या बात है,
1: SCORE, ये है आपका इंक्लूजन।
0: यस यस यस यस सर।
1: सो वहां से तो मैंने सोचा ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा संस्था के नाम के रूप में भी
0: जी।
1: तो ये रहा ये स्कोर का शुरुआत। और फिर हमने क्योंकि क्रिकेट के दौरान और फिर शायद जानते नहीं है कि 1999-2000-2001 मैंने ब्रिटिश एयरवेज की सपोर्ट से ब्लाइंड युवक और युवकियों को कम्युनिकेशन स्किल्स के कार्यशाला चलाया।
0: अरे वाह सर, क्या बात है सर।
1: और ये मुझे मौका मिला कि यू नो भारत की

0: हर स्टेट में जाके युवा युवतियों से मिलने का मौका मिला मुझे। तो एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गया कि असली प्रॉब्लम जो है वो नजर का नहीं है, नजरिया का। कोर फाउंडेशन और आईवे प्रोजेक्ट का शुरू करने का मकसद यही था कि हमें दुनिया का नजरिया बदलना है। तो ब्लाइंड लोगों का नजरिया और समाज का नजरिया दोनों तरफ, तो ये सोच के हमने आईवे प्रोजेक्ट शुरू किया था और हमने कम्युनिकेशन को यूज किया। शुरू में हमने एक मैगजीन बनाया था बियॉन्ड द आई करके, बट प्रिंट और ब्रेल में आता था वो, पर वो चला नहीं। तो हमने आईवे वेबसाइट शुरू किया और फिर आईवे ये है रोशनी का कारवां रेडियो कार्यक्रम शुरू हुआ।
1: बहुत सुना है सर हम लोग।
0: हाँ, 2005 से लेके 2014 तक
1: जी।
0: और उसके वजह से लोग हमें कॉल करना शुरू किया अपने व्यक्तिगत चैलेंजेस लेके। तो हमने निश्चय किया कि हमारा एक हेल्पलाइन भी होना चाहिए, तो आईवे हेल्प डेस्क का शुरुआत हुआ। फिर हमने एसएमएस लिया, एसएमएस के माध्यम से लोगों को जानकारी देना शुरू किया। हमने उसके बाद व्हाट्सएप शुरू किया और फिर 2013 में कुछ हमें स्पॉन्सरशिप मिला तो हमने नजरिया नाम का टीवी सीरियल भी किया
1: नसीरुद्दीन शाह के साथ।
0: हाँ बिल्कुल। और तो अभिलाषा जो आगे नहीं गया तो वो
1: नसीर साहब आ गए उसमें।
0: और फिर हमने ये, तो आज की तारीख में ये हेल्पलाइन के माध्यम से करीब 20,000 लोग हर साल हमें कॉल करते हैं अलग अलग एरिया से, कॉर्नर से, में चैलेंजेस एजुकेशन के माध्यम से हो या रिहैबिलिटेशन के बारे में हो या अपने अधिकार के बारे में हो, इन सब बारों में क्वेश्चंस पूछते हैं और हमारे काउंसलर्स उनका जवाब देना प्रयास करते हैं। और कभी कभी हमारे पास जवाब नहीं होता है तो हम फिर कहते हैं कि हम आपको फ़ोन करके दोबारा बताएंगे। तो हम रिसर्च करते हैं और फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर उनको वापस कॉल करके एक दो दिन, कभी कभी एक दो हफ्ते बाद उनको फ़ोन करके उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको
1: कॉन्टैक्ट।
0: हाँ, तो ये पहली पड़ाव जो है वो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दूसरी पड़ाव ये है कि जब लोगों को मदद चाहिए, कुछ सर्विसेज चाहिए, तो हम उनको दूसरे एनजीओज या सरकारी संस्थाओं से उनको कनेक्ट करते हैं। और जब कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो हम उसका एडवोकेसी करते हैं। जैसे कि अभी पिछले 2-3 हफ्ते में हमें ये कई लोग हमें फोन करके कहा कि हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम लिखने गए थे तो गाइडलाइंस में कहा कि हम खुद अपना स्क्राइब लेके आएंगे, बट जब हम लोग सेंटर गए तो उन्होंने हमारे स्क्राइब को मना किया और उन्होंने अपना स्क्राइब दिया जो पढ़ने भी नहीं जानता था और लिखने भी नहीं जानता था, बिल्कुल बेकार। तो ये लोग कंप्लेन करने के लिए बोला, तो हम लोग अभी सीसीपीडी में इनका कंप्लेन दायर कर रहे हैं कि आइदर री एग्जाम करो और या इनको पास करा दो, तो ऐसे कई समस्याएं होते हैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के जिंदगी में, जो अक्सर सिस्टम के माध्यम से हो या दूसरे लोगों के ना समझी के वजह से हो, ऐसे कई सवाल और भेदभाव के इश्यूज आते हैं तो उसको हम टैकल करने का प्रयास। और फिर अभी हमने शुरू किया कि हम ये भी चाहते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया, रेडियो वगैरह के माध्यम से उतने ज़्यादा लोग हमारी बात, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बड़ा है और देश भी इतना बड़ा है, तो हम हिंदी बेल्ट में अभी शुरू कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग जगहों पर जाके सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ और लोकल एनजीओस के साथ मिलके कम्युनिटी से ब्लाइंड लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनके साथ कार्यशाला करें, जानकारी दें और फिर उनको एनजीओस या सरकार के माध्यम से उनको रिहैबिलिटेशन और मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करें। तो ये है हमारा आगे जाने का प्लान। तो जैसे 2011 का सेंसस के हिसाब से 5.4 मिलियन ऐसे लोग हैं इंडिया में जो ब्लाइंड है, वो संख्या वैसे इससे भी काफी ज्यादा हो सकता है। और वो संख्या, वो जनगणना हुआ था 2011 में, करीब 15 साल पहले,
1: बिल्कुल सर।
0: तो ये नंबर इससे काफी ज्यादा हो सकता है अभी,
1: डेफिनेटली सर।
0: तो यही है हमारा दिस वन की लोगों को ढूंढें, उनको जो जरूरत पड़े उन सर्विसेज से उनको जोड़ें और किसी न तरह उनको मुख्य धारा में लाने का। सो देखते हैं, अभी टेक्नोलॉजी का युग भी आ गया है, काफी कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुख्य धारा में जुड़ने का काफी नए अवसर आएंगे। हालांकि एक्सेसिबिलिटी का मुद्दा अभी काफी गंभीर है और बड़ा है और मेरे ख्याल से उसके लिए भी आंदोलन करना जरूरी है कि लोग ये समझें कि अगर जो भी टेक्नोलॉजी हम लाएंगे उसको ब्लाइंड लोग भी इस्तेमाल करते हैं, देयरफॉर इट हैज टू बी एक्सेसिबल।
1: जो बड़े बड़े सिटीज हैं खासकर

0: में तो फिर भी फैसिलिटीज अच्छी है, लेकिन जो टीयर टू टीयर थ्री छोटे जो सिटीज है या रूरल एरिया में तो फिर भी चैलेंजेस बहुत है सर, आज भी क्या देखते हैं आप?
1: बिल्कुल चैलेंजेस है, बड़े सिटीज में भी वैसे फैसिलिटीज है, बट मेरे ख्याल से जितना हमारे जनसंख्या है, जितना अपना नंबर्स है, उसको उसमें उससे कोप करने के लिए वो क्षमता नहीं है। और ये जो फैसिलिटीज बड़े बड़े सिटीज में भी है वो एक चैरिटी मोड पे वो लोग चलाते हैं ज्यादातर, एक दया की यू नो एक सहानुभूति किसी ने तरह इनको ऑक्यूपाई करो, ये सोच के नहीं करते हैं कि इनको हमारी इकोनॉमी में जोड़ना है, ये नहीं सोचता है कि ये भी हमारे देश का नेशनल इनकम या हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स है,
0: डेवलपमेंट का पार्ट नहीं समझते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से यू नो जो अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो उनको बोलो मत करो यार, हम कुछ और करवाते हैं आपसे। तो मैथमेटिक्स और साइंस का भी यही किस्सा रहा।
0: जी।
1: और छोटे शहरों में और ग्रामीण इलाकों में आपने सही कहा बिल्कुल कि फैसिलिटीज बहुत कम है।
0: जी।
1: और हालांकि अभी सरकार ने काफी सीआरसी शुरू किए हैं जहां पर फैसिलिटीज अभी काफी है, और उत्तर प्रदेश मैंने सुना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लाइंड स्कूल बॉयज के हैं और एक ब्लाइंड स्कूल गर्ल्स के लिए है, स्पर्श स्कूल के नाम से जाना जाता है।
0: अच्छा।
1: तो और उनका काफी अभी प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में ब्लाइंड स्कूल्स हो गर्ल्स और बॉयज के लिए, तो ये अच्छा पहल है, पर यू नो संख्या इतनी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि जब ब्लाइंड हो जाते हैं स्पेशली लड़कियां, उनको घर से बाहर आने का बहुत मुश्किल होता है।
0: बिल्कुल, गर्ल्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं।
1: जी
0: बिल्कुल। अच्छा सर, स्कोर फाउंडेशन के और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं हाईवे के अलावा?
1: हमारा मेनली प्रोजेक्ट यही है, तो ये हाईवे हेल्पलाइन है, फिर हमारा कम्युनिकेशन हम लोग काफी करते हैं, हम पॉडकास्ट करते हैं, पर मकसद एक ही है, नजरिया को बदलना है।
0: बिल्कुल, तो सर, बिल्कुल।
1: कुछ लोग हैं जो आम समाज मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उनका सोच बदलना है, ब्लाइंड लोगों के लिए अवसर क्रिएट करवाना है, उनको जो घर में बैठे हैं या बेकार बैठे हैं उनको खिदारा में शामिल करना है, जैसे कि रिहैबिलिटेशन हो या एजुकेशन हो या स्किल ट्रेनिंग हो या काम के लिए तैयार करना है, तो ऐसे उनको मोटिवेट करो, उनको ऐसे संस्थाओं से जोड़ो ताकि उनका गाड़ी चले। तो हमारा एक छोटा टीम है और करीब 20-25 हज़ार लोगों के साथ एक साल में काम करते हैं।
0: छोटा टीम भले ही हो सके लेकिन काम बहुत बड़ा है। आपकी टीम में रूपा मैम ने कब तक कंट्रीब्यूट किया सर, ये बताइए, उनको कब फ्री किया आपने?
1: नहीं, ऐसा है कि जब एक संस्था टाइप का बन गया, जब लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं
0: जी,
1: तो अक्सर ये सोचा जाता है कि जब परिवार के लोग शामिल हो जाता है, ये कि एक परिवार का पारिवारिक
0: ये परिवार का हो जाता है,
1: और दूसरे लोग सोचेंगे कि ये बस ये परिवार के अंदर ही है, तो इसलिए
0: बहुत बहुत सही बात कह रहे हैं सर आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात।
1: और फिर यू नो हमारे घर में दो बेटियां हैं, हमारी बड़ी बेटी छोटी बेटी, तो वो स्कूल जा रही थी, तो रूपा ने ऐसा प्रोफेशनल ऑप्शन चुना कि वो सवेरे के टाइम वो अपना काम पे जाती थी और जब बेटियां घर आती थी तो उन्हें जरूरी समझा कि हम में से कोई ना कोई घर पे हो
0: जी,
1: क्योंकि वो भी एक जिम्मेदारी है ना, अगर बच्चे हैं तो उनका देखभाल भी करना जरूरी है।
0: डेफिनेटली सर जी। तो आपके सर ये 35-40 सालों की जो जर्नी रही है, इसको किस तरीके से आप अगर समराइज करना चाहें तो कैसे करेंगे सर?
1: जैसे मैंने कहा कि आज हम अरिजीत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे।
0: बिल्कुल सर, पीक पे आके।
1: हाँ, उन्होंने पीक 38 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि मैं प्लेबैक सिंगिंग नहीं करना चाहूंगा, मैं खुद अपना कॉम्पोजिशंस करूंगा और मुझे जो मुझे पसंद है वो करूंगा। तो इसी प्रकार हम दोनों का अभी सोच यही है कि हमारा फोकस इज टू एंजॉय एंड लिव द लाइफ एज फुल एज पॉसिबल ऑन आवर ओन टर्म्स, कोई दूसरा हमें बताएंगे नहीं कि हम कैसे जीना है।
0: क्या बात है सर, वाह।
1: हमारे ही सोच और हमारे ही पेस स्पीड या पेस पे हम अपना जिंदगी चलाएंगे।
0: बिल्कुल सर, बहुत खूब सर, बहुत जबरदस्त। तो रूपा मैम और आपके साथ सर मतलब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला, और बहुत मजा आया। मतलब मैं चाहूंगा कि रूपा मैम भी लास्ट में अगर कुछ कहें हमारे सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को, तो अच्छा लगेगा मुझे।
2: जितना अच्छा है कम्युनिकेटर

0: जॉर्ज है उतना बेकार कम्युनिकेटर हूं मैं करके दिखा तुम्हें, वेरी विजुअल और करने का इसमें क्रिएटिव है, लेकिन कम्युनिकेशन में ना इतना खास नहीं है। लेकिन मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि हमारा एक लाइफ बहुत एंजॉयबल लाइफ रहा, अभी भी है।
1: तो हम लोग अपने खुशी हम दोनों के साथ भी है, हमारे बच्चों के साथ भी है, और हम जो काम करते हैं उसमें भी हमें खुशी होती है।
0: और बहुत एडवेंचरस भी है हम काम के, और हम लोग प्राउड भी है उसके बारे में जब सोचते हैं भगवान हमें कैसे लेके गया।
1: क्योंकि सच बात यह है कि कई ऐसे मौका था जब, सच बोलूंगा मैं, कि बैंक में पैसा भी नहीं था, ने अपना काम निकाला, और तो इसमें डिवाइन हैंड भी था, और फिर जो हम कर रहे थे हमें उसमें मजा आ रहा था।
2: जी
1: देश देखने का मौका मिला, दुनिया भी देखने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका भी मिला, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से मिलने का मौका मिला। तो ऐसा नसीब ज्यादा लोगों के पास नहीं होता है।
2: डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो श्रोताओं, आज जॉर्ज सर और रूपा मैम को सुना आपने, उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। जॉर्ज सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को?
1: बस जीना है तो दिल से जियो, जो मन में आए, जो आपको पसंद है, मेरे ख्याल से वो करना चाहिए। और ये हमारा जिंदगी एक ही है, और उसको उसमें यू नीड टू मैक्सिमाइज ना खुशी है। एंड ये सोच के हमारे जो या एंग्शियस होना या उसके बारे में सोचने से गाड़ी आगे नहीं जाएगा। आपको नए नए अवसरों के बारे में सोचना चाहिए, जानकारी अपना बढ़ाना चाहिए, जिससे आपको ये मालूम पड़े कि जिंदगी में और क्या क्या आप कर सकते हैं। और अगर जिंदगी में आप विफल होते हैं, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा अपना कार्यशाला में ये कहता था कि आज जो करना है अभी सोचो और अपना प्लान करो, क्योंकि 50 साल बाद अगर आप बैठ के कहेंगे कि अरे यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, आपने क्यों नहीं
2: बिल्कुल,
1: किया।
2: बिल्कुल सही है सर जी।
1: जैसे कि आपने पहल किया, अब ये हमराई रेडियो कार्यक्रम चला रहे हैं आप,
2: जी
1: तो मेरे ख्याल से इट्स अ पहल, मीनिंग आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट आपने किया, और इससे एक कम्युनिटी फीलिंग आता है, आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और लोगों में जानकारी करते हैं, और एक तरह का जागरूकता ला रहे हैं आप, तो
2: जी
1: आपने किया इसीलिए ये हो रहा है। बट
2: यस
1: बाकी
2: सर,
1: लोग घर में बैठ के कहते हैं कि अरे यार मैं ब्लाइंड हूँ, या मैं चल नहीं पाता हूँ, और मैं बेचारा हूँ, मुझे कोई आके मदद करो। सो आई थिंक जैसे किसी ने कहा कि हमें अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी लेना चाहिए और उसके बारे में कुछ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और दूसरी बात, हमेशा सिक्योरिटी, वी ऑल्सो ऑलवेज लुक फॉर सिक्योरिटी, और जब आप सिक्योरिटी खोजते हैं तो यू लूज आउट अ लॉट इन लाइफ। कई
2: यस सर,
1: अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही काम करना है, और अगर कभी दूसरा अवसर आता है तो आप मना कर देते हैं बिना सोचे, क्योंकि वो प्राइवेट है या आपका रिस्क आप उसमें देखते हैं। मेरा सोच कुछ और है, तो वैसे भी आई थिंक एवरीबडी फॉर देमसेल्व्स एंड
2: नाइस टॉकिंग सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सुनते ही जाएं बस आपको, तो एक एक वर्ड में इंस्पिरेशन है आपके, तो बहुत धन्यवाद आज सर हमें वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे सुनने वालों को बताने के लिए।
1: अगर आप में से आपके सुनने वाले में ब्लाइंड लोग हैं
2: जी
1: और उनको अगर दृष्टिबाधिता के साथ जिंदगी के बारे में जानकारी चाहिए, या कुछ मुश्किलात में से गुजर रहे हैं और उनको एडवाइस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए,
2: डेफिनेटली सर, प्लीज प्लीज प्लीज बताइए, मैं भूल
1: तो
2: भी गया
1: ये
2: था, बताइए।
1: हाईवे हेल्प डेस्क पे वो जरूर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8800004334, 8800004334। इस नंबर पे आप मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हैं।
2: 4334
1: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।
2: सर, थैंक यू सो मच सर। तो श्रोताओं, आईवे का नंबर नोट कर लें, 8800004334, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह की हेल्प, अगर आप ब्लाइंड हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो बहुत धन्यवाद रूपा मैम और जॉर्ज सर।
1: थैंक यू।
2: श्रोताओं, ये था आज का हमराही प्रोग्राम। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। तब तक सुनते रहो, मुस्कुराते।

0: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला था फिर क्वेश्चन का ही पता नहीं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि इतनी सारी चीजें होती हैं, समझ में ही नहीं आता कि भाई सोल्यूशन क्या है, और कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, और सोल्यूशन सोचते सोचते हम किस बारे में सोच रहे थे वो ही भूल जाता है। बाप रे, इतनी सारी चीजें चल रही होती है जिंदगी में, इतनी सारी चीजें चल रही होती है दिमाग में, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा इजी करें, लाइफ को थोड़ा आसान बनाएं लव यू जिंदगी के साथ। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले कल्पना जी का स्वागत करते हैं, ग्लोबल अस्पताल से जुड़े हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी।
0: और हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी, जो कि रेडियो के जाने माने आरजे भी हैं और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। लव्यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आप सभी से फिर रूबरू होकर खुशी हो रही है।
0: जी बिल्कुल, और जितनी लाइफ आसान होती है उतनी खुशी डबल होती जाती है, ये तो अब हम समझ गए हैं। और पिछले ही एपिसोड में हम बात कर रहे थे अपनी सोच की, थॉट्स की, जिनकी स्पीड बड़ी तेज होती है, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा कई बार। और हमें कल्पना जी बता रहे थे कि चार प्रकार के थॉट्स होते हैं, तो मैं सबसे पहले यही एक बार शुरुआत में मैं जानना चाहूंगी दीदी आपसे, कि जो आपने चार प्रकार के थॉट्स बताए थे उसकी अवेयरनेस किस तरह से हम बढ़ाएं या सेग्रीगेशन कैसे बेटर कर पाए, अगर उस बारे में आप कुछ बताएं।
1: सबसे पहले श्रोताओं को एक काम है कि अपने विचारों में से पांच ऐसे विचार बताएं जो उनको लगता है कि पॉजिटिव है। हमें पता है कि श्रोता सुन रहे हैं और वो जरूर अपने आप को ये काम देंगे कि सोचे कि कौन से पॉजिटिव विचार मेरे मन में आते हैं। तो जब भी हम सोचते हैं तो हमारे सोच के तीन ही दायरे होते हैं। दायरे मतलब कि स्थान होते हैं, वो मर्यादा होती है। तो हमारी सोच पहले अपने लिए चलती है, मैं मेरे लिए सोचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे लिए क्या सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं लोगों की मदद करती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे नेचर पसंद है, मैं बहुत खुशमिजाज हूँ, या फिर मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। तो ये विचार जब मेरे आते हैं तो उन्हें पॉजिटिव विचार कहा जाता है।
0: ओके।
1: लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसका डर लगता है, ये व्यक्ति जो ऐसे करते हैं ना, मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, मैं बार बार गुस्से में आ जाती हूँ, छोटी छोटी बात में मुझे चिड़चिड़ाहट हो जाती है, मुझे अपने पर डाउट है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं है। सो ये जो अनसर्टेनिटी है मेरे थॉट्स में, उसको नेगेटिव विचार कहा जाता है। अननेसेसरी थॉट्स क्या है कि पहले कभी 10 साल 15 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ था, बार बार वही मुझे याद आता है, वो शायद बुरी घटना थी, तो मुझे बार बार याद आके उसके कारण डर लगता है, या मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ। फलाना व्यक्ति सामने आता है तो उसके साथ मेरा जो बुरा अनुभव हुआ था वही मेरे विचारों में आता है, और 2-4 दिन तक लगातार वही मेरे मन में चलता रहता है। ये अननेसेसरी है। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता में सारा दिन मैं बिता देती हूँ, ये अननेसेसरी है। और जब मैं ऐसे विचार करती हूँ जो कि शांति से रिलेटेड होते हैं, कि मैं नकीलेक घूमने के लिए जाऊं, वहां पर खूबसूरत नेचर को देखते हुए मुझे शांति का एहसास हो, मुझे बहुत खुशी हो, पीसफुल फील हो, और मेरे मन में विचार आए कि अरे मैं कितनी अच्छी जगह पर रह रही हूँ, मुझे कितना परमात्मा ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं वॉक कर सकूं, मैं नेचर का आनंद ले सकूं, या मैं अपनी बालकनी में बैठ के पौधों को देखती हूँ, फूलों को देखती हूँ, तो मुझे खुशी होती है और शांति महसूस होती है। फिर मैं जब अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, सो मुझे पता है कि मेरी ये कैपेसिटीज है और इस एरिया में मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, तो इन विचारों को एलिवेटेड थॉट्स कहा जाता है। पीस से रिलेटेड, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड। तो हमें अक्सर अपने थॉट्स को देखने का अभ्यास जब हम करते हैं तो पता चलता है कि ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा, उसके बारे में जब हम फील करते हैं ना, पॉजिटिव थॉट्स हमें खुशी देकर जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमें दुख देकर जाते हैं, परेशानी देकर जाते हैं, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं।
0: मुझे एक सवाल था बस इसमें से, आपने जैसे कहा कि भविष्य के बारे में थॉट्स जो हमारे अनसर्टेनिटी के लेके डर है, या फिर हमें लगता है ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन भविष्य के बारे में तो हम सोचेंगे ही क्योंकि हमें प्लानिंग करनी है, और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो चीज तो उसमें आएगी ही, तो क्या अननेसेसरी होगा ही वो चीज?
1: ओके, मैं आपको एक काम देती हूँ, एक प्रश्न है ना, आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं,
0: ओके.
1: कैसा देखना चाहती हैं? सो आप जरूर पॉजिटिव ही सोचेगी कि मैं अपने आप को इस आरजे के पोस्ट पर देखना चाहती हूँ, इस तरह से देखना चाहती हूँ। तो आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ? जब ये सवाल अपने आप से पूछती हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ये डायरेक्शन है, मेरा ये प्रोफेशन है और इसमें मुझे यहाँ पहुंचना है। एज अ पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो मुझे यहाँ पहुंचना है। तो आप प्लान्ड बुद्धि से अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, लेकिन जब आपके पास कोई विजन नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं है, तब आप वेग थॉट्स के साथ फ्यूचर के बारे में कंफ्यूज होकर सोचते हो। जैसे आपने पहले गाना बताया ना, कंफ्यूजन मी कंफ्यूजन है
0: सॉल्यूशन का पता नहीं
1: का पता नहीं।
0: जी, राइट. वेग है वो, सब नहीं क्या सोच रहे हैं, बहुत कुछ. ओके, डायरेक्शन लेस मतलब हम सोच रहे हैं, तब वो उस कैटेगरी में जाता है. ओके, श्रीनिधि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी दो चीजों में डिफरेंस. एक तो क्योंकि हम थॉट की अवेयरनेस की बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में भी, तो एक तो हम कहते हैं कि ख्याली पुलाव पकाना ना, दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग जैसे कहता है, सोच रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, खुशी हो रही है, बट वो रियलिटी नहीं है. और एक मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि आप जो आप चाहते हो वही सोचो. तो डे ड्रीमिंग और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर है?
2: मैं कल्पना जी ने जहां बात छोड़ी, मैं वहां से उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा. उन्होंने कहा कि आप अपने आप को 5 साल में कहां देखते हैं. ये सिर्फ मैं समझता हूँ थेरेपी के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिजनेस के जगत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. खासकर हम लोग जो HR प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एक व्यक्ति को जब आप एक ऐसे पोजिशन पे हायर कर रहे हो जब उसका अनुभव बहुत लंबे समय का है, तो हम अक्सर उनसे पूछते हैं कि आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, इस कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं, या यहाँ पर आप काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं. तो ये पूछने का सबब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति कितना ग्रो करना चाहता है. इसके मायने ये होते हैं कि हम ये भी समझते हैं कि जब वो अपने आप को इतना ग्रो करने के बारे में एक विजन रखता है, तो उसके इस सफर में उसके साथ जो भी लोग होंगे वो भी ग्रो करेंगे, या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम करेगा वो भी ग्रो करेगा. इसे हम एक ग्रोथ माइंडसेट के रूप में कहते हैं. यानी हम अपने आप के बेहतरी के लिए कि हम आगे कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव वे में हम किस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा को देखें, अपने बढ़ते हुए स्वरूप को देखें. तो आप ख्याली पुलाव की बात कह रहे थे. ख्याली पुलाव वैसे टेस्टी तो बहुत होता है, मगर वो खाने को नहीं मिलता, वो ख्याल में ही रहता है. तो यहाँ पर जो चीज है कि मैनिफेस्टेशन में और ख्याली पुलाव में अंतर है कि ख्याली पुलाव सिर्फ ख्याल में है, वो जुबान तक नहीं आता. मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन में हम इस चीज को यूं देखते हैं कि जैसे मैंने वो चीज हासिल कर लिया है, मैं ऑलरेडी वो हूं, ये चीज मैं समझ कर चलता हूं. मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा करूंगा, इसके बारे में मैं नहीं सोचता कि इसको करने के लिए मुझे ये करने की जरूरत है. अक्सर हम इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं कि हम तिकड़म लगाते रहते हैं. हालांकि ये लफ्ज बहुत ही स्टैंडर्ड लफ्जों में नहीं गिना जाता, मगर उर्दू की जुबान में तिकड़म को एक अच्छा लफ्ज गिना जाता है. यानी मैं कैलकुलेशंस करते रहता हूँ कि भाई मैं ये करूंगा तो ये होगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाए तो वो हो जाएगा, बट वो कुछ भी हुआ नहीं है. आप सिर्फ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि ये होगा तो ये होगा, मगर अपने आप को जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि 5 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, आप अपने लिए एक विजन क्रिएट करते हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं ये हूँ 5 साल में. हो सकता है कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 5 साल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ किसी कंपनी या किसी डिपार्टमेंट का, मैं CEO हूँ, या एक विद्यार्थी ये कह सकता है कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मैं एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन चुका हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, या मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैंने ऑलरेडी गोल्ड मेडल जीत लिया है, मैं विनर हूँ. ये मैनिफेस्टेशन के लिए ये मेरा विजन बोर्ड है कि मैं अपने आप को ऐसा देखता हूँ कि मैं विजेता हूँ, मैंने वो चीज हासिल कर ली है. क्योंकि मैं अपने आप को उस तरीके से देखता हूँ और ऑलरेडी मैंने अपने आप को ऐसा विजुलाइज करना शुरू कर दिया है, तो उस जर्नी पर पहुंचने में मुझे बहुत आसानी होती है. मैं तिकड़मबाजी नहीं करता, मैं कैलकुलेशंस नहीं करता. जीवन के चैलेंजेस आते हुए भी मेरे मन में वो गोल क्लियर रहता है कि मुझे तो करना ही है, वो मैं हूं ही. इसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत ही सुंदर बात कही जाती है और खास ही मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये बात कही जाती है कि द बेस्ट वे टू बिकम इज टू बी, कि मैं ये बनूंगा मैं ये बनूंगा नहीं, मैं ऑलरेडी हूं. ये चीज समझ लेना, अपने आप को उस जामे में अपने आप को देखना, वो जामा अपने आप को पहना लेना, वो सक्सेस के करीब आपको ले जाता है. और आज इतने ज्यादा लाइफ कोचेस हो गए हैं, मैनिफेस्टेशन कोचेस हो गए हैं, इतने ज्यादा कोर्सेज होने लगे हैं इसके विषय पर. लोग लाखों रुपए देकर आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, आप देखो अपने आप को ऐसा. यही सीक्रेट है कि कोई गोपनीय या गुहे बात नहीं है कि अगर आप हासिल करना चाहते हो अपने सामने वो छवि बनाओ. कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप 1 करोड़ रुपए आप कमाना चाहते हो 5 साल में तो आप लिख के लगा लो, 1 करोड़ रुपए का चित्र आपके सामने बेडरूम में लगा होना चाहिए. सुबह उठते रात को सोते आपको वो चीज देखना है, देखना है, देखना है. और लोग कहते हैं कि भाई 5 साल बाद वाकई में मेरे साथ हुआ. अगर आपको एक मर्सिडीज कार चाहिए या स्पोर्ट्स कार चाहिए या एक ऐसा बंगला चाहिए, लोग बोलते हैं वो सामने रखो, अपने सामने विजन रखो उस चीज का. और विजन रखने का अर्थ ये नहीं है कि मैं सिर्फ विजन रखूं और मैं कुछ काम नहीं करूं. नहीं, काम तो मैं करी, मगर मैं अपने लिए वो विजन साफ बना रहा हूँ और मेरे पास वो चीज है, उसे मैं देख रहा हूँ, उसे साफ साफ नजरिए से मैं देख सकता हूँ. ये मेरी मंजिल है. और मंजिल के लिए रास्ता तो हम तय करेंगे ही, मगर बिना रास्ता तय किए हुए कोई मंजिल नहीं पहुंचता. मगर अगर मंजिल ही डिसाइड ना किया जाए और हम यूं ही रास्ते पे चलते रहे, अच्छा चलो इधर आया तो इधर चल दिए, उधर आया तो उधर चल दिए, तो फिर हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते.
0: मतलब जो डे ड्रीमिंग है उसमें कहीं ना कहीं टाइम जायर हो रहा है और जो मैनिफेस्टेशन है उसमें टाइम इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि उसमें एक्शंस भी जुड़े हैं साथ में. और आपने जैसे बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचते रहो, करना भी है और जो बनना है वो बन गए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव होकर सोचना है. तो कल्पना जी, जैसे आप थॉट्स बता रहे थे कि 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए थे, तो ये एलिवेशन में आता है, एलिवेटेड थॉट्स में आता है कि पॉजिटिव थॉट्स में इसको काउंट करेंगे?
2: मैं एक और चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा इससे पहले कि कल्पना जी इसका जवाब दें. बहुत बार जो ख्याली पुलाव है उसमें हम ख्यालों में ही खोए रहते हैं. हमें लगता है कि जो डे ड्रीमिंग की आप बात कर रहे थे, दिवा स्वप्न की आप बात कर रहे थे, उसमें हम उसी में खुशी महसूस करने लगते हैं. हमें लगता है कि वाह, खुशी रहते, वाह ये मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा. ये बिल्कुल वैसा ही है कि नाम इनका त्रिलोकीनाथ है और रहते हैं किराए के चौबारे पे. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ हमारे कुछ कॉन्क्रीट एफर्ट्स होने चाहिए. बहुत ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, मगर हम कुछ करने वाले हैं उसके लिए दिन ब दिन छोटे छोटे एक एक कदम तो रखने की जरूरत है. जिगर मुरादाबादी का एक शेर मुझे याद आता है, वो लिखते हैं, फिक्र मंजिल है ना होश ज्यादा, ये मंजिल मुझे जा रहा हूं जिस तरफ ले जा रहा है दिल मुझे. कहने का मतलब ये है कि हमें मंजिल क्या है उसकी फिक्र नहीं करनी है. अगर मुझे सिर्फ ये तय करना है कि ये मेरी मंजिल है और मुझे अपने दिल को ये बता देना है कि ये मेरी मंजिल है और दिल मुझे उस तरफ ले जाएगा, अगर इतना अगर हम करें, अपने दिल को वो डायरेक्शन दे, अपने मन को वो सही दिशा दे दें, वो मंजिल दे दें, तो मन हर दिन मुझे उस मंजिल के करीब ले जाएगा.
0: क्या बात कल्पना जी, आपसे अगेन मैं उसी क्वेश्चन पे आती हूँ, या आप कुछ ऐड करना चाहें तो, कि ये जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट जो हम कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज होने लगे हैं आजकल, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, गुरुज हैं, बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं, रील्स में आते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी ऑफ थॉट्स में आता है?
1: ये है एलिवेटेड थॉट्स. मैनिफेस्टेशन कोई दिवा स्वप्न नहीं है या कोई ख्याली पुलाव नहीं है. मैनिफेस्टेशन जो भी हम सोचते हैं, हमारी सोच का पहला असर हमारे हार्मोन्स पर होता है, हमारे संपूर्ण शरीर की एक्टिविटी पर होता है. और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करने लगते हैं, और जैसा हम फील करते हैं वैसी ही हमारी वृत्ति अर्थात एटीट्यूड बनता है. तो अगर हम थॉट की जर्नी को देखें, तो थॉट को अगर हम सीड कहे, तो थॉट के बाद नंबर आता है फीलिंग्स का, इमोशंस का, इमोशंस के बाद नंबर आता है एटीट्यूड का, वृत्ति का, वृत्ति के बाद नंबर आता है व्यवहार का, एक्शंस का. सो जैसा थॉट होता है, बीज होता है, वैसे ही फीलिंग्स बढ़ती हैं, वैसा ही एटीट्यूड होता है, और वैसे ही एक्शंस ऑटोमेटिकली होने लगती हैं. तो दूसरा असर जो होता है आपके थॉट का आपके बॉडी के बाद, दूसरा असर होता है आपके एनवायरमेंट पर। आपका एनवायरमेंट आपके थॉट के अकॉर्डिंग बदलने लगता है और वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड होने लगता है। सो आज की एक बात बताती हूँ। एक क्लाइंट है, पुराने मेरे युवा साथी है, जो निराशा से घिरे हुए रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। पिछले कुछ 1-1.5 साल में उन्होंने नौकरी किया, अच्छा परफॉर्म किया स्कूल में एज ए टीचर, तब वो ठीक थे, लेकिन उनकी नौकरी छूट गई, अभी वो घर में बैठे हैं। आज उन्होंने मुझे मैसेज लिखा कि मैं रोज 108 बार लिखता हूँ कि मैं मर जाऊं, मैं इतना निराश हूं। तो मैंने उनको कहा कि आपको लिखना ही है, तो मृत्यु आपके हाथ में तो है नहीं, जब होनी है तब होगी, क्यों नहीं आप ये लिखते हो 108 बार कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, सक्सेस मेरा कदम चूमती है और मैं विजय जरूर होऊंगा। तो दो थॉट्स है कि मैं, मेरी मृत्यु जल्दी हो जाए इतना मैं निराश हूं, या फिर मैं एक विजय व्यक्ति हूं, सक्सेसफुल हूं और मेरी सक्सेस मेरा कदम चूम रही है। इन दोनों ही थॉट से मेरी फीलिंग क्या हो, एक से मेरी निराशा बढ़ेगी और दूसरे से मेरा होप क्रिएट होगा। सो आप निराशा के साथ चलना चाहते हैं या होप के साथ चलना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। निराशा के साथ चलेंगे तो हाथ में निराशा ही आएगी। तो जब हम अपने थॉट्स को पहचानना शुरू करते हैं तब हम उन्हें चेंज कर सकते हैं।
0: राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने कही थी। मैं बस एक इसमें से सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर जैसे हमारे साथ ऐसा होता है, अचानक से हमारे अंदर डर बढ़ गया, पहले हम इतना नहीं डरते थे, अब ज्यादा डरने लगे हैं या ज्यादा हर्ट होने लगे हैं, यानी हमारे थॉट्स चेंज हो गए हैं, थॉट की अवेयरनेस हमें लानी है, हमें मतलब देखना है कि हम किस प्रकार से सोच रहे हैं। अगर हम फील कर रहे हैं हर्ट ज्यादा या फील कर रहे हैं डर ज्यादा आजकल, पहले नहीं करते थे, यानी थॉट्स में चेंजेस हैं।
1: बिल्कुल, हमारे थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं इसलिए हमें फियर फील हो रहा है। ओके, अगर मुझे डर लग रहा है किसी बात से, और अगर मैं खुद से कहूं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो पॉजिटिव है, और मैं डरती नहीं हूँ, हिम्मत मेरा, करेज मेरा स्वभाव है, तो तुरंत हमारा माइंड हमें उसका रिस्पॉन्स करता है। फियर की जगह हम करेज को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, भले वो थॉट आपको लगेगा कि झूठा है, अरे मुझे लग तो डर रहा है और मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं बहुत बहादुर हूँ, तो झूठा लग सकता है, बट वो झूठी चीज भी धीरे धीरे हमारा मन स्वीकार करने लगता है और फिर फियर की जगह हम रिप्लेस करते हैं करेज, हिम्मत को, ऑटोमेटिक ये होता है। तो इसी के लिए एक टेक्निक है जिस टेक्निक को कहा जाता है थॉट रेगुलेशन की कोर टेक्निक है ये। उस टेक्निक को कहा जाता है कैच, चेक एंड चेंज। तीन वर्ड्स है, सी से शुरू हो रहे हैं, कैच, चेक एंड चेंज। आपको डर लग रहा है, डर ही आपकी महसूसता है, परंतु डर के लिए आपके मन में विचार कौन सा चल रहा है, अरे मेरा बॉस मुझे आज डांटेगा क्योंकि मैंने कोई गलती की है, है ना, विचार ये है और उसकी फीलिंग ये है, डर लग रहा है आपको उसके सामने जाने की, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी,
0: थोड़ी सी
1: है ना
0: ऑकवर्ड सी,
1: कॉन्फिडेंट वाली नहीं,
0: कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा,
1: नहीं होगी। सो एक थॉट ने आपको फीलिंग की तरफ बढ़ाया, बॉडी लैंग्वेज की तरफ बढ़ा दिया, और बॉस के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो सचमुच आप डांट मिलेगी क्योंकि आपने शुरुआत थॉट से की। उसकी जगह पर एक प्रैक्टिस करके देखना, भले आपने गलती की है लेकिन आप ये सोचना कि गलती करके ही तो मैं सीखता हूँ और इस बार जो गलती की है मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा और बॉस को मैं ये विश्वास दिलाऊंगा, तो आपकी फीलिंग क्या होगी कि नहीं बॉस डांटेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने आप को प्रूफ भी करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो आपके बॉडी लैंग्वेज में डर नहीं होगा लेकिन एक आत्मविश्वास दिखाई देगा, और वो आत्मविश्वास लेकर जब आप बॉस के सामने जाएंगे
0: जी,
1: तो ऑटोमेटिकली ये एक असर है आपके बॉडी लैंग्वेज का सामने वाले के ऊपर, वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ मिलेगा। हो सकता है वो डांटे लेकिन प्यार से डांटे, देखो आप बहुत कैपेबल हो, आप कर सकते हो, इस बार आपकी गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान देना। तो एकदम गुस्से वाली डांट एक असर्टिवनेस वाली समझ के साथ बदल सकती है क्योंकि आप कॉन्फिडेंस के साथ गए। एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, अभी हम कर सकते हैं, हमारे श्रोता भी कर सकते हैं, कि आप इमेजिन करो कि आपको किसी बड़े व्यक्ति के सामने जाकर कुछ बोलना है, कुछ कहना है, अपनी बात कहनी है, और आपको उसमें हिचकिचाहट, डर लगता है। तो आपकी केवल बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने से आपके थॉट में वो करेज आ जाएगा। जब आपके मन में डाउट होता है, फियर होता है, तो आपके कंधे झुके हुए होते हैं, आपकी गर्दन झुकी हुई होती है। लेकिन जब आपके थॉट में कॉन्फिडेंस होता है तो आपके कंधे कैसे होंगे? चौड़े होंगे, गर्दन सीधी होगी। तो ये वाइस वर्सा है। थॉट्स थोड़े कमजोर है लेकिन हम बॉडी पोस्चर को थोड़ा सा अलर्ट कर ले और उस अलर्ट बॉडी पोस्चर के साथ अगर हम सामने जाएं तो आपको महसूस होगा कि आपके थॉट में भी वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। सो ये करके देखना कि जब भी किसी के सामने जाना है तो बहुत अलर्ट बॉडी पोस्चर के साथ जाए, सीधे खड़े हो, कंधे चौड़े हो, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हो और जो भी बोलना है हम फ्लो में आराम से बोलते जाए। देखना बॉडी पोस्चर का आपके थॉट्स पर भी असर होगा।
0: एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये भी।
1: हाँ,
0: कहीं ना कहीं। तो कहाँ से शुरू करे? मैं श्रीनिधि जी आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या पर्सनली आपने कभी फील किया कि आपने इस पे काम किया हो एंड यू नो आपने कोई भी टेक्निक को यूज किया हो, अगर कोई चीज आई, कोई भी यू नो ऐसी फीलिंग आई जो आपको लगा कि नहीं मेरे लिए करेक्ट नहीं है, तो थॉट्स पे काम किया हो या वाइस वर्सा?
2: जो बात आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ, कल्पना जी बता रहे थे कि कैसे हम अपने बॉडी पोस्चर को उसके ऊपर काम करके मुस्कुराते हुए इन चीजों को करते हैं तो भी मतलब आप बेहतर कर सकते हैं। जब हम इन चीजों को इस तरीके से करने का प्रयास करते हैं तो कुछ चीजें हमारे लिए तो हेल्पफुल है ही, मगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी वो एक बहुत ही, ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक पॉजिटिव छवि क्रिएट करता है, तो एक सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, वो व्यक्ति आपसे अच्छे शब्दों में प्रभावित होता है। और मैं समझता हूँ कुछ चीजें जो मेरे को अपने करियर की शुरुआत में मुझे सीखने को मिली वो यही चीज थी कि आप सब कुछ जानते हैं इतना काफी नहीं।
0: okay.
2: बहुत बार हमारे पास, जैसे एग्जाम की बात करते हैं, आप तो एग्जाम में सब कुछ पढ़ के जाते हैं, बट अगर आप एग्जाम के समय पर आपके मन में स्ट्रेस है या फिर एंग्जाइटी है या आप ये सोचते हैं कि पता नहीं मैंने जो पढ़ा है वही प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, आप इसी डाउट के साथ अगर आप चलते हो तो फिर शायद जो प्रश्न आए होते हैं आप सारा क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ लेते हैं कि जो मैंने पढ़ा है पहले वो क्वेश्चंस कहाँ है उसको मैं आंसर करूँ इसके, फिर आप कोशिश करता हूँ, तो उसके सदके होता ये है कि मैं जो पढ़ा है उसे छोड़कर जो अलग सवाल आए हैं उन सवालों के बारे में ज्यादा टेंशन लेने लगता हूँ कि भाई वो अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो स्कूल में हमारे टीचर्स ने मेरे को ये सिखाई थी वो ये थी कि पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करो, जो सबसे पहला सवाल आए जिसे देखकर आपको लगे कि हाँ ये मैं आंसर कर सकता हूँ या इसके बारे में मैंने पढ़ा है, तो पहले उसको अटेम्प्ट कर देना है। पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं।
0: ओके।
2: तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं ये जवाब जानता हूँ और इस जवाब को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ।
0: कॉन्फिडेंस बढ़ गया,
2: वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये एक तरीके का मेंटल प्रिपरेशन है,
0: राइट?
2: और ये आपका मानसिक प्रिपरेशन है, आपके मन के अंदर हो रहा है, इसे कोई देखता नहीं। मगर इस तरीके से मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ तो ये चीज आपको धीरे धीरे बेहतर चीजें करने के लिए एक सीढ़ी बनाकर देता है कि स्टेप बाय स्टेप आप बिल्ड करते जाते हो एक चीज के ऊपर। मैं अपने बिजनेस के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया मुझे कभी भी अपने

0: फॉर्मल कपड़े ही नहीं है जो मैं फॉर्मल पहन के आऊँ, और मैंने कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट हूँ, तो मैं उन्हीं कपड़ों में आऊंगा। तो उन्होंने कहा शायद तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर तुम फॉर्मल कपड़ों में आओगे तो लोग तुम्हें एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करेंगे, अगर तुम जीन्स और इन्हीं कपड़ों के साथ आओगे तो लोग तुम्हें यही समझेंगे कि ये कॉलेज स्टूडेंट है और तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे।
1: ट्रीट करेंगे।
0: इसलिए तुम्हें इस बात पे ध्यान देने की जरूरत। और बिल्कुल हुआ वही, मैं अगले हफ्ते गया, मैंने एक फॉर्मल पैंट खरीदा, शर्ट मेरे पास था ही, और जब मैं वो पहन के आया तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि मतलब ही इज नो लॉन्गर अ कॉलेज किड, मतलब ये कॉलेज जाने वाला लड़का नहीं है। और मेरे अंदर भी मैंने ये देखा कि अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ जैसे बर्ताव करता था उसी तरीके का बर्ताव मैं अपने वर्क प्लेस पर कोलीग्स के साथ नहीं करता था। वहां पर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो चीज मेंटेन करना मेरे लिए आसान था। बॉडी पोस्टर्स की बात कही जाती है, हम जानते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर में भी हम लोगों को ये चीज सिखाते हैं कि भाई आप अपने दोस्तों के कंधों पर हाथ रख के घूम सकते हैं, बट यही चीज आप अपने ऑफिस में नहीं कर सकते।
1: ऑफिस में नहीं कर सकते।
0: तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उस तरीके का जो डेकोरम आप मेंटेन करते हो, आप अपने आप को याद दिलाते हो कि मैं अपने ऑफिस में हूँ और मेरे से इस प्रकार का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, तो आप अपने आप को एक मोल्ड में डाल लेते हो और उसकी वजह से आप उसी तरीके से बिहेव करने लगते हो। और मैं समझता हूँ ये जो हम बातचीत कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए भी, हम एक मोल्ड तैयार कर रहे हैं अपने लिए, एक सांचा तैयार कर रहे हैं कि मैं ये हूं। और मैं ये नहीं सोचता कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ऐसा बनूंगा, नहीं, वो मोल्ड तैयार करते हैं। मैं हर दिन अपने आप को उस सांचे में बिठाकर उसी तरीके से अपने आप को डिलीवर करता हूँ, उसी तरीके से मैं अपने आप को कैरी करता हूँ, और उसकी वजह से गुण आपके अंदर आ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम लोग कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग कराते हैं और करते भी थे, जैसे आप जानते हैं एयर हॉस्टेसेस होते हैं, गगन सखियां होती हैं या गगन सखा होते हैं, जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स होते हैं, हवाई जहाज में आते हैं, वो हर एक से मुस्कुरा के बातचीत करते हैं, वो मुस्कुरा के वेलकम करते हैं, हालांकि वो उनके अंदर की खुशी नहीं है, ये उनके जॉब का रिक्वायरमेंट है कि वो
1: बात
0: मुस्कुरा।
1: है।
0: तो उनको यही चीज सिखाया जाता है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी अगर आप अपने आप को आदत डालेंगे तो वो
1: जी
0: आपको एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह दिखाएगा और धीरे धीरे वो एक अच्छी आदत बन जाती है कि हाँ हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना हमारे काम का हिस्सा है। और धीरे धीरे मैं इस मुस्कुराहट के चलते लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी आसानी से डील कर सकता
1: कर
0: हूँ।
1: सकता हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल भी है। और जैसा आपने बताया कि एटीट्यूड का फर्क थॉट्स पे, थॉट्स का फर्क फीलिंग्स पे, और किस तरीके से आप एक पे काम करते हैं तो इंटरकनेक्टेड है, लेकिन थॉट्स पे काम जब आप करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो आपकी फीलिंग्स, फिर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, सब कुछ बदल जाता है, और आपकी डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं बदल जाती है। और कल्पना जी ने हमें एक होमवर्क भी दिया कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप वो पहले से वो डर में, उस रिस्पॉन्स के उसमें मत जाएं, ऐसे मुझे बोलेंगे, होगा वो होगा, अपनी एक मेंटल इमेज क्रिएट करें आप ये कि नहीं ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस से बात करूंगा और ये डील इस तरह से करूंगा, वो पॉजिटिव होके जाएं ताकि बॉडी लैंग्वेज में भी आपके वो शो करे। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मिल गई हैं हमें जो हमें करनी है, और इनको कुछ, मैं तो ये भी कहूंगी दोस्तों, नोट करके रखिए ताकि हम भूल ना जाए आगे करने के लिए। पर फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। हम और भी चीजें सीखेंगे कैसे थॉट्स को रेगुलेट करें, कि प्रश्नों के और भी जवाब आपको मिलेंगे लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। कल्पना जी, श्रीनिधि जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आरुषि जी, कल्पना जी, और हमारे सारे श्रोता मित्रों का भी जो हर कड़ी में हमारे साथ जुड़ते हैं और इन चीजों को सुनते हैं।
1: काफी शुक्रिया। तो दोस्तों फिलहाल लेते हैं इजाजत, और दिल से कहते हैं लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: यशोदा का नंदे लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए।
4: बुआ ऑल ओवर सुनाओ ना।
5: हाँ बेटा। जू जू जू जू जू जू जू जू जू जू।
6: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है, दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित न रहे। सभी ममीज को, हर उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: भगिनी निवेदिता के सामने अब प्रश्न था कि सेवा से आगे क्या, क्योंकि मामला केवल भूखे शरीर तक सीमित नहीं था, प्रश्न था आत्मा की स्वतंत्रता का। भारत की पीड़ा को उन्होंने देखा था, अब वो उसे महसूस भी करने लगी थी। निवेदिता अब सिर्फ एक सेविका नहीं थी, वो एक देशभक्त बन चुकी थी। उन्होंने अपने बाकी जीवन को अनुशीलन समिति, यंग मेंस हिंदू यूनियन कमेटी जैसे संगठन, जो देश के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाले लोग थे, उनकी सेवा में समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। वो अपने ज्ञान से लोगों में ऊर्जा का संचार करती थी।
1: मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा जीवन में ब्रह्म को खोजने की बात करते थे। आज की सिचुएशन में स्वराज को खोजना ही ब्रह्म है, और स्वराज को खोजने के लिए एक महामंत्र है जो आपके संघर्ष में आपको जोश और शक्ति देगा। वो है वंदे मातरम। हमारे चारों तरफ माया है, हमें इस माया को भूलकर देश की सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के लिए सेवा ही ईश्वर की सेवा है। God is seeking your services more than anything.
0: इन्हीं दिनों कलकत्ता की हवाओं में एक गीत की सुगबुगाहट होने लगी थी, एक ऐसा गीत जिसे गाने पर जेल और सुनने पर संदेह होता था। उस गीत का नाम था वंदे मातरम, और उसे एक वैचारिक हथियार बनाने वाले थे अरविंदो घोष, स्वाधीनता संग्राम के प्रखर चिंतक। इधर जैसे जैसे बच्चियां भगिनी निवेदिता से उनके जीवन के बारे में जान रही थी, उनकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी, साथ ही बढ़ रहे थे उनके प्रश्न।
2: अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आपने मठ और क्रांति को एक साथ कैसे संभाला?
1: अच्छा प्रश्न किया तुमने लाली, ये सफर मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं अनुशीलन समिति जाने लगी तो मठ के वरिष्ठ व्यक्तियों को प्रॉब्लम्स होने लगी।
3: तुम समझ नहीं रही हो निवेदिता, ये मठ व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को क्रांतिकारी नहीं, बल्कि उसे समाज के प्रति संवेदनशील बनाना है।
0: मठ के वरिष्ठ जनों की बात सुनकर निवेदिता का मन विचलित हो गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या कहें। फिर भी उन्होंने धैर्य से अपनी बात रखी।
1: स्वामी जी की आखिरी इच्छा थी स्वराज, इसीलिए मुझे पॉलिटिकल और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
0: निवेदिता के दृढ़ निश्चय को देख उस व्यक्ति ने कहा,
3: यही तो डर है मुझे, कहीं तुम्हें मठ से अपना नाता न तोड़ना पड़े, क्योंकि मठ किसी क्रांतिकारी या राजनीतिक समूह से जुड़ना नहीं चाहता है। तुम्हें मठ छोड़ना पड़ेगा निवेदिता, छोड़ना पड़ेगा।
1: जिस मठ को मैं अपना घर समझती थी, उसे छोड़ना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, पर मैं अपने स्वामी जी की लास्ट विश को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आश्रम से जाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले भी हुआ है मेरे साथ, जब मैंने अपना देश और अपना घर छोड़ा था। स्वामी जी ने मुझे मोह माया से डिटैच्ड रहना सिखाया था। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधत, उठो जागो, सचेत हो जाओ, और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। टू अवेक, टू बी अलर्ट, एंड नेवर स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड।
0: भगिनी निवेदिता की कहानी सुनकर सबकी आंखें भर आईं। फिर निवेदिता ने कहा,
1: मठ से निकाल देने के बाद मुझे श्री अरविंदो ने अपने आश्रम अनुशीलन समिति में रहने का स्थान दिया। उन्होंने पूरे आदर सम्मान के साथ मुझे सभी आश्रम सदस्यों के साथ कार्यरत होने को कहा।
0: सन 1905 का समय था। अनुशीलन समिति की बैठक थी जिसमें भगिनी निवेदिता भी उपस्थित थी।
1: हाँ अरविंदो, बताओ कि क्या अपडेट्स हैं?
4: युवाओं की शारीरिक मजबूती के लिए हमने उनके फिजिकल एक्टिविटी शेड्यूल को और भी सख्त कर दिया है। साथ ही समूह में विचार विमर्श और तर्क वितर्क के अभ्यास के लिए हमने स्टडी सर्कल्स भी चला रखे हैं।
1: That's great. Next plan क्या है?
4: उसी के बारे में विचार करने हम यहाँ आए हैं। दरअसल आगे की योजना के लिए हमें शास्त्रागार की भी जरूरत है। साथ ही बम बनाने और उसके रख रखाव के लिए हमें एक सुरक्षित स्थान भी चाहिए।
0: थोड़े सोच विचार के बाद निवेदिता ने कहा,
1: मेरा एक फ्रेंड है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। वैसे उसे प्लान्स और ट्रायल्स की फीलिंग समझने का शौक है। लेट्स सी अपने नेशन की फीलिंग्स को वो कितना समझ पाता है।
0: इस बैठक के बाद भगिनी निवेदिता अपने मित्र जगदीश चंद्र बोस से मिलने जाती है। उनसे स्वतंत्रता संघर्ष में साथ देने की अपील करती है जिसे वो मान जाते हैं।
5: मैडम, मैं देश के लिए आपका साथ जरूर दूंगा।
0: समय के साथ साथ निवेदिता और उनके साथियों का दल और भी मजबूत होने लगा। विज्ञान के प्रयोगों के साथ साथ उन्होंने बम का प्रयोग भी करना सीख लिया। लेकिन उनके समक्ष अभी और भी कई चुनौतियां थीं। ऐसा ही हुआ साल 1906 में। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उनको अपनी बात रखने का आग्रह किया गया, लेकिन पार्टी दो पक्ष नरमपंथी और चरमपंथी में बटे होने के कारण उन्हें दोनों पक्षों को संतुष्ट करना था। उनके प्रभावशाली वाक्यों का ऐसा जादू हुआ कि जो काम दादा भाई नारोजी इतने वक्त से नहीं कर पा रहे थे वो उन्होंने करके दिखा दिया था। पार्टी के दोनों पक्षों को एक बात पर सहमत कर उन्हें एकजुट करवाया। इधर निवेदिता की बात सुनते हुए एक बच्ची ने पूछा,
2: अच्छा दीदी, आप कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के अधिवेशन का हिस्सा बने, क्या ये इतना आसान था? कोई कठिनाई नहीं आई?
1: नहीं, इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं इन रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स से लगातार मिल रही थी, इसलिए अब CIT डिपार्टमेंट की नजर मुझ पर थी। पुलिस डिपार्टमेंट में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और मैं लगातार उनकी हेल्प ले रही थी टू इन्फॉर्म द अनुशीलन समिति मेंबर्स अबाउट द रेड्स। मैं गुप्तचरों की हेल्प से उनको इन्फॉर्मेशन एक लेटर के फॉर्म में भेजती थी और अरविंदो मेरे संकेत समझ जाते थे। बट देन अ डे केम जब हमारे मेंबर्स पकड़े जाने लगे। फिर मुझे लगा कि कुछ समय के लिए कलकत्ता छोड़ने में ही समझदारी है। Hence, I have come to meet my dear girls. क्योंकि अब कुछ समय के लिए हमारा मिलना मुश्किल है। ये थी मेरी कहानी। आज मैं तुम्हें एक प्रार्थना सिखाऊंगी, पर वादा करो कि तुम लोग ये प्रार्थना हर दिन गाओगे।
0: प्रार्थना की बात सुनकर लड़कियों में असमंजस पैदा हो गया। उन्होंने निवेदिता से पूछा,
2: लेकिन दीदी, हम पहले से इतनी सारी प्रार्थनाएं गाते हैं, तो अब एक और क्यों?
1: क्योंकि सभी प्रार्थनाओं में हम गॉड से अपनी अच्छी हेल्थ, अच्छी स्टडीज और फैमिली के लिए प्रे करते हैं, लेकिन इस प्रार्थना में हम भारत माता के राष्ट्र की भलाई के लिए प्रे करेंगे। इस गीत को गाकर हम भारत माता की वंदना करेंगे। ये गीत हमें एकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ ताकत का एहसास दिलाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये गीत भारत का हर बच्चा गाए। क्या तुम लोग इसे गाने को तैयार हो?
2: हाँ।
0: सभी लड़कियां भगिनी निवेदिता के साथ खड़ी होती हैं।
1: प्लीज रिपीट आफ्टर मी। वंदे मातरम।
6: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम।
6: वंदे मातरम।
1: सुजलाम सुफलाम।
6: सुजलाम सुफलाम।
1: मलयज शीतलाम।
6: मलयज शीतलाम।
1: शस्य श्यामलाम मातरम।
6: शस्य श्यामलाम मातरम।
1: वंदे मातरम।
6: वंदे मातरम।
1: मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि वंदे मातरम जैसे महान गीत को मैं स्कूल प्रेयर्स में शामिल कर पाई।
0: और फिर धीरे धीरे कई और स्कूल्स में वंदे मातरम गीत गाए जाने लगे। उधर लड़कियों से मिलते हुए शाम हो जाती है और निवेदिता वापस अनुशीलन समिति आ जाती है। रात का समय था। कलकत्ता के अनुशीलन समिति में दिए की लौ कांप रही थी। भगिनी निवेदिता खिड़की के पास बैठकर आनंद मठ को पढ़ रही थी और वंदे मातरम गीत गुनगुना रही थी।

0: सिस्टर निवेदिता, आप जानती हैं कि ये गाना, इस गाने को गाना अब अपराध घोषित किया जा चुका है।
1: अगर मातृभूमि को प्रणाम करना क्राइम है, तो मैं ये अपराध बार बार करूंगी।
0: यह गीत केवल शब्द नहीं है, यह ब्रिटिश सत्ता के लिए चुनौती है। आप विदेशी हैं, आपको सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा।
1: मैं विदेश में जन्मी हूं, पर अब मेरी कर्म भूमि भारत है, सोल भारतीय है, और आत्मा पर कोई शासन नहीं कर सकता।
2: उस क्षण निवेदिता ने वंदे मातरम को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसे जी लिया।
1: वंदे मातरम किसी भूमि का गीत नहीं, ये उस माँ की पीड़ा है जो अपने बच्चों को पराधीन देखने से दुखी है। जब तक ये पीड़ा है, वंदे मातरम अमर रहेगा। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, और ये गीत सही मायनों में भारत के राष्ट्र को दर्शाता है। ये धरती मेरी कर्म भूमि बन गई है, और ये देश मेरा घर। मैं हमेशा ही यहां रहना चाहती हूं, अनंत काल तक।
2: अब निवेदिता केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं रही, वो युवाओं की चेतना, गुप्त सभाओं और विचारों की क्रांति का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने अपनी कहानी सुनाते सुनाते बच्चियों से कहा,
1: तुम्हें तलवार नहीं उठानी, सिर्फ अपना डर छोड़ना है। वंदे मातरम कहते समय आईज नीचे मत करना।
3: दीदी दीदी, अगर हमें जेल हो गई
1: तो समझना मदर इंडिया भारत माँ ने तुम्हें अपनी गोद में छुपा लिया है।
2: भगिनी निवेदिता का मत था कि भारत की दुर्दशा का बड़ा कारण विदेशी गुलामी है। बंग भंग का उन्होंने प्रबल विरोध किया। क्रांति गीत वंदे मातरम को अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत बनाया, अनेक पुस्तकें लिखी, प्लेग पीड़ितों की अथक सेवा की, और फिर एक दिन शरीर ने जवाब दे दिया। वो 13 अक्टूबर 1911 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जब भगिनी निवेदिता ने अंतिम सांस ली। मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेलूर मठ को दान कर दी। उनका स्मारक आज भी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। समाधि पर अंकित शब्द हैं, हेयर लाइज सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया। ऐसी महान नारी को समस्त राष्ट्र का शत शत नमन। दोस्तों, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक संकल्प है। जब जब इस गीत की पंक्तियां गूंजती हैं, तब तब सिर्फ शब्द नहीं गूंजते, इतिहास याद आता है, सेनानियों का बलिदान याद आता है, याद आती है वो चेतना जिसने भगिनी निवेदिता जैसी विदेशी स्त्री को भी भारत माँ की बेटी बना दिया। पर कहानी यही समाप्त नहीं होती। वंदे मातरम गीत कैसे बनी एक पूरे राष्ट्र की आवाज, कैसे एक गीत बना डर का सबसे बड़ा शत्रु, और कैसे ब्रिटिश सत्ता इस गीत से कांप उठी, अगले अध्याय में हम जानेंगे उस गीत की यात्रा जो जेल की दीवारों से टकराई, फांसी के फंदों तक पहुंची और फिर भी अमर हो गई। अगर आज भी वंदे मातरम सुनकर आपका सिर अपने आप झुक जाता है, अगर आपकी आंखों में नमी और सीने में आग एक साथ उठती है, तो समझ लीजिए ये गीत अब भी जीवित है, और जब तक ये जीवित है, भारत की आत्मा कभी पराजित नहीं होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक गीत एक नारा और एक और इतिहास रचती कहानी के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।

0: मातरम मन।
1: ओम शांति। आज मदर्स डे है, जिसे हम मई के दूसरे रविवार को हर साल मनाते हैं। तो सबसे पहले तो विश्व की सभी माओं को आज के दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मुबारक हैं। और ये दिन माँ का हमारे जीवन में क्या योगदान है, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम मनाते हैं। माँ ही हमें जीवन देती है, माँ के गर्भ में ही शिशु का सिंचन होता है, माँ ही हमारी प्रथम शिक्षक है, माँ ही हमारी प्रथम दोस्त होती है, माँ ही हमें संस्कार देती है, अच्छे या बुरे। यानी माँ जैसा आचरण करती है, वैसा ही बच्चा अपने जीवन में बनता जाता है। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और माँ हमारे लिए अपने सभी खुशियों का त्याग करती है, अपने सपनों का त्याग करती है। बच्चे के लिए वो रात रात भर जागती है, अगर वो बीमार है तो दिन रात वो उसकी सेवा में लगा देती है। फिर चाहे वो काम करती हो, यानी ऑफिस जाती हो, चाहे वो गृहिणी हो, लेकिन वो कभी कोई बहाना नहीं देती। और इसलिए माँ का ऋण हम नहीं चुका सकते। माँ के लिए मैं कहूँगी कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। एक बार ऐसे ही एक बच्चा था, तो माँ ने उसे कुछ काम कराए, उसे दूध मंगवाया, उसे कुछ सब्जी मंगवाई, उसने घर की चीज़ों को ठीक करने में माँ को मदद की, कुछ रसोई में मदद की। तो उसने उसको लिखा एक पेपर पर कि हर एक काम का इतना रुपया और कुल इतने रुपये, और माँ को दे दिया कि माँ आपने मेरे से काम कराया, उसका इतना पेमेंट है। तो फिर माँ ने उसी के नीचे लिखा, तुमको 9 महीना गर्भ में रखा, नो चार्ज, तुम्हारी दिन रात सेवा करती हूँ, नो चार्ज, तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाती हूँ, नो चार्ज। तो माँ ने जब वो लिखा और फिर लिखा कुल, नो चार्ज, तो बच्चे ने उसको पढ़ा तो बच्चे को समझ में आ गया, और फिर उसने नीचे लिखा इंडेप्टेड फॉर फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए माँ मैं आपका ऋणी हूँ। तो माँ का ऋण बच्चा कभी भी नहीं चुका सकता है, और माँ हमेशा ही हमारे साथ खड़ी होती है, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम सुखी हैं, चाहे हम सही हैं या हम गलत हैं। मुश्किल वक्त में हम माँ को ही याद कर रहे होते हैं ना, माँ के सिवाय हमें और कोई याद नहीं आता है। तो आज का जो दिन है वो हम केवल फूलों को दे कर के मदर्स डे ना मनाएं, ना फूलों का गुलदस्ता हम दे दें माँ को, या कोई गिफ्ट हम दे दें, नहीं, इस तरह से मनाने का दिन नहीं है। लेकिन उनकी सेवाएं जो वो हमारे जीवन में हमें प्रदान करती रही हैं, उसके लिए हम उनको स्नेह दें, सम्मान दें, और सदा ही उनकी सेवा में तत्पर रहें। कई बार देखने में आता है कि जब माँ वृद्ध हो जाती है तो कई बच्चे माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, या कोई तीर्थों पर आश्रम में छोड़ देते हैं। तो जो उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किए, अब जब उन्हें आवश्यकता है तो फिर हमें भी उनके लिए हाजिर रहना चाहिए। यही हम कहेंगे सच्चा मदर्स डे मनाना है। तो हम कभी भी उनको दुख ना दें, जैसे वो हमारे दुख दूर करने के लिए सदा तत्पर रही हैं। तो मैं कहूँगी कि कोई एक दिन की बात नहीं, पर हर दिन हमारा मदर्स डे होना चाहिए, हर दिन हम उनके प्रति अपना आभार माने। तो सभी को फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति।
2: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस 1 मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

माँ इस शब्द में दुनिया समाई है। प्यार की मूरत कहाँ किसी ने माँ जैसी पाई है। माँ वो जिसके स्पर्श से सारे दुख मिट जाएं। माँ वो जो हमारी खुशी में हमसे भी खुश हो जाए। कितने लकी हैं माँ जो आसपास है, किसी की फरिश्ता बन साथ है। पर माँ हमेशा माँ है। माँ को ढेर सारा प्यार दें और याद करें तो मुस्कुरा के, ताकि माँ की स्माइल भी गुम ना हो पाए। रेडियो मधुबन करता है हर माँ को सलाम।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचे, कोई वंचित नहीं रहे। इस कार्यक्रम का माध्यम से अपना गांव और अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा एक मंच देती है। तो आज खुशी का बात है क्योंकि आप सबको विदित है पर्यावरण के तहत एक एपिसोड हम हर रविवार को चलाते हैं, जिसमें हमारा श्रीमान भूपाल राम पुरे जी जो कि आबरोड ब्लॉक से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूप से सेवानिवृत्त होने के पश्चात रेडियो मधुबन कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। हर जगह में जाकर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ न कुछ टिप्स जानकारियां अवेयरनेस देते हैं। तो आज खासकर हमारे आग्रह पर और वो अपना स्वेच्छा से एक विद्यालय जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदुल्ला में पहुंचे, बच्चों को कुछ टिप्स पढ़ाई का संदर्भ में चरित्र निर्माण के साथ साथ अपने जहां रहते हैं उस एरिया को सशक्त समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए पर्यावरण का कितना आवश्यकता है, वो भी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो उनको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। और आज हम मोदुल्ला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे, बच्चों का साथ रूबरू होंगे, पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण विषय बहुत मैंने मायने रखता है, क्योंकि जहां पर हम रहते हैं जैसे हमारा गांव और हमारा अंचल पर्यावरण स्वस्थ होगा, सुंदर होगा और समृद्ध होगा, तो हमें जीवन जीने की और आगे बढ़ने की एक शिक्षा मिलेगी और हमें खुशी से रह पाएंगे। तो देर किस बात की, सर से हम सुनेंगे क्लास में कैसे बच्चों का साथ रूबरू हो रहे हैं। सर आपको स्वागत है।
1: पर्यावरण पर बात करेंगे और इसमें जो आपका जो ये टेक्स्ट बुक है प्रस्क्राइब, जो कि मेरे ख्याल से सर ये NCERT की तरफ से लिखी हुई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये बुक प्रस्क्राइब है। अपने यहाँ पर दो तरह का सिस्टम चलता है, एक तो NCERT अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलाती है और दूसरा चलाती है SCERT, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और वो लिखती है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। आपकी जो छोटी कक्षाओं की जितनी भी पुस्तकें होगी वो SCERT के द्वारा तय NEP के तय मानदंडों के अनुरूप वो लिखी जाएगी, वो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए है। अच्छा, ये जो लिखी गई है वो मेरे ख्याल से अप टू स्टार फ्रॉम 6 होगी मेरे ख्याल से, जो भी है। तो ये सारी किताबें जो आपके पास में जो NEP 2020 के तहत बनी हुई है उस पर हम काम करेंगे। बच्चों एक प्रश्न पूछता हूं आपको, भैया सवाल का जवाब थोड़ा सा, ये जो पुस्तक पढ़ाई जा रही है, चलिए ये बताइए आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये बताइए बस, पढ़ने का क्या आपका क्या उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? आप सभी पढ़ रहे हैं ना, आप सब पढ़ रहे हैं ना, 12वीं क्लास में आए तो पढ़ क्यों रहे हैं भाई आप, और हम पढ़ रहे हैं ना, हम यहां पर आए, हम क्यों आए, अरे सिखाने तो आए हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं? आपने देखिए आप पहली कक्षा पास की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, और करते करते पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़े? आप 10वीं क्लास में क्यों नहीं छोड़ा, 11वीं में क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये तो बताओ बेटा, अपने अंदर जो भी है उसको बोलो भाई, आपको बोलना तो पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा इसका मतलब, तो हम यहाँ पर आए हैं, क्यों आए, बस आ गए, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसका कोई भी सवाल का कोई एक जवाब तो होगा ना। आप हिंदी नहीं बोल पाते, अपनी बोली में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लूंगा, मुझे सब ठीक है ना, मुझे चीज समझाने से मतलब है, समझ हमारे अंदर कितनी है वो अपने अंदर होना चाहिए भाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं, बोलो 12वीं क्लास से सवाल का जवाब तो आना चाहिए। मैं तो सर से बात कर रहा था कि पहली क्लास का बच्चा भी हमसे बात करेगा, अब 12वीं वाला नहीं बोलेगा और मैं ही बोलता रहूंगा तो इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। बोलिए भाई अपन पढ़ क्यों रहे, बोलिए
2: कुछ आगे जाकर अच्छा कर सके, इसलिए
1: अच्छा करना है। क्या अच्छा करना है, आपने अब तक अच्छा ही किया है, घर पे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा खाना खाया है, ठीक है ना, तो अच्छा ही तो कर रहे हैं, तो आगे जाके क्या अच्छा करेंगे। बैठो और कोई बेटा, बात यह है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं, हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमारा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सब तरफ से विकास हो। सब तरफ से विकास का मतलब क्या, बोलना चाहे तो हाथ ऊपर करना तो पता चले। सब तरफ से विकास का मतलब क्या, सर आप भी बता सकते हैं, जो भी कोई बात ऐसी है तो आप भी बोलिए, अपन सभी मिलके करें। सब तरफ से विकास हो अपना, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास, चहुंओर विकास। तो ये सर्वांगीण विकास को कैसे समझे बताइए, यानी हम सब तरफ से आगे बढ़ करके जीवन में अपने आप को ठीक रखते हुए औरों के लिए भी उपयोगी बने, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। परीक्षा देकर के पास होने का मतलब क्या है, उसको समझा सकते हैं?
2: मैं आपको आगे बढ़ाओ,
1: आप आगे बढ़ाओ। हाँ भाई, परीक्षा दे के पास हुए क्या मतलब रहा उसका? एक बच्चा है 100 में से 100 अंक ला रहा है, एक बच्चा है 100 में से 40 ला रहा है, एक बच्चा 100 में से 50 ला रहा है, क्या मतलब हुआ? देखिए, समझ के लेवल की बात हो रही है। हाँ, तुम समझ के लेवल की बात करोगे तो टेक्स्ट की बात आती है, और अब तक अपन समझे ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब तो ये पढ़ना कितना ठीक है अपने लिए। सर यही चीज सर मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, मेरे ये मूल मेरे अंदर भावना रही कि उस चीज को व्यक्ति समझे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये बात तो समझ में आनी चाहिए,
0: लेकिन बोल नहीं पाते सर।
1: सर तो बोलना
0: बोलना पड़ेगा, लेकिन सबका उत्तर है सबके पास।
1: नहीं तो सर ये बोले तो बताएं,
0: झिझक दूर करके
1: सर इनको बात बता भी दी कि क्यों क्या है ये। भाई किसी बच्चे ने अच्छे अंक प्राप्त किए, इसका मतलब उसने समझा है तो उसको करना है, बात ये है। अपन कई बार क्या करते, पढ़ लिया, रट लिया, बोल दिया, 100 में से 100 नंबर आ गए, भैया वो पर्याप्त नहीं है, समझ करके लागू करना ये पर्याप्त है। जैसे आप प्रकृति के बीच में रहते हैं, कहते हैं ना आपके चारों तरफ ये जो बना हुआ जो वातावरण है वो आपको प्रभावित करता है, यहाँ की वायु है, यहाँ की पानी है, यहाँ की स्थितियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं से। तो आप लोगों ने क्या करा कि ये जो कम हो रहे हैं तो और पौधे लगा दिए, ये चीज सीखनी है अपने। भाई ये आप पौधे लगाते नहीं लगाते तो क्या हो जाते, ये तो आपने लगाए तो हो गया ना, और लगाया तो कितना सुंदर लग रहा है, ये पेड़ पौधे आपने लगाए तो सुंदरता बढ़ गई, नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब हम जीवन में क्या पढ़ करके पास होना ये तो अलग बात है भाई, ये तो एक पैरामीटर है, आप समझ रहे हो, नंबर लाना तो एक सिस्टम है, एक पैरामीटर है। आपको क्या करना है जीवन में, ये पौधे हम हमारे यहाँ स्कूल में लगाए हैं ना, तो हम कहाँ और लगाए, अपने घर पर भी लगाए, अपने गांव में लगाए, अपनी कम्युनिटी में लगाए, भाई तब जाकर के इससे होने वाली सुंदरता अपने घर पर भी दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी। तो ये काम कौन करेगा, कौन, हम कौन, मेरे घर पर मैं स्वयं करूंगा, आपके घर पर आप स्वयं करोगे, आपके घर पर आप स्वयं करोगे तो सबको फायदा होगा, आपको भी होगा, सबको होगा तो किसको होगा, आपको भी होगा ना। तो ये काम तो आपको मिल बैठ के करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम इस शिक्षा की जो उद्देश्य है वो पूरा कर पाएंगे। पास हो गए और नौकरी लगी, ये इसका सही उद्देश्य तो नहीं है, ये कोई बीच का एक रास्ता है जिसको निकालने वाली बात है। भाई जो पढ़ करके अच्छे नंबर लेकर के नौकरी लग जाता है, उसके अलावा दूसरे लोग क्या भूखे ही बैठे रहते हैं फिर? पर उनके जीवन में अगर शिक्षा है, पर्यावरण है, तो वो निश्चित रूप से अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप अच्छे साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं ना, आप गंदे कपड़े पहनते हो, तो जब गंदा होता है तब कौन धोता है उसको, आप धोते हो ना, ठीक है ना, तो उसकी सफाई आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आप भोजन करते हो, फिर अच्छा भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा पोषण देगा, वो काम कौन करेगा? तो आप सब खुद के लिए ये जब काम करेंगे पर्यावरण से जो संबंधित है, जो हमारे इस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो अब आप ये बताइए कि पर्यावरण किसे कहेंगे, उत्तर दे सकते हो, पर्यावरण किसको कहेंगे? इनको प्रश्न पूछा है मैंने इतनी देर बोलने के बाद में कि भाई पर्यावरण किसे कहते हैं, उसका उत्तर ये देवे। अरे आपको जैसा आता है वैसा बोलो, ताकि मुझे उसमें से कुछ निकालने का मौका। और बोलो
3: बोलो
1: बोलो बोलो बोलो
3: क्या
2: पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ। अब चारों ओर से अपन क्या क्या ढका हुआ दिख रहे हैं, पेड़, पानी, जमीन, ये सारा पर्यावरण में शामिल है।
1: भाई आप और हम सभी यहां पर किस चीज से प्रभावित होते हैं, बाहरी ओर से, बाहर से, बाहर से, बाहर से किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, जो अपने शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्या चीज है ऐसी चारों तरफ,
2: दिन हो या रात, उससे प्रभावित हो रहे हैं।
1: किससे प्रभावित होते हो, किससे प्रभावित होते हो, पर्यावरण में क्या क्या आएगा, यही तो पूछना चाह रहा हूँ, यही तो निकालना चाह रहा हूँ, किस किस से प्रभावित हो रहे हैं, पर्यावरण में क्या क्या आ रहा है।
3: जल,
1: जल आता है बिल्कुल,
3: पौधे, भूमि।
1: बोल बोल बोल, तू बोल यार भाई।
3: पेड़ पौधे,
1: पेड़ पौधे और
3: जल,
1: जल,
3: भूमि,
1: भूमि आ गई,
3: पहाड़,
1: पहाड़ आ गए,
3: हवा।
1: बेटा आप समझ में आया, समझ में आया ना, ये सारी चीजें मिल करके हमको प्रभावित करती है। और कहां तक प्रभावित करती है, हमारे जीवन, उसके विकास और उसकी मृत्यु, किसी भी जीव का। देखिए ये तुम्हारे ऊपर ही प्रभाव नहीं डालती, मैंने एक बात कही, हर एक पर डालती है। किसी जंतु पर भी तो प्रभाव डालती है, कुत्ते पर प्रभाव डालती है, बिल्ली पर प्रभाव डालती है, शेर पर प्रभाव पड़ता है इसका, प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है ना। तो इन सब पर इसका चारों तरफ से जो प्रभाव पड़ता है वो क्या करता है, उसके जीवन को सुनिश्चित करता है, लाइवलीनेस, उसके विकास को सुनिश्चित करता है। आप अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या होगा,
2: बीमार हो जाए।
1: क्या क्या बीमारी होगी, बोलो ना बेटा,
2: बोलो।
1: अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या क्या होगा,
2: पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती है, पेट खराब हो जाएगा, मेन तो पेट ही है, सब रोगों की जड़ है वो अपना पेट ही है। और गंदा पानी पिएंगे तो सीधा,
1: बोलो कौन कौन सी बीमारियां होती है,
2: पूरी बोल।
1: अरे बोलो ना, तुम इधर उधर बोल जाओगे तो हम उसको ठीक कर लेंगे, बैठे कितने लोग,
2: सब अपने ही है यहाँ पे, डरने की बात नहीं है।
1: बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से तुम्हारे इधर ये आ जाना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे।
2: हाँ।
1: नौकरी मैंने कर ली, ये कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब नहीं है। आपने तो बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ पर बस सब छोड़ दिया, यही कर रहे हैं। तो करना ये है, ये पर्यावरण बनाते, ये पर्यावरण बनाते। नौकरी लगना ही शिक्षा नहीं है। मैं रिटायर हो गया, पूछो, इन्होंने रिटायर कर दिया सरकार ने, कहा जाओ कर जाए, सो जाओ जाकर, वो शिक्षा है क्या? शिक्षा वो है जो कुछ करने के लिए प्रेरित करे। मैं आज ये समझाने निकला हूं कि आप उस चीज को समझ लो कि आप पढ़ क्यों रहे।
2: सही।
1: आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ कैसे रहे, आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को कैसे चलाए। नौकरी अहम नहीं है, अपने यहां पर जो नौकरी में नहीं लगे वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो भी कमा के खा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना, तो फिर भाई पैसा कमाना ही सारी चीजें थोड़ी होता है। आप इस बात को समझ लो कि नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं है भाई, ये नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा, वो नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा। आप तो नौकरी भी नहीं करते, मैं रिटायर हो गया, आप तो नौकरी भी नहीं करते।
0: शिक्षा का मूल उद्देश्य
1: ये बात करनी है, बात ये करनी है, आज हम आए हैं इसलिए। ये बड़ी क्लास लेने का मतलब यही है कि शिक्षा की मूल बात आप तब तक पहुंचाओ कि शिक्षा सौपड़ी वासवा हुदिस नहीं है, लोकल में बताना चाह रहा। आप हमारा सम्मान करते, क्यों करते, क्योंकि मैंने कभी किताबें पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं की। इनको पूछो, जब भी इनको पूछो कि जब मैं कक्षा लेता था ना भैया, मैं अगर क्लास में घुस गया सर
0: जी,
1: तो पूरे दिन क्लास चलेगी नॉन स्टॉप। ये सारा बोल दिया, मतलब क्लास में घुस गए, हमारे डाइट में सर लोग इतने डरते थे कि ये सर अंदर आने ही नहीं चाहिए।
2: लगभग 1993-94 की बात है जब मैं 11th में पढ़ता था, और सर की वजह से मैंने ज्योग्राफी ली थी, क्योंकि सर उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे और वहां पर लेक्चरर थे, और इनका पढ़ाना बहुत ही अलग ही तरीके का था, और उसी की बदौलत हम आज यहाँ तक खड़े हैं, और मैं वही उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर।
1: बेटा मैं बात आपसे ये कह रहा हूँ कि सर मैं पीजी की क्लास लिया करता था रीजनल कॉलेज अजमेर में, उस मेयो कॉलेज में और रीजनल कॉलेज में वहाँ राजे महाराजाओं के लड़के ही पढ़ते थे, वहाँ क्लास लेने के लिए मुझे सर पीजी से बुलाते थे, मैं अच्छा मेहनत करता था इसलिए।
4: देखो वहाँ जब जाता ना, इतने गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी आपको थोड़ा मिलने के पहले थोड़ा सा रेफर किए?
1: नहीं सर, अब उसे पटानी पड़ेगी, मेहनत तो हम नहीं कर रहे थे, अब उस तक तो मैं जाएंगे
4: आग बंद कर नहीं किए सब चीज रहने को, क्या हमको पढ़ा है, मैंने हमारा लक्ष्य क्या है, कितना दे और देने में उसको कितना ग्रहण करने की कैपेसिटी कितना देखना होता है। बड़े बच्चे के लिए तो कॉलेज के लिए अलग है, लेकिन यहाँ के लिए जो स्टैंडर्ड में जिसे पुरेश जी अपना बात को रख रहे हैं,
1: करना ही पड़ेगी सर।
4: नहीं सर,
1: सर तो वहां जब सर मतलब डिवोटेड, आप इन्हें समझे मेरी बात को, समर्पित हो जाओ, मेरी बात को समझ रहे हो, मतलब यहाँ का हाँ कहना नहीं ताकि मैं आगे बढ़ू, समर्पण ऐसा होना चाहिए भाई। वहां पीजी की सर क्लास में घुसे तो 3 से 4 पीरियड एक साथ चलेंगे, घुसे तो चलते रहो बस ये तो इसलिए हमको चाहिए कि लिमिट में बंधने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है, इनको
4: रेफरेंस
1: इनकी आवश्यकता नहीं, ये इसलिए कि मैं तुम्हारे तक सीमित रहो, आप समझ रहे हो ना, तो चल पड़े तो चल पड़े सर। ये डाइट की क्लास में घुसे तो अब घुसे तो वो बच्चे समझेंगे कि अब बाहर जाने का काम नहीं, वो जाएंगे ही नहीं, वो बाहर कैसे जाएंगे, उनको मैटर ही ऐसा मिल रहा है, पर पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। तो हमको भी उस बात को छोड़ो, पूरी तैयारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना क्यों है वो इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद भी हम काम में लगे, वो इसलिए पढ़ना है भाई, कमाना तो एक जरिया हो सकता है
4: जी,
1: खाना तो एक जरिया हो सकता है, 2 टाइम का भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा, अपने खेत में खेती करेंगे तो भी मिल जाएगा ना, मकान तो बना हुआ है, खेती करेंगे खाना मिल जाएगा, नरेगा में जाएंगे भोजन मिल जाएगा, लेकिन करना क्या है? तो भैया हम क्यों पढ़ रहे हैं ये बात समझ में आई बेटा? तू बोल यार, बोले जो अपने जैसे भी बोलना बोल दे बस,
4: नाम बोल,
1: हम क्यों पढ़ रहे?
4: नाम और क्लास।
5: मेरा नाम कालूराम है, मैं कक्षा 12th में पढ़ता हूँ।
1: जी जी,
5: स्कूल सेकेंडरी स्कूल मदल्ला।
1: हाँ, अब पढ़ क्यों रहे हो ये बोलो,
5: ताकि हमारा विकास हो सके, और
1: विकास इसलिए होगा कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ कैसे रहोगे? चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, स्वस्थ कैसे रहोगे बेटा? बोलो बेटा बोलो भाई, स्वस्थ कैसे रहोगे? सोने वाला कभी स्वस्थ नहीं होता बेटा, गजब यार, तो फिर बोलो स्वस्थ कैसे रहोगे, बोलो बेटा बोल।
5: स्वस्थ हमारे शरीर को अच्छा रखेंगे, और खाना पीना अच्छा होगा,
1: खाना पीना शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना? शुद्ध कैसा? पानी छना हुआ होना चाहिए, ठीक है, अच्छी जगह का होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, तो हम बीमार नहीं होंगे, कई तरह की बीमारियां नहीं होगी, हमको मोती जरा नहीं होगा, पेट संबंधी बीमारियां नहीं होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे फिर भोजन कैसा करेंगे? कैसा स्वस्थ? जो देसी गोबर से बना हुआ पका हुआ अनाज का जो भी भोजन होगा वो सबसे अच्छा होगा, ये केमिकल प्रयोग करके पैदा हुआ भोजन अच्छा हमारे लिए नहीं हो सकता। भाई साहब से पूछिए कि किस किस तरह के केमिकल सर उस भोजन में आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं सर, बताना इनको हल्का सा, हल्का हल्का
4: जो कुछ भोजन हम लेते हैं ना, भोजन करते हैं बच्चे
1: सर, ये दीजिए
4: सभी तो भोजन करते, भोजन बिना हम कैसे चल पाएंगे, भोजन तो जरूरी है, लेकिन भोजन जो हम ले रहे हमारा शुद्ध भोजन होना चाहिए, शुद्ध भोजन माने प्योर, और जो भी ले रहे हम जानते कितना प्योर है, प्योर माने शुद्धता, उसमें नहीं मिलावट किसी ना किसी रूप में आते हैं। सब्जी में देखते हैं तो कितना चकाचक दिखाई देता है, लेकिन उसका पहले इंजेक्शन उसी कलर का कटेंगे तो लाल, और जब खाएंगे पेट गड़बड़ होता है कि नहीं
1: सर? क्या बता रहे बताओ मैं,
4: तो पानी से भी
1: जो लौकी है ना उसमें इंजेक्शन लगता है, लौकी फट से बढ़ जाती है, दूधी दूधी तुम्हारी, तो वो जो इंजेक्शन वाली दूधी तो नुकसान करेगी ना, और अपनी देसी वाली
4: आपका स्कूल में हम लोग देखे हैं लौकी का दूधी का लगा हुआ है,
1: बिल्कुल,
4: और पूरा रासायनिक कुछ भी नहीं है उसमें, पूरा जैविक और शुद्ध, मैंने बीचा आ सकता है, आपका विचार जो है ना, हमारा स्कूल में हमारा विद्यालय में एक किचन गार्डन हो और हम उसको उगाए, हम बहुत सारा पौधा देखे हैं। क्या क्या देखे सर?
1: जो आपका जो किचन गार्डन मैंने देखा ना, यहाँ पर आपकी जो मैं ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में था उसमें बहुत विकास हुए, हमारा मतलब ही विकास है बस, क्योंकि हम उसमें उस पॉजिटिव दिशा में काम करते हैं। किचन गार्डन सर प्रत्येक हॉस्टल में बनाया गया,
4: क्या बात,
1: प्रत्येक हॉस्टल में, हॉस्टल है ना आपके आदिवासी हॉस्टल जितने भी
4: छात्रावास,
1: सभी में बनाए छात्रावासों में, और सभी में वहीं पर उगाई हुई सब्जी काम में ली जाने लगी। आपने भी बनाया ये छोटा सा? ठीक है ना। पर वो सर हॉस्टल की सब्जी उस हॉस्टल में काम में आ जाती थी, तो सभी अपने अपने घर पर भी ये कर सकते हैं। अब ये कोई बड़ा काम नहीं है, 10 टमाटर के पौधे लगा दिए, टमाटी बैंगन लगा दिए,
6: मिर्ची लगा दी,
1: सेम फली लगा दी, मिर्ची लगा दी, और क्या चाहिए,
6: पपीता लगा दो, हमेशा चलता
1: लगा दो, ये अपने हाथ से अपन बना करके उसको उगा करके खा सकते हैं।
6: उसके साथ राजस्थानी, आपके पास बाजार जाना जरूरत नहीं है, गाय गोबर तो मिलता है, भैंस का गोबर रहता है ना, तो उसको डालिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कुछ भी नहीं, आपका मन में सोचना है, अच्छा सोच उस पौधा को दो, अच्छा बन जाए, अच्छा बहुत इतना फल है कि हमारा परिवार खाने का अड़ोसी पड़ोसी को दे, और स्कूल में लेकर जाएंगे, पक्का होने के बाद सभी मेरा बर्थडे में खिलाएंगे, ऐसे सोचो। वो पौधा को पेड़ को उनको संकल्प दो, तो पेड़ के साथ बढ़कर ऐसे बात करो मन से, देखो पौधा कितना आगे बढ़ेगा, प्रैक्टिकल और देखना होगा। तो चलिए हमारा तपोवन में सब कोई रासायनिक नहीं है, जैविक खेती के साथ योगी खेती करते हैं। लेकिन जानेंगे अल्प विराम के बाद, स्कूल का जो गार्डन और सभी हॉस्टल का जो गार्डन जो लगाए है अपना खुद के लिए, बोले कम जमीन में लगाओ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
6: इसका बाद फिर बड़ा एकड़ में बड़ा जगह में लेकर बना सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये आपका फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा, इसका साथ साथ पर्यावरण को भी अति
1: बिल्कुल फायदा होगा,
6: फायदा करेंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, है ना सर, इसका बाद फिर सर से सुनेंगे
1: नेक्स्ट
6: अल्प विराम के बाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बेटा देखो, अब तक अपन ने बात की, आपने कहा है कि किचन गार्डन में लगे हुए सर जो सब्जी फल अपने यहाँ पर जो लगा हुआ उसी की बात कर रहे थे। बेटा आप लोगों के यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है, देखिए यही पर्यावरण। पर्यावरण को यूं समझना पड़ेगा कि सरकार ने लागू क्यों किया है सर, इसके प्रीफेस में लिखा हुआ है, मैं बताऊं आपको। यहाँ इस प्रीफेस को देखने वाली बात सर, एक्चुअली में ये जो पढ़ाई होती है ना सर, इसमें हमारे ये लोग प्रीफेस को नहीं देखते, अंदर घुस जाते। जैसे मैंने जो अभी बात की वो बेसिक बात की है कि शिक्षा क्यों है, पढ़ना क्यों है, पर्यावरण क्यों है, अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा की है ना, तो वो इसलिए कि अपन आगे बढ़े, खुद स्वस्थ होकर के अच्छा खा करके, रसायन से रहित, जो रसायन के बिना, अगर भाई आप अगर केमिकल वाला यूरिया है वगैरह है इसका उपयोग ना करके आप गाय का, भैंस का, अपना जो गोबर है ना, बकरी का जो भी ये खाद है उसको अगर अपन उसमें सही तरीके से देते हैं, अपन शुद्ध पानी से उसकी परवरिश करते हैं, अपने हाथ से उस छोटे से पौधे को अपन बड़ा करते हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो जाए। जब अपना स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो अपना विकास बढ़िया हो जाएगा, और अपना विकास बढ़िया होगा तो अपने विचार बढ़िया हो जाएंगे, और उसको सही दिशा में उन विचारों को लगा दिया तो निश्चित रूप से हम हमारी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। इस प्रीफेस में सर ये दिया हुआ है सर।
2: जी बिल्कुल, देखिए इसकी मैं बताऊं, इसकी जो पाठ्य चर्चा की रूपरेखा मैं देख रहा हूं 2005, और 2005 सर ये बता रहा है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए।
3: क्या बात,
2: हम इस पर काम करते थे सर, हमने नेशनल पॉलिसी पे काम किया है, किताबें तो खूब बाद में लिखी जाती है, ये कि स्कूली जीवन से बाहर, और अपन तो स्कूल में किताब पढ़ रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। आप बाहर देखें, बाहर जाकर कि ये प्रकृति हमको क्या सिखा रही है, ये पर्यावरण बाहरी हमको क्या सिखा रहा है, ये हमको कैसे बीमार कर रहा है, ये देखें। सिखाने का मतलब हमको कहां से बीमार कर रहा है और हम क्या उल्टा पुल्टा खा करके बीमार हो रहे हैं। एक बात और मैं कहूं इसके साथ ही कह दूं, बाहर से जो बच्चे कुरकुरे खाते हैं ना, हो सकता है बनाया होगा किसी टाइम पास के लिए, कभी बहुत दूर जा रहे हैं भूख लगी तो वहां कुछ खा ले, नो डाउट हो जाना, लेकिन सामान्य तौर पर सुबह उठते ही कुरकुरे लाओ, दोपहर को कुरकुरे लाओ, शाम को कुरकुरे लाओ, तो ये तो शरीर को बिल्कुल बर्बाद कर देगा भाई। ये है शिक्षा के हमको खाना क्या है, ये है शिक्षा के हमको पानी कहाँ का पीना है। तुम कहीं भी जाकर के पानी पीने लगते है, उसमें कीड़े आते हैं ना, कहीं भी जाकर के लग गए पानी पीने, उसमें न मालूम कोई केमिकल डाला हुआ है उस कीड़े को मारने के लिए, डालते हैं ना लाल दवा वगैरह, उसमें न मालूम क्या डाला हुआ है, हम सही तरीके से हाथ नहीं धो रहे उस पानी को पी रहे उस मेरे हाथों से, तो बीमार नहीं होंगे तो कहां से क्या होगा। ये है शिक्षा, हम शुद्ध वायु ले रहे, इंडस्ट्रीज के पास में औद्योगिकरण से धुआं फैलता है, इतनी बीमारियां होती है सर को पता है, इतनी बीमारियां होती है, इलाज ही नहीं है उनका। तो आप बाहर निकले उसको देखें, और स्वस्थ जीवन के लिए आप प्रयास करें, विचारों की शुद्धि करें। देखिए सर, 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी को मैं जानता हूं, उसमें था सर बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को केंद्रित करके शिक्षा दी जाती थी, मास्टर पढ़ाता था, वो भैया खत्म हो गया। 2005 की दो अलग पॉलिसी आई, बाहर ले जाने वाली हुई, और अब जो आई है 2020 एनईपी 2020 में कुछ लिखा होगा सर
3: जी,
2: देखिए इसमें साफ लिखा है सर, शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति। मैंने आपको ये बात साफ साफ कही है कि परीक्षा ही इसका आधार नहीं है, परीक्षा तो पास करने का एक पैरामीटर है, जैसे ये बच्चा तैयारी कर रहा है ना उसमें एक पैरामीटर होता है, इसकी पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, प्रत्येक तैयारी में एक पैरामीटर होता है कि भाई इतने से

0: तेज दौड़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एक पैरामीटर है। तो ये परीक्षा भी तो पैरामीटर है भैया। सर अपने यहाँ तो फेल करने का भी सिस्टम
1: नहीं है।
0: क्यों हटाया? ये शिक्षाविदों ने मिलकर इसलिए हटाया कि ये तो एक सिस्टम है, एक मात्र 100 में से 100 नंबर लाने वाले की ही नौकरी लगेगी, वो जरूरी नहीं है। इनको पूछो 100 में से 100 नंबर लाएगा वो, फिर वो दौड़ कैसे लगाएगा उतनी? तो सब तरफ से स्वस्थ होना है, तो सब तरफ से स्वस्थ होना है तो सब तरफ से सोचना है। शिक्षा का मतलब तो वो है, शिक्षा का मतलब पुस्तक पढ़ करके नंबर लाना तो नहीं है, वो याददाश्ती का एक पैरामीटर हो सकता है, वो तो एक बिंदु है जो बहुत ही छोटी सी बात है। तो ये इसका मतलब अब ये हुआ कि दैनिक समय सारिणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिसमें शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। वास्तव में हकीकत में तुमको क्या सीखना है वो सीखना है, ये समझ होनी चाहिए। ये है शिक्षा का
1: क्या बात?
0: सर मूल उद्देश्य। और हकीकत क्या है? हम अनाज कैसे पैदा करें अपने खेत में? हम डीएपी और यूरिया का अगर प्रयोग कम करेंगे ना, आपको पता है नैनो यूरिया अभी आया है, एक छोटी बोतल आती है तुम्हारे सबके घर पे होगी, वो जो अपने जो वो जो बैग वाला यूरिया जो काम में लेता है उससे बड़ा काम करता है, छोटी सी बोतल आती है, पता है आपको? नैनो यूरिया देखा है? अतरी कूपे आवे तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो उसका सारा काम कर लेता है। जो बदलते हुए समय में हमको उपयोग क्या करना है, उसकी जगह गाय भैंस का गोबर, बकरी का गोबर, बकरी का जो भी होती है ये खाद, वो अगर आप काम में लेते हैं तो वो आपको शुद्ध अनाज देगी। और सर आने वाले समय में अगर आप देखो तो आपके वहां आरोग्य वन में गया था मैं, वहां दवाई नहीं छिड़कते, ये तुम्हारे पंप लगा के छिड़कते है ना, वो दवाई नहीं छिड़कते, उससे तो बीमारियां आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जितना आवश्यक है उतना करना पड़ेगा, लेकिन जीवामृत वहां बनता है। 10 पेड़ों के पत्ते होते हैं, उनको बॉइल किया जाता है, उसमें आंवला मिलाया जाता है, उसला मिलाया जाता है, एलोवेरा, और उससे एलोवेरा यहां भी लगा हुआ आपके यहाँ, उसको मिलाते हैं उसमें और उसको फिर स्प्रे किया जाता है। कैसे? पानी के माध्यम से दे दिया जाता है, ऑटोमेटिक सब में वो सारी दवाई लग गई, कोई बीमारी नहीं होगी। वो खाद लग गया, वो दवाई लग गई, वो सारा उत्पादन बढ़िया से बढ़िया हो गया। हम बीमार होंगे कहां से? बीमार होते हैं लेकिन कम होंगे, आप अंदर से मजबूत है, अब कम बीमार होंगे। तो इसका जो मूल जो पर्यावरण का उद्देश्य वो ये है। अब आपको आपके कंटेंट वाली बात भी मैं कर देता हूं क्योंकि इसको हमने इससे जोड़ लिया है,
1: प्राकृतिक संसाधन।
0: हाँ, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इसमें से इस क्लास को। तो इसमें हमने क्या करा है, 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा और कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है, विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में इसमें आपके बताने वाली बात है, और समकालीन विश्व में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता का इनसे क्या मतलब, आपका जो मूल जो जनता है जो पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ हो रही है वो इसके बारे में क्या सोचती है और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो इन सम्मेलनों में सर तय होता है। ये है सर इसके लिए 60 के दशक में ये पर्यावरण के बारे में समझ पैदा हुई जिस बारे में अभी आप और हम रूबरू हो रहे हैं आपकी क्लास में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सर, ये हुआ था सर रियो डी जनेरो में मेरे ख्याल से, राइट, इसमें लिखा हुआ नहीं है, विश्व राजनीतिक मुद्दों को शामिल कर दिया यहां पर। ये जो 1992 में ये जो हुआ था इसके अंदर पर्यावरण की चिंता की गई। वैसे बहुत लंबे समय से इस पर काम चल रहा है, वही वाली बात जो मैंने आपसे निवेदन किया है, वो क्या, किताब पढ़ते हैं नंबर तो लाते हैं पर काम नहीं हो रहा है, आप समझ गए? आप ये बताओ, सरकार ने मुझे रिटायर कर दिया पर मेरी समझ ये है कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं ना, आप समझ गए बात को? भाई हमको क्या समझ रहे हैं वो समझना है। आपने कहा कि आप आओ साहब पर्यावरण को समझाओ, तो मैं शायद ये समझाने में सफल रह रहा हूं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस कक्षा में पर्यावरण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। सरकार ने मुझे उम्र के हिसाब से रिटायर कर दिया कि भाई नहीं यार, 60 साल के बाद आदमी कमजोर पड़ जाता है यार वो, पर देख लो हमने तो पर्यावरण के साथ में आनंद लिया है, तो पर्यावरण में मुझे स्वस्थ कर दिया दौड़ने के लिए, आज भी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना भैया।
1: सर उसका राज
0: होने वाला
1: आपका ये जो कर रहे इतना है, इसका राज क्या सात्विक शुद्धता है ना और परोपकार
0: राज तो इसका यही है।
1: उनका विचार है ना, विचार होना चाहिए,
0: विचार एकदम शुद्ध होना चाहिए
1: तब जाकर काम
0: निकलेगा। जैसे मुझे ये विचार है अभी कि मैं आपको वो चीज दो जो समझाना है वो समझा के जाऊं।
1: सारी तो सबका है
0: मेरा
1: लेकिन विचार
0: ये भैया खड़े हैं
1: भावना उससे
0: ये भैया खड़े हैं आपको बताओ कि हमने जब यहाँ पर मैं जिला शिक्षा अधिकारी था यहाँ पर कहाँ तुम्हारे एरिए में आबू रोड में मैं तुम्हारे ट्राइबल में खूब काम किया ऐसे ऐसे काम किए लोग बजट कहते थे कि यार वो वहां बैठा उसके बजट दे दो पूरे एरिया का बजट आता था तो हमने बजट को ऐसा उपयोग किया कि उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। मैं जब यहां आता था तब ऐसा नहीं था ये लेकिन अब इतना बढ़िया हो गया पूछो इनके वहां निचलागढ़ में जाते लोग खुश होते। आज मैं आया हूं देखो भाई साहब ने बुलाया मुझे आनंद आ रहा है कि चलो हमारे जो बोया था ना वो बढ़िया अच्छा उग करके फल दे रहा है आप सबको तो हमको अच्छा लगता है। तो हम स्वस्थ क्यों है दूरगामी सोच के साथ अपना विचार है अपना संकल्प है तो वो बढ़िया रखना हम अच्छा करें तो अच्छा हो जाएगा मैं समय का उपयोग अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा। भाई ये बात तो तुमको समझ में आई कि मैं यहाँ पढ़ाने तो नहीं आया नहीं मैं ये पढ़ाई कहां से आई और क्यों आई इसके लिए आया हूं ये मुझे पकड़ के क्यों लाए।
1: लेकिन क्या है जो अभी समझा रहे फाउंडेशन है इसका ऊपर में जितना आप मंजिल बना सकते हैं जो अभी जो ज्ञान सुन रहे हैं ना वो ज्ञान आपका बेस इसका आधार से चरित्र निर्माण होगा। जो चरित्र निर्माण होगा कोई भी रोजगार का लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा आपको सभी
0: आपके पास में चरित्र है किसी रोजगार की
1: तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र निर्माण विचार निर्माण शुद्ध विचार शुद्ध चरित्र।
0: आप बात हमारी समझ पा रहे हैं ना खाने की पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है ये प्रकृति अपने खूब दे रही है गड़बड़ कहाँ है कि हम गड़बड़ हो जाते हैं तो बीमारी में अपन खत्म हो जाते हैं इधर उधर जाने में अपना काम पूरा हो गया। आप सही चलोगे सही काम करोगे तो अपने आप ही सही बरसने लग जाएगा। अच्छे काम के लिए कहीं पर प्रतिरोध करना भी सीखो करना पड़ता है। हम जब निकलते हैं अरे यार आज तक तो नहीं हुआ ये क्या कर लेंगे भाई हम रिटायर भी हो गए अब तक तो तुमने अरे हमने प्रयास हमारा कर देना चाहिए आपको अपना प्रयास करना है अपने आप प्रकृति दे देगा नहीं देगा आप प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा मिलेगा ना हमको मिला है तो आपको भी मिलेगा ना। खाने की चिंता नहीं करनी है भोजन मिल जाएगा। अरे देखो हम तो नौकरी से ये तो नौकरी भी नहीं की है नौकरी अच्छी जगह से छोड़ छाड़ के आ गए भूखे बैठे हैं। अच्छा अपन तो हम तो हमारे एरिया में घूम रहे ये तो कहां घूम रहे उड़ीसा से आए हैं और यहां घूम रहे तो कहने का अर्थ इसका जो है कि आप अच्छा करोगे निश्चित रूप से आपको अच्छा मिल जाएगा। अब ये जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं इस पे जा रहे देखिए यहां पर चिंता क्या हुई थी पर्यावरण की चिंता क्यों है ये देखो वहीं पर आ गए क्यों चिंता है दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही जबकि उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है चरागाहों में चारे खत्म होने को है मत्स्य भंडार घट रहा है जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है प्रदूषण बढ़ा है खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो ये जब उन्होंने तब सोचा था कब सोचा था 1992 में सोचा है मुझे लगता है। अब तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया भाई इसलिए अब हम खड़े हुए मैं खुद खड़ा हुआ भाई साहब आप किसका काम करेंगे हम ईश्वरीय चिंतन करेंगे अच्छी बात कहेंगे और पर्यावरण से ही देखेंगे सभी चीजों को हमने आपसे यही वादा किया मुझे कहीं ले जाओ वहीं से पर्यावरण शुरू होगा हमारा बस पेड़ के पौधे जो पेड़ है उसकी जड़ों में पानी डालेंगे वो छाया देगा कि नहीं देगा बस यही काम करना है
1: देते चलो बस
0: करते चलो करते चलो
1: देते जो भी हमारे पास
0: देखिए सर इसमें
1: संयुक्त राष्ट्र का रिटर्न मिलेगा अच्छा सोच कर देंगे ना तो रिटर्न अच्छा ही मिलेगा
0: सर ये विकासशील देशों की सर 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है पानी नहीं है साफ
1: इस गांव में भी पानी के लिए कितना गर्मी का टाइम तो है दिक्कत होता है ना कितना दूर जाना पड़ता आप लोग जाते हैं ना पानी कभी कोई नहीं आता तो पानी कहाँ से आता आप घर के लिए कहाँ से आता बहन तुम बता देखिए तुम्हारा घर में नल लगा हुआ है बताओ नहीं कहाँ से लाते पानी बताओ कितना दूर जाना पड़ता सबको पता है ना तो पानी का कमी है कि नहीं।
0: अब सर देखिए वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है ये देखो ये साइंटिफिक है ओजोन कम क्यों हो रहा है पता है पॉल्यूशन बढ़ रहा है आपने भी मोटरसाइकिल ले ली आपने भी ले ली आपने भी ले ली आपने भी ले ली आपने भी ले ली आपने भी ले ली आपने भी ले ली तो वो जो निकलने वाला जो सल्फर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी? तो मैं तो साहब से निवेदन यही करता हूँ कि इन साधनों का कम से कम उपयोग करो। आधा किलोमीटर तक हम पैदल चले, उससे ज्यादा है तो साइकिल से चले, ज्यादा ही दूर है तो मोटरसाइकिल काम में ले ले, कोई बात नहीं। सही बात है ना सर? अभी मैं वो टिकट लाया था मैं, सर मुझे कहीं से आना था, दो दिन पहले आपने बुलाया था, मैं कहीं बाहर गया था। मैंने सर ट्रेन पकड़ी, कोई कैसे जाएंगे? मैंने कहा यार अपन ट्रेन से जाएंगे। सर ट्रेन में कोई पॉल्यूशन नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोई पॉल्यूशन नहीं, आपका उसमें योगदान होता है। तो अच्छे काम के लिए आप ये करो ना, भी इसकी जगह ये ले लो, इसकी जगह ये ले लो, उसका अच्छा विकल्प चुनो ताकि उसका प्रदूषण नहीं हो। तो मेरे ख्याल से सर सार रूप में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने लिए जिए, मतलब पर्यावरण की शुद्धि के लिए अपना विकल्प तलाश। आप नाश्ता करने में कुरकुरे नहीं खाएं, क्या खाएं? घर पे हल्का सा नाश्ता बना के खा लें, घर की चीज का। हम कोई गलत चीज का उपयोग नहीं करें, अच्छी चीज का उपयोग। भाई विकल्प अपने को काम में लाना, भूख तो मिटानी है, खा लो। कोई इधर उधर की कचरा पचरा खाने से अच्छा सा केला लेके खा लो, उसी कीमत में मिल जाएगा। आई समझ में? तो आप सब तरफ से स्वस्थ हो जाएंगे और फिर शांति से सुबह थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा बैठा करो, थोड़ा अपने लिए सोचा करो, थोड़ा परिवार के लिए सोचा करो, ठीक है ना? अपने को गुस्सा नहीं आना चाहिए, शांति से बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को प्यार से सिखाओ, ये सारी चीजें सिखाओगे तो अपने आप ही अपन मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रस्ताव, देखिए कितना भाग्य का बात है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदल्ला में, और इतना बड़ा एक्सपर्ट जो कैमरा है, पर्यावरण भी पूरा एक्सपर्ट है, बच्चों को अपना जो भाव है, भावना है, बच्चे कैसे आत्मनिर्भर बने,
0: क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं पाएगा,
1: अपना परिवेश को, अपना गांव को सशक्त बना सकते हैं। इस माध्यम से सुने हमारा श्रोता मित्र इसको फायदा लेंगे जरूर, और जो बच्चे सुन रहे इस कार्यक्रम को शाम को 7 से 8 बजे, वो भी इस कार्यक्रम का माध्यम से जितना हो सके तो ज्यादा ना कम अपना आवश्यकता अनुसार ग्रहण करके उसको काम में लाएंगे, तो जरूर सर का इतना मेहनत आपको देने के लिए जो आए, जब उनको ड्यूटी था, जो पोस्ट पे थे उनको पूरा बांधा हुआ था, कहा नहीं जा सकते,
0: तो काम ही नहीं कर पाता,
1: नहीं करते, लेकिन अभी रिटायरमेंट होने के बाद जहां भी जाए, जहां जितना भी समय दे दे सकते, ये कम बात नहीं, और आपका भाग्य का बात है, ऐसे बार बार आपको जो मिलेगा। देखो केवल गाँव पूरा एजुकेटेड गांव, हर घर छोड़ के एक एम्प्लॉय मिलेगा, एजुकेटेड शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ ना कुछ पोस्ट लेकर रहते हैं, क्यों? वो मेहनत करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं, और उनका शुद्धता विचार कुछ करने के लिए गांव के लिए, तो आप क्यों नहीं, आप भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? यस बोलो, यस आई कैन, जोर से बोलो, यस
2: आई कैन,
1: यस वेरी गुड, मैं कर सकती हूँ, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम कर सकती है,
0: ये एक्चुअल में एक पर्यावरण को एविडेंस आ रहा है कि भाई वास्तव में ये लोग कम्युनिटी में जाकर के ये चीज से बात, आप लोग बोलेंगे तो पता चलेगा।
1: देखो सभी से अपना करेंगे तो कुछ पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा जो सोएगा वो रोएगा, हम रोएंगे नहीं, खोएगा नहीं,
0: रोएगा,
1: हम पाएंगे। यस क्या बोले, जोर से बोलो, यस आई कैन, वेरी गुड, मैं कर सकती, मैं कर सकता हूँ, बोलो जोर से, मैं नहीं करूंगा कौन करेगा, मैं ही किया था और मैं ही करूंगा, बोलो, मैं किया था, मैं ही करूंगा, वेरी गुड, ताली बजाओ,
0: वेरी गुड।
1: सर हमारा गणेश सर तो कौन भूल सकते भाई, हम निचलागढ़ से परिचित है, और गणेश सर रेडियो मधुबन और ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या जानते हैं और क्या सहयोग देते हैं?
3: बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र भाई, वैसे मेरी मनसा तो कुछ अलग ही है, लेकिन हमारा विद्यालय जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास में आया हुआ है, और उसको मैं मिनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ, और लगातार प्रयासरत हूँ, और आने वाले समय में शायद ये दृष्टि यहाँ पे विकसित हो जाएगी। धन्यवाद,
4: बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सर, और हमारा साथी सहयोगी श्रीमान भोपाल राम पुरेत जी को सुंदर में आज बच्चों का साथ रूबरू होकर पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हमारा नैतिकता और चरित्र निर्माण में पर्यावरण कितना आवश्यकता वो विषय रखे हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर पर्यावरण स्पेशल

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हम शांति, आज मदर्स डे है जिसे हम मई के दूसरे रविवार को हर साल मनाते हैं। तो सबसे पहले तो विश्व की सभी माओं को आज के दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मुबारक हैं। और ये दिन माँ का हमारे जीवन में क्या योगदान है उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम मनाते हैं। माँ ही हमें जीवन देती है, माँ के गर्भ में ही शिशु का सिंचन होता है, माँ ही हमारी प्रथम शिक्षक है, माँ ही हमारी प्रथम दोस्त होती है, माँ ही हमें संस्कार देती है अच्छे या बुरे। यानी माँ जैसा आचरण करती है वैसा ही बच्चा अपने जीवन में बनता जाता है। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और माँ हमारे लिए अपने सभी खुशियों का त्याग करती है, अपने सपनों का त्याग करती है। बच्चे के लिए वो रात रात भर जागती है, अगर वो बीमार है तो दिन रात वो उसकी सेवा में लगा देती है। फिर चाहे वो काम करती हो यानी ऑफिस जाती हो, चाहे वो गृहिणी हो, लेकिन वो कभी कोई बहाना नहीं देती। और इसलिए माँ का ऋण हम नहीं चुका सकते। माँ के लिए मैं कहूँगी कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। एक बार ऐसे ही एक बच्चा था, तो माँ ने उसे कुछ काम कराए, उसे दूध मंगवाया, उसे कुछ सब्जी मंगवाई, उसने घर की चीज़ों को ठीक करने में माँ को मदद की, कुछ रसोई में मदद की। तो उसने उसको लिखा एक पेपर पर कि हर एक काम का इतना रुपया और कुल इतने रुपये, और माँ को दे दिया कि माँ आपने मेरे से काम कराया उसका इतना पेमेंट है। तो फिर माँ ने उसी के नीचे लिखा, तुमको 9 महीना गर्भ में रखा, नो चार्ज, तुम्हारी दिन रात सेवा करती हूँ, नो चार्ज, तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाती हूँ, नो चार्ज। तो माँ ने जब वो लिखा और फिर लिखा कुल, नो चार्ज, तो बच्चे ने उसको पढ़ा तो बच्चे को समझ में आ गया, और फिर उसने नीचे लिखा इंडेप्टेड फॉर फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए माँ मैं आपका ऋणी हूँ। तो माँ का ऋण बच्चा कभी भी नहीं चुका सकता है, और माँ हमेशा ही हमारे साथ खड़ी होती है, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम सुखी हैं, चाहे हम सही हैं या हम गलत हैं, मुश्किल वक्त में हम माँ को ही याद कर रहे होते हैं ना, माँ के सिवाय हमें और कोई याद नहीं आता है। तो आज का जो दिन है वो हम केवल फूलों को दे करके मदर्स डे ना मनाएं, है ना, फूलों का गुलदस्ता हम दे दें माँ को या कोई गिफ्ट हम दे दें, नहीं, इस तरह से मनाने का दिन नहीं है। लेकिन उनकी सेवाएं जो वो हमारे जीवन में हमें प्रदान करती रही हैं उसके लिए हम उनको स्नेह दें, सम्मान दें और सदा ही उनकी सेवा में तत्पर रहें। कई बार देखने में आता है कि जब माँ वृद्ध हो जाती है तो कई बच्चे माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या कोई तीर्थों पर आश्रम में छोड़ देते हैं। तो जो उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किए, अब जब उन्हें आवश्यकता है तो फिर हमें भी उनके लिए हाजिर रहना चाहिए। यही हम कहेंगे सच्चा मदर्स डे मनाना है। तो हम कभी भी उनको दुख ना दें, जैसे वो हमारे दुख दूर करने के लिए सदा तत्पर रही हैं। तो मैं कहूँगी कि कोई एक दिन की बात नहीं, पर हर दिन हमारा मदर्स डे होना चाहिए, हर दिन हम उनके प्रति अपना आभार माने। तो सभी को फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति।
2: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर, मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं, माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए निकले जिधर से हम, एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात, अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है यहाँ का क्षेत्र है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

0: Duban, Khabar Tarej.
1: अगर एक सवाल का एक जवाब होता, या फिर हर सवाल का एक जवाब होता, तो क्या होता? अगर भगवान ने दुनिया में एक ऐसी चीज़ बनाई होती जो पाते ही ऐसा लगे कि खजाना मिल गया, जिसको जीवन में शामिल होने से ऐसा लगे कि जीवन सफल हो गया, जीवन स्वर्ग बन गया, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिंदगी में हो जिसके बस माथे पर हाथ रख देने से सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो कौन है? जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ हर उस माँ की, या हर उस शख्स की जिसने माँ का किरदार निभाया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी हमारी बड़ी बहन, कभी कभी हमारे पिता, कभी हमारे चाचा, मामी, मामा, कोई भी हो सकता है जिसने हमें माँ बन के प्यार किया। माँ कौन होती है? जो सेल्फलेस प्यार करती है, पालना करती है, जो उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ें ये कामना करती है, ऐसी होती है ना माँ? तो दोस्तों, उस माँ को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं। वैसे तो कोई एक दिन नहीं होता माँ को सेलिब्रेट करने के लिए, या माँ को ये बताने के लिए कि आप क्या हो मेरे लिए। हालांकि कई बार हम इसे शब्दों में बयां कर भी नहीं पाते हैं, कह भी नहीं पाते हैं, तभी तो बहुत सारे गाने बने हैं दोस्तों जो हमारी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। चलिए, फिलहाल मैं आपको लिए चलती हूँ ऐसे ही एक गीत की ओर। हम मधुबन अनप्लग्ड में आज सेलिब्रेट कर साथ बने रहिए।

আরে উড়া কুলাল মাই তেরি চুনারিয়া লহরাই, জগ সে হারা নহি মে খুদ।

0: बुआ ऑल ओवर सुनाओ ना।
1: हाँ बेटा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है, दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित न रहे। सभी मम्मीज को, हर उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, जिन्हें माँ कहकर नहीं बनवाया जाता है।

30 मिनट पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, यानी ये संगीत का सफर है, ये संगीत से प्यार का जो हम अनुभव करते आए हैं उसे एक ट्रिब्यूट भी कह सकते हैं। हर हफ्ते हम आ जाते हैं रात को 8 से 9 आपके समक्ष लेकर बहुत सुंदर सा, ये मीठा सा, प्यारा सा, मधुर सा संगीत का सफर। दोस्तों, आज का दिन और स्पेशल है, मदर्स डे है, यानी हम ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं, दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं हर उस माँ का या हर उस व्यक्ति का जिसने माँ का रोल निभाया है हमारे जीवन में। कोई ना कोई ज़रूर रहा होगा दोस्तों। कई बार हमें महसूस होता है कि हमारे बड़े भाई बहन ही ऐसे हैं जिन्होंने माँ की तरह हमें बड़ा किया या माँ की तरह प्यार किया, तो उन्हें भी मदर्स डे कह सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए अब बातें कम और संगीत ज़्यादा, भाई हमारे नारा है क्योंकि कार्यक्रम है संगीत वाला। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में विवेक जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू जी।
0: विवेक जी, मैं चाहूंगी सबसे पहले, वैसे तो मुझे लगता है आप हमारे श्रोताओं से कई बार मधुबन अनप्लग्ड में जुड़ चुके हैं
1: जी,
0: और आप बहुत सुंदर सेवाएं भी करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो या फिर आप चाहे गीत संगीत की बात हो या पोएट्री लिखने की बात हो, बहुत कुछ आपके अंदर हुनर छुपे हुए हैं, इससे तो हम परिचित हैं। आज मदर्स डे पे आप क्या फील कर रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं माँ बाप का जो ऋण होता है वो चुकाया नहीं जा सकता, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जब कोई एक्सप्रेसिव नहीं होता है तो वो पर्टिकुलर डे पे एक्सप्रेस करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो हमने माता जी को फोन लगाया, हमने माता जी को हैप्पी मदर्स डे बोला तो माता जी ने भी बोला थैंक यू बोला, तो उसको भी एक अंदर से अच्छा फील आया होगा जरूर कि भाई कुछ भी हो, मीन्स एक तो लगा उसको कि अपने बच्चे ने अपने हमको अप्रिशिएट किया है कुछ भी, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा करने से हमको कोई अप्रिशिएट करे तो उनको भी लगता होगा, क्योंकि आजकल कितने भी बुढ़े हो जाए अगर वो थोड़ा सा मीडिया से कनेक्टेड है तो उनको पता चल जाता है आज मदर्स डे, आज फादर्स डे है, जो भी डेज है,
0: आजकल तो व्हाट्सएप पे आ जाता है फटाफट।
1: जी जी, तो उनको पता रहता है कि आज मदर्स डे है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी हमको कभी फोन करे, क्योंकि जब से ये फोन आया है सब लोगों को दूर कर दिया इस फोन ने, तो हो सकता है कि उनको भी थोड़ा बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ होगा। और मुझे भी फोन करने के बाद आपने जो याद दिलाया मुझे, तो उसके बाद में मुझे भी थोड़ी सी एक भावना जागृत हो गई कि नहीं फोन करना चाहिए, तो अच्छा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा।
0: अगर मैं आपसे पूछूं अपनी माँ की सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगती है?
1: मेरी माँ की सबसे अच्छी क्वालिटी ये मुझे ऐसी लगती है, बचपन से मैं देख रहा हूँ कि जो भी कोई घर पे आए वो भूखा ना रहे, और हम भी बच्चे और हमको भी उन्होंने यही सिखाया कि मेहमान भगवान का रूप होता है, उसको कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। कभी भी आए, रात को 12 बजे क्यों ना आए, उसका फर्ज अलग है, लेकिन अपना फर्ज है कि उसको पूछे और उसको कुछ बना के खिलाए, तो वो संतुष्ट होके अपने घर से जाए। और मैंने देखा कि जो खाना खिलाने में ज़्यादा भावना रखते हैं, खिलाते हैं, दिल से करते हैं, उनके घर में किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती। तो हमारे घर में भी यही है, हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया कि जो भी आए उसको अपने हाथ से बना के खिलाओ, और आज भी हमको यही आदत है, हम जितना हो सके और जो भी हो सके हम करने की जरूर कोशिश करते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है।
0: मतलब ये संस्कार आप में माँ से आए
1: जी,
0: है ना? तो क्या आप माँ से कुछ कहना चाहेंगे, मैं रेडियो के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो आपने उनसे कहनी चाहिए या नहीं कह पाए?
1: पर्टिकुलरली मैं मेरी माँ को तो अभी सब कुछ बोल दिया, मैं ज़्यादा तो माँ बाप से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, उनके लिए मेरे जो कर्तव्य होते हैं मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इन जनरल मैं सभी जो बच्चे हैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक होता है कि उनका कर्तव्य होता है, और एक और दूसरी चीज़ होती है कि उसका एक धन्यवाद देना होता है। कर्तव्य तो जब हम लोग माँ बाप बनते हैं तब हमको पता चलता है कि कर्तव्य क्या चीज़ होता है और एप्रिसिएशन क्या चीज़ होता है। तो इस चीज़ के लिए मैं सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने जो भी माँ बाप है, आप जिस किसी फीलिंग से, जिस किसी फॉर्मेट में आप बताना चाहते हो, बाय टेक्स्ट, बाय मैसेज, बाय ऑडियो क्लिप, किसी भी चीज़ से आप उनको ज़रूर बताइए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आज के माँ बाप लोगों को पता चल जाता है कि आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, तो एक्सपेक्टेशंस रहती है थोड़ी सी, तो उस एक्सपेक्टेशंस को हम, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा उनसे बात कर लेना चाहिए, भले मदर्स डे फादर्स डे हैप्पी मदर्स डे नहीं बोले, लेकिन उस दिन उनको ज़रूर फ़ोन करें। और ये मैं खुद को भी आज आपके रेडियो के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि जो रोज़ कम से कम एक बार तो भी अपने माँ बाप को फ़ोन करते हैं। माँ को तो ज़रूर करते हैं, भाई होगा तो माँ को करते हैं, बच्ची होगी तो पिताजी को करते हैं। मुझे तो ऐसा होता नहीं, मेरे से मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि रोज़ क्या बोले, कुछ नया हो कुछ अलग हो
0: क्या
1: तो बात
0: बताएं
1: करें
0: उनसे।
1: ना, कि बस खाना खाया क्या, ये हुआ क्या, हाँ किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई अलग सा ओकेजन हुआ है रेगुलर से, तो बात करने का कुछ बनता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये आदत मेरी भी मुझे बदलनी चाहिए। नहीं मैं तो 15 15 20 20 दिन फोन नहीं करता हूँ, लेकिन करना चाहिए
0: करना
1: एटलीस्ट। नहीं
0: चाहिए।
1: कुछ तो अल्टरनेट डे, 7 डेज, वंस इन अ वीक, ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए, उनके हालचाल।

0: कुछ नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है अब विवेक जी, आप हम जिस जनरेशन के हैं, हम सभी हम ऐसे बड़े हुए हैं कि हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं अपने माता पिता के साथ। हम उन्हें ये नहीं कहते कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या फिर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, या कुछ बोलते नहीं हैं कभी। वो शायद हम उन पे गुस्सा कर सकते हैं अगर वो अपनी दवाई टाइम पे ना खाएं, या हम पे गुस्सा करें तो, या कोई बात ना माने, हमें लगता है वो गलत कर रहे हैं, तो हम उनको टोक सकते हैं, उनसे नाराज़ हो सकते हैं, पर उनसे ये नहीं कह पाते कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
0: लेकिन उनसे नाराज़ होना, वो जो दवाई नहीं देते उनसे नाराज़ होना,
1: जरूरी
0: इसमें भी एक प्यार छुपा है। और हो सकता है कि वो गुस्सा होना कितने लेवल तक के हम करते हैं तो उसमें भी उनको अच्छा लगता है कि ये केयरिंग
1: हाँ,
0: है,
1: बिल्कुल,
0: वो भी हो सकता
1: तो
0: है,
1: वो भी
0: अच्छा फील
1: है।
0: करते होंगे वो, हमारे तरफ ध्यान देते हैं तो। लेकिन हर चीज़ हर वक्त गुस्से से ही नहीं करनी चाहिए, ये मैं खुद को भी समझाता हूँ। तो कुछ कुछ वक्त प्यार से भी बात कर लेनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे अभी याद आया, मदर्स डे के लिए ही नहीं, अभी वो बूढ़े होने के बाद में बच्चे सरीके जरूर करते हैं।
1: हाँ,
0: उनको थोड़ा सा, जैसे बच्चों को हम इग्नोर करते हैं कि चलो कोई नहीं बच्चा है, उस हिसाब से भी माँ बाप को अभी थोड़ा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि 60 के बाद में वो थोड़ा सा रिवर्स गियर डाल के वो बच्चों सरीका करना शुरू करते हैं, उनको बहुत कंजूसी आ जाती है, उनमें हर चीज़ में पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, और उनको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि वो हमको ऐसा समझते हैं कि इनको कोई नॉलेज नहीं है आज की दुनिया का, क्योंकि वो बहुत पुराने लोग हैं, उनको उनके पास में बहुत अनुभव है। लेकिन मैं इस रेडियो के जरिए, आपके रेडियो के जरिए माँ बाप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बच्चों के ऊपर भी विश्वास करके देखना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: आज का जनरेशन ऐसा है कि करके देखना चाहते हैं, गलतियाँ तो होगी लेकिन उस गलती से सीख भी लेंगे, इसलिए कुछ कुछ गलतियाँ होने दो। कुछ कुछ गलतियाँ माँ बाप कर रहे हैं आज के डेट में, इतने अनुभवी होने के बाद में भी, तो वो उनका बचपन है, उनको भी माफ़ करो। और माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भी थोड़ा सा फ्री छोड़ो, उनको नया कुछ ट्राई करने दो, उनको अलग कुछ ट्राई करने दो, और
1: बिल्कुल
0: हो सकता है तो उनके अलग कुछ करने में थोड़ा सहयोग दो, अगर नहीं हो सकता है तो इग्नोर करो, इससे घर का वातावरण भी अच्छा बना रहेगा और थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना भी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है हम ये जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं, जो एक दूसरे को समझने का प्रयास दोनों जनरेशन को करता है।
0: प्यार तो सभी में होता
1: प्यार
0: है,
1: तो सब
0: लेकिन
1: होता
0: गैप
1: है।
0: के वजह से वो गैप फील नहीं हो पा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके पास बैठे जरूर, उनके लिए वक्त जरूर निकालें। मैं तो बस यही कहूँगी, क्या आप अपनी आज इस रेडियो के माध्यम से अपनी माँ को कह सकते हैं कि माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ?
0: हाँ, आजकल ये थोड़ा सा मेरा ये भाव जागृत हुआ है कि मैं ओपनली उनसे बोलता हूँ। एक दो बार मैंने पिताजी को भी बोला है, एक दो बार मैंने माताजी को भी बोला है कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये करता हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए।
1: हाँ, बस उतना ही काफी है।
0: उतना ही काफ़ी, उतना बोलेंगे तो उस वर्ड का बहुत ज़्यादा मीनिंग बनता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए घर बना रहा हूँ। वो तो अपने आप में जान चुके हैं, लेकिन ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपसे प्यार करता हूँ, अनकंडीशनल रहता है, उतना उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है। उसके आगे वो कंडीशन डाल देते हैं तो फिर वो कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि भाई घर तक ही इसका घर ये सीमित है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके आगे कंडीशंस नहीं लिखने चाहिए। लेकिन फिर भी वो थोड़ा एक्सप्रेस करना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ ये बोलना ज़रूरी है और ये बोलना पड़ेगा, ये मैं आपके रेडियो के माध्यम से खुद को भी समझा रहा हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं कहना है।
1: तो अगर आपकी माँ आपके सामने होंगी तो आप उन्हें कह सकते हैं केवल ये सेंटेंस?
0: हाँ, कह सकता हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स के इसमें नहीं जाएगा, वो थोड़ा कॉमेडी सेंस में चला जाएगा, वो थोड़ा हंसी के मोड में लेके जाऊंगा मैं
1: बोलने की ना।
0: हाँ, तो वो थोड़ा हंसी के मोड में चला जाएगा। हंसी हंसी में भी थोड़ी सीरियस बातें की जा सकती है,
1: कर सकते
0: और हंसी हंसी में भी फिर धीरे धीरे सीरियस हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हंसी से क्यों ना हो कि शुरुआत तो हो जाएगी।
1: अभी मैंने
0: माता जी को
1: दीजिए।
0: बोला तो थैंक यू 2-3 बार उसने थैंक यू बोला।
1: हाँ,
0: तो उसको भी बड़ा अच्छा लगा और मुझे भी बड़ा एक दिल का बोझ हल्का हुए शरीर का लगा आज।
1: इसीलिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने की शुरुआत करनी है तो कल पे मत छोड़िए दोस्तों, आज मौका है, आज कर दीजिए।
0: क्या पता अगला मदर्स डे आए ना आए, उनका वो अपने साथ रहे ना रहे, अपना भी भरोसा नहीं है, उनका भी भरोसा नहीं है,
1: जीवन का भरोसा तो नहीं है। और सच में कई बार हम बहुत मिस करते हैं, जब वो डिस्टेंस भी हो जाता है कई बार तो भी बहुत मिस करते हैं, तो मौका छोड़िए मत। क्या कोई गाना है ऐसा जो आप सुनाना चाहेंगे आज मदर्स डे पे हमारी श्रोताओं को भी और अपनी माँ को भी डेडिकेट करना चाहेंगे आज?
0: जी, एक गाना है जो मुझे हमेशा के लिए पसंद है, वो तारे ज़मीन पर मूवी का मेरी माँ। तो ये गाना मैं आपके माध्यम से मेरी माँ तक पहुँचाना चाहता हूँ।
1: ज़रूर
0: जी।

जी श्रोताओं, मैं आपके सामने ये गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भावनाओं पे जाइएगा। थोड़ा आज गले में खराश है, तो आप सुनिए और अपनी माँ को भी याद कीजिए आज के दिन।

0: पुनः बहुत सारा स्वागत है दोस्तों, आप सभी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड। और अभी अभी आपने विवेक जी की आवाज़ में जो गाना सुना, एक शब्द भले छूट गया हो उसमें से, लेकिन भावना पूरी पहुंच गई। और सच में ये ऐसा गाना है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आते हों ये गाना सुन के, या इसके लिरिक्स पढ़ के, या हल्की सी नमी आ जाती हो, या शायद भावना तो अंदर आपकी बाहर आने को तड़पती ज़रूर होगी। क्योंकि सच में माँ को सब पता होता है, माँ पहचान जाती है वो चीज़ें भी जो हम खुद से भी छुपाते हैं। भले हमें डांटती, थोड़ी पिटाई भी होती है, लेकिन वो बहुत सारी के लिए आ रहे फ़ोन, तब तो सबसे भी जेस्चर व्यक्ति है जिसने माँ की भूमिका आपके जीवन में निभाई है, तो उसे भी कहिए हैप्पी मदर्स डे। विवेक जी आपका हमारे साथ
1: थैंक यू।
0: और दोस्तों फिलहाल धुबन अनप्लग्ड।

0: हाँ छोले भटूरे, अरे वाह आज फिर से मजा आ जाएगा आज खाने में। तो तू बता तू क्या लाया टिफिन में?
1: मैं तो बिस्किट और नमकीन।
0: बिस्किट और नमकीन? तू तो रोज यही लाता है, तेरे पास
1: माँ को आता था, माँ नहीं है ना।
0: मेरा टिफिन रा टिफिन है और मैं हूँ ना तेरे साथ हमेशा।
2: वो एहसास है हर रिश्ते में है, दिल कोई भी दिल माँ के प्यार से, और उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
3: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
2: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। दोस्तों कई ऐसे कवि हुए, कई ऐसे ज्ञानी हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे बातें कह दी शब्दों में पिरो के कि वो दिल को छू जाती हैं। कई ऐसे आर्टिस्ट हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई, कई गहरी बातें अपने कलर से उतार दी। कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया जा सकता है। पर हम घर में सोचते हैं कि मैं तो भाई जॉब करता हूँ या स्कूल में पढ़ती हूँ या कॉलेज जाता हूँ, ना मैं कोई कलाकार हूँ और ना ही मुझे इतनी सुंदर तरीके से अपनी बात को व्यक्त करना आता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों,

0: सच्चे दिल से बोले गए दो बोल, चाहे वो शायरी ना हो, चाहे वो कविता ना हो, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ ना हो, फिर भी दिल तक पहुँचते हैं। और वो जो अनुभव होता है ना, वो हमेशा याद रहता है। तो इसीलिए अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं जो अच्छी चीज़ है, अब देखिए बुरी चीज़ें तो हम फटाफट कह देते हैं, गिना भी देते हैं गलतियाँ, और याद भी दिला देते हैं एक दूसरे को, अरे तुमने ऐसा किया था। और कोई अगर हमें हमारी गलती याद दिलाए, फिर तो फटाफट उसको भाई दिलानी ही पड़ती है ना। ऐसा होता है, लड़ाई झगड़े बातें, जब उन चीज़ों में हम देरी नहीं करते, जबकि उसमें करनी चाहिए, डिले होना बहुत ज़रूरी है उन थॉट्स में, उन एक्शंस में जो कई बार हमें बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो प्यार में देरी क्यों, अपनी माँ से कहने में देरी क्यों कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, या कोई ऐसी शख्सियत जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जिसने आपके जीवन में माँ की भूमिका निभाई हो। दोस्तों, ये भावना अगर हमें समझनी है तो बस खुद के अंदर ही जाना होगा थोड़ा सा, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हमारे अगले गेस्ट, और आइए उनका नाम पूछते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम अतुल है। आपको और रेडियो मधुबन के हर श्रोता को आज मदर्स डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस।
0: तो अतुल, आप मदर्स डे पर आज अपनी माँ को कौन सा गीत डेडिकेट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
1: जैसा कि आज का शो मदर्स डे को डेडिकेटेड है, तो आज के इस हैप्पी डे पर मैं अपनी मदर का एक बहुत फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट गाना गाना चाहूंगा और सारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा।

कोयल बिन बगिया ना सोभे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोभे राजा।

देवर बिन अंग नाना सोभे राजा, देवर बिन अंग नाना सोभे राजा। सास ससुर बिन ससुरो न सोभे, सास ससुर बिन ससुरो न सोभे, सास ससुर बिन, सास ससुर बिन।

0: बिन अंगना ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोभे राजा. So this was one of the favorite songs my mother likes, and ye gana main unko aaj dedicate kar raha hu. Hope everybody liked it aur unhe acha laga ho.
1: Thank you so much Atul, bahut sundar gana aapne gaya aur सच में ऐसा लग रहा था कि वो ना एक जो लोकल फ्लेवर आता है जो हमारे गाँव में हमारे यू नो घरों में गीत गाए जाते हैं, फिर वो वाली बात आ रही थी. और सच में अपने माँ का फेवरेट गाना आपने गाया, बहुत सुंदर लगा होगा उन्हें भी हमें लगता है. अब मैं आपसे जानना चाहूँगी अतुल, इतना प्यारा आपने गीत गाया, कोई ऐसी माँ के बारे में अपनी बात भी बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है या आप उनसे कहना चाहते हैं, आज वो बात अपनी ज़रूर माँ से कह दीजिए.
0: और आज मदर्स डे पर अपनी माँ की तारीफ के लिए मैं कितना भी कहूंगा, जितना भी कहूंगा उतना कम ही होगा, बिकॉज उसकी कोई लिमिट नहीं है. आई एम डीपली डीपली डीपली ग्रेटफुल फॉर ऑल हर लव, हर डेडिकेशन. उन्होंने जितने सैक्रिफाइसेस मेरे लिए किए हैं, मुझे पालने के लिए, मुझे इतना बड़ा करने के लिए, मुझ में अपने वैल्यूज, अपने संस्कार डालने.
1: बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात होती है, संस्कार डालना वो माँ ही कर सकती है. तो
0: वैल्यूज, अपने संस्कार डालने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है. तो मैं ताउम्र इस जीवन में भी, शायद अगले जीवन में, अगर वो हम एक दूसरे के सामने आते हैं, सामने आते हैं, हमारा आमना सामना होता है, तो भी मैं उस जीवन में भी उतना ही शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझ पर अपना एफर्ट, अपना समय, अपना प्यार लुटाया है. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एज अ मदर टुवर्ड्स मी कि उनके अंदर बहुत पेशेंस है. वो जैसे क्रैंकी, नटोरियस और शरारती इंसान को, एक शरारती बच्चे को पालना, इतना बड़ा करना एक बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए भी, बिकॉज हर जगह इधर शरारत कर रहा हूँ मैं, उधर तोड़ फोड़ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बट शी हैज मेंटेन्ड पेशेंस. वो अपना काम, कंपोज्ड बिहेवियर रखा है. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने मार नहीं खाई है, मैं बहुत पिटा हूँ, बट जिस हिसाब से मैंने उनकी नाक में दम करके रखा हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि उनको हाइएस्ट कोई एक अवार्ड मिलना चाहिए पेशेंस के लिए, उनको दे देना चाहिए. बिकॉज मैं एज अ चाइल्ड, मैं अभी भी नाक में दम करने में, मैं ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने कोई ऐसी कोताही छोड़ रखी है उनको परेशान करने में, बट स्टिल शी स्टिल लव्स मी विद दैट सेम फील, सेम डेडिकेशन. तो आई एम ब्लेस्ड, मैं इससे ज़्यादा और तो कुछ मांग भी नहीं सकता हूँ कि हाँ. और एक बेस्ट चीज़ ये रही है कि उनकी वजह से मेरा बचपन, ठीक है आज मेरी उम्र 35 साल के ऊपर हो गई है, पर वो जो बचपना था, जो 13 साल के अंदर वो जो एक मासूमियत थी, जो शरारत करने का एक जज्बा बोल सकता हूँ मैं, या मेरी अंदर की एक जो स्किल थी, वो आज भी जिंदा है. बिकॉज शी लिसन्स टू इट, शी केटर्स टू इट. उन्हें समझ में आता है कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया है, और मेरे अंदर की खुद की अपनी एक जो फीलिंग है उसको उन्होंने अभी तक जिंदा रखा है, उसे वो समझती हैं. सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि हाँ आज इस स्टेज पर भी आकर उन्हें वो चीज़ें समझ में आती हैं, और मेरे अंदर का वो जो बचपन है उनकी वजह से है. सो हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ टू हर एफर्ट्स, हर डेडिकेशन. एंड अपनी तरफ से फिलहाल मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि उन्हें प्राउड करवाऊँ. मेरी अपने जो भी लक्ष्य थे या उनके प्रति जो मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ थी, मैंने उन्हें पूरा किया है और आगे भी करता रहूँगा. तो इन दिस होप कि हाँ मैं एक बेहतर बेटा बन पाऊँ, एक बेहतर इंसान बन पाऊँ, वो गर्व उनको मैंने वो महसूस करने के लिए दिया है. एंड थैंक यू, थैंक यू माँ, आई लव यू बिकॉज यू हैव लाइक, यू आर द बेस्ट, सिंपल इज दैट, यू आर द बेस्ट, बेस्ट बेस्ट बेस्ट. और जाने से पहले एक चीज और, देर आर अदर वुमेन टू, सिर्फ मेरी माँ नहीं, और भी कुछ ऐसी महिलाएं रही हैं मेरे जीवन में, जहाँ मेरी मौसी हैं या मेरे दोस्तों की मम्मियाँ रही हैं, जो जिन्होंने जब जरूरत थी मुझे, तो सहारा दिया है, समझा है, कुछ चीज़ें समझाई हैं कि जीवन में जब मैं कभी भटक रहा था तो आई डू रिमेम्बर वो मदरली फिगर्स भी वहाँ पर थे जिन्होंने मेरे अच्छे के लिए अपना इन्वेस्टमेंट दिया है, टाइम का इन्वेस्टमेंट दिया है, जहाँ उन्होंने मुझे सुना है, मुझे समझाया है, मुझे मार्गदर्शन दिया है, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ और उन्हें भी मैं अपनी तरफ से हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच अतुल। और बिल्कुल ऐसे महिलाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने हमारे जीवन में वो भूमिका निभाई। उन सभी को आज रेडियो मधुबन भी बहुत दिल से प्रणाम करता है, नमन करता है और कहता है हैप्पी मदर्स डे।

0: जी हाँ दोस्तों, जब माँ की बात आती है तो फिर शब्द कम पड़ ही जाते हैं, लेकिन संगीत का सफर है तो हमारे साथ जुड़ गई हैं आरजे उषा जी भी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो पर।
1: हाँ जी नमस्ते, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने आज खास दिन के लिए हमें याद किया इसके लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देरी ना करते हुए मैं आपसे भी,
1: मदर्स डे है आज,
0: हाँ जी जी जानना
1: सभी
0: चाहूंगी
1: माताओं
0: कि आप
1: को
0: सबसे पहले,
1: इस दिन की खास ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और हाँ जी, और सब मैं आरुषि जी,
0: जी आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी माँ के लिए, आज कुछ विश करना चाहेंगे उन्हें?
1: हाँ जी बिल्कुल, मैं हर माँ के लिए यही कहना चाहूंगी, माँ तो कहते ना कि ममता की मूरत होती है और माँ रत्नों की खान होती है। वो कहते हैं कि माँ ए माँ बाकी बदा वगड़ा ना वाह, ये गुजराती में कहावत है
0: अच्छा
1: जी। तो मतलब माँ की होड़ इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल सही बात है, और आप खुद एक माँ हैं, बहुत प्यारे प्यारे आपके जो बहुत सुंदर सुंदर परिवार वाले हैं वो भी मुझे लगता है आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आपने, आप सभी को वो प्यार अनुभव कराते रहते हैं अपना रोल हर जगह जहाँ भी जाते हैं। और आपके जो माता जी हैं वो भी हम समझते हैं इस उम्र में भी इतने एक्टिव और इतने खुश मिजाज हैं कि वो भी एक उदाहरण है हम सब के लिए।
1: बिल्कुल, और देखे हर माँ, वो कहते हैं ना त्याग की मूरत होती है। माँ भले खुद दुख सहन कर लेती है, खुद भूखी रहेगी, लेकिन अपने संतान को, अपने बच्चों को कभी भूखे नहीं रहने देंगे। इसलिए माँ की महिमा है। कहते हैं ना, त्याग के बिना कोई किसी की तारीफ नहीं करता। और माँ तो माँ के नाम से ही ऐसा लगता है जैसे कि अच्छी सी चॉकलेट खा ली हो मुंह में।
0: सही बात है, माँ शब्द इतना मीठा है, इससे मीठा शब्द नहीं होगा। उषा जी, क्या कोई दो पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे आज मदर्स डे पे, खास
1: हाँ
0: हमारे
1: जी
0: श्रोताओं को?
1: जरूर जरूर। रुके तो चांद जैसी है माँ, चले तो हवाओं जैसी है माँ, वो माँ ही है जो धूप में भी ठंडी छाव जैसी है। वो कहते हैं कि लाड़ प्यार की बस यही है। दोस्तों मेरे लाड़ प्यार की बस यही है, मैं बिगड़ भी जाऊं ना तो वो मुझे अनमोल कहती है। नींद अपनी भुलाकर सुलाया है मुझे, नींद अपनी भुला करके सुलाया है मुझे, अपने आंसू सुखा करके हंसाया है मुझे। तो मैं आज के इस
0: क्या
1: खास
0: बात
1: दिन पर मैं अपनी भी माँ को याद कर लेती हूँ, सभी माताओं के साथ,
0: जी,
1: कि माँ तो कहते हैं ना कि ये एक दिन मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन एक दिन नहीं, रोज मनाना चाहिए। रोज माँ की महिमा जितनी आप गाओ उतनी कम है। और
0: बिल्कुल
1: हमारे भारतीय संस्कृति में तो यही कहा जाता है कि बच्चे अपनी माँ का अगर चरण धोकर के रोज पिए ना तो भी उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते।
0: माँ बाप का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता,
1: जी
0: संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने
1: बिल्कुल,
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, बहुत इमोशनल और बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने आज इस दिन को और खूबसूरत बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, आपको भी और हमारे सुनने वाले सभी छोटा बंधुओं को भी।
0: शुक्रिया दोस्तों, और उषा जी के साथ साथ आप सभी का भी धन्यवाद। आप सभी रेडियो का हिस्सा हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, और आपकी खुशियों में, आपके गम में हम आपके साथ हैं, शामिल हैं, क्योंकि ये एक परिवार है। तो दोस्तों, रेडियो मधुबन से अपना ये रिश्ता बनाए रखें, बरकरार रखें, अपने मैसेजेस अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मैसेजेस के

माध्यम से अपने विचार जरूर हम तक पहुंचाते रहें। हमें भी पता चलता रहता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो फीडबैक हम तक पहुंचता है। और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर संगीत का आपको शौक है, तो ज़रूर आपका नाम, आपके गांव का नाम हमें लिखकर भेज दीजिए हमारे नंबर पर, जो कि है 94-1415-1415, यानी कि 9414151415। अब फिलहाल तो वक्त हो गया इजाज़त लेने का, लेकिन सच में दोस्तों, अपनी भावनाओं को इजाज़त मत लेने दीजिएगा, खुद से दूर मत करिएगा। अगर वो सच्ची हैं, अच्छी हैं, प्यारी हैं, कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो मत कहिए, लेकिन अच्छा है कुछ कहने के लिए तो देरी बिल्कुल मत करिए। क्या पता कल वक्त मिले ना मिले, है ना। तो दोस्तों, अपनी माँ को, अपनी बहन को या किसी भी रिश्ते को अगर आप ये कहना चाहें कि आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, या मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, या थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए किया, किसी भी तरह से जो आपके मन में आ रहा हो कह दीजिए। एक सेंटेंस हो, एक पैराग्राफ हो, कुछ लंबा चौड़ा हो, लेकिन अगर वो अच्छा है, सच्चा है, तो कह दीजिए। फिलहाल लेते हैं इजाज़त और सलाम करते हैं हर उस माँ को जिसने कर्तव्य अपने ऐसे निभाए कि उनके कई बेटे भारत माँ की रक्षा में भी खड़े हैं। उन माँओं को हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपने बेटे का, अपनी बेटी का मुंह ना करके देश को समर्पित कर दिए। बहुत बड़ी बात है, ये करना आसान नहीं होता। बहुत कमाल की वो माएँ होती हैं जब उनका बेटा शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर आते हैं, तब भी वो सलाम करती हैं देश को, गर्व से कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को भारत माँ के नाम कर दिया। उस माँ को भी हम सलाम करते हैं और आप सभी को कहते हैं दिल से हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है यशस्वी भारत। दोस्तों, भारत के कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने न सिर्फ समाज कल्याण में, भारत की उन्नति में, भारत के कल्चर में अपना योगदान दिया, साथ साथ भारत का नाम विश्व में भी ऊंचा किया। दोस्तों, कई ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं जिनके बारे में ये तो बात होती है कि उन्हें भूलते जा रहे हैं, कहीं हम वेस्ट की तरफ आगे तो नहीं बढ़ते जा रहे, क्या हम भारत की संस्कृति को संभाल के रख पा रहे हैं। परंतु इसके उत्तर खोजने जाएं तो सच में कभी कभी लगता है कि हम अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे, क्योंकि हम ही उनके बारे में जानते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, मैं जिनसे आपकी मुलाकात आज कराने वाली हूँ, उनकी कहानी सुन के आप जरूर इंस्पायर होंगे, क्योंकि पूरा भारत उनसे इंस्पायर हुआ है। वे पद्मश्री अवार्डी हैं और वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर परशुराम खुने जी। आज सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते सर। सर, एक बहुत ही बड़ा सम्मान, और हम सभी जानते हैं आपका कंट्रीब्यूशन 50 सालों से भी अधिक रहा है झाड़ीपट्टी थिएटर में, और आपने बहुत से युवाओं को रिहैबिलिटेट किया है, उनका पुनर्स्थापना उनको एक कराई है, चाहे वो एडिक्शन से निकालकर हो या फिर वहाँ की और भी कई कुरीतियों से छुड़ाकर हो, और इसमें आर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो सर, पहले तो आपकी जुबानी ही कुछ आपकी कहानी जानना चाहेंगे।
1: मैं महाराष्ट्र के पूर्व विदर्भ चंद्रपुर गढ़चिरौली भंडारा से एक पूर्व विदर्भ की हमारा एरिया है
0: जी,
1: और मैं 50 साल से मैं वहाँ कार्यरत हूँ एक आर्टिस्ट करके
0: जी।
1: लेकिन ये झाड़ीपट्टी रंगभूमि को एक अलग परंपरा है, अलग पहचान है। वो इसलिए कि वो जो पट्टा है पूरा जंगल व्याप्त है।
0: ओके।
1: वहाँ किसान है, आदिवासी का एक अलग कल्चर है वहाँ, और 150 साल से उसको पुरानी कहानी है। जो प्रथम अवस्था में था नाटक, वो दंडार करके, दंडार यानी कोई तभी 5-6 आदमी एक दंडा लेके एक गीत बोल के, इस वागीत बोल के, वो एक रामायण महाभारत इतिहासकालीन पर एक स्टोरी बताते हैं
0: जी।
1: लेकिन जैसा समाज परिवर्तनशील है, फिर उन्होंने हमारे पूरे एरिया में, वो पूरे विदर्भ में ये चलता था दंडार, अभी भी चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने नागपुर आकर, ये बड़े बड़े कंपनी थी, उनका नाटक जो संगीतमय नाटक देखा उसने,
0: अच्छा,
1: तो उनको लगा कि ये तो अपन यही पेश करते हैं, यही अपन, लेकिन इनका जरा सही संगीत का ढांचा अलग है, हारमोनियम है, तबला है, संगीतमय है। तो उन्होंने वो ढंग से, जो उसके विद्वान थे अपने घर को लेके, उनने उसे पूरा उसका पढ़ाई किया
0: जी।
1: तो वो फिर एक नाटक के माध्यम से चल रहा है। लेकिन झाड़ीपट्टी रंगभूमि क्या है, ये नामकरण किसने दिया है
0: जी?
1: तो झाड़ीपट्टी रंगभूमि का मतलब ये है कि वो झाड़ी से व्याप्त है, पेड़ से व्याप्त है, जुड़पों से व्याप्त है, और जहां गाओ वहां नाटक,
0: अच्छा,
1: ऐसी परंपरा अभी भी चल रही है
0: जी।
1: तो एक, और वहां का नाटक चलता है पूरे रात भर चलता है, 10 बजे अगर चालू हुआ तो सबरे तक। उसकी वजह यह है, कारण यह है कि अगर वो गांव में जब मेहमान आते, उनकी संस्कृति भी है, उसके पीछे एक ऐतिहासिक, जो आदिवासी लोग होंगे हमारे कुछ इधर भी जमात के होंगे, तो वो बहाने से गांव में एक कष्टकारी पीड़ित लोग, उनके एक बार कुछ तो मनोरंजन होना, इसलिए गांव के माध्यम से वो दिन जहाँ जी नाटक रहता है, उसके माध्यम से जो कोई नई लड़कियाँ शादी होकर जाती है वो आती है, नवीन दामाद आते हैं, नई लड़कियाँ देखने आते हैं, उसे लगने कुछ लगाई जुड़ती भी है
0: जी।
1: और सवेरे उनकी विदाई होती है उनके साथ, तो वो एक अलग परंपरा है कि वो झाड़ी का नाटक, झाड़ी का पट्टे का नाटक, इसलिए वो झाड़ी पट्टी रंगभूमि। दूसरी वो बात यह कि ये इसके अलगपन क्या है, तो अलगपन ये है कि वहाँ का नाटक 10 बजे चालू होता है, 11 बजे तो सवेरे तक चलना, 5 बजे तक चलते हो। इसका कारण ये है कि जो बहुत दूर से लोग आते हैं
0: जी,
1: तो उनको खाने का इंतजाम हो जाता है, लेकिन सोने का इंतजाम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर वो 3-4 बजे नाटक खत्म हो गया तो उतने रात जाएंगे कहाँ,
0: जाएंगे कहाँ,
1: क्योंकि वो पूरे जंगल का एरिया, कई पशु पक्षी वगैरह सब की भीती रहती है, इसलिए वो एक परंपरा है, अभी भी चल रही, वो हर गांव में नाटक चलता है। और वो आप बोलेंगे इतनी बड़ी स्क्रिप्ट रही थी क्या, तो नहीं रही थी। बात यह है कि जो नाटक करते हैं गांव में, अभी तो थोड़ा परिवर्तन हो गया। हमारे जमाने जब मैंने 30 साल काम किया, एक गांव के हौसले लोग बिता के हमारे जैसे दो एक तो कॉमेडियन एक दो लेडीज को बुलाते थे, और हर गांव में जब तो उधर एक ऐसी अभी प्रथा है कि उधर एक सम्मान पत्र सबको दिया जाता है, मान पत्र, हमारे नाटक देखने आओ
0: जी।
1: फिर खासदार रहे, आमदार रहे, जो जो कोई बड़े बड़े नेता जी है, लीडर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आते हैं। और उनका वो तो मैं कहता हूँ ये एटीएम कार्ड है वो मंडल का, क्योंकि आधे आधे जो बख्शीश का जो वितरण होता है वो स्टेज पर हो जाता है।
0: अच्छा।
1: कि हर नाटक को 40-50-60-70 हजार खर्चा है, और वहाँ का जो प्रेक्षक है वो बहुत बड़ा दिलदार है, वो टिकट निकाल कर ही अंदर आता है, और पूरे रात भर नाटक देखता है। लेकिन ये जो मेहमान आते हैं
0: जी,
1: ये भी उनके बाद उन्हें कोई 10 हजार कोई 5 हजार, इसलिए उसमें फायदा ये है कि चलो भाई वो गांव में नाटक होता है, जो कलाकार आता है बाहर उसका भी पेट भरता है। और दूसरी बात ये है इसके पीछे कि हमारे झाड़ी पट्टी रंगभूमि में हर साल 70-80 करोड़ की लड़ाई होती, इतनी बड़ी लड़ाई एक भी नहीं है।
0: अच्छा।
1: 170 कंपनियां हमारे आज भी है, पहले चालू होते तो होली तक चलते रहते प्रोग्राम।
0: अच्छा।
1: और उसमें से फायदा ये हो गया कि जो एक बेकार युवक था, जो मेरे जमाने में ऐसे भी कुछ डर था कि ये लोग कोई भटक न जाए, कहीं इनका ये नहीं जाए, नक्सलाइट के प्रभाव से कहीं अगर इन हो जाए, तो हमने ऐसे लोगों को ये प्रभाव में ले नाटक के अभिनय का, चगाता है तो गाओ, यानी कोई खाली जिसको अभिनय तो वही नहीं, उसके पीछे जो नेपथ्य वाला है, पर्दे खींचने वाला है, स्पीकर वाला है, ऐसे 40 लोगों का एक 50 लोगों का ये सब समूह रहता है, जीव वाले दो ट्रक वाले नेपथ्य वाले, वो तंबू लगता हमारा वो गांव में जाके।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे 40-50 लोगों का पेट एक कंपनी में उसके ऊपर चलता है, एक रोजगार मिल गया ना उनको।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसे ऐसे 100-150 कंपनी आज भी है जो निरंतर नाटक कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: दूसरी बात, अगर जहां तंबू लगता गांव में
0: जी,
1: वो तंबू के सब होता 40-50 दुकान लगते है, चाय टपरी वाला, पान ठेले वाला, चने वाला
0: जी,
1: उनका भी निवरा उसी ऊपर चलता है, जब अंक खत्म होता बाहर आके सब चाय पीते पान खाते, तो वो भी बेचारे उद्योग कर रहे हैं उनका, इसलिए वो एक बड़ी इंडस्ट्री का ये है, इसलिए उनको एक रोजगार मिल गया।
0: जी जी बिल्कुल।
1: इसलिए और हर बात, और दूसरी अभी तो जब मैं बात कर रहा हूँ अभी तो अभी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी मुंबई के हमारे कलाकार मराठी कलाकार वो हमारी झाड़ी पट्टी में आकर काम करते हुए हमारे साथ में, तो एक बड़ी उपलब्धि हुई है इससे, एक जो भाई का युवक है वो। लेकिन क्या है अभी इसे ऐसे माहौल में आजकल थोड़ा क्या बोलता है जो नया जनरेशन है
0: जी जी,
1: अभी हमारे तरफ क्या है कि पहले जो हमें नाटक होते थे महाभारत पौराणिक धार्मिक रामायण वो भी नहीं होता, अभी लावणी होना डांस होना, तो थोड़ा कोई ये जो युवक है थोड़ा नया जनरेशन वो जरा अलग टाइप से देख रहा है, होता तो परिवर्तन है। अगर अब जो बिजनेस करना लेकिन चल रहा, लेकिन अभी भी वो हम झाड़ी पट्टी रंगमंच की अच्छी यानी उसका एक अच्छा स्टेज मिला, अच्छा रंगमंच मिला है नाटक वजह। मेरे को 50 साल हो गए मैं भी, इसलिए मेरे को यानी मैं अच्छा लगता, मैं हमारे मान तो भारत सरकार की एक झाड़ी पट्टी के एक कलाकार को जो देहात में रहता है आदिवासी इसमें रहता है, मेरे परिश्रम का एक चीज बोल के मेरे को 2023 में
0: जी
1: कला के माध्यम से मेरे को पद्मश्री बहाल किया है
0: जी। तो 50 साल बहुत लंबा समय होता है, और आपने एक आर्ट फॉर्म को डेडिकेट कर दी अपनी लाइफ पूरी तरीके से, तो मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी क्या इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ा जब आप इस कला से जुड़े और इतना समय।
1: वो क्या है दीदी, मैं हूँ होम्योपैथी डॉक्टर
0: जी,
1: और मैं हूँ किसान का बेटा। जब मैंने अपना देह रखा कि मेरे को कोई पढ़कर को ऑफिसर बनना नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ जमींदार थे, 100 एकड़ जमीन थी, तो मेरे को ऐसा कोई बिजनेस होना कि जो मैं खेती कर भी कर सकता हूँ, तो ये वैद्य की पेशा है डॉक्टर की है, इसलिए मैं उधर गया। लेकिन मेरे घर में जब मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के पिताजी दंडार करते थे, मेरे पिताजी मेरे गाँव में एक मंडल करके वो नाटक ये करते थे, तो वो बचपन से मेरे ऊपर वो प्रभाव हुआ और मैं मेरा असली जो क्या बोलते उसको जो उसके ऊपर संस्कार बोलती हूँ नोरगांव में हुई चंद्रपुर जिले में जो बालाजी पटेल मेरे मामू थे वहाँ मेरे प्राइमरी शिक्षण से मैं वहाँ गया तो 5-6 साल बड़े बड़े बॉम्बे सीधे और वहाँ से मेरे को एक प्रति एक भाव आ गया मेरे में कुछ है। जब मैं कॉलेज पढ़ने नापकोर आया उसमें भी मैंने क्या मेरे को मेरे दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ मैं गया मेरे को अच्छे लोग कलाकार मिलते गए
0: जी।
1: और मैं जब इसमें एक ढंग से मैंने डॉक्टर की नहीं किया फिर भी एक सेवा भाव चलो क्या भगवान को सब कुछ कला नहीं देता कलाकार ये नहीं देता ये माध्यम से एक समाज प्रमोदन कि जो इलाका मेरा पूरा आदिवासी पूरा जंगल इन बहाने से सब एक और मनोरंजन का साधन कुछ नहीं था उसको तो इससे भी नाटक से माध्यम से कुछ जैसे रामायण है महाभारत है ऐसे संस्कार में नाटक देने का हमने
0: प्रयास
1: किया। जैसे कोई अभी तुम्हारे ब्रह्म कुमारी का जैसे इनके काम चल रहे तो उनके ऊपर एक समाज को ऐसा चेतना देना एक कुछ माध्यम होना चाहिए
0: जी।
1: और आज तो इतनी जरूरत है मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि हर आदमी ने ये जो चल रहा जो माहौल आज के दिन में जो मन शांति नहीं है
0: जी।
1: जो भटका हुआ है आज का युवक
0: जी।
1: इसकी प्रवृत्ति नहीं अच्छे भाव
0: जी।
1: इसके लिए मैं तो कहता हूँ हमारी तरफ इन्होंने जो काम किया है
0: जी।
1: जुड़े हम कुंदा दीदी ने
0: जी।
1: तो ये हर गांव में हर वहां तक पहुंच गए जो जो हमारा जिला कहा से कहा है वहाँ उधर सब आदिवासी इसमें आज वो बहुत बदल जो हुआ है
0: जी, जी।
1: तो दीदी के वजह से हुआ है ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हुआ है
0: जी। जैसे आपने बताया तो गढ़चिरौली की बात करें तो बहुत नक्सलाइट एरिया है जितना हाँ। हमने पढ़ा जितना जाना तो उसमें से क्या युवाओं को आपको एंगेज करना क्या चैलेंजिंग होता था?
1: नहीं अभी क्या है जब मैं बोल रहा हूँ कि जब ये जो युवक है
0: जी
1: तो जो नक्सलाइट का जो प्रभाव था पहले एक डर था मन में बहुत
0: जी
1: यानी वो गांव वाले में भी था क्योंकि अगर वो गांव में घुसे तो जिसके आगे पुलिस उसको भी दंडा मारते थे अगर पुलिस के नाम बताए तो वो दंडा मारते थे नहीं वो बेचारा जो युवक था उसके सोचने की माने दोनों तरफ से उनको बड़ा ये था
0: दोनों तरफ से डर था
1: कि अगर वो नहीं बताया तो पुलिस का मार पड़ता था अगर पुलिस वाले को बताया तो ये नक्सलाइट तो इसमें से एक बड़ा द्विंदे मनस्थिति में उसकी एक सोच थी ना तो इसमें अगर बाहर कैसा निकलना चाहिए इसको और हर आदमी तो नक्सलाइट नहीं बन सकता कभी लेकिन जब वो युवक ना भटक जाए ऐसे कोई गए भी तो वो अभी तो आत्मसमर्पण कर लिया और एक माध्यम मिल गई है अगर तू खाली रहता है कुछ खाली माइंड तो शैतान का ही रहता ना
0: जी।
1: अगर तेरे को कुछ रोजगार मिलता अच्छे संस्कार होते तो ऐसे एक नीडर भी बन गया ऐसे नहीं अभी तो मैं तो कहता हूँ कि दावे से कि अभी तो हमारे यहाँ में जो कुछ नक्सलाइट बहुत सैनिक चला गया अभी जो कोई बाकी शरणागति पद कर ले ये जो बदल है ना ये पहले एक दिन से भी नहीं होने वाला था लेकिन हमने जो शुरुआत की
0: जी।
1: इस माध्यम से नाटक के माध्यम से एक जो संपर्क आया हमारे बातचीत हुई है तो उसे वो फायदा अभी मिल रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है उसका बड़ा फायदा ये है कि हमने पहले से ट्राई किया पहले से उनको एक युवक को ऐसी दिशा दी और उनको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी खेड़े बाड़े में ऐसा नहीं है लेकिन मैं जहाँ जा गया हमारे ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हमारे जहाँ वहाँ है तो उधर एक संस्कार में ये वहाँ एक वातावरण इन लोगों ने निर्माण बाकी तो मेरे को नहीं दिखा लेकिन ये जो दृष्टिकोण हम जुड़ गए मैं भी बहुत 5-6 साल पहले आया था यहाँ
0: अच्छा।
1: आया था मैं एक दो दिन रह के चला गया था
0: जी।
1: लेकिन दीदी के माध्यम से आज कुंदा दीदी के माध्यम से मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया दीदी के बारे में क्या बात है उनका कार्य तो बड़ा है तो मैं आने का श्रेय भी उनकी वजह से मैं आता गया नहीं आज नहीं आ रहा था
0: जी।
1: तो ये दृष्टिकोण से आज ये जो परिवर्तन बहुत कुछ परिवर्तन हो गया और आज के जमाने में जो मुझे बात की नहीं है घर घर में जो ये मोबाइल जो इसको ये भले मोबाइल से वो आने के लिए वो अपनी फैमिली से बहुत दूर होते जा रहा
0: जी ये तो बात है
1: कभी बात नहीं करते हमारे सबके इससे अगर रोकना है
0: जी
1: इसको देना है
0: जी
1: तो अपनी को ऐसे कोई आध्यात्मिक जैसे ब्रह्मा कुमार या ऐसे लोगों की आज जरूरत है और आश्रम होना चाहिए नहीं तो ये आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत मैंने चिंता का विषय चिंता का विषय।
0: सही कह रहे हैं। और बहुत इस दुनिया ने हमको इतना ज्यादा अपने में ले लिया है कि बाहर की दुनिया तो
1: कुछ भी नहीं, वो अपने इसमें रहता है, कोई करने की जरूरत ही नहीं
0: है जी।
1: वो सोचता ही नहीं है, घर में घुसा था ना बाप से बात करता ना भाई से बात करता, यानी वो घर में भी अकल भी दूर रहता है
0: जी।
1: अब मोबाइल दूर से बात करने के ठीक है, लेकिन घर से इतना दूर हो गया कि वो सब भूल गया
0: जी।
1: कहीं कहीं तो हमारे तरफ सुसाइड कर दिया।
0: अच्छा,
1: सुसाइड कर दिया अगर मोबाइल नहीं लेके दिया।
0: हाँ जी, इस तरह की घटना,
1: इससे अगर निकलना है ये नई जनरेशन को तो उसमें ऐसे एक आध्यात्मिक
0: संस्थान की जरूरत है,
1: वातावरण
0: की जरूरत,
1: आज उसकी आवश्यकता है
0: जी।
1: पूरा बदल गया।
0: सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे झाड़ी पट्टी के बारे में आपने बताया इतना पुराना आर्ट फॉर्म है, ऐसे भारत में बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन अब क्योंकि हम इंटरनेट देखते हैं, टीवी देखते हैं, इसी में सब कुछ आता है, तो ये आर्ट फॉर्म्स का क्या रोल है हमारे जीवन में, और क्या हमको उनसे जुड़ना क्या हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, क्या आवश्यकता है?
1: मैं तो बोलता हूँ आर्ट कोई भी, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, एक जीवन का एक हमने सीखा है ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक विषय में, हमें सनातन धर्म से
0: जी,
1: आदमी को हंसना बोले तो एक टॉनिक है, आधा माइंड उसका मेडिटेशन के लिए भी। तो हमारे क्या है? अब जो क्रियाशील है, जो संतोष में पैदा हुआ है, जो हर दिन खेत में काम करता है, कोई भी यानी वो कहीं का भी रहे, लेकिन उसको कोई संतोष की बात, अगर उसे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जैसे बोलते अपन, वो मन में लाना चाहिए। तो वो जीवन तो हर दिन जगना है, लेकिन वो जीवन जगने का तरीका क्या है, अपना जन्म, अपना जन्म किसके लिए है, वो जब तक उसको ये नहीं है, अब तो जीतो तो सब है
0: जी,
1: लेकिन जो जीवन की फिलॉसफी है
0: जी,
1: ये जैसे ब्रह्म कुमारी है हमारे नाटक से अच्छे आदमी माध्यम से
0: जी,
1: अगर ये दिया तो आने वाले जो जनरेशन बोल लो, आने जो पीढ़ी है वो बहुत सुखी रहेंगे, ना तो बहुत तई क्या बोलते टेंशन में आज का
0: जी,
1: इससे बाहर निकलना जरूरी है,
0: इससे बाहर निकलना।
1: उसमें कला संगीत
0: जी,
1: जैसे कला से संगीत में जैसे हास्य कला है, तो उससे भी आदमी को टेंशन आधा हो जाता, कम हो जाता। आध्यात्मिक दृष्टि से मेडिटेशन करना है
0: जी,
1: प्राणायाम करना है, जो कोई योगा है
0: जी,
1: तो ये आज के अगर इन माध्यम से जुड़ रहे, जो नया नए जो अच्छे अच्छे घर के लोग है
0: जी,
1: ये इस माध्यम से जुड़ रहे और कर रहे, कि उनको भी मालूम है मेरे आने वाली जो पीढ़ी है क्या क्या करेगी, हर के मन में आ रहा है मुझे बताइए, जैसे मोबाइल लूंगा हुआ, तो जो हम पिताजी है कोई लड़का अगर जा रहा है तो उनमें से उनको उनको भी लगता है मैं बाहर निकलना चाहिए, तो उसमें माध्यम क्या है, एक तो उसको परिवर्तन से कोई आनंद दे
0: जी,
1: कुछ मेडिटेशन दे,
0: कहीं ऐसे जुड़े,
1: कहीं ना कहीं उसको यहाँ से निकलने के लिए दो ही तरीके, वो आदमी वहां से बाहर
0: निकले,
1: दो ही वजह निकलेगी इसमें गरज, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम तो क्या हम, लेकिन जिन लोग ये काम कर रहे हैं, जो गांव में बोलो आसन में बोलो, ये कुमार के माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे ना
0: जी,
1: तो तरीका वो ये माध्यम है बस,
0: बदलाव का,
1: बदलाव के लिए,
0: और बदलाव बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है
0: जी। सर अगर थोड़ा और हम झाड़ी पट्टी की बात करें, तो कैसे मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपने बताया रामायण भी महाभारत भी, तो जो एक्टिंग आप करते हैं उस समय क्या उसकी प्रिपरेशन पीछे क्या होती है, तैयारी कितने समय की होती है?
1: मैं अभी जो बात किया आपसे, मैं जिस जनरेशन, मैं 70 की बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: 70 की काल की बात करूँ तो 70, 80, 90 तक
0: जी
1: मैं इंडिविजुअल तारक, मैंने इंडिविजुअल एक्टर था मैं, जैसे एक गांव में वो गांव के होशियार लड़के एक नाटक की तालीम लेके करते थे, तो बाहर से मैं कॉमेडी करता था, हंसने अच्छा। वाले कम थे, कॉमेडी करता था मैं
0: जी, जी।
1: दादा गुणी

0: जमाने में हम दादा कुंड के करीब फंसे था और एक दो लेडीज।
1: अच्छा।
0: वो हमारे तरफ जो मैंने रामायण बोला महाभारत के बोला वो 80 तक था।
1: अच्छा।
0: उसके बाद में जब दादा कुंड गया आ गया लावणी महाराष्ट्र लावणी आ गई।
1: हाँ जी।
0: यू नो महाराष्ट्र लावणी
1: जी
0: लावणी हर घर में घुसी है। जब वो पिक्चर आती थी वही लावणी होती थी। तो वो ढंग से फिर नाटक आने लगे।
1: अच्छा।
0: और एक बात दूसरी और बात जी झाड़ी पट्टी का मैंने आपको पूर्व विदर्भ किया तो वहां ही एक गांव गांव में लेखक राइटर पैदा हो गए। अच्छा। आज भी
1: जी
0: उन्हीं लिखा हुआ नाटक वही लावणी का नाटक लिखने सब मैंने जो अब उसने क्या किया मेरा भांजा है
1: जी
0: सदन बोरकर उसे गांव में एक सत्य घटना होती है देखो वो जो मेरा एरिया है ना
1: जी
0: ये अंधश्रद्धा की बहुत अंधश्रद्धा थी उसमें। एक सुसाबाजी के उसमें जाके उसको दो दिन भूखे रखे। वो भी क्वालिफाइड लड़का था इंजीनियर था वो भी उसकी बीबी टीचर थी लेकिन उसको कोई स्किनो भेजा था पहले उसको तो उसको उन्होंने लगा वो बुआबाजी में गई तो उसमें वो मर गया धूप से। उसने एक नाटक लिखा माझं कुंकू मीच पुसलं।
1: अच्छा।
0: मराठी तो ऐसे बहुत जो किसान की आत्महत्या हो कोई अपने कौटुंबिक समस्या हो एड्स हो ऐसे पर अभी बहुत नाटक हमारे तरफ आई और चल रही अभी भी चल रही तो पैटर्न बदल गया अभी वो धार्मिक पौराणिक नाटक चले गए अभी इस ढंग से जो समाज परिवर्तनशील नाटक बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और 100 कंपनियां अभी है और हजारों कलाकार पेट भर उसके ऊपर राइटर को जो लिखता उसको भी लॉयल्टी मिलती है तो ये ढंग से हमारे तरफ से अभी मैं ये जमाने में मैं कोई जैसे पुराना था उसमें नहीं जैसा समाज का है तो वैसे मैं भी बदलता रहेगा वैसे मैं पहले अभी कैरेक्टर रोल करता मैं।
1: अच्छा।
0: तो कॉमेडी करता जो रोल आया मैं करता हूँ
1: जी। आपका फेवरेट रोल कौन सा है?
0: मेरा फेवरेट रोल है मैं जो एक मैं बोला ना कि हमारे ऊपर वो जो नशा बंदी है
1: जी
0: एकच प्याला।
1: ओके।
0: एक नाटक हम मैं अभी करता हूँ मेरा फेमस है वो नाटक बहुत हर साल मैं उसके ऊपर बड़ी डिमांड रहती है वो एक नशाबाज बेवड़ा रहता है और दूसरे का संसार कैसा है उसमें दारू का वो अपने परिसर में ये महत्व लोगों को बताते हैं दारू से कैसे अच्छी चीज होती है।
1: अच्छा।
0: इस ढंग से यानी वो वैसा ही रहता है वो लेकिन उसके जो दुष्परिणाम होते हैं जो संसार बर्बाद होता है तो उससे संदेश जाता कि भाई ये नशा करना दारू वाला पीना कितना घातक है तो बहुत बड़ा संदेश होते जाता है तो मैं रोल हर साल एक तलीराम करके बाप एक रोल है
1: जी।
0: मैं जब से ज्यादा वही कर रहा हूँ लोगों ने मेरे को उससे ढंग बहुत पसंद किया।
1: अच्छा।
0: मैं जब 22 साल का था तब से अभी तक वो रोल मेरे लिए एक मायने रखता है मैंने एक उससे बहुत पब्लिसिटी वो रोल ने मेरे को दी है और वो नाटक संगीतमय नाटक है कथानक अच्छा है।
1: अच्छा।
0: और वो मेरा जो दारू का जो मैं जो बात करता हूँ ढंग से
1: जी।
0: वो उसमें वो मराठी में आया हमारा वो।
1: अच्छा। तो मराठी में गीत के माध्यम से मराठी में गीत के माध्यम से
0: मराठी बोलू?
1: हाँ बोलिए कुछ अगर एक कोई डायलॉग या कुछ ऐसा
0: वही ना।
1: हाँ जी
0: मराठी में चलेगा।
1: जी जी जी
0: ये जो नाटक है राम गणेश गडकरी बड़े साहित्यिक थे हमारे महाराष्ट्र में और ये नाटक संगीत एक इसको 100 साल पुराना नाटक है आज भी चल रहा संगीतमय है तो उसमें एक अच्छा बैरिस्टर रहता है वो पढ़ने जाता है
1: जी।
0: वो जब उसको कोई उसके ऊपर कुछ केस ये होता तो वो जरा डिप्रेशन में चला जाता है और वो उसका जो एक नौकर रहता तड़ीराम तो वो बोलता है यार ये गम भूलना है तो एक बड़ी चीज है मेरे पास थोड़ी शराब पी के उसको उसका महत्व पढ़ा देता है और अपने वो अपना क्लब तो एक मराठी में बात करता मैं दोनों एक पदवीधर और एक ये बैठ के दारू पी के बैठे है तो ताला संग तो मुझे तो ताला दारू तो मरतो मने दारू सुटत नहीं एकदा घेतली की मने दारू कधी सुटत नहीं तेवढं ना दारू वाईट रेड बिशारे का मने सुटत नहीं भगीरथ दारू बद्दल बडबडणाऱ्या पैकी पुष्कळांना दारू काय चीज आहे हेच म्हणी मला माहित बरं मी म्हण खरंच एकदा दारू घेतली की सुटत नाही तेवढं ना दारू वाईट कशी ठरतो भगीरथ तुम्ही विश्वविद्यालयाचे पदवीधर आहात 4 दिवस परीक्षा देऊन एकदाची पदवी मिळवता ती जन्माची चिकटते म्हणून कुणी पदवी घेण्याचं टाकलं आहे का तशीच बायको एकदा का नुसती लग्नमाळ गळ्यात घातली उभा जन्म बायकोचा लबेदा पाठी

0: अभंग बिलंबतो. म्हणून कुणी बायका करण्याचं टाकला आहे का? अरे पदवी वाईट नाही, बायको वाईट नाही, दारूच तेवढी वाईट आहे का? तुम्ही घ्या तशा म्हणाल ना बघीर. मद्यपान नीतिमत्तेला फार पोषक आहे. पहा कसं मद्यपी माणूस कधी खोटं बोलत नाही, कारण त्याला खोटं रचून सांगताच येत नाही. मद्यपी माणूस कधीही कुणाची कुणार्जो चहाडी करत नाही, कारण माग कोण काय बोलला याची त्याला आठवणच राहत. आणि मद्यपी माणूस कधीही कुणाचा विश्वासघात करत नाही, कारण त्याच्यावर कुणी विश्वासच ठेवत नाही. असे ते मराठीतले डायलॉग असतात. ते पत्रता म्हणजे नाटक फार सुंदर म्हणजे वाङ्मयी आहे त्या नाटकामध्ये. ते विद्यापीठाला पण होतं. असे परंपरेने झालेले नाटक आहे तुमचं. आणि दुसरी गोष्ट आहे मराठी भाषा.
1: जी सर, थोड़ा सा इसको हिंदी में समझा सकते हैं जो आपने बोला?
0: किसका?
1: हिंदी आपने जो डायलॉग बोला.
0: हाँ, वो डायलॉग ऐसा है कि वो बोलता कि देखो एक बार गिलिए हमने नशा किए दारू पी तो बोली छूटती नहीं. अच्छा लोग उसकी बदनामी करते हैं, लेकिन उनके ये नहीं मालूम कि एक दारू क्या चीज है. वो भगीरथ तू विश्वविद्यालय का जो ग्रेजुएट है, पदवीधर है, चार दिन को आप एग्जाम दे के आप पदवी मिलाते हो, जय नंबर चिकटती है, उसका कोई बहाना नहीं करता.
1: अच्छा,
0: जैसे औरत अगर एक बार उसने माला डाल दी तो जय नंबर आपके पीछे रहती हो, इतने में कोई औरत तो नहीं करने डाल दिया. अरे वो पदवी भी ये नहीं है, वो तुम्हारा ये औरत भी बुरी नहीं, तो दारू क्या बुरी है. ये उसमें वो दो फायदा ऐसे कि दारूबाज मानुष कभी भी झूठ नहीं बोलता.
1: अच्छा, झूठ नहीं बोलता.
0: हाँ, झूठ नहीं बोलता. झूठ बोल के यानी बहाना बन के बताने आता ही नहीं.
1: अच्छा,
0: ये जो मध्य आदमी जो दारूबाज आदमी है
1: जी, वो कन्विंस कर रहे हैं
0: उसको. वो कभी किसका तो लावाला भी नहीं करता, चाहड़ी नहीं करता.
1: अच्छा,
0: क्यों? कि कौन क्या बोला उसको याद ही नहीं रहता नशे में,
1: भूल जाता.
0: तीसरी बात, वो किसका उसको क्या बोलते विश्वासघात है, क्या बोलते
1: विश्वासघात बोलते.
0: हाँ, विश्वासघात नहीं करता. क्यों? ऊपर कोई विश्वास ही नहीं रखता. ये उसके ढंग से
1: विश्वास ही नहीं करता तो विश्वासघात कैसे करेगा.
0: हाँ,
1: जी.
0: तो ऐसे तरीके से उनको
1: व्यंग यूज किया. हाँ, है
0: तो वो अपने को अपने वो क्लब वो आयरे मदिरा वो अपने क्लब में उनको अपने इसमें लाने के लिए ये बहाना करता है,
1: जी,
0: बताता
1: जी.
0: है. हाँ, लेकिन वो नाटक बहुत अलग ढंग का है.
1: जी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है. लेकिन जैसा क्योंकि बहुत सारे अब हम सीरियसली उसको बात को कहें.
0: हाँ,
1: कि शराब नहीं पीनी चाहिए या इससे ये होता है.
0: हाँ,
1: तो शायद व्यक्ति नहीं सुनेगा या फिर वो
0: नहीं नहीं उसका जो उसका जो ये नहीं था एक पहला वो जो बताता है आखिरी में इतनी रचनात्मक बताया है. मैं क्या बताऊँ आपको, मैं वो तो मेरे को याद नहीं अभी.
1: जी जी.
0: लेकिन जो उसका ये जो संदेश जाता है कि ये इतनी बुरी चीज है, उसमें जो लोगों के सामने जब उनका संसार आता है, बच्चे को मारता है, अपने बीबी को मारता है, और वो अच्छा क्वालिफाइड आदमी कैसे भीख मांगता है, और वो आदमी वो खुद पाए जिंदगी के समाप्त हो जाता. तो उससे जब बाहर निकलता है वहां से जो प्रेशर बहुत बड़ा इफेक्ट है, ये कितनी गंदी चीज है. ये अच्छे चलते चलते इंसान को कैसी जानवर बना देती है. ये संदेश जाता है उससे.
1: ये संदेश
0: ये तड़ीराम मरता ना आखिर में.
1: अच्छा.
0: हाँ, उसमें उसमें आखिरी इन बहुत बच्चा पता है उसका. ये तो उसमें भाई ये जो नशा कितनी घातक हो सकती है. एक नाटक के माध्यम से और बहुत बहुत से ऐसे कुछ हमारा भी जो चल रहा है इधर एरिया में, जो हम किसान के बेटे हैं,
1: जी जी,
0: तो जो आत्महत्या चलते है नहीं करना चाहिए
1: किसान आत्महत्या.

0: हमारे ये भी इसका, मैं एक 3 साल केंद्रीय फिल्म से इसका भी था, तो इस बारे में चलो अभी मैं इधर जो आया था अभी, तो हमारा वो क्या बोलते हैं 2 दिन सम्मेलन था
1: जी
0: झाड़ी पट्टी वो करके मैं इधर आया।
1: अच्छा अभी खत्म
0: हुआ। बस वैसा ही इधर आया मैं, पूछो था ये मेरे को 9 तारीख बताए थे हमने, 7-8 को लिए वो
1: जी जी,
0: तो मैं बोला 9 तारीख किसी का आ जाऊंगा, ये बोले 7 को जाना है आपको, दिन भी चलो मैं आता हूँ क्योंकि दीदी का मैं इतना कार्य अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को आने की तमन्ना थी एक बार, मैं तो एक बार आ गया हूँ, लेकिन हम भी जरा वो टेंशन में रहते इधर हर दिन के अभी उधर का लेकिन यहाँ जो मैं हर एक को बोलता हूँ अगर आपको मन शांति चाहते हो तो आप एक बार माउंट आबू जाओ उनसे मिलो
1: हमने
0: जब मैं नाटक में आया जब तो मैं हमने ये झाड़ी पट्टी विकास महामंडल नाट्य विकास स्थापना का मैं अध्यक्ष था 15 साल था, उसके एरिया में ऐसा लगा कि चलो भाई अब ये जो हमारे नाट्य परिषद वगैरह उसकी गवर्नमेंट उसके ही देता है उनके सम्मेलन होते कि उस माध्यम से कलाकार इकट्ठा आ जाए, उनके कुछ जो कोई मनोबल है उससे कुछ डिफिकल्ट है वो एक माध्यम से वो संदेश, क्योंकि वयोवृद्ध कलावंत मानधन नहीं मिलता था पहले।
1: अच्छा।
0: लेकिन हमने उसको किया तो आज 5,000 रुपये एक कलाकार जो 60 उससे ऊपर हो गया उसको मिलता है।
1: अच्छा।
0: उनको रीटा की मेहनत कुछ नहीं मिलता था ना।
1: हाँ, जी, जी।
0: तो उसे कोई सुविधा है तो इसके वजह से, और जो नया कलाकार आता है जो इतने आज तो ढंग से, तो ये हमारे कुछ जो नाटक कंपनी है उनको कुछ अनुदान मिल जाए, बीमा कवच है उनको, अभी हमारा कुछ हर गांव में नाट्य गुरु बनाना चाहिए ऐसे, हाँ कुछ ये था, और गवर्नमेंट ने अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अच्छा चल रहा अभी, हमने 1,000 कलाकार आए थे
1: तो
0: वो माध्यम से एक परिचय, और उसको कुछ कुछ समस्या रहती है
1: जी।
0: तो एक झाड़ी पट्टी रंगभूमि मंच हमारा अलग ही, और मेरे को जब से पद्मश्री मिला है
1: जी।
0: तो एक चर्चा हो गई भाई झाड़ी पट्टी क्या है,
1: हाँ, जानना चाहते हैं अभी।
0: उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि झाड़ी पट्टी के मंच पर एक पद्मश्री मिलता है
1: जी।
0: तो एक दृष्टिकोण चर्चा तो होती है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो उसके माध्यम से मेरे को जहाँ मैं जाता होती है झाड़ी पट्टी का जो ये और मैं भारत सरकार ही मानता हूँ कि हमको भी नहीं लग रहा था कि पद्मश्री क्या है, क्या किसको मिलता है, लेकिन अभी वो हर यानी जब से मिला है तो ये एक पहचान बन गई झाड़ी पट्टी रंगभूमि की, इज्जत बढ़ गई, लोगों का देखने का दृष्टिकोण बदल गया और इधर के लोग आने लगे अभी झाड़ी पट्टी में देखने लगे। अभी एक झाड़ी उड करके पिक्चर भी निकला हमारा।
1: अच्छा।
0: हाँ झाड़ी उड।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: वाह,
0: और कई लोगों ने PhD के डॉक्टरेट भी लिया उसमें, तो एक चल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं मजा ले रहे हैं, तो दृष्टिकोण अगर अच्छा है, इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट था कि सब कलाकार नेपथ्य वाला है, तबले वाला, पीटी वाला, सब हर प्रकार का जो योगदान देता है झाड़ी पट्टी में
1: जी।
0: उसके लिए ये सम्मेलन वरदान है,
1: ये सम्मेलन वरदान है बिल्कुल। ये बहुत मतलब हम कम सुनते हैं कि इसमें रिटायरमेंट के बाद इस तरह की कोई व्यवस्था हो, ये शायद ही कहीं कभी सुनाई नहीं देती इस तरह की।
0: हमारे महाराष्ट्र में है
1: जी,
0: हमने पहली भी शासन ने भी बहुत, हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कला लोक कलावंत एरिया, तो उस वक्त क्या था उन्होंने 3 भाग में विभाजन किया था
1: जी,
0: ये अ ब क, अ वाले को 27, ब वाले को 22 और क वाले को 16-1200 ऐसे मिलते थे। तो अभी हमारे सांस्कृतिक मंत्री हमारे जिले के थे सुधीर बाबू, और मैं वो सम्मेलन का अध्यक्ष था
1: जी।
0: पिछले साल तो आखिर के जो समारोह के दिन में हमने बोले कि सर ये अभी 3-3 ये भाग ये सब मतभेद मत करो
1: जी।
0: और आज 1500 में क्या होता है, कुछ तो बढ़ा दो, एक रकम कर दो, तो 5,000 रुपये उन्होंने किए अभी चल मिल रहा फारे को अभी। और हमने ये जो सम्मेलन किया कि अभी और मांग ये किया कि भाई ये 5,000 में कोई नहीं होता, उसका कोई गुजारा नहीं होता
1: जी,
0: तो इसमें वो फायदा है
1: जी,
0: गवर्नमेंट को सोचना पड़ता नहीं, इनको जो मांगनी रखी है इसमें करना पड़ता, तो ये उसका बड़ा फलित है,
1: बहुत बड़ा बेनिफिट है जी जी,
0: उनको न्याय मिलता है,
1: न्याय मिलता
0: और वो संदेश वहां तक जाता है
1: जी।
0: हाँ,
1: उनकी बात पहुंचती है,
0: बाहर पहुंचता है
1: जी।

0: सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि हम जब भी भारत की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, और आपने भी बात की आज के समय कितना चेंज आ गया है, बहुत चीजें, तो क्या इस तरह की जो आर्ट फॉर्म्स हैं जो बहुत ही कई जगह तो विलुप्त हो रही हैं, कई जगह तो परिवर्तन इतना ज्यादा आ चुका है कि उसको ओरिजिनल फॉर्म भूलती ही जा रही है एकदम, तो क्या आपको लगता है कि ये भारत की संस्कृति को रिस्टोर करने में कोई भूमिका निभा सकता है इस तरह की कलाएं?
1: नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ कि अभी क्या होता है, ये नए नए जब ये जो मीडिया आया
0: जी,
1: टीवी आया, मोबाइल आया
0: जी,
1: तो उसमें ये जो अपने जो कल्चर है
0: जी,
1: ये बहुत दूर चला गया। 60 वर्षों में जो मनोरंजन के साधन हो गए, तो अपन अपनी संस्कृति अपनी हैसियत भूल गए
0: जी,
1: ये बिल्कुल ये लिए मैं बता दूं, तो ये इसके लिए वही बोल रहा हूँ कि उसके लिए मैं करना क्या चाहिए। अभी तो इतना बढ़ गया कि कोई मानने को तैयार नहीं है
0: जी,
1: जिस ढंग से हम चले, हम जो भारत जो हमारा प्रेम है, हम यहाँ के नागरिक है, स्वतंत्रता मिली है, बड़े बड़े लोगों ने त्याग दिया है, जो कोई जो बात हो बात तो हमारे भारत में रहती है, भारत की जो संस्कृति है
0: जी,
1: धर्म जो अपनी अनेकता में एकता है
0: जी जी,
1: वो करने के लिए तो भी आज का युवक जरूरी है। और मेरा ख्याल है धीरे धीरे ये अगर माध्यम होगा तो ऐसे माध्यम से, कुंदादाई के माध्यम से बोलो, ऐसे में उसको एकत्र रहना, उसको समझा देना ढंग से, समझना जरूरी है, वो समझ में आ रहा अभी,
0: आ रहा है अभी
1: समझ में आ रहा। मैं भी जिस खेड़ में रहता हूँ आज, लोगों को समझ में आ रहा जो हो रहा आजू बाजू में, अपने जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी अपने कुछ मुल्क है, तो उसमें जो हो रहा है, तो उससे एक संदेश उसके वो उसको वो लाइन पे लाने के लिए
0: क्या भी हमें को भी
1: जरूरी है, ये संस्कार जरूरी है,
0: संस्कार जरूरी है।
1: तो अब कर रहे जेदी मानसिक कर्म, अपने आध्यात्मिक विषय से बोलो तो ये यानी हो रहा परिवर्तन,
0: आध्यात्मिकता को अब स्वीकार है,
1: ये हो रहा ना, अब अड़ोस पड़ोस में अपने तो उसका उपयोग हो रहा, नई पीढ़ी को
0: जी
1: सोचने को मजबूर कर दिया। अगर हम इस ढंग से नहीं चले तो अपना क्या होगा,
0: अपना क्या होगा जी,
1: तो ये सोचना जरूरी है। और ये काम कोई अकेले ब्रह्म कुमारी का नहीं है, कोई उनका नहीं है, अब सबका है।
0: बिल्कुल,
1: ज्ञान तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप वहां तक ले, पीना नहीं पीना पानी वो उनका, ये तैयारी रखो, कैसे हो आप उसके लिए तो जरूरी है नहीं बात। तो ये नए जो कुटुंब प्रमुख होगा, कोई अपने जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे जैसे संस्था, एक एकता में आने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए करना, जब शुरुआत तो है, माने मैं तो बोलता हूँ वो तो हो जाएगा, क्योंकि जब एकदा जो क्या बोलते हैं जो देखते अपन
0: जी,
1: जो परिणाम
0: जी
1: उसका रिपीट होता है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो वो तो जरूरी है, और आज के लिए ये जरूरी
0: है, ये जरूरी है। सर एक और चीज जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि पद्मश्री जब आपको अवार्ड हुआ, वो अनुभव कैसा था उस समय, कैसा वातावरण था, क्या आप फील कर रहे थे उस समय?
1: मेरे को तो क्या हो गया, मैं पहली बार जब कोई भी पुरस्कार रहे
0: जी,
1: जैसा आप ये फंक्शन कर रहे हैं
0: जी,
1: कोई भी उसको एक पुरस्कार जब मिलता है तो वो एक प्रेरणा मिलती है। जब मेरे को स्मिता पाटी पुरस्कार मिल गया
0: जी,
1: उसके नाम पर, दूसरा मेरे को कलादान पुरस्कार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, तीसरा पुरस्कार मेरे को क्षेत्र में जा क्षेत्र में मैं अच्छा किसान हूँ इसमें मैंने उपजत किया, तो उसके में क्षेत्रीय निष्ठा पुरस्कार महाराष्ट्र शासन का मिला
0: जी।
1: मेरे को समाज भूषण बाबा साहब अम्बेडकर भूषण पुरस्कार मिल गया,
0: अनेक पुरस्कार
1: मिले, ये मेरे महाराष्ट्र के पुरस्कार, बहुत 40-50 की लिस्ट है अभी। लेकिन जब हमको लगा कि अभी जब डायरेक्ट बोलता हूँ कि ये जो सरकार आई है
0: जी,
1: तो पहले ऐसा लगता था कि भाई ये जो पुरस्कार, ये बड़े बड़े क्रिकेटवीर, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, उनको ही जाता होगा, पद्मश्री का हमको मालूम भी नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने एक ऐप निकाला था कि यहाँ का बोले भारत का कोई भी नागरिक जिसका जिन्होंने कार्य किया है, कोई सेवा की है, अपने अपने इसमें फील्ड में उन्होंने नाम कमाया है, वो आप कर सकते हो, तो ऐसे मैंने मजाक मजाक में वो ये सब लेके भेज दिया
0: जी।
1: और मेरा नक्सलाइड एरिया पूरा वो ढंग से मेरे को शायद हो सकता है, इन 50 साल उन्होंने कार्य किया, इतने साल से इन्हें अवार्ड मिले, और नक्सल एरिया में रहकर ये इतना 50 साल से कर रहे
0: जी।
1: तो वो ढंग से मेरे को जब मिला
0: जी,
1: तो मैंने मेरे को पत्रकार ने आए मेरे घर को, बोला आपको कैसा लग रहा टीवी पे आ रहा आपको, मैंने कुछ नहीं, मैं बोला देखो ये ये मेरा अकेले का नहीं है। मैं 50 साल ये झाड़ी पट्टी रंग में ये जो पूर्व विदर्भ है मैं घुमा हूँ, और 50 साल जो निकाला मैंने, इसका कारण ये कि जिस ये जो मेरा प्रेषक वर्ग है
0: जी,
1: रक्षक वर्ग है, उन्होंने मुझे प्यार दिया। 50 साल तक मेरे को उन्होंने ऊर्जा दी, मेरे नाटक को आए टिकट निकाल के गर्दी की
0: जी।
1: बोला वो ये सब जो आज जो चल रही है उनका मान सम्मान झाड़ी पट्टी का, वो उसका हकदार वो है। मैं ये मेरा पद्मश्री उनके चरणों में अर्पण करता हूँ, ये मेरी पहली प्रतिक्रिया। और बाकी तो अपने कुटुंब में जो मिलता है तो मिला, तभी तब से मैं तो अरे मरे यकीन नहीं था कि मेरे को पद्मश्री मिल सकता है एक सामान्य आदमी को, लेकिन मिले।
0: आपने जो 50 वर्षों से भी ऊपर जो एक कला को समर्पित किया,
1: हाँ,
0: आपका जीवन,
1: तो मैं ये बहुत निस्वार्थपन से करो ना दीदी, वो भगवान उनको देता है। मेरे बारे में मैंने कई पैसे के लालच नहीं किया, मैं जितना दिया उतना लिया, लेकिन जाता था नाटक, लोग बुला नहीं जाता था, कोई पैसे भी कोई अपेक्षा नहीं थी, करते रहे घर तो 8-8 दिन घर नहीं जाता था मैं।
0: अच्छा।
1: उसके पीछे मेरी बीबी आई बीच, उनका भी बड़ा सहयोग है, मेरे भाई का, मेरे गांव में सरपंच था 15 साल
0: जी,
1: गांव का 15 साल, फिर भी मैं वो उनका भी काम करता था। तो कोई काम लगन से करो ना, निस्वार्थ करो, तो उसको भगवान उसका मिल देता है,
0: फल देता है।
1: हाँ
0: जी।
1: अब मैं आज आया
0: जी,
1: मेरे को कभी ख्याल में मैं आऊंगा करके, लेकिन भगवान की इच्छा हुई, चलो आप माउंट आबू आपको जाना है
0: जी।
1: मैं तो टाल दिया था पहले, पूछो तो। ये कभी कभी आदमी कर्मी भी ये हो जाते, इतना बड़ा ये आप मेरा एरिया देखोगे, आप उधर आओगे तो बड़े कहाँ आके बैठ गए, कभी कहा साला शेर निकलेगा, कभी आएगा ये।
0: अच्छा।
1: हाँ तो ये इसमें रहकर मैं कभी साइकिल पर, कभी नाव पर, कभी ऐसे चलते थे, और रात भर नाटक करके घर के वापस आना, और दूसरे को मैंने नॉन स्टॉप करता था मैं 3-4 महीने
0: जंगलों के बीच,
1: जंगल के बीच में कोई 50 साल के एक नाटक किलोमीटर, दूसरा इकड़े मोटरसाइकिल जाना, कभी कभी रेंगे पे जाना, कभी डोंगे पे जाना।
0: तो आपको डर नहीं लगता था कभी?
1: गया था मैं, वो जमाना अभी तो रोड बन गए
0: जी,
1: उस वक्त नहीं था, मैं 70-80 की बात कर रहा हूँ, बहुत जंगल था वहाँ, अभी भी है, ताड़ोबा है जंगल हमारा, नागजीरा है, हमें जंगल इनका ताड़ोबा देखने लायक है वहाँ।
0: अच्छा।
1: फेमस है हमारा इधर नागजरा है, नयगांव बांध है, बड़े बड़े हमारे जंगली एरिया वो हमारा
0: जी।
1: लेकिन हमको अच्छा लगता अभी
0: जी,
1: जब से कोरोना आया ना तो हमारा एरिया अच्छा लगता है कि वहाँ खुला हुआ साक्षर मिलता है।
0: सही बात है,
1: अभी बहुत बदल हो गया अभी
0: तो। इतने महीनों जब आप बाहर रहते थे, और मतलब क्या लगातार पूरी रात, अलग अलग अलग अलग जगह कार्यक्रम?
1: हाँ, आज अलग नाटक का, मेरे को नाटक का नाम भी नहीं मालूम था।
0: अच्छा।
1: अभी तो कंपनी होगी, मैं जब जिस मैं 25 साल मैंने काम किया होगा वैसा ही किया कि आज यहाँ नाटक, परसों आने का, अलग अलग कलाकार कौन क्या कर रहा, जाके मैंने डायरेक्टर नहीं इसका डायरेक्ट जाना था।
0: अच्छा।
1: अभी तो डायरेक्टर बन गया, आज लोग सब रिहर्सल लेके नाटक तैयार करते, हम जब वैसा नहीं था, वो गाँव में 4-5 कलाकार, बाकी हम जाते थे क्या है बताओ।
0: अच्छा।
1: लेकिन वो एक मैं बोले कि महाभारत रामायण वही नाटक होते थे, तो वो कभी भी फिर वो मेरे को पूरे कंटेस्ट हो गए। लेकिन अभी जब से ये लावणी प्रधान आ गया था, अभी अब थोड़ा क्या हो गया, वो थी होशी रंगभूमि, अभी ये 20 साल से थोड़ा कमर्शियल हो गई पूरी, पहले जो गांव के लोग करते थे वो गई अब होशी, अभी वो क्या करते हमारे वर्षा में बड़ी बाजार पर जो झाड़ीवुड पिक्चर निकला गया नहीं, तो बड़े वो उसका मार्केट है, जहाँ दुकान अपना आप लेके बैठे है नाटक के 4-5 नाम कलाकार के नाम, और वो जो लेने वाले आदमी फिर उनको एक दिन के लिए 40-50-70-80 हज़ार रुपये लेके गांव में नाटक करते हैं, हर गांव में नाटक होते हैं। तो वो आ गया अभी व्यवसायिक, तो उसमें अगर तुमने थोड़ा भी गलती कर दिया तो पैसे नहीं देते, इसलिए अभी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है,
0: कॉम्पिटिशन हो गया।
1: एक एक गाँव में 12-12 नाटक होते, गिनीज बुक में है, गाँव में 4 तो होते, 2 तो होते चाहे गाँव में, क्योंकि वो पार्टी का अलग, ये पार्टी का अलग, वो पार्टी का अलग, ठीक है। तो अभी उसके हमारा कोई मतभेद नहीं रहता, क्योंकि चलो कलाकार का पेट भरता है
0: जी, जी, जी।
1: एक गांव में 4 नाटक होना बोले तो क्या बोलते, कलाकार तो 150 का हो गया ना उसमें
0: जी, जी।
1: तो उसमें कोई मतभेद नहीं, वो करते हैं
0: मिलजुल के, मतलब
1: मिलजुल के करते हैं, कोई बड़ी बात
0: जी, जी। तो 12-12 नाटक भी,
1: और उसमें मैंने बताया कि उसमें खाली नाटक नहीं है
0: जी,
1: तो वो ढंग से जो मेहमान आते हैं लड़की देखने, वहां फिर शादी जुड़ती है, नए जावई दामाद गांव में आते हैं, कोई देखने आती लड़की, ऐसे ही वो भी चलता है उसमें।
0: हाँ।
1: वो भी एक सामाजिक कार्य का एक फायदा है उसमें,
0: जैसे वो एक पूरा सामाजिक कार्य ही हो,
1: कार्य हो गया हो, क्योंकि हर साल में एक बार नाटक गांव में होता है।
0: अच्छा।
1: तो एक वो गांव वाले के लिए वो एक तैयारी है, मेरे गांव में नाटक हो रहा है, अरे चलो मेरे गांव में बुला दो, जावई आ जाओ, मेरे बहन आ जाओ, मामा जी आ जाओ, वो ढंग से वो एक निमित्त से वो आते हैं, उससे सबर विदा भी होती, बढ़िया विदा की
0: खातिर भी होती।
1: तो एक संस्कृति इसके पीछे
0: जी, भारत की भी संस्कृति ना, मेहमानों को बुलाना, उनका देख रेख करना,
1: उसमें तो यानी शादियां जुड़ती है ना
0: जी।
1: ये परंपरा चल रही है अभी भी,
0: परंपरा अभी भी चल रही है,
1: थोड़ा ढांचा नाटक का बदल गया
0: जी जी जी,
1: पूरे अभी क्या बोलते उसे व्यावसायिक हो गई
0: जी,
1: वो ढंग से नाटक भी सादर करते
0: जी। सर जो भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई भी भारत के युवा या गांव में रहने वाले युवा, बहुत लोग सोचते हैं कि हमको जीवन में, हम गांव में रहते हैं हम क्या करेंगे, या फिर ठीक है अब जीवन यही है तो वो भी मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं कि ठीक है यही है, नशा कर रहे हैं या आदत पड़ गई है, दोस्तों के साथ है, तो उनको लगता है कि ठीक है हम कोई शहरों वाले थोड़ी है ना, हम वहां जाएंगे, हमारा जीवन यही, तो कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बहुत अंशी मेरा जो कार्य है वो देहात में गया
0: जी,
1: मैं बहुत नजीक से देखता हूँ तरुण को, लेकिन आजकल क्या हो गया, एक बड़ा यानी मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे को लोग मजूर नहीं मिलते, एक तरफ ऐसा भारत है, वहाँ दो भारत है, इधर मजूर नहीं मिलते, इधर कई वर्ग जाते तो भिखारी का है कि मैं जब चार लोगों को पालना चाहता हूँ, मेरे खेत पर बुलाना चाहता हूँ, नहीं आता, क्या कारण है? ये लगन नहीं, मैं कहता हूँ हमारे गांव, मेरे गांव में जो कि लड़का ऐसे कि जो रात भर नाटक में काम करते, दिन भर खेती करते, अपने व्यवसाय करते, तो आजकल कोई भी सरकार तो हर एक को नहीं दे सकती ना, तो स्वावलंबी बनो, ये तो बड़ा, मैं तो बड़ा ये झाड़ी पट्टी रखी तो बड़ी एक बड़ा एरिया है, जहाँ आपको अगर आत्मिक कोई गुणवत्ता हो, आप अच्छा आपको गला है, आपको अभिनय आता है, आपको अच्छा कोई आप पेंटर हो, आप अच्छा बाजा बजाते हो, तबला बजाते हो, सबके लिए तो खुला है, उनको होना ही है ना, अगर ये मैं तो तुम काय को नौकर, और नौकरी तो इतनी बड़ी कोई जो नहीं लगता आजकल, डोनेशन दो पैसा भरो, ये भी भ्रष्टाचार बहुत चल गया है, कोई ऐसे कोई ऐसा नहीं लगता कि ये लो, तो उनसे टाइम उसमें जो अर्धी जिंदगी चली जाती है उनकी, ना ये ढंग से एक ना गायक बन सकता है ना उधर नौकरी कर सकता, तो एक लगन से अगर आपको अच्छे है, आपको अभिनय आता है, तो आप उतर जाओ सीखो, और आज का शहर में भी ये जिंदगी बिताना बहुत कठिन काम हो गया
0: जी,
1: इतना सरल नहीं रहा, तो मान से अपने परिवार बोलो, अपने आए बाप जो माँ बाप रहते तो उनके सामने अगर आप अच्छा कमाएंगे, एक लगन से काम करेंगे, आज बहुत बहुत है ना, मैं तो कहूँ नहीं जमते जाओ मिलिट्री में, देश की सेवा करो, क्या क्या पर आपका को, आप तो मोहब्बत खाने की बात हो गया
0: जी,
1: एक रुपए कर चावल दो तो कर ये दो, अरे को देखने का, अरे वो तेरे पिताजी के लिए है, काम नहीं उनके लिए, तू क्या मनता है, खुद की पहचान अगर तेरे करना तो सोचना मेरे में क्या है, अगर तू अच्छा मजदूर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा गायक बन सकता है, अच्छा कलाकार, खुद को पहचानने की जरूरत है, मेरे में क्या है, इस कम है तो मैं कैसा, इसके लिए कोई गाइड गुरु की जरूरत होती है, शांत उन्होंने सोचना चाहिए, ये अगर आपने गुरु ढूंढ लिया अच्छे इसमें ये गए, आपको अच्छे मार्गदर्शन मिल जाएंगे, अपना क्रोध तुम कंट्रोल होते हो, ब्रह्म कुमार तुम्हारे इसमें पढ़ाया जाता है, क्रोध का क्या अर्थ है, शांति कैसे बनाए चाहिए, उसका फायदा उसको हो जाता है उसमें, अगर पहले से आप अगर निगेटिव सोच रहे हो तो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो,
0: पॉजिटिव सोचो, अपने अंदर अपनी पहचान,
1: पहचानो मैं कौन हूँ, अगर वो बन गई तो वो बन जाता, टाइम लगेगा थोड़ा, हमारे पता वैसा नहीं था, कंपटीशन कम था
0: जी।
1: अभी बढ़ गया,
0: अभी तो बहुत
1: बहुत है, हमारा हम तो भाग्यशाली के हम चले गए, अभी तो तुम्हारे बाप आज दूसरा बिला बुला आता है, तो खुद को रखो,
0: मजबूत रहना होगा,
1: प्रेजेंटेशन करो खुद को, मैं क्या हो, आत्मा बल बढ़ा, तो उसमें ले अगर ये मेडिटेशन तो आप ये ज्वाइन करो ब्रह्म को, वहां आके अपना ये करो, उसमें तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ना आपको, आप जो भटके हुए आपको जो विचार मन में नहीं होते उसको तो एकत्रित उसमें कैसा मैं यहाँ से मैं जाऊँ, तो वो ये कही है
0: जी सर। बहुत सुंदर आपने बात कही और मुझे लगता है युवाओं के लिए बहुत ही बहुत जरूरी है बात,
1: जरूरी
0: है। खुद को खोजना, खुद को पहचानना मेरे अंदर क्या है, और जैसा आपने कहा समय लग सकता है लेकिन पॉजिटिव
1: पॉजिटिव इम्पोर्टेंट,
0: उसके लिए मेडिटेशन या आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। मेडिटेशन तो बहुत ही मदद करता है
1: आज की जरूरत है।
0: युवाओं को भी हम सोचते हैं कि शायद हम कभी बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमें करेंगे तो ऐसा ही
1: आपके बच्चे भी वही उसमें
0: हर कोई
1: सोचे जब जो जैसे परंपरा चल रहा, तो वो अभी वो परंपरा बदलने को होना ना
0: जी।
1: पुराने तो हम नहीं बोलते कि पुराने लेखों का, लेकिन जो जैसा जैसा जमाना बदल जा रहा उसमें से अपने खुद को बचा के
0: जी, खुद को बचा के भी रखें,
1: साइड को बचा के खुद यहाँ से तैर, ये तो महासागर है
0: बिल्कुल,
1: यहाँ से तैरना निकलना तो आपको कोई ना सहारा लेना पड़ेगा।
0: सही बात है,
1: बहुत मार्ग है तेरे पास है लेकिन तेरे को तू दिखता नहीं ना, वो गलत है, तेरे मोबाइल ही दिखता है,
0: मोबाइल ही दिखता है। सही बात है सर,
1: क्या नहीं वहाँ भी है वो खोज लो, मोबाइल के अच्छे ना मोबाइल में सब कुछ है।
0: सही बात है, उसका भी नुकसान आज
1: वो नहीं देखता,
0: भुगत रहे हैं बहुत ज्यादा युवा पीढ़ी भी और समाज भी। सर बहुत मोटिवेटिंग आपकी कहानी है और आपने जैसा आगे बढ़ाया है एक कला को ही नहीं बल्कि एक जीने के तरीके को, जीवन शैली को। सर जाते जाते आपसे एक और छोटा सा राउंड हम करना चाहेंगे ऑडियो इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में, कि मैं कुछ एक शब्द कहूंगी आपसे और उस शब्द को सुन के आपके मन में एक कौन सा शब्द आता है वो आप बताइएगा, कि इसका जवाब आपको एक शब्द में देना है।
1: एक शब्द में?
0: हाँ जी। हाँ। कि ये शब्द सुनकर आपके मन में कौन सा शब्द आता है वो आपको बताना है।
1: अच्छा
0: जी, तो पहला शब्द है झाड़ी पट्टी।
1: झाड़ी पट्टी पूरा रंगभूमि।
0: पूरा रंगभूमि। भारत।
1: मेरा भारत महान।
0: मेरा भारत महान। कला। कला।
1: कला तो जीने का सहारा है।
0: जीने का सहारा।
1: पॉजिटिव थिंकिंग।
0: युवा।
1: युवा आज का बोले तो आज का युवा भारत का आधार स्तंभ है, भारत उसको बनाना है।
0: बनाना है,
1: बनाना है। और हम हमारे जो पीढ़ी उनको चाहते कि ये कुछ ना बन जाए। युवा बोले भारत, यंग भारत।
0: यंग भारत, क्या बात है। और अगर मैं आपसे कुछ शब्दों में जानना चाहूं कि आप कौन हैं, आप अपने बारे में क्या?
1: मैं भारत माता का सेवक हूं
0: जी।
1: मैं खुद को भाग्य से मैं भारत जैसे देश में जन्म लिया
0: जी,
1: और मेरे भारत में जैसे सनातन धर्म की परंपरा है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, खाली भारत में ही मिलेगा आपको
0: जी।
1: जैसे माउंट आबू में आया एक जो आध्यात्मिक देखा मैंने, तो ये कई कल्चर दूसरे देश में नहीं मिलेगा। जीने का सहारा ये है, इसमें भागवत करता हूँ। मेरे भारत में सही रास्ते में लाने वाली बहुत संस्था है, ब्रह्म कुमारी जैसी है, ये मैं भाग्यशाली श्रेष्ठ हूँ
0: जी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं इस मामले में, इस भूमि पे जन्म,
1: भूमि में जन्म
0: जी।
1: हम भारत माता है, माता काली, इसलिए विश्व माता बोलते हैं, भारत बोलते कहीं नहीं बोलती, यहाँ सिखाया जाता है माता क्या है, मेरी माँ है,
0: मेरी माँ है,
1: और माँ के सामने सब बराबर होते हैं
0: जी। बहुत सुंदर बात किया आपने, माँ के सामने सब
1: बराबर,
0: सब बराबर
1: है। पहले भारत माता के पुत्र है, माँ है हमारी, कोई माने ना माने, अगर ये हम सब अनेकता में एकता का प्रतीक यही है, वो माँ का माँ है
0: ये शब्द माँ, क्योंकि हमने भारत माँ है तो
1: भारत।
0: बहुत सुंदर सर, आपका जीवन काल बहुत ही लंबा, आपने जो समय व्यतीत किया जैसा आपने बताया कई रातें लगातार, और वो जीवन जीते जीते झाड़ी पट्टी को प्रमोट करते करते युवाओं को उस नक्सलाइट एरिया में उस जीवन शैली से निकालना, बचाना, सकारात्मक दिशा देना।
1: मैं जब यहाँ से 22 साल का था, मैं जब मैंने डॉक्टर के पास की गांव में गया, वहाँ पूरा जब मैं सरपंच बना गांव का, पूरा वो आदिवासी, तो उनका पूरी श्रद्धा पुजारी, फुकपक बुआ बाजी, जब मैं कहीं घर को जाता था बोले इंजेक्शन को, वो बोले उनको दे दो, मैं उनको पुजारी ये करके देगा, तो उसको निकालना कैसे, वो पूरे इन ढंग से बुआ बाजी के इसमें गए थे, चमत्कार क्यों नमस्कार। तो मैंने कुछ मैजिक शो सीख लिया था।
0: अच्छा।
1: और वो करना चालू कर, फिर जो दुर्गा उत्सव हो, गणपति हो
0: जी।
1: ये उसका भी रहस्य भी है, जैसे गुदबत्ती कैसी घूमती है, ये रुमाल हवा से ये कैसा आता है, चैन कैसे निकालते हैं, वो गणपति दूध कैसा पीता है, ये सब उसको अगर बोलो आश्चर्य लगता था
0: कैसे हो रहा है।
1: लेकिन ये है और ये सब थोतांड है जब उसका ये कर रहा है तो उस, अरे भाई ये तो साले जी ये साइंस क्या है उसके पीछे बनिए। मैंने को उसका वो भी कार्य मैं अभी भी कर रहा हूँ।
0: अच्छा तो आप करके बताते
1: हो। हाँ। मैं टीवी पर अभी आया परसों मेरे इंटरव्यू हमारे महाराष्ट्र में, मैंने वो भी करता हूँ। मेरे को उसके भी मद्रास में किया था।
0: अच्छा
1: मैं अभी पुणे में मैं उसका शो किया था। मैं उसके लिए कोई ये नहीं, मैं उसके लिए उनके लिए करता हूँ जो अंदर सदा के निर्मूलन के जरिए मशाम मानव हमारी, तो वो भी मैं किया
0: जी। उनको बाहर निकालने बाहर के लिए उस अंधश्रद्धा से
1: हम नहीं, पूरा जो देहाती पहले था वो इसमें जाता था, डॉक्टर भरोसा नहीं लेकिन वो पुजारी को भरोसा रहता था। उसमें हम नाटक में मरीमाई का भूतिया,
0: अच्छा
1: एक नाटक आदिवासी परंपरा का नाटक है, सत्य घटना पे आधारित है, जो नरबड़ी कोई ज्यादा उत्पादन होने के लिए पहले उधर हमारे एरिया में आदमी को काटते थे, कोई एक सत्य घटना पे आधारित था मरीमाई का भूतिया। मरीमाई एक रही थी उसको पटोले, उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई, नक्सल हट के हमारे ऊपर अटैक हो गया।
0: अच्छा
1: कोर्ट में गए इसके लिए, हम कोर्ट को न्यायाधीश को बताया है इस बारे में, मतलब इसमें कोई ये जो इसमें से परंपरा किसी गलत है ये हम बताना चाहते हैं। उसमें वो आदिवासी को बाहर निकालना करके, तो उन्होंने भी फिर भी उसके बहुत यानी क्या है कोई नकारात्मक ये हुआ तो उसको बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है। तो वो इतना नाटक चला, इतना नाटक चला कि उसको प्रसिद्धि, तो वो भी हमने की।
0: क्या बात है, ये तो बहुत
1: बहुत अच्छा काम किया,
0: बहुत बहुत ही अच्छा।
1: वो पूरा वो आदिवासी संस्कृति में वो नाटक आदिवासी भाषा में था, वो जो बोलते थे ढंग का, वो जो उनकी अलग भाषा है आदिवासी, मराठी अलग बात करेंगे
0: जी।
1: तो वो ढंग से उन्होंने लिखा और वो पूरे कलाकार आदिवासी थे हमारे, उनका पूरा जो आदिवासी का जो साज था बजाने का, वो भी पूरा साज जो उनकी संस्कृति बजाते है देव वो पूरा हमने लाए थे। उनका बड़ा इफेक्ट, बहुत दिन हो गए नाटक को अभी, लेकिन बहुत चला
0: उसका बड़ा असर पड़ा,
1: बड़ा असर पड़ा। और हमने उसने भी निकाले जो नक्सलाइट में हमारे ऊपर पूरा भैंस का डाला था, लेकिन हमने उनको भी दिखाया, इसमें कोई बोला बुराई है ही नहीं सर, हम तो लोगों को समाज को निशान बाहर निकालना चाहते, ये जो परंपरा है बोले उत्पादन बढ़ने के लिए कुछ बोले आदमी को काटना पीटना अपनी देवी को करने थोता नहीं। उसके वो जो पटेल था आदिवासी उसकी लड़की उससे बंड करती है, इसमें ये बुरी क्या बात थोड़ी है,
0: वो पूरी कहानी है। जी तो आपने उनको भी समझाया।
1: हाँ तो हमने वो ढंग का भाई वो ये मरी मैं जब होती
0: जी
1: बहुत पुराना नाटक मैं जब तो नाटक में कहूँ उसमें बहुत नाटक चलाओ
0: जी,
1: तो उसमें नक्सलाइट ने हमको धमकी दी थी कि हमारे ऊपर नहीं और आपके तरफ नहीं है।
0: अच्छा उनको लगा होगा कि उनकी
1: हाँ, तो वो हमको फायर मिलिट्री खाली हम नाटक कर रहे हैं, फिर कलेक्टर को देखा है हमने सेंसर बोर्ड को और मिलने बोली इसमें कोई है ही नहीं, बाद में वो मान गए।
0: ये तो उनके बेहतरी के लिए कल्याण के लिए
1: आपके अच्छे के लिए नाटक
0: अच्छे के लिए
1: ये जो थोतांड है, ये जब बुआ बाजी ये जो आपको पुजारी बताता है नर आदमी को काटना कहाँ से उत्पन्न होती है, ये आदमी को काटना गलत है ना,
0: बिल्कुल
1: वो सत्य घटना थी
0: इस तरीके से।
1: अभी तो नहीं, अभी तो उधर का आदिवासी बुरा प्रॉम्प्ट हो गया, अभी फलित है, हमने हमारे जमाने में बहुत था।
0: बहुत अच्छा सर, बहुत ही पावरफुल कहानियां हैं और बहुत सारी कहानियां होंगी आपके पास, क्योंकि 50 साल का एक लंबा अंतराल आपने इस कला को समर्पित किया है और इसके माध्यम से कुरीतियों को लोगों के दिलों से और डर बन जाता है, वो डर को निकाला वो बहुत बड़ा काम है, वो एक बार में नहीं होता, वो शायद कला के माध्यम से उसका इम्पैक्ट होता है।
1: जैसा हमने किया था, जैसे मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे को इस काम का पद्मश्री मिला
0: जी,
1: तो पीछे वाला ने इससे कुछ भले किया तो उसको भी तमन्ना आ जाती है मैं भी अच्छा कार्य करूँ,
0: मैं भी करूँ,
1: तो वो भी तैयार हो जाए, वो होना चाहिए ना। जैसे दीदी अभी कार्य कर रही, इनके पीछे कोई आने को होना ना दीदी का कार्य सामने लाने के लिए, यही तो संस्कार है,
0: यही संस्कार है।
1: एक आदमी आया तो भी बहुत हो गया,
0: एक को भी प्रेरणा मिली तो बहुत हो गया जी।
1: भगवान को पत्र मारो तो ये हो जाता ना आसमान को।
0: जी जी जी बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में पधारे, आपने अपना समय दिया और इतनी खूबसूरत रीति से इस जर्नी को हमारे साथ जो आपने शेयर किया, जो बांटा, इतनी अनेकों प्रेरणाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्ते,
0: धन्यवाद।
1: राधे राधे, ओम शांति,
0: राधे राधे। चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है इजाजत लेने का। रेडियो मधुबन 107.8 FM से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: बुआ और लोरी सुनाओ ना।
1: हाँ बेटा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है, दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित न रहे। सभी मम्मीज़ को, हर उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप समझ गए होंगे आज हम किस विषय को लेकर बात करने वाले। जी हाँ, सही पहचाना आपने, मदर्स डे। माँ तू एक पेड़ है, तेरी छाँव में मैं रहूं उम्र भर, तेरी डाली से निकला हुआ मैं, तुझी से जिंदा हूँ मैं, कभी सूख जाऊं पत्तों सा, फिर भी टूट कर तेरी गोद में रहूं, धूप हो बारिश हो तुझसे लिपट जाऊं मैं, हवा जब मुझे उड़ा ले जाए तुझी से चिपक जाऊं मैं, तेरी जड़ में समा जाऊं मैं, तुझसे शुरू हूं तुझी पर खत्म हो जाऊं मैं, तेरे आंचल सा फैला है विस्तार तेरा, मुझ में तू है तुझसे है पूरा संसार मेरा।

0: हाँ छोले भटूरे, अरे वाह आज फिर से मजा आ जाएगा आज खाने में। तो तू बता तू क्या लाया टिफिन में?
1: मैं तो बिस्किट और नमकीन।
0: बिस्किट और नमकीन? तू तो रोज यही लाता है, तेरे पापा को खाना नहीं बनाना आता क्या?
1: माँ को आता था बहुत अच्छा, पर अब माँ नहीं है ना।
0: अरे यार मेरा टिफिन तू खा, मेरा टिफिन तेरा टिफिन है और मेरी माँ तेरी माँ है और मैं हूँ ना तेरे साथ हमेशा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है। दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित ना रहे। हर माँ को और उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: ओहो मॉम, क्या लग रही हो? कहीं दो चार यही ढेर ना हो जाए।
1: कोई कहेगा आप दादी वाले रोल में एंटर कर चुकी हो।
0: कजिन की शादी में रेडी होती हुई मॉम को मैंने चढ़ाते हुए कहा। मां भी टशन में बोली,
1: अच्छा
0: तो इसी मंडप में बैठ जाऊं?
1: जा ले एक दूल्हा।
0: पागल कहीं की, मैंने भी आंख मारते हुए झट जवाब दिया, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। और हम दोनों जोर से हंसने लगे। मां स्कूल में टीचर थी, पापा बिजनेसमैन, मैं और मेरा भाई करण, हम सब बहुत खुश थे। बात उन दिनों की है जब मैं 7 साल की थी। पापा का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, वो परेशान रहते थे, मां की सैलरी से ही हमारा गुजारा होता। पापा काफी अपसेट रहने लगे, बिजनेस में लॉस के प्रेशर के कारण एक दिन हार्ट अटैक से वे चल बसे। मां ने हिम्मत नहीं खोई, मुझे और भैया को बड़ी कठिनाइयों के बावजूद अच्छी शिक्षा दी। मैंने पर्यावरणीय विज्ञान में पढ़ाई पूरी की और भैया ने पापा की तरह बिजनेस सेटअप कर लिया। पता नहीं मैं कहां खो गई थी, शायद मां को इतना सस्ते हुए मैंने कई बरसों में नहीं देखा था। सारा पैसा वो हम पर ही तो खर्च करती, खुद की खुशियों के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही कहां था। आइसक्रीम, मेरे कंधे हिलाते हुए मां ने फिर जोर से कहा। आइसक्रीम खाने चले मेरी लाडली?
1: हां हां मां,
0: अपने विचार चक्र से निकलते हुए मैं बोली। आइसक्रीम स्टॉल पर जरा भीड़ थी, पर हमारा नंबर आ ही गया।
2: चॉकलेट आइसक्रीम एंड कोन विथ वेनिला टॉपिंग।
1: अरे ये क्या, बिल्कुल एक जैसे दो ऑर्डर, वो भी एक साथ एक ही समय पर। एक ऑर्डर तो मां ने दिया था, पर दूसरा?
0: दूसरी आवाज का रहस्य जानने हम दोनों पीछे मुड़े, और मुड़ते ही मां और वो अनजान व्यक्ति एक दूसरे को आश्चर्य भाव से देखते ही रह गए। मैं एकदम कंफ्यूज्ड खड़ी थी। तभी वो साहब मां से बोले,
1: पुष्पा।
0: मां भी अनायास ही बोल पड़ी,
1: बाबू मशाए।
0: और फिर ठहाके लगाते दोनों भीड़ से निकलकर एक और बातों में लग गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि
1: मां का नाम तो अंजलि है, पुष्पा नहीं, न शादी के पहले वाला, न बाद में, और ना ही पेट नेम, न प्यार वाला, न पड़ोस वाला, न घर का, न बाहर का, ये क्या?
0: मैंने दोनों हाथों में दो चॉकलेट आइसक्रीम एंड कोन विथ वेनिला टॉपिंग पकड़ी और कोने में कुर्सी पर जाकर बैठ गई। इससे पहले कि वो आइसक्रीम मुझे पीनी पड़ती, मैं दोनों आइसक्रीम बारी बारी से खाने लगी। आते जाते लोग मुझे शक की निगाहों से देखने लगे, पर मैं मुस्कुराते हुए मजे ले रही थी। कुछ समय बाद मां की नजरें इधर उधर खोजने लगी। मैंने हाथ हिलाया और मां के पास जा पहुंची। दोनों आइसक्रीम के बारे में भूल चुके थे। मां ने इंट्रोड्यूस कराया,
1: राज ये मेरी बेटी तनु, तनु ये राज मेरे कॉलेज के बहुत अच्छे मित्र।
0: मैंने झट उनके पांव छुए और पूछा, अंकल आप इसी शहर में रहते हैं? वे मुस्कुराकर बोले,
1: हां तुम्हें शांतिनगर पता है, वहां ग्लोबल स्कूल है, उसके ठीक पीछे शिव अपार्टमेंट में रहता हूं।
0: मैंने खुशी से उछलते हुए कहा,
1: अरे लो कैसा इत्तेफाक है, आपके अपार्टमेंट्स के ठीक पीछे एक गार्डन है, उसे क्रॉस करते ही पार्वती अपार्टमेंट में ही तो हम रहते हैं, मम्मी रहती हैं, आप जरूर घर आइएगा।
0: शादी के 2-3 दिन की धूमधाम के बाद हम घर लौटे। मैंने बातों बातों में मां से पूछा,
1: मॉम उस दिन वो कैसे आइसक्रीम स्टॉल पर आप दोनों एक साथ बोल पड़े, और वो पुष्पा बाबू मशाए वो सब क्या था?
0: क्यों मॉम, इस राज का क्या राज है? मैंने मां को चढ़ाते हुए पूछा। मां मुस्कुराते हुए बताने लगी,
1: राज और मैं कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थे, हमारा 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप था। हम दोनों, निक्की आंटी को तो तुम जानती ही हो, बाकी तेजेंद्र और सतीश, इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं रहा। दरअसल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मैंने और राज ने एक स्किट की थी, वही डायलॉग,
0: आई हेट टीयर्स पुष्पा, इन आंसुओं को पोंछ लो। तब से पूरा कॉलेज हमें पुष्पा और बाबू मुशाए के नाम से चढ़ाने लगा। हमें कभी भी बुरा नहीं लगा, बल्कि और कई नाटक और एक्टिविटीज में एक साथ भाग लिया। तब से हम भी एक दूसरे को पुष्पा और बाबू मुशाए बुलाकर ही छेड़ते थे।
1: पर उनके परिवार से कोई नजर नहीं आया मां, मैंने याद करते हुए पूछा। तब मां बोली, हां दरअसल उनका एक छोटा भाई है, उनके मां पिताजी अचानक गुजर जाने के बाद उन्होंने छोटे भाई के लिए शादी नहीं की, उसकी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। किस्मत ऐसी कि वही भाई आज अमेरिका चला गया, शादी कर ली और इनसे मुंह मोड़ लिया। तुम्हारे कजिन के ससुर राज के अच्छे दोस्त हैं तो उन्हें यहीं सेटल होने के लिए बुला लिया। क्या अंकल तुम्हें पसंद करते थे मां, मैंने झिझकते हुए पूछ ही लिया। कुछ सोचते हुए मां ने कहा, हां कॉलेज के आखिरी दिन उन्होंने कुछ कहा तो था, पर मैं जानती थी कि तुम्हारे नाना नानी कभी राजी नहीं होंगे, और फिर वैसे भी शादी के बाद तुम्हारे पापा के साथ मैं बहुत खुश रही, तुम दोनों सेटल हो गए, अब और क्या चाहिए कंपेनियन, मैंने झट से कहा। बस कर तनु, जो मुंह में आया बोल देती है, आज कहा फिर ऐसी बात नहीं कहना। जो भी हो, पर मेरे मन में एक बात घर कर गई थी कि मां को कंपेनियन तो दिलाया जा सकता है, राज और अंजलि को तो मैं मिलवा के रहूंगी। मैंने तुरंत भैया से बात की, मैं जानती थी कि जिन हालातों में मां ने हमें बड़ा किया है उनकी खुशी के लिए भैया कुछ भी कर सकते हैं, वे तो तुरंत मान गए। रही बात भाभी और मेरे पति तनिष्क की और उनके परिवार वालों की, हम दोनों ने भाभी और तनिष्क से बात की, वो दोनों खुश थे। पर भाभी बोली, क्या माँ जी मान गई? मैंने कहा, मान जाएंगी, तुम देखती रहो, एक बार तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। हम लोग उनसे मिलने पहुंचे, हमने सभी के साथ एक मीटिंग की, लग रही थी पर बात उतनी आसान भी ना थी। भाभी और तनिष्क के माता पिता नाराज थे। सन्नाटे को तोड़ते हुए भाभी के पिताजी बोले, तुम आजकल के जनरेशन का यही तो प्रॉब्लम है, तुम सोचते हो हम अकेले नहीं रह सकते, सारी उम्र तो बीत गई, अब बुढ़ापे में ये शौक, वाह क्या सोच है। अरे तुम लोगों जैसे आज एक कल दूजा ऐसा नहीं करते हम, लोग क्या कहेंगे, सोचा है? और क्या तुम्हारी मां राजी है इस बात के लिए? क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? जी हमारी समधन की शादी में आइएगा। अब चिड़े हुए लग रहे थे। उनकी बात में हामी भरते हुए तनिष्क की मम्मी बोली, और क्या, अरे अब जरूरत भी क्या है जबरदस्ती का बखौड़ा मोल लेने की, कॉलेज के दिनों की बात उसी उम्र में शोभा देती है, हमें तो ये सब मंजूर नहीं, बाकी तुम जानो। तभी तनिष्क के पापा ने सबको शांत करते हुए कहा, देखिए हम सब अपने बच्चों को जानते हैं, वो गलत कदम नहीं उठाएंगे, जमाना बदल रहा है और सोच भी, एक बार इनकी बात सुनने में क्या हर्ज है, हम अभी तक सिर्फ शांति से सुन रहे थे। फिर मैंने अपनी बात कहने की विनती की और कहा, अंकल आंटी आप सभी लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं।

पर हम अपने नहीं बल्कि आपके नजरिए से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी उम्र में हमें दोस्त या कंपेनियन की जरूरत होती है। मां पापा के प्यार को कभी नहीं भूली, वरना तभी दूसरी शादी कर ली होती। हमारी खुशियों के लिए उन्होंने यह फैसला लिया। जब पापा गुजरे तब मां की उम्र कुछ ज्यादा ना थी, और आप जिस समाज और लोगों की बात कर रहे हैं वो कहां थे जब मां हमें अकेले संभाल रही थी। मुसीबत में तो किसी ने साथ नहीं दिया ना, तो हम उनकी परवाह क्यों करें। और अगर मम्मी अपने इस दोस्त को कभी पार्क में मिली ना, तो यही लोग ताने मारेंगे। पर अगर मम्मी और अंकल ने शादी कर ली, तो यही समाज उन्हें सोशल स्टेटस देगा। मैंने मां को हमेशा स्ट्रांग देखा है। उन्होंने पापा की कमी कभी हमें महसूस नहीं होने दी। पर अब हम भी उन्हें खुश देखना चाहते हैं। शादी से उन्हें कोई अपना कहने वाला मिलेगा, हम उम्र, जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सकेंगी, अपने विचार अपनी सोच साझा कर सकेंगी, और उन्हें कभी अकेलापन नहीं खाएगा। काफी विचार विमर्श के बाद सभी खुशी से राजी हो गए। अब मैंने प्लान बी के बारे में सोच लिया था। मैं दूसरे ही दिन भाभी और तनिष के साथ राज अंकल के घर जा पहुंची। बात बात में मैंने उन्हें पूछा, अंकल आपने कभी शादी क्यों नहीं की, या फिर कोई पसंद नहीं आई। वे मुस्कुराकर बोले, जिससे शादी करना चाहता था वो नहीं मानी, तो फिर मैं भी देवदास बन गया और हर जोर से हंस पड़े। मैंने चढ़ाते हुए पूछा, अच्छा तो वो पारो थी कौन। वो बेसुधी से ख्यालों में खोए हुए बोल पड़े, पुष्पा पुष्पा पुष्पा। हम सब शांत हो गए। मैंने कहा, तो बाबू मुशा है, ले जाइए अपनी पुष्पा को। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। फिर हम सब ने उन्हें अपने मन की बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद वो कुछ सोच में डूब गए। हमने उन्हें सबकी रजामंदी के बारे में भी बताया। आखिर वे भी मान गए। फिर वहीं मैंने सभी से प्लान सी डिस्कस किया और हम घर आ गए। दूसरे दिन शाम को मुझे बहुत खुश देख मां ने पूछा, क्या बात है, मेरी लाडली बड़ी खुश लग रही है। और छेड़ते हुए बोली, कहीं तनिष तुम्हारे लिए डायमंड रिंग तो नहीं ले आया। अरे मां आप जानती नहीं मैं किससे मिलकर आई हूं, गेस तो कीजिए। ओहो बोल भी, किससे मिलकर आई है, क्यों पहेलियां बुझा रही है। मां मैं आपके बाबू मुशाई की होने वाली पत्नी से मिलकर आई हूं। अपने चौराहे पे जो शॉपिंग मॉल है ना, वहीं उसी के बाहर दोनों से मुलाकात हुई। मैंने बिल्कुल बेफिक्री से कहा। मां हक्का पक्का रह गई, आश्चर्य से बोली, क्या सच। फिर उनका मूड एकदम चेंज हो गया, गुस्से से बोली, हां मिल गई होगी कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी, उसे तो पहले से ही पैसे से प्यार था, हमें क्या, शादी करे या भगा के ले जाए, और तुम्हें उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी। मां चढ़कर बोली। फिर तुरंत ही मां ने पूछा, और मैडम का नाम क्या है, कैसी थी दिखने में, वैसे मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा, स्वीटी, शायद स्वीटी नाम बताया था, मुझे तो दिखने में सुंदर लग रही थी, एक्चुअली दोनों की जोड़ी जच रही थी, मैंने सोचने का नाटक करते हुए कहा। मां झुंझला कर बोली, स्वीटी, वाह क्या तो नाम है, 16 साल वाला, उम्र 55 की है, दिल बचपन का, अरे सुंदर उंदर कुछ नहीं, जब आंखों पे पट्टी बंधी हो तो हिडिंबा भी अप्सरा लगती है, ले आई होगी पैसा। वैसे हमें क्या, स्वीटी हो या मोटी, जो मर्जी करे। फिर मां ने पूछा, वैसे मिली कहां इसी है। पता नहीं मां, कह रहे थे कि उनके शहर के किसी बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है, वैसे भी जल्दी शादी करके वो दोनों यहां से लंदन जा रहे हैं नया बिजनेस शुरू करने, शायद 14 फेब की ही शादी है। मैंने लापरवाही से जवाब देते हुए, मां चौंक गई और गुस्से से चिल्लाकर बोली, 14 फेब, अभी 6 दिन बाद, ठीक है हमें क्या करना है। लेकिन मां तुम शायद ठीक कहती हो, वो लेडी फ्रॉड लग रही थी, शायद अंकल को धोखा दे रही है, मुझे लगता है तुम्हें अंकल को जाके सावधान करना चाहिए, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। मां चिढ़कर बोली,
अच्छा होगा, मुझे बता के थोड़ी शादी कर रहा है, मुझे क्या करना है। पर जैसे तैसे मां को मैंने मना लिया। जब हम अंकल के घर पहुंचे मां काफी नाराज थी। गुस्से से बोली, तो बाबू मशाए मन में तो खूब लड्डू फूट रहे होंगे, पर एक बात जान लीजिए, जो किसी गलत इंसान को पल्ले बांधोगे तो पछताना पड़ेगा जिंदगी भर, या फिर बची हुई जिंदगी भर। अंकल बोले, धीरे बोलो, वो लड़की अंदर है कमरे में। मां चौंक कर बोली, क्या बात, बहुत खूब, लो बेटी और कुछ कहना सुनना बाकी रह गया अब। अंकल ने मां से मुस्कुराते हुए पूछा, मिलोगी नहीं। मां कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने मां का हाथ थामा और अंदर कमरे में ले गए। पर ये क्या, वहां तो कोई था ही नहीं। फिर वो बोले, जरा सामने तो देखो, मेरी पार्टनर खड़ी है। मां ने नजरें उठाई तो शीशे में खुद को देखा और दंग रह गई। मुड़कर उन्होंने पीछे देखा तो हम सब खड़े थे। मैंने हाथ जोड़े और अपनी आंखें छोटी करती हुई, मान जाओ ना मां प्लीज वाली एक्शन की। सभी ने ताली बजाना शुरू कर दी। मां भी मुस्कुराई और अंकल को देखकर बोली, तो बाबू मशाए 14 फरवरी को मिलते हैं। सब हंस पड़े। मुझे पता था मेरा फैसला सही है। मां को बरसों बाद जिंदगी का आनंद लेते हुए देखने वाली थी। मां की कम उम्र में पापा का चले जाना किसी का दोष न था, पर मां को बहुत ज्यादा खुशी देने का मेरा सपना तो पूरा होने जा रहा था। एक नई सोच के साथ एक नई शुरुआत होने जा रही थी। मां की शादी होने जा रही थी। दोस्तों, विचार एकदम नया है और नई चीजें हमें पसंद भी बहुत आती हैं। आप सुन रहे थे सोनाली शिरपुरकर भड़कस की लिखी कहानी, मां की शादी। कहानी पढ़ते हुए, कहानी सुनते हुए, कहीं कहीं जो हमारी मान्यताएं हैं वो इस बात को मानने से इनकार कर देती हैं, जिसका एक छोटा सा प्रतिरूप पारिवारिक डिस्कशन में हमें देखने और सुनने समझने को भी मिला। हमारे साथ भी यूं ही होता है। पर बात जब शादी की हो, बात जब नए विचारों की हो, तब बहुत सारे आयाम खुल जाते हैं। हम बहुत सारी चीजों को, नई चीजों को स्वीकार करते भी हैं, नहीं भी करते। पर एक बात तय है, समय परिवर्तनशील है, आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद हमने पहले कभी नहीं स्वीकारी थी, वो कहीं ना कहीं सामान्य हो गई हैं। जरूरी नहीं कि जो बातें सामान्य हो गई हैं वो सही भी हों, मगर हां, समय तेजी से बदल रहा है और बहुत सारी नई बातें हमारे सामने आने को हैं, बहुत सारे नए विचार हमारे सामने आने को हैं। ऐसे ही नए विचारों में एक विचार फिर से आध्यात्मिक क्रांति का भी है। आध्यात्मिकता नयापन लाती है, नई दुनिया लाती है। जी हां, बस उसे समझने की जरूरत है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो नई है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न हो जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम नए भारत, नए समाज, नव निर्माण की बात करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम तो बहुत पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, और इस पुरानी दुनिया को बदलने के लिए नए विचारों की आवश्यकता है। इसीलिए इस समय, जो कि बहुत तीव्र गति से परिवर्तन का होता जा रहा है, हमें नए विचारों को समझने, ऑब्जर्व करने, फिर फिल्टर लगाकर फिर उन्हें स्वीकारने की आवश्यकता है। फिलहाल एक बहुत अच्छी इंटेंशन और बहुत अच्छी नीयत से लिखी गई ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए अगर पसंद आई है तो, कमेंट्स कीजिए आपके विचार और साझा कीजिए अपने अपनों के साथ

0: गई।
1: महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता को अगर आज भी बेहद शिद्दत से याद किया जाता है तो उसका काफी श्रेय उस कविता को जाना चाहिए जिसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि झांसी की रानी पर लिखी वो कविता और सुभद्रा जी दोनों ही महारानी लक्ष्मीबाई के पर्याय बन गए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 15 अगस्त 1904 को हुआ था। बचपन से ही वे साहित्य और संस्कारों का अद्भुत संगम साबित हुई। उनके तेजस्वी शब्दों और ओजस्वी शैली ने आजादी के जज्बे को एक आंदोलन का रूप देने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका प्रत्येक शब्द ललकार बनकर लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता था। झंडा सत्याग्रह के लिए गिरफ्तार होकर वे देश की पहली महिला सत्याग्रही बनी थी। गांधी जी की विचारधारा के प्रभाव में उन्होंने न सिर्फ खादी को आत्मसात किया बल्कि अगस्त क्रांति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तन मन से देश के लिए समर्पित सुभद्रा जी उन खुशनसीब लोगों में से थीं जिन्होंने अगर गुलामी के अंधेरों से संघर्ष किया था तो आजादी की सुबह भी देखी। और फिर 15 फरवरी 1948 को उनके ओजस्वी जीवन को विराम लग गया। चिता की अग्नि में जलते उनके शरीर को देखकर वक्त ने शायद उनकी ही ये पंक्ति दोहराई हो, मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी।

0: अम्मा हाँ जो बैठ जाओ जो खटिया पे बैठ जाओ।
1: आओ बेटा बैठ तो जे है
0: जो ढाबा है ढाबा
2: ढाबा ढाबा खाना मिले खाना मिले
1: खाना मिले तो कितने आओ खानो का खाए
0: रुक जाओ। हाँ आराम से अम्मा आराम से जो खा बैठ जाओ
2: जो ढाबा है ढाबा
3: खाना मिले या खाना।
0: हाँ
1: खाना कितने खाना हमें नहीं दिखा रहा हूँ।
0: अरे ऑर्डर देने पड़ा तो बैठ जाओ हम बता रहे हैं। छोटू इतने आओ।
3: हाँ
0: एक मिनट। हाँ तुम्हारा नाम कहा जाओ बताओ।
4: हमारा नाम घिस्सू है।
0: हाँ तो देखो घिस्सू हमारे

0: साथ में जैसा हमारी फैमिली है कि
1: दादी राम राम
0: जहाँ हमारी फैमिली है और जाको अच्छे से इंटरटेन करने करने
1: इंटरटेन।
0: हाँ ठीक है, अब बता बेटा तू का
2: सब्जी खाओ दादा।
0: हाँ सब्जी तू मीनू बताओ अपनो।
1: भटा टमाटर मटर टमाटर छुकला वाली दाल है, दाल चावल है।
2: भटा टमाटर
0: भटा टमाटर फाइनल
3: कहे दादा। वो आप कह रहे थे कि आगे काका वो ढाबे वाले कुछ कहानी सुनाए थे।
0: हाँ बिल्कुल, अभी कहानी सुनवाएंगे। तुम जाओ, अच्छा जल्दी से लेके आओ। अच्छा सुनो दादी, इतने कक्का हैंगे कक्का, इतनी बेजा कहानी सुनाया था, कब बताया तुम्हें?
4: अरे तो हम भी सुने हैं भाई।
0: हाँ तुम, हाँ सबको सुनाएंगे। अरे कक्का
2: राम राम कक्का, राम राम
0: राम राम कक्का,
1: राम राम भैया, राम राम राम राम
0: कक्का। बड़े दिनों से दिखा नहीं रहा, कहाँ गए थे?
1: अरे हम तो जा ही रहे, हम कहाँ जाए।
0: काकी ठीक है?
1: सब मजे में है।
0: वो कान की मशीन हरा गई थी, मिल गई?
1: मिल गई लगा, ये लगा
0: देखो।
3: कक्का वो गाना सुनाया तेरे ना, बुंदेले हर बोलो वाले।
1: हाँ हाँ
3: कौन सुनाओ ना कक्का। वो
1: अरे अम्मा सोई आई है। राम राम अम्मा, अम्मा आइए तो हम जरूर सुनाए, जरूर जरूर जरूर। चलो सुनो।

0: अरे वाह कक्का, बहुत ही अच्छा गीत सुना, मगर जब गीत के बारे में कुछ बताओ सो।
1: अरे इस गीत की तो बात ही कुछ और थी। ये गीत जो है आजादी के संघर्ष के दिनों में सुलगती मचाल बन गया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, जिसने ये गीत लिखा वो खुद किसी अंगारे से कम थी क्या? नाम था उनका सुभद्रा कुमारी चौहान।
2: अच्छा नाम है।
1: हाँ, प्रयाग में 1905 में जन्म हुआ था उनका। बचपन से ही बहुत चंचल, तेजस्वी और गरीबों की हमदर्द थी वो।
2: सुभद्रा, अरे ओ सुभद्रा, क्या है अम्मा? जरा इधर तो आना बेटी, अभी नहीं आ सकती, कक्का की बंडी फट गई है ना, उसे सिलकर आती हूँ।
3: पगली लड़की, अपने काम छोड़कर नौकर की बंडी सिलने बैठ गई।
2: अरे बंडी तो यहाँ आकर भी सिली जा सकती है ना बेटा, जल्दी से आ। ये कक्का भी ना भरी ठंड में फटी हुई बंडी पहने रहेंगे, पर समय से बताएंगे नहीं। हाँ बोलो अम्मा, क्या काम है?
3: क्यों, बिना काम के तुझे बुला नहीं सकती क्या?
2: सो बात नहीं है अम्मा। अच्छा अम्मा, एक बात पूछनी थी। लो कक्का, तुम्हारी बंडी।
3: तू कुछ पूछ रही थी ना सुभद्रा?
2: पता नहीं क्या पूछ रही थी, भूल गई।
3: अच्छा। अच्छा सुन, तेरी अब ब्याह लायक उम्र हो गई है बेटा, हैं? एक माह बाद तू 14 की हो जाएगी
2: और एक साल बाद 15 की हो जाऊंगी तो।
3: अरे बेटा, मैं कह रही थी कि खंडवा से एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है और घर परिवार भी ठीक है।
2: तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हो?
3: क्योंकि शादी मेरी नहीं हो रही बेटा, तेरी होनी है ना। तेरे पिताजी को भी यहाँ रिश्ता पसंद है।
2: अम्मा जैसा आप लोग उचित समझो।
3: बस बेटा एक कठिनाई है, लड़का सुना है कि बड़े खुले विचारों का है।
2: तो आपकी बेटी कौन सी बंद डिबिया में रहती है? अरे छात्रावास में रहकर आपने भी तो मुझे पढ़ाया है ना।

0: वाह कक्का, मजा तो बहुत आ रहा हो। अच्छा कक्का, वो मतलब सुभद्रा कुमारी की शादी हो गई।
1: हाँ, लक्ष्मण सिंह चौहान यही नाम था दूल्हे का जिसकी दुल्हन बनी सुभद्रा कुमारी।
0: अच्छा वैसे ये लक्ष्मण सिंह थे कौन?
1: अरे लक्ष्मण सिंह को नहीं जानते, BA LLB पास एक वकील, रूढ़ी विरोधी थे, सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के। अरे शुरुआती दिनों में बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था सुभद्रा को ससुराल में।
2: लक्ष्मण, मैं कहूँ इस घर की बहुओं ने क्या लाज शर्म बिल्कुल बेइज्जती?
3: क्या हुआ भैया?
2: मुझसे क्यों पूछता है? तुझे क्या दिखाई देना बंद हो गया है?
3: ऐसा क्या हो गया घर में जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा?
2: क्यों, सिर उघाड़े घूमती तेरी दुल्हन क्या तुझे दिखाई नहीं देती? बड़े छोटे का तो कोई लिहाज नहीं है।
3: क्षमा करें भैया, सिर ढकने का लिहाज से क्या संबंध है मुझे समझ में नहीं आता।
2: ओहो, शह इधर से है तभी तो, वरना बहू की भला इतनी हिम्मत कैसे होती कि हमारे सामने सिर उघाड़े घूमे।
3: भैया ये सब पुराने जमाने का चलन है।
2: बस बहुत हो गया, बहू के साथ साथ तुझे भी लगता है ना, बड़े छोटे का लिहाज सब कुछ बिसर गया है।
3: भैया
2: सुन, तेरी भाभी कहती थी बहू कुछ कविता ववीता भी लिखती है।
3: जी जी मैं,
2: ये सब लक्षण यहाँ नहीं चलेंगे, कह देना बहू से।
3: जी जी कह दूंगा।

0: आ गई महारानी साहिबा, क्या बताने की जरा कृपा करेंगी कि सवारी कहाँ गई थी?
1: जी वो
0: सब पता है हमें, अब रहने दो।
1: क्या पता है आपको?
0: देखो हमारा मुंह ना खुलवाओ, बताए देते हैं। हाँ
1: आप हमसे बड़ी हैं, जो उचित समझे हमसे कह सकती हैं।
0: तो आपकी इजाजत है हमें?
1: हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, फिर भी आप हमसे इतनी नाराज क्यों रहती हैं?
0: इज्जत? आप हमारी इज्जत किस तरह करती हैं भला? मुंह उघाड़ कर पराए मर्दों के सामने सभा बैठकों में जाती हैं और कहती हैं कि हमारी इज्जत करती हैं।
1: मौज और मजे के लिए नहीं जाती हूँ, देश के काम करने जाती हूँ।
0: घर के काम छोड़कर देश के काम के लिए जाती हैं महारानी साहिबा, है ना?
1: हा? देश को आजाद कराना है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम भी वही कर रहे हैं।
0: तुम्हारी करतूतों ने समाज में हमारा जीना हराम कर दिया है।
1: हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे परिवार की नाक कटे, और देश कार्य से हमें कृपा करके रोकने की कोशिश ना करें।
0: हाय हाय, हम तो भले घर की समझकर इसको ब्याह लाए थे, अरे हमें क्या पता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। हाय
2: हाय हाय, घर की बहू मुंह धाड़े सभा सभा करती फिरे, तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा।
3: तो का सुभद्रा सभा उबा करा था थी का?
2: अरे अम्मा जी, देश सेवा करने के कारण सुभद्रा ने घर परिवार में बहुत कुछ सहा। ताने तिशने कटु वचन व्यंग वालों की बौछार, सबका सामना वो शांत रहकर करती रही।
4: अरे वाह कक्का।
2: और दृढ़ता के साथ सही पथ पर बढ़ती रही। इन सब विरोधों का सामना करने में पति लक्ष्मण सिंह चौहान ने हमेशा सुभद्रा का साथ निभाया।
3: अच्छा?
2: हाँ, ये सन 1919 का वक्त था। पति पत्नी दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करने में जुटे थे, लेकिन तभी अमृतसर जलियांवाला बाग की उस बर्बरता को याद करने से खून खौलने लगता है आज भी।
5: दमन करके हमारे आंदोलन को दबा देने का अंग्रेजों का सपना चूर चूर हो जाएगा।
1: वहाँ हमारे भाई बहनों पर अत्याचार हुआ और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
5: मुझे तो सोच सोच कर ग्लानी होती है स्वयं पर, किस गलत समय पर मैंने एमए करने का फैसला लिया
1: और साथ में मुझे भी झोंक दिया इस पढ़ाई में।
5: दो ही साल में तुम मैट्रिक हो जाओगी, इस साल नौवीं और अगले साल मैट्रिक।
1: मैट्रिक ज्यादा जरूरी है कि आंदोलन?
5: दोनों।
1: इस समय ज्यादा जरूरी क्या है?
5: आंदोलन।
1: तो मैं आज से और इसी क्षण से नौवीं की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में पूरी तरह जुट जाऊंगी, बस।

0: मैं तो BA LLB पहले से ही, MA करके कौन सा तीर मार लूंगा।
1: तो क्या तुम भी पढ़ाई छोड़ने का मन बना रहे हो?
0: मन नहीं बना रहा हूँ, बल्कि निर्णय ले लिया है। आज से मेरी भी MA की पढ़ाई बंद और असहयोग आंदोलन में पूरे जोर शोर के साथ लग जाना है।
1: असहयोग आंदोलन तो चलेगा ही, पर क्या अपनी रोजी रोटी का भी सोचा है?
0: सोचा क्यों नहीं, वकील हैं, वकालत करेंगे।

0: कक्का, कहानी तो बहुत ही अच्छी चल रही है। मनो एक बात क्या बताओ कि लक्ष्मण सिंह चौहान की वकालत ठीक ठाक चलन लगी?
1: हाँ हाँ बेटा, पति पत्नी दोनों पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और जीवन यापन के लिए वकालत करने लगे, पर भगवान की कृपा से वो भी ठीक ठाक चलने लगी। और जानते हो, जलियांवाला बाग में बसंत और राखी की लाज जैसी ओजस्वी कविताओं को उसी दौर में लिखा था सुभद्रा ने। अरे कलम की ऐसी धनी कि उसका हर शब्द हर पंक्ति नौजवानों की नसों में आग भर दे।
0: हाँ कक्का, ये बात तो आपने बहुत ही सही कही।
1: हाँ बिल्कुल ठीक। ऐसे ही एक दिन,
2: सुनती हो?
3: जी अभी आई।
2: कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखना कौन है।
3: कौन है? अरे डाकिया था।
2: क्या लेकर आया था?
3: तुम्हारे लिए 100 रुपए का मनी ऑर्डर लेकर आया था, अंग्रेज बहादुर ने भेजा है और लिखा है कि आंदोलन में जाना बंद कर दोगे तो और भेजूंगा।
4: अरे तुम्हारे हाथ में तो लिफाफा है, किसने भेजा है बताओ तो जरा।
3: लिफाफा मेरे नाम का है, आपसे मतलब?
4: कोई मतलब नहीं हमसे, दफा हो जाओ यहाँ से और हमें केस पढ़ने दो, 2 दिन बाद सुनवाई है।
3: पूछोगे नहीं कि किसने भेजा है?
4: तुम्हें भेजा है, हमें क्या मतलब?
3: जलन हो रही है ना? अच्छा सुनो, कानपुर से आया है, दैनिक प्रताप से, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने भेजा है।
4: जोर से पढ़ो जरा, क्या लिखा है?
3: बहन, बड़े भाई का आशीर्वाद स्वीकार करो। औपचारिक बातें लिखने में समय गवाए बगैर संक्षेप में बस इतना लिख रहा हूँ कि तुम्हारी जैसी देशभक्त मेरी बहन का पति इस समय देशभक्ति छोड़कर वकालत में कैसे? तुम्हारा बड़ा भाई गणेश शंकर।
4: बहुत शर्म की बात है मेरे लिए, निजी स्वार्थ के कारण मैं देश सेवा को कैसे भूल गया।
3: अरे भैया को कानपुर से चिट्ठी लिखकर मुझे मेरे कर्तव्य की याद दिलानी पड़े, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है।
4: मैं 1 मिनट में आता हूँ।
3: कहाँ जा रहे हो?
4: बाहर वकील वाला बोर्ड हटाने।
3: आगे का विचार भी तो कर लो।
4: उसकी आवश्यकता नहीं है।
3: क्यों भला?
4: जबलपुर से बहुत दिनों से बुलावा आया हुआ है कि आकर कर्मवीर का साहित्य संपादक का पद संभाल लूं।
3: देर किस बात की है?
4: कोई देर नहीं है, बस आज ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, कल हम जबलपुर के लिए रवाना हो रहे हैं।

0: माखनलाल चतुर्वेदी करमवीर के प्रधान संपादक थे। करमवीर जो है देशभक्ति की खबरों और रचनाओं से भरा रहने वाला अखबार था। अरे सुभद्रा कुमारी चौहान चाहे कहीं भी रहें, खामोश बैठना उनके स्वभाव में था ही नहीं। और हाँ, वहाँ जबलपुर में तिलक राष्ट्रीय विद्यालय का कार्य करने लगी थी वो। महिलाओं में जागृति लाना, नव युवकों स्वयं सेवकों का संगठन करना जैसे कार्यों में पिल पड़ी थी। तो अम्मा जी, जब माखनलाल जी गिरफ्तार हुए तो उनकी मुंह बोली बहन सुभद्रा कांग्रेस का काम करने लगी। और जबलपुर शहर में सबसे पहले जो महिला गिरफ्तार हुई थी उसका नाम पता है आप लोगों को?
1: कौन थी भैया?
0: अरे सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो।
2: अच्छा।
0: ये बात अलग है कि बीमार हो जाने के कारण उन्हें जल्दी से रिहा कर देना पड़ा।
3: तुम काफी कमजोर हो गई हो।
2: जेल के पौष्टिक भोजन को ये कहकर बदनाम ना करो।
3: तो अब आगे क्या विचार है?
2: पहले ये बताओ कि बाहर का समाचार क्या है, उसके अनुसार विचार बनेगा।
3: समाचार सुनकर तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी।
2: क्यों, क्या अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है?
3: तुम भी ना, अब क्या कहूँ।
2: मुझे तो उसी समाचार से प्रसन्नता मिलेगी बस।
3: फिर भी सुन लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ने तुम्हें लोकल सरोजनी कहा है।
2: अरे कहां सरोजनी नायडू और कहां मैं।
3: अच्छा अब सुनो, अपने शहर में राष्ट्रीय नेताओं के आने का समाचार है, सरकार ने पहले ही निषेधाज्ञा लागू कर दी।
2: अच्छा किया, वरना समस्या होती कि क्या तोड़े।
3: परंतु दद्दा ने कहलवाया है कि सुभद्रा से कहो कि स्वयं को गिरफ्तारी से बचाए, वैसे भी तुम्हारे प्रसव का समय निकट ही है।
2: अरे आप उसकी चिंता ना करें, मैं अंग्रेज सरकार को हवा भी नहीं लगने दूंगी और अपना काम कर जाऊंगी।
4: कक्का फिर कब हो?
0: अंग्रेज सुभद्रा को गिरफ्तार ना कर पाए, झंडा सत्याग्रह के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। करमवीर जबलपुर की बजाय खंडवा से निकलने लगा और लक्ष्मण सिंह मजबूरन पुनः वकालत करने लगे। 1931-32 में पति पत्नी पुनः आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। उसी समय उन्हें एक बेटा भी प्राप्त हुआ। इधर रानी झांसी वाली कविता ने देश भर में धूम मचा रखी थी।

0: और हाँ भैया, 1932 में लक्ष्मण सिंह जेल में थे। अब कमाई का कोई सीधा जरिया शेष ना था, पर उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी की कविता वाली बहन को कुछ आर्थिक सहायता भिजवाई थी, और इसी समय सुभद्रा की भेंट गांधी जी से हुई और 1936 में चुनाव हुए। और पता है अम्मा जी, उस दूसरी महिला के नामांकन में त्रुटियां निकलने से वो नामांकन खारिज हो गया और सुभद्रा निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई।
1: अच्छा, मनोवे जीत गई का?
0: हाँ।

0: सन 1941 त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और एक बुरी खबर अम्मा जी, सुभद्रा के पेट में एक बच्चे के साथ ट्यूमर भी पल रहा था, काफी बीमार रहने लगी थी वो। 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, बीमारी के बावजूद सुभद्रा ने त्रिपुरा अधिवेशन में भाग लिया और लक्ष्मण सिंह सुभद्रा के सारे गहने बेचकर जमीन खरीदकर खेती करने लगे थे। पति पत्नी घर में राशन आदि भरकर जेल जाने की तैयारी में लगे थे और तभी जेल में एक दिन
1: क्या बात है संगी जी,
2: क्या तुमको पता है कि तुम्हारे पति भी जेल में है?
1: हाँ पता है।
2: शाबाश, बाप एक जेल में और माँ दूसरी जेल में, बच्चे घर पर अकेले, कैसी माँ हो तुम?
1: मेरे बच्चों की चिंता करने के लिए धन्यवाद। और कुछ?
2: अगर माफी मांग लो तो छूट जाओगी, बच्चों की ठीक से देखभाल कर पाओगी।
1: हमारे बच्चे हमारे ही जैसे हैं।
2: फिर भी
1: संगी भैया एक काम क्यों नहीं करते?
2: कौन सा काम?
1: हमारे बच्चों को अपने घर क्यों नहीं ले जाते? हमें भी फिक्र नहीं होगी, अपने बच्चे संगी मामा के यहाँ खुश रहेंगे और सुरक्षित भी।
2: साहब ठीक ही कहते हैं तुम लोगों के बारे में।
1: अच्छा, हम भी तो सुने भला कि क्या कहते हैं तुम्हारे साहब हम लोगों के बारे में।
2: साहब कहते हैं ये लोग पागल हैं, इनको मुंह लगाना बेकार ही है।
1: एकदम ठीक कहते हैं तुम्हारे साहब।
2: अच्छा अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे पति ने कहलवाया है कि घर में बच्चे अकेले हैं, इसलिए माफी मांग कर घर चली जाओ।
1: सच्ची? मेरे पति ने ऐसा कहलवाया है?
2: और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ?
1: तुम्हें भैया कहा है, इस बहन का एक संदेश अपने जीजा तक पहुँचा दोगे कि बच्चे उनके भी हैं, वे इसलिए चाहे तो माफी मांग कर रिहा हो सकते हैं और घर जा सकते हैं।
0: लक्ष्मण सिंह को माफी वाला पूरा किस्सा पता चला तो वो सुभद्रा के जवाब से भारी प्रसन्न हुए, लेकिन पेट में ट्यूमर बढ़ने के कारण सन 1943 में उन्हें रिहा कर दिया गया। परिवार की माली हालत और सुभद्रा का स्वास्थ्य दोनों बड़े खराब थे। बड़ी बेटी सुधा के विवाह की भी चिंता थी उनको, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के पुत्र और विख्यात लेखक अमृत राय ने वो चिंता भी दूर कर दी।
2: कक्का वो कैसे?
0: अरे बिना दहेज गाजे बाजे के साथ ब्याह ले गए सुधा को। हाँ। पैरोल पर छूट कर आए लक्ष्मण सिंह ने हाथ से कथे सूत की दो मालाएं आशीर्वाद स्वरूप बेटी दामाद को दी और वापस जेल चले गए, और फिर इसी बीच देश आजाद हुआ। और फिर आया 15 फरवरी 1948 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जिस दिन एक मोटर दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई।

0: आपकी वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 इयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी, कहते हैं ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा, भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी वो तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ,
0: आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की हम, बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आए, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया।
1: हाँ,
0: और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी।
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल की।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: नहीं, में कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था उस समय? आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। मना हमारा पेशवेकालीन वाड़ा था 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे, और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसा खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़े नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहाँ पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनसिपल स्कूल में आई थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, माना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। प्रिंसिपल स्कूल में तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी। मैं मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडीज स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में माना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ, है
1: खेल बिल पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
1: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम बिजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविताओं वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को। पहले से पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रगीत आप सुनाते थे?
1: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़ी करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था।
1: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 74 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपकी बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
2: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
1: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
2: हाँ, बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
2: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, वही गाती हूँ।

0: अच्छा, तो आप मराठी में गाते थे है ना,
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे।
1: हाँ,
0: तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना, इसीलिए
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था, और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी, गीत बनाते थे? अच्छा,
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता
0: और बोले हुए गीत गाते थे।
1: था। हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छे अच्छे आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक, उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे, केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी, पूरन
0: अच्छा,
1: पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं, रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी, उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: थे। 2 बरस तक की,
0: अच्छा,
1: पगार
0: और
1: 400 रुपए था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपये?
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना? क्योंकि आपके बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15 साल 17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी, सोना 140 रुपये है तोला। तोला
0: जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुणे छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का।
1: तो छोड़ के बम्बई में आई, उसके बाद हम नहीं कर सके क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बम्बई में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोकण चले गए।
1: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
0: अच्छा, तो फिर आप कोकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी।

0: इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोकण में कभी?
1: हाँ, बीच बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी और इनके बड़े भाई की दो बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आई और उसका एजुकेशन बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई, क्योंकि सास को दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई।
0: अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई
1: बचपन से,
0: ऑफ हो गई थी। अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां है और एक बेटी हो, तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत, सुनते रहो।

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम, आप बॉम्बे में, मतलब तीन बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
2: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उनको, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
1: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना, तो आप क्या क्या करते थे घर में?
2: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी। मना हमने कोर्स किया था
1: सिलाई का।
2: हाँ,
1: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
2: पुणे में ही किया था।
1: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
2: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
1: अच्छा, कभी आपने मोल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
2: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
1: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
2: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
1: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
2: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
1: तो पूरे आपका ग्रुप था?
2: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना भजन गीत सिखाते थे हमको।
1: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
2: सत्संग नहीं इतना किया हम।
1: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
2: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
1: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
2: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
1: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
2: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
1: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
2: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
1: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
2: 1-2 बरस तक गई।
1: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
2: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
1: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन, जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
2: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
1: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
2: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
1: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
2: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरीका विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
1: अच्छा, पर सारे मराठी में।
2: हाँ,
1: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
2: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
1: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
2: नहीं,
1: कभी कोशिश नहीं की?
2: नहीं, याद भी नहीं आए।
1: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां है, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
2: बाजू वाले एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
1: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
2: हाँ।
1: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
2: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
1: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
2: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
1: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए।
2: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है।

0: बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
1: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए, और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
0: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
1: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
0: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
1: नहीं, उसने नहीं किया।
0: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
1: शादी की उसकी, और अच्छी तरह रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे माने शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो। तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया, उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पूना से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
0: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
1: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
0: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
1: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते जी।
2: आपका शुभ नाम?
3: तेजश्री।
2: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
3: जी हम बड़े हैं।
2: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आपको किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
3: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेलीप्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
2: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
3: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा एक हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है, जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
2: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहनें हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
3: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
2: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
3: जी देखो, ये शादी एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी, और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से, मतलब शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है। तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
2: जी जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
3: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए, और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
2: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
3: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा, इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना, तो ये मेरी सदिच्छा है।
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
4: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी इसीलिए हम उसके साथ आए।
2: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए?
4: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
2: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
4: 2 साल हुए।
2: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
4: हाँ, आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
2: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
4: हिंदी भी हम ऐसे बोलते है ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मतलब द्वंद्व नहीं रखते।
2: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
4: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मन।
2: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
4: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं हो के भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है। हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
2: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना। कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में खड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो। खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

माँ इस शब्द में दुनिया समाई है, प्यार की मूरत कहाँ किसी ने माँ जैसी पाई है। माँ वो जिसके स्पर्श से सारे दुख मिट जाएं, माँ वो जो हमारी खुशी में हमसे भी खुश हो जाए। कितने लकी हैं माँ जो आसपास है, किसी की फरिश्ता बन साथ है, पर माँ हमेशा माँ है। माँ को ढेर सारा प्यार दें और याद करें तो मुस्कुरा के, ताकि माँ की स्माइल भी गुम ना हो पाए। रेडियो मधुबन करता है हर माँ को सलाम।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचे, कोई वंचित नहीं रहे। इस कार्यक्रम का माध्यम से अपना गांव और अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा एक मंच देती है। तो आज खुशी का बात है क्योंकि आप सबको विदित है पर्यावरण के तहत एक एपिसोड हम हर रविवार को चलाते हैं, जिसमें हमारा श्रीमान भोपाल राम पुरे जी जो कि आबरोड ब्लॉक से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूप से सेवानिवृत्त होने के पश्चात रेडियो मधुबन कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। हर जगह में जाकर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ न कुछ टिप्स जानकारियां अवेयरनेस देते हैं। तो आज खासकर हमारे आग्रह पर और वो अपना स्वेच्छा से एक विद्यालय जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदुल्ला में पहुंचे, बच्चों को कुछ टिप्स पढ़ाई का संदर्भ में चरित्र निर्माण के साथ साथ अपने जहां रहते हैं उस एरिया को सशक्त समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए पर्यावरण का कितना आवश्यकता है, वो भी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो उनको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। और आज हम मोदुल्ला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे, बच्चों का साथ रूबरू होंगे, पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण विषय बहुत मैंने मायने रखता है, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं जैसे हमारा गांव और हमारा अंचल पर्यावरण सशक्त होगा, सुंदर होगा और समृद्ध होगा, तो हमें जीवन जीने की और आगे बढ़ने की एक शिक्षा मिलेगी और हमें खुशी से रह पाएंगे। तो देर किस बात की, सर से हम सुनेंगे क्लास में कैसे बच्चों का साथ रूबरू हो रहे हैं। सर आपको स्वागत है।
1: पर्यावरण पर बात करेंगे और इसमें जो आपका जो ये टेक्स्ट बुक है प्रस्क्राइब, जो कि मेरे ख्याल से सर ये NCERT की तरफ से लिखी हुई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये बुक प्रस्क्राइब है। अपने यहाँ पर दो तरह का सिस्टम चलता है, एक तो NCERT अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलाती है और दूसरा चलाती है SCERT, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और वो लिखती है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। आपकी जो छोटी कक्षाओं की जितनी भी पुस्तकें होगी वो SCERT के द्वारा तय NEP के तय मानदंडों के अनुरूप वो लिखी जाएगी, वो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए है। अच्छा, ये जो लिखी गई है वो मेरे ख्याल से अप टू स्टार्ट फ्रॉम 6 होगी मेरे ख्याल से, जो भी है। तो ये सारी किताबें जो आपके पास में जो NEP 2020 के तहत बनी हुई है उस पर हम काम करेंगे। बच्चों एक प्रश्न पूछता हूं आपको, भैया सवाल का जवाब थोड़ा सा, ये जो पुस्तक पढ़ाई जा रही है, चलिए ये बताइए आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये बताइए बस, पढ़ने का क्या आपका क्या उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? आप सभी पढ़ रहे हैं ना, आप सब पढ़ रहे हैं ना, 12वीं क्लास में आए तो पढ़ क्यों रहे हैं भाई आप, और हम पढ़ रहे हैं ना, हम यहां पर आए, हम क्यों आए हैं यहां पर, हम क्यों आए, अरे सिखाने तो आए हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं? आपने देखिए आप पहली कक्षा पास की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, और करते करते पढ़ रहे हैं क्यों पढ़े? आप 10वीं क्लास में क्यों नहीं छोड़ा, 11वीं में क्यों पढ़े, क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये तो बताओ बेटा, अपने अंदर जो भी है उसको बोलो भाई, आपको बोलना तो पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा, इसका मतलब तो हम क्यों, हम यहाँ पर आए हैं, क्यों आए, बस आ गए, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसका कोई भी सवाल का कोई एक आध जवाब तो होगा ना। आप हिंदी नहीं बोल पाते, अपनी बोली में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लूंगा, मुझे सब ठीक है ना, मुझे चीज समझाने से मतलब है, समझ हमारे अंदर कितनी है वो अपने अंदर होना चाहिए भाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं, बोलो 12वीं क्लास से सवाल का जवाब तो आना चाहिए। मैं तो सर से बात कर रहा था कि पहली क्लास का बच्चा भी हमसे बात करेगा, अब 12वीं वाला नहीं बोलेगा और मैं ही बोलता रहूंगा तो इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। बोलिए भाई अपन पढ़ क्यों रहे, बोलिए
2: कुछ आगे जाकर अच्छा कर सके, इसलिए
1: अच्छा करना है। क्या अच्छा करना है, आपने अब तक अच्छा ही किया है, घर पे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा खाना खाया है, ठीक है ना, तो अच्छा ही तो कर रहे हैं। तो आगे जाके क्या अच्छा करेंगे, बैठो। और कोई बेटा बात यह है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं, हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमारा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सब तरफ से विकास हो। सब तरफ से विकास का मतलब क्या, बोलना चाहे तो हाथ ऊपर करना तो पता चले। सब तरफ से विकास का मतलब क्या, सर आप भी बता सकते हैं, जो भी अगर कोई बात ऐसी है तो आप भी बोलिए, अपन सभी मिलके करें। सब तरफ से विकास हो अपना, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास, चहुंओर विकास। तो ये सर्वांगीण विकास को कैसे समझे बताइए, यानी हम सब तरफ से आगे बढ़ करके जीवन में अपने आप को ठीक रखते हुए औरों के लिए भी उपयोगी बने, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। परीक्षा दे करके पास होने का मतलब क्या है, उसको समझा सकते हैं,
2: आपको आगे बढ़ाओ,
1: आप आगे बढ़ाओ। हाँ भाई, परीक्षा दे के पास हुए क्या मतलब रहा उसका, एक बच्चा है 100 में से 100 अंक ला रहा है, एक बच्चा है 100 में से 40 ला रहा है, एक बच्चा 100 में से 50 ला रहा है, क्या मतलब हुआ। देखिए समझ के लेवल की बात हो रही है, तुम समझ के लेवल की बात करोगे तो टेक्स्ट की बात आती है, और अब तक अपन समझे ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ना कितना ठीक है अपने लिए। सर यही चीज सर मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, मेरे ये मूल मेरे अंदर भावना रही कि उस चीज को व्यक्ति समझे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये बात तो समझ में आनी चाहिए,
0: लेकिन बोल नहीं पाते सर।
1: सर तो बोलना तो
0: बोलना पड़ेगा, लेकिन सबका उत्तर है सबके पास
1: नहीं, तो सर ये बोले तो बताएं,
0: झिझक दूर करके
1: सर इनको बात बता भी दी कि क्यों क्या है ये। भाई किसी बच्चे ने अच्छे अंक प्राप्त किए इसका मतलब उसने समझा है तो उसको करना है, बात ये है। अपन कई बार क्या करते, पढ़ लिया, रट लिया, बोल दिया, 100 में से 100 नंबर आ गए, भैया वो पर्याप्त नहीं है, समझ करके लागू करना ये पर्याप्त है। जैसे आप प्रकृति के बीच में रहते हैं, कहते हैं ना आपके चारों तरफ ये जो बना हुआ जो वातावरण है वो आपको प्रभावित करता है, यहाँ की वायु है, यहाँ की पानी है, यहाँ की स्थितियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं से। तो आप लोगों ने क्या करा कि ये जो कम हो रहे हैं तो और पौधे लगा दिए, ये चीज सीखनी है अपने। भाई ये आप पौधे लगाते नहीं लगाते तो क्या हो जाते, ये तो आपने लगाए तो हो गया ना, और लगाया तो कितना सुंदर लग रहा है, ये पेड़ पौधे आपने लगाए तो सुंदरता बढ़ गई नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब हम जीवन में क्या पढ़ करके पास होना ये तो अलग बात है भाई, ये तो एक पैरामीटर है, आप समझ रहे हो, नंबर लाना तो एक सिस्टम है, एक पैरामीटर है। आपको क्या करना है जीवन में, ये पौधे हम हमारे यहाँ स्कूल में लगाए हैं ना, तो हम कहाँ और लगाए, अपने घर पर भी लगाए, अपने गांव में लगाए, अपनी कम्युनिटी में लगाए, भाई तब जाकर के इससे होने वाली सुंदरता अपने घर पर भी दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी। तो ये काम कौन करेगा, कौन, हम कौन, मेरे घर पर मैं स्वयं करूंगा, आपके घर पर आप स्वयं करोगे, आपके घर पर आप स्वयं करोगे तो सबको फायदा होगा, आपको भी होगा, सबको होगा तो किसको होगा, आपको भी होगा ना। तो ये काम तो आपको मिल बैठ के करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम इस शिक्षा की जो उद्देश्य है वो पूरा कर पाएंगे। पास हो गए और नौकरी लगी, ये इसका सही उद्देश्य तो नहीं है, ये कोई बीच का एक रास्ता है जिसको निकालने वाली बात है। भाई जो पढ़ करके अच्छे नंबर लेकर के नौकरी लग जाता है उसके अलावा दूसरे लोग क्या भूखे ही बैठे रहते हैं फिर, पर उनके जीवन में अगर शिक्षा है, पर्यावरण है, तो वो निश्चित रूप से अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप अच्छे साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं ना, आप गंदे कपड़े पहनते हो, तो जब गंदा होता है तब कौन धोता है उसको, आप धोते हो ना, ठीक है ना, तो उसकी सफाई आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आप भोजन करते हो फिर अच्छा भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा पोषण देगा, वो काम कौन करेगा। तो आप सब खुद के लिए ये जब काम करेंगे पर्यावरण से जो संबंधित है, जो हमारे इस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो अब आप ये बताइए कि पर्यावरण किसे कहेंगे, उत्तर दे सकते हो, पर्यावरण किसको कहेंगे। इनको प्रश्न पूछा है मैंने इतनी देर बोलने के बाद में कि भाई पर्यावरण किसे कहते हैं, उसका उत्तर ये देवे। अरे आपको जैसा आता है वैसा बोलो ताकि मुझे उसमें से कुछ निकालने का मौका, तो और बोलो
2: बोलो बोलो बोलो
3: हाँ, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ। अब चारों ओर से अपन क्या क्या ढका हुआ दिख रहे हैं, पेड़, पानी, जमीन, ये सारा पर्यावरण में शामिल है।
1: भाई आप और हम सभी यहां पर किस चीज से प्रभावित होते हैं, बाहरी ओर से, बाहर से, बाहर से, बाहर से किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, जो अपने शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्या चीज है ऐसी चारों तरफ,
3: दिन हो या रात, उससे प्रभावित हो रहे हैं।
1: किससे प्रभावित होते हो, किससे प्रभावित होते हो, पर्यावरण में क्या क्या आएगा, यही तो पूछना चाह रहा हूँ, यही तो निकालना चाह रहा हूँ, किस किस से प्रभावित हो रहे हैं, पर्यावरण में क्या क्या आ रहा है।
4: जल,
1: जल आता है, बिल्कुल,
4: पौधे, भूमि।
1: बोल बोल बोल, तू बोल यार भाई।
4: पेड़ पौधे,
1: पेड़ पौधे, और
4: जल,
1: जल,
4: भूमि,
1: भूमि आ गई,
4: पहाड़,
1: पहाड़ आ गए,
4: हवा।
1: बेटा अब समझ में आया, समझ में आया ना, ये सारी चीजें मिल करके हमको प्रभावित करती है। और कहां तक प्रभावित करती है, हमारे जीवन, उसके विकास और उसकी मृत्यु, किसी भी जीव का। देखिए ये तुम्हारे ऊपर ही प्रभाव नहीं डालती, मैंने एक बात कही, हर एक पर डालती है, किसी जंतु पर भी तो प्रभाव डालती है, कुत्ते पर प्रभाव डालती है, बिल्ली पर प्रभाव डालती है, शेर पर प्रभाव पड़ता है इसका, प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है ना। तो इन सब पर इसका चारों तरफ से जो प्रभाव पड़ता है वो क्या करता है, उसके जीवन को सुनिश्चित करता है, लाइवलीनेस, उसके विकास को सुनिश्चित करता है। आप अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या होगा,
3: बीमार हो जाए,
1: क्या क्या बीमारी होगी, बोलो ना बेटा,
3: बोलो,
1: अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या क्या होगा,
3: पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती है, पेट खराब हो जाएगा, मेन तो पेट ही है, सब रोगों की जड़ है वो अपना पेट ही है, और गंदा पानी पिएंगे तो सीधा,
1: बोलो कौन कौन सी बीमारियां होती है,
3: पूरी बोल,
1: अरे बोलो ना तुम, इधर उधर बोल जाओगे तो हम उसको ठीक कर लेंगे, बैठे कितने लोग,
3: सब अपने ही है यहाँ पे, आपको डरने की बात नहीं है।
1: बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से तुम्हारे इधर ये आ जाना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं।
3: हाँ।
1: नौकरी मैंने कर ली, ये कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब नहीं है, आपने तो बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ पर बस सब छोड़ दिया, यही कर रहे हैं, तो करना ये है, ये पर्यावरण बनाते, ये पर्यावरण बनाते, नौकरी लगना ही शिक्षा नहीं है। मैं रिटायर हो गया, पूछो, इन्होंने रिटायर कर दिया सरकार ने, कहा जाओ कर जाए, सो जाओ जाकर, वो शिक्षा है क्या, शिक्षा वो है जो कुछ करने के लिए प्रेरित करे। मैं आज ये समझा रहे निकला हूं कि आप उस चीज को समझ लो कि आप पढ़ क्यों रहे,
3: सही,
1: आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ कैसे रहे, आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को कैसे चलाए। नौकरी अहम नहीं है, अपने यहां पर जो नौकरी में नहीं लगे वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो भी कमा के खा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना, तो फिर भाई पैसा कमाना ही सारी चीजें थोड़ी होता है। आप इस बात को समझ लो कि नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं है भाई, ये नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा, वो नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा, आप तो नौकरी भी नहीं करते, मैं रिटायर हो गया, आप तो नौकरी भी नहीं करते।
0: शिक्षा का मूल उद्देश्य
1: ये बात करनी है, बात ये करनी है, आज हम आए हैं इसलिए, ये बड़ी क्लास लेने का मतलब ये है कि शिक्षा की मूल बात आप तब तक पहुंचाओ कि शिक्षा सौपड़ी वासवा हुदिस नहीं है, लोकल में बताना चाह रहा, आप हमारा सम्मान करते, क्यों करते, क्योंकि मैंने कभी किताबें पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं की। इनको पूछो, जब भी इनको पूछो कि जब मैं कक्षा लेता था ना भैया, मैं अगर क्लास में घुस गया सर
0: जी,
1: तो पूरे दिन क्लास चलेगी नॉन स्टॉप, ये मतलब क्लास में घुस गए, हमारे डाइट में सर लोग इतने डरते थे कि ये सर अंदर आने ही नहीं चाहिए।
3: लगभग 1993-94 की बात है जब मैं 11th में पढ़ता था, और सर की वजह से मैंने ज्योग्राफी ली थी, क्योंकि सर उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे और वहां पे लेक्चरर थे, और इनका पढ़ाना बहुत ही अलग ही तरीके का था, और उसी की बदौलत हम आज यहाँ तक खड़े हैं, और मैं वही उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे।
1: बेटा मैं बात आपसे ये कह रहा हूँ कि सर मैं पीजी की क्लास लिया करता था रीजनल कॉलेज अजमेर में, उस मेयो कॉलेज में और रीजनल कॉलेज में, वहां राजे महाराजाओं के लड़के ही पढ़ते थे, वहां क्लास लेने के लिए मुझे सर पीजी से बुलाते थे, मैं अच्छा मेहनत करता था इसलिए।
2: देखो वहां जब जाता ना, इतने गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी आपको थोड़ा मिलने के पहले थोड़ा सा रेफर किए।
1: नहीं सर, अब उसे पटानी पड़ेगी, मेहनत तो हम नहीं करें। अब उस तक तो मैं जाएंगे,
2: आग बंद कर नहीं किए सब चीज रहने, क्या हमको पढ़ना है, मैंने हमारा लक्ष्य क्या है, कितना दे और देने में उसको कितना ग्रहण करने की कैपेसिटी कितना देखना होता है। बड़े बच्चे के लिए तो कॉलेज का अलग है, लेकिन यहाँ के लिए जो स्टैंडर्ड में जिसे पुरेश जी अपना बात को रख रहे,
1: करना ही पड़ेगी सर।
2: नो सर,
1: सर तो वहां जब सर मतलब डिवोटेड, आप इन्हें समझे मेरी बात को, समर्पित हो जाओ, मेरी बात को समझ रहे हो, मतलब यहाँ हाँ कहना नहीं ताकि मैं आगे बढ़ूं। समर्पण ऐसा होना चाहिए भाई, वहां पीजी की सर क्लास में घुसे तो 3 से 4 पीरियड एक साथ चलेंगे, घुसे तो चलते रहो बस बस। ये तो इसलिए हमको चाहिए कि लिमिट में बंधने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है, इनको
2: एक रेफरेंस,
1: इनकी इनकी आवश्यकता नहीं, ये इसलिए कि मैं तुम्हारे तक सीमित रहूं, आप समझ रहे हो ना। तो चल पड़े तो चल पड़े सर, ये डाइट की क्लास में घुसे तो अब घुसे तो वो बच्चे समझेंगे कि अब बाहर जाने का काम नहीं, वो जाएंगे ही नहीं, वो बाहर कैसे जाएंगे, उनको मैटर ही ऐसा मिल रहा है। पर पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, तो हमको भी उस बात को छोड़ो, पूरी तैयारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना क्यों है, वो इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद भी हम काम में लगे, वो इसलिए पढ़ना है भाई। कमाना तो एक जरिया हो सकता है
2: जी,
1: खाना तो एक जरिया हो सकता है, 2 टाइम का भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा, अपने खेत में खेती करेंगे तो भी मिल जाएगा ना, मकान तो बना हुआ है, खेती करेंगे खाना मिल जाएगा, नरेगा में जाएंगे भोजन मिल जाएगा, लेकिन करना क्या है। तो भैया हम क्यों पढ़ रहे, ये बात समझ में आई बेटा, तू बोल यार, बोले जो अपने जैसे भी बोलना बोल दे बस,
2: अपना नाम बोल,
1: हम क्यों पढ़ रहे।
2: हमारा क्लास,
5: मेरा नाम कालूराम है, मैं कक्षा 12th में पढ़ता हूँ
1: जी जी,
5: स्कूल सेकेंडरी स्कूल मुदल्ला।
1: हाँ, अब पढ़ क्यों रहे हो ये बोलो,
5: ताकि हमारा विकास हो सके, और
1: विकास इसलिए होगा कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ कैसे रहोगे, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, स्वस्थ कैसे रहोगे बेटा, बोलो बेटा बोलो भाई, स्वस्थ कैसे रहोगे, सोने वाला कभी स्वस्थ नहीं होता बेटा, गजब यार, तो फिर बोलो स्वस्थ कैसे रहोगे, बोलो बेटा बोल बोल।
5: स्वस्थ हमारे शरीर को अच्छा रखेंगे और खाना पीना अच्छा होगा,
1: खाना पीना शुद्ध होना चाहिए,
5: शुद्ध होना चाहिए,
1: ठीक है ना। शुद्ध कैसा, पानी छना हुआ होना चाहिए, ठीक है, अच्छी जगह का होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, तो हम बीमार नहीं होंगे, कई तरह की बीमारियां नहीं होगी, हमको मोती जरा नहीं होगा, पेट संबंधी बीमारियां नहीं होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे फिर भोजन कैसा करेंगे, कैसा स्वस्थ, जो देसी गोबर से बना हुआ पका हुआ अनाज का जो भी भोजन होगा वो सबसे अच्छा होगा, ये केमिकल प्रयोग करके पैदा हुआ भोजन अच्छा हमारे लिए नहीं हो सकता। भाई साहब से पूछिए कि किस किस तरह के केमिकल सर उस भोजन में आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं सर बताना इनको, हल्का सा हल्का हल्का,
2: जो कुछ भोजन हम लेते हैं ना भोजन करते हैं बच्चे।
1: सर ये दीजिए,
2: सभी तो भोजन करते, भोजन बिना हम कैसे चल पाएंगे, भोजन तो जरूरी है, लेकिन भोजन जो हम ले रहे हमारा शुद्ध भोजन होना चाहिए, शुद्ध भोजन माने प्योर, और जो भी ले रहे हम जानते कितना प्योर है, प्योर माने शुद्धता, उसमें नहीं मिलावट किसी ना किसी रूप में आते हैं। सब्जी में देखते हैं तो कितना चकाचक दिखाई देता है, लेकिन उसका पहले इंजेक्शन उसी कलर का कटेंगे तो लाल, और जब खाएंगे पेट गड़बड़ होता है कि नहीं।
1: सर क्या बता रहे बताओ मैं,
2: तो पानी से भी
1: जो लौकी है ना उसमें इंजेक्शन लगता है, लौकी फट से बढ़ जाती है दूधी दूधी तुम्हारी, तो वो जो इंजेक्शन वाली दूधी तो नुकसान करेगी ना, और अब देसी वाली
2: आपका स्कूल में हम लोग देखे लौकी का दूधी का लगा हुआ है,
1: बिल्कुल,
2: और पूरा रासायनिक कुछ भी नहीं है उसमें, पूरा जैविक और शुद्ध, मैंने विचार सकता आपका विचार जो है ना, हमारा स्कूल में हमारा विद्यालय में एक किचन गार्डन हो और हम उसको उगाए, हम बहुत सारा पौधा देखे हैं, क्या क्या देखे सर,
1: जो आपका जो किचन गार्डन मैंने देखा ना यहाँ पर, आपकी जो मैं ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में था उसमें बहुत विकास हुए, हमारा मतलब ही विकास है बस, क्योंकि हम उसमें उस पॉजिटिव दिशा में काम करते हैं। किचन गार्डन सर प्रत्येक हॉस्टल में बनाया गया,
2: क्या बात,
1: प्रत्येक हॉस्टल है ना आपके आदिवासी हॉस्टल जितने भी
2: छात्रावास,
1: सभी में बनाए छात्रावासों में, और सभी में वहीं पर उगाई हुई सब्जी काम में ली जाने लगी। आपने भी बनाया ये छोटा सा, ठीक है ना। पर वो सर हॉस्टल की सब्जी उस हॉस्टल में काम में आ जाती थी। तो सभी अपने अपने घर पर भी ये कर सकते हैं। अब ये कोई बड़ा काम नहीं है, 10 टमाटर के पौधे लगा दिए, टमाटी बैंगन लगा दिए,
2: मिर्ची लगा दी,
1: सेम फली लगा दी, मिर्ची लगा दी, और क्या चाहिए,
2: पपीता लगा दो, हमेशा चलता
1: लगा दो। ये अपने हाथ से अपन बना करके उसको उगा करके खा सकते हैं।
2: सर उसके साथ जिस राजस्थानी को आपके पास बाजार जाना जरूरत नहीं है, गाय गोबर तो मिलता है, भैंस का गोबर रहता है ना, तो उसको डालिए, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कुछ भी नहीं, आपका मन में सोचना है, अच्छा सोच उस पौधा को दो, अच्छा बन जाए, अच्छा बहुत इतना फल है जो हमारा परिवार खाने का अड़ोसी पड़ोसी को दे और स्कूल में लेकर जाएंगे, पक्का होने के बाद सभी मेरा बर्थडे में खिलाएंगे, ऐसे सोचो। वो पौधा को पेड़ को उनको संकल्प दो, तो पेड़ के साथ बढ़कर ऐसे बात करो मन से, देखो पौधा कितना आगे बढ़ेगा प्रैक्टिकल और देखना होगा। तो चलिए हमारा तपोवन में सब कोई रासायनिक नहीं है, जैविक खेती के साथ योगी खेती करते हैं। लेकिन जानेंगे अल्प विराम के बाद, स्कूल का जो गार्डन और सभी हॉस्टल का जो गार्डन लगाए अपना खुद के लिए, बोले कम जमीन में लगाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसका बाद फिर बड़ा एकड़ में बड़ा जगह में लेकर बना सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये आपका फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा, इसका साथ साथ पर्यावरण को भी अति
1: बिल्कुल फायदा होगा,
2: फायदा करेंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, है ना सर, इसका बाद फिर सर से सुनेंगे
1: नेक्स्ट
2: अल्प विराम के बाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बेटा देखो, अब तक अपन ने बात की, आपने कहा है कि किचन गार्डन में लगे हुए सर जो सब्जी फल अपने यहाँ पर जो लगा हुआ उसी की बात कर रहे हैं। बेटा आप लोगों के यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है, देखिए यही पर्यावरण, पर्यावरण को यूं समझना पड़ेगा कि सरकार ने लागू क्यों किया है सर। इसके प्रीफेस में लिखा हुआ है, मैं बताऊं आपको, यहाँ इस प्रीफेस को देखने वाली बात सर, एक्चुअल में ये जो पढ़ाई होती है ना सर, इसमें हमारे ये लोग प्रीफेस को नहीं देखते, अंदर घुस जाते। जैसे मैंने जो अभी बात की वो बेसिक बात की है कि शिक्षा क्यों है, पढ़ना क्यों है, पर्यावरण क्यों है, अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा की है ना, तो वो इसलिए कि अपन आगे बढ़े, खुद स्वस्थ होकर के अच्छा खा करके, रसायन से रहित, जो रसायन के बिना, अगर भाई आप अगर केमिकल वाला यूरिया है वगैरह है इसका उपयोग ना करके आप गाय का, भैंस का, अपना जो गोबर है ना, बकरी का।

0: और 2005 सर ये बता रहा है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए।
1: क्या बात,
0: हम इस पर काम करते थे सर, हमने नेशनल पॉलिसी पे काम किया है, किताबें तो खूब बाद में लिखी जाती है, ये कि स्कूली जीवन से बाहर, और अपन तो स्कूल में किताब पढ़ रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। आप बाहर देखें, बाहर जाकर कि ये प्रकृति हमको क्या सिखा रही है, ये पर्यावरण बाहरी हमको क्या सिखा रहा है, ये हमको कैसे बीमार कर रहा है, ये देखें। सिखाने का मतलब हमको कहां से बीमार कर रहा है और हम क्या उल्टा पुल्टा खा करके बीमार हो रहे हैं। एक बात और मैं कहूं इसके साथ ही कह दूं, बाहर से जो बच्चे कुरकुरे खाते हैं ना, हो सकता है बनाया होगा किसी टाइम पास के लिए, कभी बहुत दूर जा रहे हैं भूख लगी तो वहां कुछ खा ले, नो डाउट हो जाना, लेकिन सामान्य तौर पर सुबह उठते ही कुरकुरे लाओ, दोपहर को कुरकुरे लाओ, शाम को कुरकुरे लाओ, तो ये तो शरीर को बिल्कुल बर्बाद कर देगा भाई। ये है शिक्षा कि हमको खाना क्या है, ये है शिक्षा कि हमको पानी कहाँ का पीना है। तुम कहीं भी जाकर के पानी पीने लगते है, उसमें कीड़े आते हैं ना, कहीं भी जाकर के लग गए पानी पीने, उसमें न मालूम कोई केमिकल डाला हुआ है उस कीड़े को मारने के लिए, डालते हैं ना लाल दवा वगैरह, उसमें न मालूम क्या डाला हुआ है, हम सही तरीके से हाथ नहीं धो रहे उस पानी को पी रहे उस मेरे हाथों से, तो बीमार नहीं होंगे तो कहां से क्या होगा। ये है शिक्षा, हम शुद्ध वायु ले रहे, इंडस्ट्रीज के पास में औद्योगिकरण से धुआं फैलता है, इतनी बीमारियां होती है सर को पता है, इतनी बीमारियां होती है, इलाज ही नहीं है उनका। तो आप बाहर निकले उसको देखें और स्वस्थ जीवन के लिए आप प्रयास करें, विचारों की शुद्धि करें। देखिए सर, 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी को मैं जानता हूं, उसमें था सर बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को केंद्रित करके शिक्षा दी जाती थी, मास्टर पढ़ाता था, वो भैया खत्म हो गया। 2005 की दो अलग पॉलिसी आई, बाहर ले जाने वाली हुई, और अब जो आई है 2020 एनईपी 2020 में कुछ लिखा होगा सर
1: जी,
0: देखिए इसमें साफ लिखा है सर, शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति। मैंने आपको ये बात साफ साफ कही है कि परीक्षा ही इसका आधार नहीं है, परीक्षा तो पास करने का एक पैरामीटर है, जैसे ये बच्चा तैयारी कर रहा है ना उसमें एक पैरामीटर होता है, इसकी पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, करीब प्रत्येक तैयारी में एक पैरामीटर होता है कि भाई कितने से तेज दौड़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एक पैरामीटर है। तो ये परीक्षा भी तो पैरामीटर है भैया, सर अपने यहाँ तो फेल करने का भी सिस्टम
1: नहीं है,
0: क्यों हटाया, ये शिक्षाविदों ने मिलकर इसलिए हटाया कि ये तो एक सिस्टम है, एक मात्र 100 में से 100 नंबर लाने वाले की ही नौकरी लगेगी, वो जरूरी नहीं है, इनको पूछो 100 में से 100 नंबर लाएगा वो, फिर वो दौड़ कैसे लगाएगा उतनी, तो सब तरफ से स्वस्थ होना है, तो सब तरफ से स्वस्थ होना है तो सब तरफ से सोचना है, शिक्षा का मतलब तो वो है, शिक्षा का मतलब पुस्तक पढ़ करके नंबर लाना तो नहीं है, वो याददाश्ती का एक पैरामीटर हो सकता है, वो तो एकमात्र एक बिंदु है जो बहुत ही छोटी सी बात है। तो ये इसका मतलब अब ये हुआ कि दैनिक समय सारिणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिसमें शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। वास्तव में हकीकत में तुमको क्या सीखना है वो सीखना है, ये समझ होनी चाहिए, ये है शिक्षा का
1: क्या बात
0: सर मूल उद्देश्य। और हकीकत क्या है, हम अनाज कैसे पैदा करें अपने खेत में, हम डीएपी और यूरिया का अगर प्रयोग कम करेंगे ना, आपको पता है नैनो यूरिया अभी आया है, एक छोटी बोतल आती है तुम्हारे सबके घर पे होगी, वो जो अपने जो वो जो बैग वाला यूरिया जो काम में लेता है उससे बड़ा काम करता है, छोटी सी बोतल आती, पता है आपको, नैनो यूरिया देखा है, अतरी कूपे आवे तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो उसका सारा काम कर लेता है। तो बदलते हुए समय में हमको उपयोग क्या करना है, उसकी जगह गाय भैंस का गोबर, बकरी का गोबर, बकरी का जो भी होती है ये खाद, वो अगर आप काम में लेते हैं तो वो आपको शुद्ध अनाज देगी। और सर आने वाले समय में अगर आप देखो तो आपके वहां आरोग्य वन में गया था मैं, वहां दवाई नहीं छिड़कते, ये तुम्हारे पंप लगा के छिड़कते हैं ना, वो दवाई नहीं छिड़कते, उससे तो बीमारियां आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जितना आवश्यक है उतना करना पड़ेगा, लेकिन जीवामृत वहां बनता है।

0: 10 पेड़ों के पत्ते होते हैं उनको बॉईल किया जाता है, उसमें आंवला मिलाया जाता है, उसना मिलाया जाता है, एलोवेरा, और उससे एलोवेरा यहाँ भी लगा हुआ आपके यहाँ, उसको मिलाते हैं उसमें और उसको फिर स्प्रे किया जाता है। कैसे? पानी के माध्यम से दे दिया जाता है, ऑटोमेटिक सब में वो सारी दवाई लग गई, कोई बीमारी नहीं होगी। वो खाद लग गया, वो दवाई लग गई, वो सारा उत्पादन बढ़िया से बढ़िया हो गया। हम बीमार होंगे कहां से? बीमार होते हैं लेकिन कम होंगे। आप अंदर से मजबूत है, अब कम बीमार होंगे। तो इसका जो मूल जो पर्यावरण का उद्देश्य वो ये है। अब आपको आपके कंटेंट वाली बात भी मैं कर देता हूं क्योंकि इसको हमने इससे जोड़ लिया है,
1: प्राकृतिक संसाधन।
0: हाँ, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इसमें से इस क्लास को। तो इसमें हमने क्या करा है, 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा और कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है, विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में इसमें आपके बताने वाली बात है, और समकालीन विश्व में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता का इनसे क्या मतलब, आपका जो मूल जो जनता है जो पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ हो रही है वो इसके बारे में क्या सोचती है और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो इन सम्मेलनों में सर तय होता है। ये है सर, इसके लिए 60 के दशक में ये पर्यावरण के बारे में समझ पैदा हुई जिस बारे में अभी आप और हम रूबरू हो रहे हैं आपकी क्लास में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सर, ये हुआ था सर रियो डी जनेरो में मेरे ख्याल से, राइट? इसमें लिखा हुआ नहीं है, विश्व राजनीतिक मुद्दों को शामिल कर दिया यहां पर। ये जो 1992 में ये जो हुआ था इसके अंदर पर्यावरण की चिंता की गई। वैसे बहुत लंबे समय से इस पर काम चल रहा है, वही वाली बात जो मैंने आपसे निवेदन किया है, वो क्या, किताब पढ़ते हैं, नंबर तो लाते हैं पर काम नहीं हो रहा है। आप समझ गए? आप ये बताओ, सरकार ने मुझे रिटायर कर दिया पर मेरी समझ ये है कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना? आप समझ गए बात को? भाई हमको क्या समझना है वो समझना है। आपने कहा कि आप आओ साहब पर्यावरण को समझाओ, तो मैं शायद ये समझाने में सफल रह रहा हूं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस कक्षा में पर्यावरण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। सरकार ने मुझे उम्र के हिसाब से रिटायर कर दिया कि भाई नहीं यार, 60 साल के बाद आदमी कमजोर पड़ जाता है यार वो, पर देख लो हमने तो पर्यावरण के साथ में आनंद लिया है तो पर्यावरण में मुझे स्वस्थ कर दिया दौड़ने के लिए, आज भी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना भैया?
1: उसका राज
0: होने वाला
1: आपका ये जो कर रहे इतना है, इसका राज क्या? सात्विक शुद्धता है ना, और परोपकार।
0: राज तो इसका यही है,
1: उनका विचार है ना, विचार होना चाहिए,
0: विचार एकदम शुद्ध होना चाहिए,
1: तब जाकर काम
0: निकलेगा। जैसे मुझे ये विचार है अभी कि मैं आपको वो चीज दो जो समझाना है वो समझा के जाऊं।
1: शरीर तो सबका है
0: मेरा,
1: लेकिन विचार
0: ये भैया खड़े हैं,
1: भावना उससे
0: ये भैया खड़े हैं। आपको बताऊं कि हमने जब यहाँ पर, मैं जिला शिक्षा अधिकारी था यहाँ पर, कहाँ तुम्हारे एरिए में, आबू रोड में, मैं तुम्हारे ट्राइबल में खूब काम किया, ऐसे ऐसे काम किए, लोग बजट कहते थे कि यार वो वहां बैठा उसके बजट दे दो, पूरे एरिए का बजट आता था, तो हमने बजट को ऐसा उपयोग किया कि उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। मैं जब यहाँ आता था तब ऐसा नहीं था ये, लेकिन अब इतना बढ़िया हो गया, पूछो इनके वहां निचलागढ़ में जाते लोग खुश होते। आज मैं आया हूँ, देखो भाई साहब ने बुलाया, मुझे आनंद आ रहा है कि चलो हमने जो बोया था ना वो बढ़िया अच्छा उग करके फल दे रहा है आप सबको, तो हमको अच्छा लगता है। तो हम स्वस्थ क्यों है? दूरगामी सोच के साथ में अपना विचार है, अपना संकल्प है, तो वो बढ़िया रखना। हम अच्छा करें तो अच्छा हो जाएगा, मैं समय का उपयोग अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा। ये बात तो तुमको समझ में आई कि मैं यहाँ पढ़ाने तो नहीं आया? नहीं, मैं ये पढ़ाई कहां से आई और क्यों आई इसके लिए आया हूं, ये मुझे पकड़ के क्यों लाए?
1: लेकिन क्या है जो अभी समझा रहे, फाउंडेशन है इसका, ऊपर में जितना मंजिल बना सकते हैं, जो अभी जो ज्ञान सुन रहे ना वो ज्ञान आपका बेस, इसका आधार से चरित्र निर्माण होगा। जो चरित्र निर्माण होगा कोई भी रोजगार का चिंता नहीं करना पड़ेगा आपको,
0: सभी आपके पास में चरित्र है किसी रोजगार की।
1: तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र निर्माण, विचार निर्माण, शुद्ध विचार, शुद्ध चरित्र।
0: आप बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? खाने की पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है, ये प्रकृति अपने खूब दे रही है। गड़बड़ कहाँ है कि हम गड़बड़ हो जाते हैं तो बीमारी में अपन खत्म हो जाते हैं, इधर उधर जाने में अपना काम पूरा हो गया। आप सही चलोगे, सही काम करोगे तो अपने आप ही सही बरसने लग जाएगा। अच्छे काम के लिए कहीं पर प्रतिरोध करना भी सीखो, करना पड़ता है। हम जब निकलते हैं, अरे यार आज तक तो नहीं हुआ, ये क्या कर लेंगे, भाई हम रिटायर भी हो गए अब तक तो तुमने, अरे हमने प्रयास हमारा कर देना चाहिए, आपको अपना प्रयास करना है, अपने आप प्रकृति दे देगा, नहीं देगा तो आप प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, हमको मिला है तो आपको भी मिलेगा ना, खाने की चिंता नहीं करनी है, भोजन मिल जाएगा। अरे देखो हम तो नौकरी से, ये तो नौकरी भी नहीं की है, नौकरी अच्छी जगह से छोड़ छाड़ के आ गए, भूखे बैठे हैं। अच्छा अपन तो, हम तो हमारे एरिया में घूम रहे, ये तो कहां घूम रहे, उड़ीसा से आए हैं और यहां घूम रहे। तो कहने का अर्थ इसका जो है कि आप अच्छा करोगे निश्चित रूप से आपको अच्छा मिल जाएगा। अब ये जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं इस पे जा रहे, देखिए यहां पर चिंता क्या हुई थी, पर्यावरण की चिंता क्यों है, ये देखो वहीं पर आ गए। क्यों चिंता है, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है, चरागाहों में चारे खत्म होने को है, मत्स्य भंडार घट रहा है, जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है, प्रदूषण बढ़ा है, खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो ये जब उन्होंने तब सोचा था, कब सोचा था, 1992 में सोचा है मुझे लगता है, अब तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया भाई, इसलिए अब हम खड़े हुए, मैं खुद खड़ा हुआ। भाई साहब आप किसका काम करेंगे, हम ईश्वरीय चिंतन करेंगे, अच्छी बात कहेंगे और पर्यावरण से ही देखेंगे सभी चीजों को, हमने आपसे यही वादा किया, मुझे कहीं ले जाओ वहीं से पर्यावरण शुरू होगा हमारा, बस पेड़ के पौधे जो पेड़ है उसकी जड़ों में पानी डालेंगे वो छाया देगा कि नहीं देगा, बस यही काम करना है,
1: देते चलो बस,
0: बस करते चलो, करते चलो,
1: देते जो भी हमारे पास,
0: देखिए सर इसमें संयुक्त राष्ट्र
1: का रिटर्न मिलेगा, अच्छा सोच कर देंगे ना तो रिटर्न अच्छा ही मिलेगा।
0: सर ये विकासशील देशों की सर 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, पानी नहीं है साफ,
1: इस गांव में भी पानी के लिए कितना गर्मी का टाइम है दिक्कत होता है ना, कितना दूर जाना पड़ता आप लोग जाते हैं ना, पानी कभी कोई नहीं आता, तो पानी कहाँ से आता आप घर के लिए, कहाँ से आता बहन तुम बता, देखिए तुम्हारे घर में नल लगा हुआ है, बताओ नहीं कहाँ से लाते पानी बताओ, कितना दूर जाना पड़ता सबको पता है ना, तो पानी का कमी है कि नहीं।
0: अब सर देखिए वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, ये देखो ये साइंटिफिक है, ओजोन कम क्यों हो रहा है पता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपने भी मोटरसाइकिल ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, तो वो जो निकलने वाला जो सल्फर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी, तो मैं तो साहब से निवेदन यही करता हूँ कि इन साधनों का कम से कम उपयोग करो, आधा किलोमीटर तक हम पैदल चले, उससे ज्यादा है तो साइकिल से चले, ज्यादा ही दूर है तो मोटरसाइकिल काम में ले ले कोई बात नहीं, सही बात है ना सर। अभी मैं वो टिकट लाया था मैं, सर मुझे कहीं से आना था दो दिन पहले, आपने बुलाया था, मैं कहीं बाहर गया था, मैंने सर ट्रेन पकड़ी, कोई कैसे जाएंगे, मैंने कहा यार अपन ट्रेन से जाएंगे, सर ट्रेन में कोई पॉल्यूशन नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोई पॉल्यूशन नहीं, आपका उसमें योगदान होता है, तो अच्छे काम के लिए आप ये करो ना भी, इसकी जगह ये ले लो, इसकी जगह ये ले लो, उसका अच्छा विकल्प चुनो ताकि उसका प्रदूषण नहीं हो। तो मेरे ख्याल से सर सार रूप में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने लिए जिए, मतलब पर्यावरण की शुद्धि के लिए अपना विकल्प तलाश, आप नाश्ता करने में कुरकुरे नहीं खाएं, क्या खाएं, घर पे हल्का सा नाश्ता बना के खा लें, घर की चीज का, हम कोई गलत चीज का उपयोग नहीं करें, अच्छी चीज का उपयोग, भाई विकल्प अपने को काम में लाना, भूख तो मिटानी है खा लो, कोई इधर उधर की कचरा पचरा खाने से अच्छा सा केला लेके खा लो, उसी कीमत में मिल जाएगा, आई समझ में, तो आप सब तरफ से स्वस्थ हो जाएंगे और फिर शांति से सुबह थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा बैठा करो, थोड़ा अपने लिए सोचा करो, थोड़ा परिवार के लिए सोचा करो, ठीक है ना, अपने को गुस्सा नहीं आना चाहिए, शांति से बच्चों को अपने छोटे बच्चों को प्यार से सिखाओ, ये सारी चीजें सिखाओगे तो अपने आप ही अपन मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्ताव, देखिए कितना भाग्य का बात है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदल्ला में और इतना बड़ा एक्सपर्ट जो कि हमारा पर्यावरण पूरा एक्सपर्ट है, बच्चों को अपना जो भाव है भावना है, बच्चे कैसे आत्मनिर्भर
0: है, क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं पाएगा,
1: अपना परिवेश को, अपना गांव को सशक्त बना सकते हैं, इस माध्यम से सुने हमारा श्रोता मित्र इसको फायदा लेंगे जरूर, और जो बच्चे सुन रहे इस कार्यक्रम को शाम को 7 से 8 बजे वो भी इस कार्यक्रम का माध्यम से जितना हो सके ना ज्यादा ना कम अपना आवश्यकता अनुसार ग्रहण करके उसको काम में लाएंगे तो जरूर सर का इतना मेहनत आपको देने के लिए जो आए जब उनको ड्यूटी था जो पोस्ट पे थे उनको पूरा बांधा हुआ था कहा नहीं जा सकते
0: तो काम ही नहीं कर पाता
1: नहीं करते लेकिन अभी रिटायरमेंट होने के बाद जहां भी जाए जहां जितना भी समय दे सकते ये कम बात नहीं और आपका भाग्य का बात है ऐसे बार बार आपको जो मिलेगा देखो केवल गाँव पूरा एजुकेटेड गांव हर घर छोड़ के एक एम्प्लॉय मिलेगा एजुकेटेड शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ ना कुछ पोस्ट लेकर रहते हैं क्यों वो मेहनत करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं और उनका शुद्धता विचार कुछ करने के लिए गांव के लिए तो आप क्यों नहीं आप भी तो कर सकते ना यस बोलो यस आई कैन जोर से बोलो यस
2: आई कैन
1: यस वेरी गुड मैं कर सकती हूँ बोलो क्या नाम है तुम्हारा हाँ तुम कर सकती
0: ये एक्चुअल में एक पर्यावरण को एविडेंस आ रहा है कि भाई वास्तव में ये लोग कम्युनिटी में जाकर के ये चीज आप लोग बोलेंगे तो पता चलेगा
1: देखो सभी से अपना करेंगे तो कुछ पाएंगे जो करेगा सो पाएगा जो नहीं करेगा जो सोएगा वो रोएगा हम रोएंगे नहीं खोएगा नहीं
0: रोएगा
1: हम पाएंगे यस क्या बोले जोर से बोलो यस आई कैन वेरी गुड मैं कर सकता हूँ बोलो जोर से मैं नहीं करूंगा कौन करेगा मैं ही किया था और मैं ही करूंगा बोलो मैं किया था मैं ही करूंगा वेरी गुड ताली बोलो
0: वेरी गुड
1: सर हमारा गणेश सर तू कौन भूल सकते भाई हम निचलागढ़ से परिचित है और गणेश सर रेडियो मधुबन और ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या जानते हैं और क्या सहयोग देते हैं
3: बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र भाई वैसे मेरी मनसा तो कुछ अलग ही है लेकिन हमारा विद्यालय जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास में आया हुआ है और उसको मैं मिनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ और लगातार प्रयासरत हूँ और आने वाले समय में शायद ये दृष्टि यहाँ पे विकसित हो जाएगी धन्यवाद
4: बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सर और हमारा साथी सहयोगी श्रीमान भोपाल राम पुरेत जी को सुंदर में आज बच्चों का साथ रूबरू होकर पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हमारा नैतिकता और चरित्र निर्माण में पर्यावरण कितना आवश्यकता वो विषय रखे हैं तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर खासकर पर्यावरण स्पेशल

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हम शांति, आज मदर्स डे है जिसे हम मई के दूसरे रविवार को हर साल मनाते हैं। तो सबसे पहले तो विश्व की सभी माओं को आज के दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मुबारक हैं। और ये दिन माँ का हमारे जीवन में क्या योगदान है उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम मनाते हैं। माँ ही हमें जीवन देती है, माँ के गर्भ में ही शिशु का सिंचन होता है, माँ ही हमारी प्रथम शिक्षक है, माँ ही हमारी प्रथम दोस्त होती है, माँ ही हमें संस्कार देती है अच्छे या बुरे। यानी माँ जैसा आचरण करती है वैसा ही बच्चा अपने जीवन में बनता जाता है। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और माँ हमारे लिए अपने सभी खुशियों का त्याग करती है, अपने सपनों का त्याग करती है। बच्चे के लिए वो रात रात भर जागती हैं, अगर वो बीमार है तो दिन रात वो उसकी सेवा में लगा देती है। फिर चाहे वो काम करती हो यानी ऑफिस जाती हो, चाहे वो गृहिणी हो, लेकिन वो कभी कोई बहाना नहीं देती। और इसलिए माँ का ऋण हम नहीं चुका सकते। माँ के लिए मैं कहूँगी कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। एक बार ऐसे ही एक बच्चा था तो माँ ने उसे कुछ काम कराए, उसे दूध मंगवाया, उसे कुछ सब्जी मंगवाई, उसने घर की चीज़ों को ठीक करने में माँ को मदद की, कुछ रसोई में मदद की। तो उसने उसको लिखा एक पेपर पर कि हर एक काम का इतना रुपया और कुल इतने रुपये, और माँ को दे दिया कि माँ आपने मेरे से काम कराया उसका इतना पेमेंट है। तो फिर माँ ने उसी के नीचे लिखा, तुमको 9 महीना गर्भ में रखा, नो चार्ज, तुम्हारी दिन रात सेवा करती हूँ, नो चार्ज, तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाती हूँ, नो चार्ज। तो माँ ने जब वो लिखा और फिर लिखा कुल, नो चार्ज, तो बच्चे ने उसको पढ़ा तो बच्चे को समझ में आ गया और फिर उसने नीचे लिखा इंडेप्टेड फॉर फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए माँ मैं आपका ऋणी हूँ। तो माँ का ऋण बच्चा कभी भी नहीं चुका सकता है और माँ हमेशा ही हमारे साथ खड़ी होती है, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम सुखी हैं, चाहे हम सही हैं या हम गलत हैं। मुश्किल वक्त में हम माँ को ही याद कर रहे होते हैं ना, माँ के सिवाय हमें और कोई याद नहीं आता है। तो आज का जो दिन है वो हम केवल फूलों को दे करके मदर्स डे ना मनाएं, है ना, फूलों का गुलदस्ता हम दे दें माँ को या कोई गिफ्ट हम दे दें, नहीं, इस तरह से मनाने का दिन नहीं है। लेकिन उनकी सेवाएं जो वो हमारे जीवन में हमें प्रदान करती रही हैं उसके लिए हम उनको स्नेह दें, सम्मान दें और सदा ही उनकी सेवा में तत्पर रहें। कई बार देखने में आता है कि जब माँ वृद्ध हो जाती है तो कई बच्चे माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या कोई तीर्थों पर आश्रम में छोड़ देते हैं। तो जो उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किए, अब जब उन्हें आवश्यकता है तो फिर हमें भी उनके लिए हाजिर रहना चाहिए। यही हम कहेंगे सच्चा मदर्स डे मनाना है। तो हम कभी भी उनको दुख ना दें, जैसे वो हमारे दुख दूर करने के लिए सदा तत्पर रही हैं। तो मैं कहूँगी कि कोई एक दिन की बात नहीं, पर हर दिन हमारा मदर्स डे होना चाहिए, हर दिन हम उनके प्रति अपना आभार माने। तो सभी को फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति।
2: My name is Lieutenant General दत्तात्रेय शिकटकर। मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं। माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम। एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात, अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है यहाँ का क्षेत्र है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

0: कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ख्याल के बारे में कुछ चर्चा की थी, आज हम ध्रुपद के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि ये भी ख्याल जैसे ही गीत का एक प्रकार है। इस शैली का जो गीत होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिकता होती है। ईश्वर के प्रति आस्था की प्रस्तुति में हम आसानी से भगवान को रिझा सकते हैं, मना सकते हैं। ऐसा ही है ना श्यामली जी?
1: हाँ जी।
0: पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं संगीत की दुनिया में, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। सब लिसनर को, जितने सारे हैं सबको नमस्कार करती हूँ।
0: जी जी श्यामली जी, हमने जो बताया कि ये जो ध्रुपद, ये भगवान के प्रति जो हमारी भावनाएं होती हैं उसको हम प्रस्तुत करने में ये हमको बहुत सहजता से मदद करती है। ऐसे
1: ये एक तरह की तरह जैसे हम आम दुनिया में क्या करते हैं, एक उपन्यास होते हैं और एक ऐसे होते हैं, स्टोरी होते हैं ऐसे ऐसे जैसे।
0: हाँ जी।
1: तो स्टोरी, हाँ स्टोरी जो होता है ये है ख्याल, जो ऐसे होता है निबंध जो होता है वही है ध्रुपद।
0: ओके।
1: थोड़ा गंभीरता है लेकिन इसमें जब ईश्वर के ऊपर जो स्तुति होते हैं तो उसमें कैसे करते हैं उसको हम शुरू करते हैं आलाप से, नोम तोम तेरी एरी ऐसे करते हैं।
0: अच्छा, आलाप ऐसे
1: पहले आलाप होता है, उसके बाद जो स्थाई अंतरा होता है इसको तुक भी कहते हैं। हाँ, ये जो पहले स्थाई है, चार तुक की भी ध्रुपद होता है, दो तुक की भी होता है, इसको तुक कहते हैं। उसके बाद वो जो संगीत होता है, बंदिश होता है, बंदिश के ऊपर बाट होते हैं, क्योंकि उसका पहले डबल छंद होता है, तीसरा छंद होता है, चौथा छंद, ऐसे ऐसे छंद होता है। जब करते हैं उसके बाद वो संगीत समाप्त हो जाते हैं। ये ख्याल में जो जब हम तान करते हैं उसके बाद ख्याल समाप्त होते हैं, लेकिन इसमें बाट होते हैं तो वो अलग भावना है, अलग सी शैली है, हम बाद में सिखाएंगे।
0: अच्छा।
1: आज आपने ध्रुपद के ऊपर बोल रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा जानकारी
0: सब बता दिया। जी जी जी।
1: तो फिर अभी आज हम क्या करेंगे, अंतरा करेंगे। अंतरा के साथ अगर समय होता है बंदिश भी दे देंगे।
0: ओके।
1: ठीक है
0: जी जी,
1: तो शुरू करते हैं।

0: वही मुकरा हम चार मात्रा से लेंगे, जैसे कि चार मात्रा से शुरू होता है, अंतर भी चार मात्रा से शुरू होता है। जब बंदिश करेंगे तब लिसनर को समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
1: अच्छा,
0: पहले स्वरलिपि देती हूँ, उसके बाद हम धुन में बैठाएंगे। अंतरा अगर लिख लेते हैं लिसनर, गा मा पा धा सा आ सा आ, ये जो सा है ऊपर की सार है। तो पहले हमने बताया चार मात्रा मुकरा है, ये गा मा पा धा जो है चार मात्रा की मुकरा है। गा मा पा धा सा आ नी ई धा पा करिमा आ गा आ मा आ गा री नी, ये जो नी है नीचे नी है मंद्र सर की, नी ई रे ए गा आ करिमा गा पा आ मा गा री ए सा आ करिमा आ पा आ करिमा आ पा नी धा पा मा गा, फिर गा मा पा धा गया। अगर इसमें धुन में बैठाएंगे तो और भी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब धुन में करती हूँ।
1: ओके।

0: ये जो हमने स्थाई और अंतरा दे दिया है, स्वरलिपि दे दिया, अभी अगर लिसनर कितना आसानी से कर पाएंगे, कैसे कि अगर इसमें आ करेंगे, आकार सहयोग से करेंगे ना, वो पहले वो कंठस्थ हो जाएंगे। जब हम बंदिश दे देंगे, क्योंकि इसमें जो एक ही लाइन इतना लंबा है 48 मात्रा की, जैसे हमने पहले द्रुत सिखाया था, मध्य लय के सिखाया था, वो तो 16 मात्रा की था। 16 मात्रा चार आवर्तन, तीन आवर्तन कभी भी होता है, दो आवर्तन है तो, लेकिन इसमें 48 मात्रा है। लिसनर को फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें आता है तो ये तो एक लाइन 48 मात्रा ही है। अगर इसमें पहले आकार करेंगे तो कंठस्थ हो जाएंगे,
1: माने आकार के साथ करेंगे तो बहुत, भले 48 मात्रा है फिर भी आप आसानी से
0: कंठस्थ हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, तब जब बंदिश उसको बैठाएंगे आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, बंदिश जो है बंदिश दे देती है।
1: अच्छा,
0: हम बाद में करेंगे। मेरा मन बाधली लोड़ी, मेरा मन बाधली लोड़े हारे इन जगिया के साथ। यह छोटा है लेकिन विलंबित है ना, इसमें लगते बहुत बड़ा है, लंबा है, लेकिन इसके जो बोल बंदिश है बहुत छोटे होते हैं।
1: अच्छा।
0: मेरा मन बाधली लोड़े हारे इन जगिया के साथ, अंतरा है सदा रंग कर्म करो क्यों ना इन प्राण नाथ के हाथ। सदा रंग कर्म करो क्यों ना इन प्राण नाथ के हाथ। ये जो अभी जो बंदिश में सदरंग जो ये जो शब्द आए गए, शायद बाद में सामने जनता के सामने ये जो सदरंग जो है, ये जो बहुत विख्यात एकदम बहुत फेमस शास्त्रीय संगीतकार है, इन्होंने सबके सामने लाए हैं।
1: अच्छा।
0: इसलिए इन्होंने जो
1: फाउंडर फादर का
0: रचनाकार जो है इसमें, इसलिए हर रचना में सदरंग ये
1: वो आएंगे शब्दों का प्रयोग,
0: शब्द प्रयोग होता है। ठीक है
1: जी, श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आनंद लेंगे हम सभी यमन राग से संबंधित एक सुंदर सा मीठा सा गीत का। पुनः हम लौटेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने बहुत एक सुंदर से गीत का आनंद लिया होगा और ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से सुना यमन राग के बारे में, स्वर लिपि दे दी और उसमें आकार के साथ अगर करने से बहुत सहजता होगी। हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, श्यामली जी? हाँ, जी
1: कठिन नहीं लगेगा। जितना कंठस्थ हो जाएंगे अंदर चले जाएंगे तो वो अपने आप से कर सकते
0: भले ये 48 मात्रा है फिर भी
1: थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो
0: हो जाएगा। जो संगीत सीखना सचमुच में चाहते हैं उनके लिए
1: तो
0: कोई
1: करना ही चाहिए,
0: इम्पॉसिबल ऐसे तो नहीं होगा।
1: तो अभी हम क्या करेंगे, हमने पहले ब्रेक के पहले जो बंदिश दिया था
0: जी,
1: मेरा मन बाध लीलोड़े हारे इन जोगिया के साथ, ये पहला जो स्थाई का है बोल है। और अंतर की जो बोल है, सदा रंग कड़ुम करो क्यों ना इन्हें प्राण नाथ के हाथ। ठीक है, तो हम देखिए कैसे हम बैठाते हैं, इतना लंबा चौड़ा स्वर लिपि है इसको कैसे बैठाते हैं।
0: जी जी,
1: तो लिसनर को तो याद होगा ना कि चार मात्रा मुकरा है
0: जी।
1: ठीक है, तो हम करते हैं नी पा नी धा नी रे सा, ये जो मुकरा है हम क्या करेंगे, मेरा आमन बा।
0: अच्छा, उसके साथ साथ आप बिठाई देंगे,
1: बैठाते हैं क्योंकि लिसनर को सीखना है ना,
0: समझ में आ जाएगा। हाँ, आसानी से
1: अगर बा के ऊपर सम आ गया उसके बाद चार चार मात्रा चलेंगे, अगर लिसनर ध्यान से सुनते हैं एकदम अगर लिख लेते हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे।
0: जी जी,

0: तो आपने देखा कि हम कैसे आसानी से स्थाई अंतरक जो बोल है इसमें बैठा दिया
1: जी।
0: अभी क्या ये जो मेरा मन वा मेरा मन हम आपको दिखाना चाहती हूँ थोड़ा से एक मिनट के अंदर कि इसको ख्याल कैसे किया है। जैसे हमने किया है

0: हमको चार मात्रा में मुकरा करना है।
1: अच्छा।
0: हम ख्याल से अपना इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जब हम रिपीट करेंगे एक आवर्तन हो जाएंगे, फिर हम रिपीट करेंगे, बाद में हम सिखाएंगे सरगम या तान वगैरह सिखाएंगे। हम मेरा मन जो है, मेरा आमन बा, फिर से हम नेक्स्ट आवर्तन में कर सकते हैं, मेरा मन बा। खाली वही स्वर लेना है, ऐसे नहीं है,
2: मतलब चेंज भी कर
0: सकते हैं। चेंज भी कर सकते हैं। हमने जो ये जो हमने किया है, ये स्वल्पी के साथ किया है, हम चेंज भी कर सकते हैं।
1: ओके, हाँ हाँ।

0: हम जैसे अपने इच्छानुसार करेंगे लेकिन ताल के सहित।
1: जी जी,
0: हम तो थोड़ा ताल भीन किया है, इसके ताल में हमने स्वरलिपि दे दिया क्योंकि लिसनर जो है पहले सीखते हैं। ये जो ख्याल इसको कहते हैं, अपनी इच्छानुसार हम कर सकते हैं
1: उसको ख्याल कहते हैं।

0: अरे हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको कहते हमने जवाब किया, इसको बिस्तर कह सकते हैं। बिस्तर में हम बाद में अब सिखाएंगे थोड़ा कैसे बिस्तर करना है, अभी इतना तक ही ठीक रहेगा कि
1: थोड़ा सा धीरे धीरे सिखाएंगे तो वो लोग, क्योंकि रेडियो से सुनकर सीख रहे हैं ना, ऐसे प्रत्यक्ष में कोई गुरुजी से शिक्षा लेना और रेडियो से डायरेक्ट लेना थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। श्यामली जी, आज आप जाते जाते हमको क्या सुनाना चाहेंगे?
0: आप हर दिन पूछते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है गीत गाने के।
1: जी जी, हमको तो इसका इंतजार रहता है।
0: एक बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत पुराना भी नहीं, ऐसी आंधी फिल्म का गीत है।
1: आंधी फिल्म, जी जी,
0: आंधी फिल्म में लता जी का एक गीत है, लता जी और उसमें किशोर कुमार जी भी है। इस मोर से जाते हैं, ये भी इमान रखी ऊपर आधारित है, हम कोशिश कर सकते हैं।
1: जी
0: है?
1: जी, okay।

0: वाह, आज मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई संगीत सीखे ना सीखे, आपसे हमको बहुत अच्छे अच्छे ओल्ड फिल्म के सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। सच में श्यामली जी, बहुत भले आप कोशिश शब्द का प्रयोग करते हैं, और होना भी चाहिए, नहीं होना भी चाहिए, मगर
1: जिन्होंने गाए वो मेरे गुरु माँ है
0: जी,
1: तो हमने कोशिश किया है। मेरे साथ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है ना
0: जी जी,
1: इसमें शायद कुछ इधर उधर होता है,
0: क्योंकि पुरानी फिल्म के गाने हमने सुने जरूर है, मगर इतने डीपली शब्दों के साथ में हमको आज याद नहीं है।
1: हाँ।
0: और आज वो पुरानी यादें ताजा कर देते हैं।
1: हाँ।
0: इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, जाते जाते आपने हमारा दिल खुश कर दिया, हमारे श्रोता मित्रों ने भी इस गीत का आनंद लिया होगा। समय देता है हमको यहाँ पे ही इजाजत, फिर मिलेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन जाते जाते आपको एक बात जरूर कहूंगी कि आप अगर संगीत के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, आपके कोई अलग से संगीत के संबंधित प्रश्न होंगे, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9494151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। मिलते हैं अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। रेडियो मधुमन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: राम राम भाई, राम राम।
1: अरे राम राम, राम राम भाई। कंचन आओ भाई आओ।
0: हाँ भाई रतन, काई रोंगटा खड़ा कर देने वाले गीत सुन रही आज तू।
1: अरे भाई कंचन, यो भी को राज है।
0: हाँ।
1: जो जरूर बताऊ मैं थाने।
0: हाँ।
1: पर आपा स्वागत करा हा अपना श्रोता बंधुओं रो गांव री बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो गावरी बात कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधु जुड़ गया है। और कंचन मैं अबे थाने बताऊं कि मैं यो गीत क्यों सुन रही हूँ।
0: वो गीत भी भई काई गीत है, पर चल तू बता।
1: देख मैं एक बेनु के कौन बात कर रही हूँ, जाने ही अपने रेडियो मधुबन री टीम तो गाँव गाँव में जाती।
0: गाँव गाँव में जावे। हाँ।
1: तो एक गाँव में कटी गया हा बटे वह बेन जी वहां टाबर का साथ में अकेली रह रही।
0: टाबर के साथ?
1: हाँ, हाँ। पति हूँ अलग, ससुराल वालों अलग।
0: ओ,
1: तो वहां ने पूछियो भाई कई व्यो कई नहीं व्यो, तो वे बता रहे हाँ वहां की 14 साल की उम्र में ब्याह हो गयो।
0: 14 साल की उम्र में पढ़ना दी।
1: हाँ, और घर वालों हो 17 साल को।
0: ओ हो हो।
1: तो दो ही टाबर
0: जब तो समझ भी नहीं हो है।
1: समझ ही नहीं हो। 17 साल का छोरा ने कई ठा पड़े और 14 साल की छोरी ने कई ठा पड़े।
0: सही बात
1: भाई, बचपन रा दिन है, खावा खेलवा का और पढ़वा की उम्र है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अनी उम्र में गृहस्थी को बोझ दे दो तो वो तो संभालता संभालता वो कहे परिपक्व उम्र में जदी अक्कल आवे।
0: जदी अक्कल आवे, अनुभव ही तो सिखावा।
1: हाँ, अनुभव सिखावे। अबे माँ बाप तो अच्छी शिक्षा ही देवे पर एक उम्र भी गणो मायनो रखे।
0: सही बात है ना। तो टाबर शारीरिक रूप से पूरा विकसित हुआ है और ना ही मानसिक रूप से।
1: बिल्कुल। तो कंचन वे बता रहे हाँ कि 14 साल की उम्र में परणन आया। सासू ससरा थोड़ा समझदार होना चाहिए वही टाइम पर वे कहिए कि बस घर को काम को बहुत सब बाका ऊपर सौंप दी दो।
0: ओहो,
1: यो भी करनो वो भी करनो, सुबह भेगो उठनो रात मोड़ो सुनो, दिन में रेस्ट कोनी करनी और घर को काम करनो,
0: यानी पूरी की पूरी गृहस्थी को बाहर ई उम्र में।
1: हाँ, और पियर में तो काम की दो कोनी।
0: सही बात है।
1: तो भाई कभी बनाई तो एकदम परफेक्ट तो कोनी बनी।
0: हाँ, वो तो अनुभव से धीरे धीरे देख ज्ञान मान कि आपा भी तो अबे तक सीख रहा है।
1: वो सीखो कह के जन्म लेवे वध्यू इंसान अनी
0: मृत्यु तक। हाँ, सीखे
1: मृत्यु तक वो सीखे ही करे। हाँ, सीखे ही करे तो भी यू नहीं कह सका मैं परफेक्ट हूँ।
0: मैं परफेक्ट हूँ क्योंकि कही है लर्निंग इज टोटल लाइफ ऑफ ए पार्ट।
1: हाँ, एक आरती बता दे अपना श्रोता बंधु। हाँ,
0: भाई ये वही है, जीवन को एक पर्याय है।
1: बिल्कुल। तो कंचन अबे भाई सब काम वकापू कराता।
0: हाँ।
1: अबे भाई टाबरी जी तो काम आछो कोनी हो तो सासू जी लड़ लड़ करता, ससुरा जी गालियां देता, पाचे नाना अंदर देवर ये है वे भी माँ बाप का लारे लागन माने भाभी ने सुनाता कई
0: बता का बता। यानी ज्ञान मान ले कि भी पुराना जमाना में लगभग ज्यादातर ज्ञान की तो केस होता।
1: हाँ, ये केस ज्यादा ही होता।
0: हाँ।
1: बाकी भावना नहीं समझता। आज अपना ही बच्चा अनी उम्र में वे तो आपा माने कतरो काम भरावा। प्यार तो देवा नहीं देवा।
0: प्यार तो देवा देवा।
1: कि कोई प्यार नहीं मिलतो।
0: हाँ।
1: और पति देव 17 साल की उम्र में।
0: तो देख भाई दूसरो परिवेश, दूसरो गांव, दूसरे हाँ? लोग, या मैं बेचारी ने ज्ञान देख ले कि भी कतरो
1: एक एडजस्ट बेटा भी टाइम लाग गए।
0: टाइम लाग गए।
1: और 17 साल का पति की उम्र अब वो भी कई समझते को नहीं।
0: हाँ,
1: वो तो पढ़ते हो।
0: सही है।
1: तो बाहर भी पढ़ रहे हो, पचे बेटा ने तो भेज दी दो कॉलेज में पढ़वा का लिए बाने।
0: हाँ।
1: पियर वाला क्यों कि भाई माई माँ की बेटी ने ले जावा।
0: हाँ।
1: के जदी बेटा होशियार वेन आ जाए।
0: हाँ,
1: जत्र माँ की छोरी मोटी हो जाए पचे भेजा। लोग नहीं इन्हें कटे ले जाओ।
0: अच्छा।
1: इन्हें तो कोनी भेजा।
0: मैंने
1: भेजे कोनी क्योंकि भाई अबे बिना पैसा की नौकरा नहीं मिल गई।
0: हाँ।
1: तो सब काम कराता वेकापो
0: सब भाई। कदे कदे तो घणो ही शोषण होता और पुराना जमाना की तो बात ही अलग होती है।
1: सही बात
0: एक
1: है।
0: तो देख कम उम्र में पढ़ना देता है, कम उम्र में पढ़ना देता और वही वाली बात की आप कहता तो चोखा कोनी लागे कि भाई हाँ बिना पिया की नौकरानी मिल गई। पर कहिए कि एक मानसिकता तो ज्ञान की होती गणा लोग।
1: मानसिकता होती कि चलो यार रही घर में तो काम करी
0: तो काम करी।
1: हाँ। तो वो कहे जत्र आपा काम ने छोड़ता जावा आलस से अपना ऊपर चढ़तो जावे।
0: हाँ।
1: और पचे अपना लिए पानी के गिलास भरता भी जोरावा लाग
0: जोरा जावे। लाग जाए तो बैठे तो कहिए सास तो भाई ज्ञान आराम सु कि भाई चल अब तो बहू आ गई।
1: हाँ,
0: मैं कई काम करूं, मैं काम करती चौकी को नहीं लागू। तरह तरह की मानसिकता हुआ।
1: तरह तरह की मानसिकता हो तो आसान वेका सब काम करा था। और चे बीचे जदि छुट्टी वेती जो हस्बैंड भी आते हो।
0: हाँ।
1: तो भी के 16 साल की उम्र में तो एक टाबरी होगी। अच्छा हर प्रकार को शोषण विकास तो ही हो पाचे तो मारपीट भी करवा लाग गई
0: यान मान ले भी आपा फिजिकली मानसिक और इमोशनली सभी तरह से
1: इमोशनली शारीरिक हर ऋतु शोषण
0: तो
1: और हस्बैंड तो उम्र परिपक्व नहीं ही तो वो भी नहीं सुनते
0: वो भी ना समझी हो
1: ना समझ हो और पचे माँ बाप भाई कहीं भी कहता है या ऐसी है थू परो जावे कॉलेज या ऐसी है या वसी है
0: याने तो, के मान ले कि रोज को कले को वातावरण ही बन जाता
1: हाँ
0: और पूरी गृहस्थी खराब भाई यान देख ले ई वास्ते ही तो ई दर्द ने वो कही है कि टाबर अपने घर में अपनी माँ के लारे होते देखा है तो टाबर भी चोखो को नहीं हुआ बापे भी इफेक्ट पड़े
1: अरे बच्चों भी हर पल दरब तो रहे भयभीत रहे
0: भयभीत रहे
1: वे नहीं यू डर लागे मारी माँ ने कट्टी मारी नहीं और फिर बेटी होगी तो और सब नाराज अगर है तो बेटी ने जन्म दी दो
0: सही बात है भी।
1: 2 साल की बेटी हुई पाचो दूसरो बेटो हो गयो और विकास साथ में व्यवहार बच्चों को बच्चों बनो रियो
0: ई वास्ते तू कही है आज यान को गीत लगान सुन रही है मैंने अब समझ में आयो है
1: अबे मैं काले ही विकी बात सुनी तो बच्चे मने तो कई पतो यो गीत भी थोड़ो मार्मिक है
0: भाई बिल्कुल सही कहे हो
1: तो कदी कदी कही है मन उदास होए ना सुनीता ये बात सुनो मारो मन तो उदास हो गया
0: देखो आपा ज्ञान मान ले कि भाई आपा मोक्ष धामू आवा लोटा जद ज्ञान की विरक्ति छा जब आपा
1: हाँ बिल्कुल
0: ज्ञान के माहौल में आपा रवाना थोड़ी देर तो वहां को इफेक्ट है तो आप अपने मानस पे और हृदय पे पड़े ही पड़े
1: अरे बिल्कुल कंचन तो मैंने वही बात याद आ रही विके को विके कई जिंदगी है घनी मुश्किल हुआ 9 साल तो सेन की दो पछे वा डिसीजन ले ली तो मैंने पियर भी कोनी जावा देता माँ बाप कहता माँ की छोरी आल तक नानी है तेरी उम्र कोई नहीं कदिक तो भेजो ही ना
0: कदिक तो भेजो
1: भेजे 2 दिन में पाचा बुला लेता
0: अरे घना जना तो कपड़ा भी कोनी देवे
1: हाँ
0: देखो खुद तो देवे नहीं पैरवा के वास्ते एक उम्र हुआ भी पहनवा करवा को चाव होवे
1: यही उम्र होवे जो खावा पीवा की पेरवा ओढ़वा की
0: हाँ और जचे भी
1: सही बात है
0: और भाई देखो रवे तो टाबर भी कही है सोसाइटी में ये वास्ते वा की इच्छा भी वो एक दूसरे ने देख
1: बिल्कुल तो भी नहीं देता कोनी
0: देवे कोनी और पियर जावा कोनी हाँ, देवे
1: अनपियर भी नहीं जावा देवे तो बच्चे कहीं करे 2 दिन जावा दे नहीं भाई बस घरे काम है अबे नहीं रेवा दाका की अबे बने तो सबने आलस आ गयो अबे काम कौन करे
0: काम कौन
1: या है जो कर रही है सीधो काम मल रो है और इंसान ढलतो ढल जावे और काम भी सीख जावे
0: हाँ।
1: पर एक टाइम तो लागे ना
0: टाइम तो लागे
1: हर घर को सिस्टम अलग है
0: बस
1: तो 9 साल वा सेन की दो पछे भी के कोई सखी सहेलिया विका पियर का रिश्तेदार विने सपोर्ट की दो के तू कतराक दन सेन करी
0: हाँ भी मरो तो नहीं जावे नहीं
1: हाँ।
0: सेन तो करनो आछो है थोड़ो सहन करो थोड़ो सो एडजस्ट करो वो सब तो ठीक है पर कहीं अति तो बुरी हुआ है
1: अति हो जावे विको अंत हो भी होवे अब 2 टाबर हो गया 2 टाबर के खावा पिया का ठिकाना नहीं विके कपड़ा का ठिकाना नहीं आदमी ने वैसे मुट्ठी में कर दी दो तो वो वैसे सुनी कोई नहीं
0: सुनी
1: बच्चा पे भी जीव को नहीं तो बच्चे सबके ऊपर यूं थोड़ी जिंदगी चले और दिखवा में खूब रूपाली
0: और ज्ञान की भी होवे भाई वो रंग रूप का ही है भगवान बनाए डो है
1: वो सही है अब 14 साल की उम्र में विके शादी वेगी तो वह 5वीं 6वीं भाणन बस
0: सही बात है
1: ज्यादा पढ़े भी कोई नहीं क्योंकि माँ बाप की परिस्थिति एडी ही कोनी,
0: हाँ।
1: और आछो घर मल रहे हो पैसा वालो तो पढ़ना दीदी
0: बस कदे कदे वो भी तो लालच मार जावे कि अच्छो घर है पर अच्छो घर पाछे कई नाच न चावे वो तो पाछे पत्तो लग गए
1: पाछे खबर पड़े तो भी तो भाई कई होशियार हो गयो भाई अच्छी नौकरी लाग गयो भाई डिसीजन ली दो क्योंकि कतरी बार भाई देखो विकास सामने भी बेन ने अशानी ससुराल में मारनो कुटनो भाई की भी वे शरम नहीं राखी यदि पचे भाई क्यों माँ बाप ने भाई अभी बेन ने आपने नहीं भेजने नहीं तो ये पाचे भाणेजी की जिंदगी खराब हो जाए याने भी नहीं पढ़ाई या का ऊपर खर्चो नहीं और वह भी सोचो कि आदमी भी आपनो नहीं है तो घर में रेवा को कोई
0: रेवा
1: मतलब
0: को
1: नहीं
0: है। मतलब
1: तो पाचे बात छोड़ दी दो और बड़ी मुश्किल हुई छोड़ो भी सरल नहीं हो वे
0: हाँ भाई कतो इमोशनली अटैचमेंट हो जाए
1: अटैचमेंट हो और ससुराल वाला ऐसे छोड़े थोड़
0: यान छोड़े नहीं हो और देख एक महिला ने तो कतरी इज्जत बेइज्जती को कतरो सोचा है
1: घनो सोचनो पड़े
0: कि भी लोग यान कही वो तो अपने ऊपर लेन देखा बेचारी
1: हाँ
0: कि भी लोग मने ही ओछी नीची बोली है मारे लिए यान की खबर दे
1: मारा छोटा भाई बहन का कई हो या कई कोई बेटी दे ही नहीं गई मारे बहन को ब्याह वेक नहीं वेक कतरो ही सोचे
0: पियर को ससुराल को अड़ोस पड़ोस को समाज को नारी की तो मैं यान कहूं कि धन्य जो एडजस्ट कर जावे।
1: सही बात है। तो भाई भी परन गयो, बहन भी परन गई, दो बहना ने एक भाई है।
0: हाँ।
1: पचे डिसीजन ले दो पचे। अच्छा। सब क्यों अबे तू घबरा मत, माँ थारो सपोर्ट करा।
0: हाँ।
1: और तू छोड़ दे।
0: हाँ।
1: तो चल कंचन, टाइम हो गया है एक गीत सुनवा को, पचे आप बात करा पचे आगे कई हो।
0: हाँ भाई बिल्कुल सही।
1: तो यो ही गीत सुना था, छोटी सी उम्र पर ना यो बाबू सा।
0: बहुत अच्छो गीत है, सही।
1: तो सुनता रहो,
0: मुस्कुराता रहो।
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM।

उमर में परनाई मने दूर परनाई ओ वीरा लाड़ कला वीरा लाड़ लड़ाई बाली उमर में परनाई।

0: भाई वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। साथ साथ लारे लारे बहन भाई देखो क्यान खेले हैं टाबरे, और पछे पढ़ना देवे दूर।
1: सही बात है,
0: तो
1: दूर पढ़ना देवे, फिर बाली उम्र में पढ़ना में, छोटी उम्र में पढ़ना।
0: हाँ, बाली उम्र तो ज्ञान की होवे। चल एक खेल खिलौना ज्ञान
1: हाँ, गुड्डा गुड्डी को खेल भेजू वही टाइम पे तो यू ही लागे
0: बस। और वो आकर्षण कतरे दिन रहे,
1: वो तो जदि जमीन पे उतरा एक वो क्या 4 दिन की चांदनी पछे अंधारी रात।
0: तो पछे पता लग गए कि भाई, और देखो ससुराल वाला या भी तो सुनवा के लिए तैयार नहीं हुआ है कि मैंने याद आ रही है।
1: हाँ अरे भाई क्यों अटे काम करना पड़ रहा जो पियर की याद आ रही।
0: काई बात बताऊं कि भी निजी भी अनुभव बताऊं तो मैं देखे, वो बात तो बिल्कुल सही है कि ससुराल वाला कोई भी यो नहीं मानना चाहे कि भी मैंने आज याद आ रही।
1: हाँ,
0: या पियर की याद आ रही है, या हमारे कतरी बार तो ज्ञान को हुआ है कि पियर को नाम लेते भड़क जावे।
1: सही क्यों कंचन, बिल्कुल एड़ो ही होवे है पियर को नाम तो भाई जानी घर में जन्म लिदो जटा मोटा हुआ बटा की याद नहीं आई,
0: बैठे की याद नहीं आई। और वो अनुभव मैं एक मारी टीचर को भी बता रही हूँ कि भाई हाँ वो बतावा है कि भी मारे तो ससुराल में काई है एक दो बार की भी पियर को नाम ले दी दो तो बस मारे सास ससुर तो बात को तिल को ताड़ बना लियो। और जदे पाछे मैं भी कसम खाली सोगंध खाली कि कद्दे भी जाके आगे ना तो मैं बात करूं और न ही कोई वाको नाम लू
1: चर्चा
0: करूं।
1: सही बात
0: देखो भाई कतरो मन मारनो पड़े,
1: घणो मन मारनो पड़े भाई।
0: और वो
1: तो
0: शिक्षित नारी कह रही है।
1: हाँ जो शिक्षित नारी तो अनपढ़ को बच्चे कई
0: तो अनपढ़ को तो कई
1: तो वाणी बेन का तो मना आश्चर्य होवे केड़े कम पड़ोड़ी है तो विकल आ रहे हालत खराबी ही।
0: हाँ,
1: और विक भी पियर थोड़ो दूरी हो। हाँ पढ़ना ही छेटी ही
0: हाँ,
1: पैसा वाला देकन पढ़ना दीदी छोरी आराम करी बड़े वो दूर वो भाई छेटी वेन छोरी सुखी वेती वे तो आपने कही है तो छेटी भी दे दी दो तो घड़ी घड़ी कोई आ नहीं सके।
0: आ नहीं सका
1: पर अड़ोस पड़ोस का द्वारा रिश्तेदारी का द्वारा ठा पड़ जावे कि माँ की छोरी सुखी कोनी
0: सुखी कोनी
1: तो पहली तो वह कहती भी कोनी। अच्छा केवा लागी भाई घणो ही होवे तो केणो ही पड़े।
0: सही बात
1: और
0: है।
1: जदि भाई की माँ बाप की वे लोग शरम भूल गया पछे माँ बाप की क्यों अपनी शरम नहीं है तो अबे आपने छोड़ो तो घनी मुश्किल वाली बेटी ने तलाक दी दो क्योंकि वे देवा ही तैयार नहीं भरण पोषण को कहीं भी कोनी दी दो।
0: बताओ।
1: भरण पोषण को कहीं नहीं दी दो जदि वे ने जावा दी दो टाबर ने क्या ले जाओ अटे नहीं राखनो। वे तो वहां के छोरा के यूं है एक दूसरी पढ़ना देवा पर या छोरी नटगी मारे कटी नहीं परन्नो। और भैया अबे ज्यादा पढ़ोड़ी कोई ना पचे भी ने पियर लाया वे ने पार्लर को काम सिखायो और सिलाई सिखाई।
0: सिलाई सिखाई।
1: तू 6 महीना भूल जा कहीं नहीं माँ कह रहा खर्चो तू
0: हाँ
1: 6 महीना थारा काम पे ध्यान दे।
0: हाँ
1: टाबर ही थोड़ा थोड़ा मोटा हो गया और वे क्यों टाबर पे भी माँ ध्यान देवा तू अच्छो पार्लर को कोर्स कर ले और सिलाई सीख ले
0: सिलाई सीख ले
1: जो थाना अच्छो आ जाए वही करवा लाग जा जे।
0: बहुत बढ़िया।
1: पार्लर को काम सीखे हो तो पचे कंचन पार्लर में तो चांदी चांदी।
0: हाँ
1: आपने काम
0: आजकल तो घणो ही चाल रही हो।
1: हाँ और ज्यादा पड़ोड़ी कोने पर देखो नाम हाम सब आवे और वह तो पार्लर को करे।
0: हाँ
1: तो पार्लर भी के बढ़िया चालवा लाग गयो धीरे धीरे धीरे पहले आईब्रो चालू की दी आईब्रो तो आजकल हर कोई करावे।
0: हाँ हाँ
1: 20-20-30-30 रुपया
0: में कूणा कूणा पे
1: हाँ
0: खुल गया।
1: और पचे भी ने बाने भी जावा की छूट दे दी थाने झट्टू ऑर्डर आवे बटे जाओ और काम करो।
0: सही
1: तो अब विके पार्लर को काम बढ़िया विके
0: यानी अपने पैर पे खड़ी होगी
1: खड़ी होगी।
0: देखो भाई नहीं तो अतरी कम उम्र के मायने पढ़ना देवे तो कतरो को टाबर को अभी तो इमोशंस कतरे हुआ अपने परिवार के प्रति और बाकी प्रति और ससुराल वाला सुने नहीं ज्ञान का अत्याचार हुआ है तो कतरो मुश्किल हुआ है।
1: कतरो मुश्किल
0: पर देख भाई अबे तो कहिए बाल विवाह हो गया पूरी तरह से लगभग खत्म।
1: आज भी कंचन कटे कटे छाने छाने वेरिया।
0: हाँ वो तो हो रहा है।
1: हाँ अबे इको भी किदो बाल विवाह तो ठानी पड़वा दीदी दी।
0: अच्छा।
1: ये भी घनी मोटी कोई ने उम्र में आज 50-55 साल की है।
0: हाँ
1: तो खानगी में किदो क्योंकि कटे सरकार ने खबर पड़ जाए तो माँ बाप अनि लालच कर दी दो छोरी अच्छा घर में जा रही और ये भी खूब प्रलोभन दी दो ताकि छोरी ने यूं रहा का ताकि छोरी ने यूं रहा का।
0: कबा में तो काई है।
1: हाँ तो असान ब्याह भी हो तो वे बेन जी रोता जा रहे कहीं भी देखो आज सुखी वे जाओ पर पहला दुख का दिन कदी कोई भूले को नहीं
0: कोई भूले को नहीं। सही बात है।
1: तो वे रोता जा रहे सब बात बताए मारे साथ में एडो एडो हुआ। अब आज ये मस्त है पूरी रीतु तलाक हो गयो के भरण पोषण के 1 रुपया नहीं दी दो तो मान गया भाई मत दो शांति छावे
0: आपनी मतलब मेहनत बहुत रंग लावे
1: रंग लावे। तो पचे भी ने लाग्यो मैं पार्लर को कैच कर सकू तो 1-2 महीना सिलाई सीखन बंद कर दी दो।
0: अच्छा।
1: पूरो फोकस पार्लर पे ध्यान दी दो और अच्छो सीख गई और अभी के बढ़िया चालवा भी लाग्यो और थोड़े है होशियारी है तो बोलता करता सब आग्यो
0: सब आग्यो।
1: क्योंकि पैसा वाला घर में ब्याह भी हो तो वाके थोड़ी लैंग्वेज तो हाउस वे बहुने भले गाली गलोच करी लोगा का सामने तो अच्छा बोली।
0: सही बात है, ओ बिल्कुल सही कही तू कि वाको कही है कि जो पिया वाला है वाको रहन सहन माँ बाप भी कई देखे रहन सहन देख ले वे और तो कही है कि भैया रहन सहन तो बनावटी आजकल सभी कन ऊंचाई रखवा की कोशिश कर
1: वो दिखावो ज्यादा हो
0: दिखावो ज्यादा हो हाँ। तो वास्ते कही है कि घनी बार तो पहचान में भी नहीं आवा कि मनख के मायने का ही है,
1: हाँ।
0: है? पहले तो कम से कम है जो यान मान ले कि भी छोटा तबका का मान लो कि ये होता तो कम से कम वो दिखता कि भी हाँ एक करेक्टर का भी ज्ञान हुई।
1: हाँ हाँ जो इंसान पहली कही है जो महीने हो वही बाने हो
0: बस
1: आज तो महीने कही अलग बाने कही अलग
0: बाने कुछ अलग।
1: अबे वाके रिक मैं अबे आराम में हूँ और पियर का बड़े ही घर ले ली दो किराया पे कनी पाच भाई भाभी है भतीजा भतीजी है काले मन मुटा हुए रिश्तो टूटे इका पेली वो कह पानी आवा के पेली पाल बांध दो बढ़िया
0: पाल बांध दो।
1: हाँ
0: बिल्कुल सही करो भैया
1: तो समझदारी चाली।
0: हाँ हाँ तो ये बात निभी गई
1: निभी गई और आज माँ बाप भाई बहन आवे सब राजी है बहन कछोरी मेहनत की दी और मेहनत तो ऊंची आ रही है और स्वाभिमानु जीवन जी रही है
0: स्वाभिमानु जीवन। हाँ
1: टाबर को खर्चो गामड़ा में रहवे अनिवासे ज्यादा खर्चो कोई नहीं पास पास में ऑर्डर आवे बाने परी जावे आ जावे छोरा छोरी ने तो माँ बाप ही हाचव लेवे भाई सपोर्ट तो करे जदी इस बच्ची कहीं भी कर सके
0: बस वो तो है ही भाई माँ बाप जान की कोई चीज नहीं हुए।
1: हाँ
0: तो जो दुख दर्द वाने महसूस हुए नहीं वो ओने नहीं हुए
1: नहीं होवे क्योंकि माँ पापनी वे तो ही अपनी वे
0: अपनी हुए
1: कहा वे पापनी नहीं वे पर फिर भी दुनिया में केवे पापनी वे तो ही अपनी वे
0: तो ही अपनी हुए।
1: हाँ
0: अब देख लो भी कोई बाहर के लोगा के वास्ते कोई कितनी सख्त हो कुछ भी हो पर माँ की ममता तो हुए ही हुए।
1: अरे हो गई है नारियल की नियान वे
0: वास्ते।
1: हाँ नारियल की नियान वे ऊपर कड़क वे पर अंदर सॉफ्ट वे
0: सॉफ्ट हुए
1: तो वहाँ कह रही मैं अच्छो कमा भी लू बानू भी ऑर्डर ले लू और टाबर ने भी अच्छो पढ़ा रही हूँ।
0: हाँ,
1: तो देखो भाई जीवन में कई भी तकलीफ आवे मान लो ये तो कम उम्र में पढ़ना ही और तकलीफ आई घना जना ने परिपक्व उम्र में पढ़ना आवे तो भी तकलीफ आवे
0: घनी बार आवे। अच्छा तो और थोड़ी सी एक यो समस्या है कि छोटो पौधो लगावा आपा तो कहिए कि जमीन में थोड़ो सो एडजस्ट हो जावे बढ़ जावे।
1: हाँ
0: एक यानी मैं बाल विवाह की बात को नहीं कर रही अठा है पर एक लगभग होती भी उम्र पढ़ना है तो है ना।
1: हाँ।
0: पर कहिए आजकल और ट्रेंड चल गयो भी कोई 30 की होगी कोई 32 की होगी
1: ओवर एज वेगी
0: वो ओवर एज होगी और वठे एडजस्टमेंट को कहिए कि बड़ो वृक्ष ले जान कठ प्रत्यारोपित करे नहीं लगावा आपा तो भूमि में एडजस्ट हुआ में थोड़ी सी मुश्किल हो जावे।
1: हाँ सही तो बात
0: अब कहिए कि वा को नेचर वा को स्वभाव वा का विचार वो मुख्य हो जावे
1: वो कहवे के काचा हांडा पे घर छेटे पाका पे नहीं छेटे। एक परिपक्व उम्र हो जावे तो वह वही माहौल में ढल जावे तो पछे वह एडजस्ट और खुद में बदलाव करवा को बेबी नहीं भी मैं
0: मतलब अति परिपक्व भी नहीं होने आप यानी कह रहे कि बाल विवाह को मतलब भाई वो ही है कि भाई हाँ आप 20-22 ने भी बाल विवाह कह रहे हैं वो नहीं है।
1: हाँ
0: बाल विवाह की जो आयु है वहां से नीचे नहीं होनी चाहिए।
1: हाँ नीचे नहीं होनी चाहिए और घनी ओवर एज भी नहीं होनी चाहिए 24-25 साल की उम्र में छोरिया ने पढ़ना दो जत्र छोरिया भण भी काटे और नौकरी भी लाग जाए।
0: सही बात है और
1: जो
0: वो
1: भी
0: तो...
1: कर वो छावे वो कर सके।
0: हाँ
1: तो चाल भाई कंचन अनिवास्ते में गीत सुन रही ही मार्मिक गीत पर अबे जावा को टाइम हो गया है।
0: तो गीत घणो चोखो लाग्यो भाई वो ही मैं भी सोची कि पहले इन्हें सुन लियो इको आनंद ले लूं पण कहिए मैं तो धूजनी चढ़ गई आज वो गीत
1: गीत एड़ो है ना जो पर चलो कंचन क्योंकि आपने लड़वा वाला कोई को नहीं पर जिम्मेदारी अपनी आपा समझ सका।
0: सही बात है जिम्मेदारी समझा जद ही तो मैं आठा आ सका।
1: हाँ तो टाइम पे आवा और टाइम पे जावा ताकि घर वाला ही राजी और सब राजी
0: सबे राजी
1: श्रोता बंधु भी राजी
0: बिल्कुल ताकि आपा मिलता रहा
1: मिलता रहा। तो आप जे भाई राम राम
0: राम राम भाई राम राम।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
2: ओम शांति। वेलकम टू मास्टर्स ऑफ चेंज। Each one of us has a unique life journey. And when we look at journeys of other people, we get to learn so much more. Our journeys are just singular, but when we open up to stories of other people and try and learn from their experiences, our journeys become much more enriched. Today we have with us a very special guest, Sister Ruth from Manchester in UK. Sister has been practicing meditation since the last many years and has had great experiences of experimenting with spirituality. Let's hear from Sister Ruth. Thank you so much for being with us today. We welcome you on the show.
3: Thank you. Om Shanti.
2: Om Shanti. Sister Ruth, we understand that you're a meditation practitioner and a spiritual educator now. But we would want to know how you got into this. How has your journey been?
3: Well, I'm from the UK, but I never felt I belonged in the UK because I'm in a half and half body, half white English and half Nigerian, and I didn't quite fit in. In 1958, England was quite racist, and I grew up in a culture where people were actually afraid of black people. My mother's family were sheep farmers from a village, and my great-grandmother was afraid of black people. She thought they were devils. She was a Christian, and this is the belief. And so people weren't very accepting, and so for me, I felt very strange. So I grew up in this community, and

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

ओम शांति। आज 11 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे जितना जितना तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना बाप के वर्से का नशा चढ़ेगा। देह अभिमान में जब होते हैं तो वो नशा ही नहीं चढ़ता है और इसीलिए बाप की याद भी नहीं रहती। तो देही अभिमानी बनना अर्थात स्वयं को आत्म समझकर बाप को याद करना। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम किसी को भी समझाते हो तो सबसे पहले दो बाप का परिचय जरूर दो। इसीलिए बाबा ने फॉर्म भी बनवाया था कि जब कोई भी कोर्स के लिए आता है तो उनसे पूछा जाए आपका शारीरिक पिता का नाम और फिर लिखा जाता कि आपके पारलौकिक बाप का नाम क्या है। जो जिसको भक्ति करता था उसका नाम लिख देते थे, श्री कृष्ण का नाम लिखता था, हनुमान का नाम लिखता था, क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप से परमात्मा पिता को पहचानते ही नहीं। बाबा आकर के इस समय हम बच्चों को पूरी पूरी पहचान देते हैं तो बाबा कहते हैं उसे बहुत प्यार से याद करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं इसलिए आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बना दें। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो, उन गुणों को धारण करते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशुक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं और याद करते हैं? उत्तर है, बहुत प्यार से कहते हैं और याद करते हैं, हे माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते, बच्चे मैं आया हूं। बाबा कहते, बच्चे मैं आया हुआ हूं, तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है बैठ समझाते हैं। क्या समझाते? कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे। बाबा आकर के ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे, और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो, हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं, भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं, चक्र की स्मृति जरूर रहनी चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। जैसे बाबा की बुद्धि में आदि मध्यंत का पूरा ज्ञान है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं।
जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है, देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है, विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो जट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ। देह से परे आत्मा, तो आत्मा के बाप का नाम बताओ। तो कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते हैं। अरे तुम लौकिक बाप को तो जानते हो, और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी है हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात समझाते हैं, बाबा बिल्कुल सहज बात बताते हैं। तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही है इसलिए भगवान से मिलने के लिए यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा पतियों का पति हूं, बापों का बाप हूं। सब बाप भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते सब लौकिक बाप भी भगवान को याद जरूर करते हैं, आत्माएं ही याद करती है। बल कहते भी है ब्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु ये बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं है। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ ना सके। काली प्रकाश में बिंदु का रूप दिखाए तो कोई समझ ना सके। यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। मनुष्य क्या कहते उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा बिंदी है। तो मूंज पड़े हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वो बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें। तो बाबा क्या कहते अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं वह जरूर यहां ही आकर बैठेंगे, प्रकृति के बीच में आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है ये सब है भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं
उनको भगवान कैसे कहेंगे? जो भगत खुद भक्ति कर रहा है उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। इसको पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, बाबा ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, बाप ज्ञान का सागर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के तीन चार बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचा होगा, कोई बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहां तुमको बाप एक ही धंधा सिखलाते हैं, कौन सा? कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको ये लक्ष्य दो, बाबा कहते सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे श्री कृष्ण पुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। श्री कृष्ण पुरी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मनिश्चय करो, आत्मभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहां भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे, तुमको तो अपना शरीर है। बाबा फिर लोन लेते हैं, बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। बाप खुद कहते हैं, मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी है पतित पावनाओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते तुम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जो इतने खंड है उनका नाम निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परमपिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है जहां देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्होंने यहां मंदिर है, चित्र है, तो भारत की ही बात हुई। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था,
ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर वह सांवरा था ना, कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया? अभी तुम यह बातें समझते हो कि सतयुग में सर्प भी नहीं होंगे जो किसी को काटेंगे और सांवरा हो जाएगा। बाबा कहते अभी तुम यह बातें समझते हो। श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं, माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की ही है। माँ बाप की कुछ है नहीं, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन भक्ति है रात, अंधेरी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, क्या समझाते बाबा? घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ, तुम आधा कल्प के आशिक हो एक माशुक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, सभी को याद करते तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशुक को पूरा जानते नहीं है। याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये किसको भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है, हम जिन्स है ना, बच्चा समझते हैं हम बाप का वारिस बनेंगे। बच्ची थोड़ी कहेगी, वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है, निराकार और साकार पियर घर है, बुलाते भी है हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं कि कैसे वो आकर दुख से लिबरेट करके सुख देंगे, कहाँ का गाइड बनेंगे। बाबा कहते बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है, बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। मनुष्य गुरु महात्माएं जब वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं, मैं गुप्त आता हूं, खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना, अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, संगम युग पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, मात पिता शिक्षक का पाठ भी बजाते हैं। यहां तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है। साक्षात्कार तो नौधा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भक्त होते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, ऐसे भी वक्त होते हैं तीखे वक्त, बाबा उसको कहते हैं दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, तब साक्षात्कार होता है, उनको नौधा भक्ति कहा जाता है। यहां नौधा भक्ति की बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं,
दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। शिव बाबा कहते दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो, अब मामे कम याद करो तो यह बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं। विष्णु द्वारा पालना चार भुजा का अर्थ ही है, दो भुजा मेल की दो फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है, किसका भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे, बाबा का ही आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था। हैदराबाद में जहां बाबा रहते थे तो बाबा के घर में तो सत्संग होता ही था, लेकिन घर में जब लोग नहीं बैठ पाए तो पूरा आंगन बाबा का जो था वो आंगन भर जाता था। जज मैजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवान आज काम महा शत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो। शुरू में फिर बाबा ने भी ये कहा, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना, देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं कोई नहीं लेते हैं, एक चल पड़ता है एक छोड़ देता है। तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहां तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो हम ईश्वरीय संतान है, शिव बाबा के बच्चे हैं,

वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा, ना जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं, अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर है, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती है। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा, सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरी पॉइंट, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है, बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशुक को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने, साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया, अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। इसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके। इतने पक्के होना, जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता है। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। कभी हलचल है कभी अचल है तो बाबा कहे कभी सिंहासन मिलेगा और कभी नहीं भी मिलेगा। इसलिए स्थिति हमारी एक रस होनी चाहिए। अच्छा,